0: महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन बोल चाल वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
1: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी हो रहे हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
1: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्ब भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोकदल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
1: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए तो उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरें।
1: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 की 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे गए तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
1: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री JP नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद JP नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार इसे इनकार कर रही है लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
8: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
9: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
10: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे, पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
7: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
11: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी, उसको अस्थाई तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको, ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर नागपुर से भी आई, जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
12: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए,
13: नई प्लेट लाकर, एक घंटे के लिए ये प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम। प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा, यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं, और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में, जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खम्भों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहाँ नाव चल रही है वहाँ जमीन थी और अब यहाँ मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गांव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गाँव में आपके साथ।
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुँचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहाँ रहना चाहते तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्थाएं सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात।
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: पानी का सर अब बहुत साल बाद तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आएगा भीतर घुसा है पानी अब के देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, की जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में है। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, ये दिक्कत हमका लोग का, ज्यादा दिक्कत है नहीं।
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
5: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं। जैसे ही नाव पहुँच
6: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है यहाँ अट्टे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
7: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा में जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नाग वासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है, ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी, पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन की कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वही अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: अब बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कांवड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कांवड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कांवड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कांवड़ वापस लौटाने की चेतावनी दी।
5: कांवड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: नहीं, आप सनातनी हैं।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला तो
9: सामने है,
10: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं,
9: उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: हम लोग यहाँ कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है,
9: तो उनके खिलाफ कार्रवाई
10: चाहिए। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवड़ लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवड़ वापस लेंगे।
11: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है,
7: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा आज तक भी।
3: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है फौरन होंगे हाजिर आप देखते रहिए आज
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या कपूर के प्रयोग से मन की चिंताएं दूर हो सकती हैं? क्या कपूर का प्रयोग करके मन को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या आज के दिन भगवान कृष्ण की कृपा से संतान का वरदान मिल सकता है? क्या है कपूर की महिमा और क्या है सावन की एकादशी का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
2: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही दल्तिस्तान भी बनता।

बीजेपी की नई टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना, अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या, बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग पर भड़के अखिलेश, कहा पीडीए समाज के खिलाफ साजिश, मंत्री चिराग पासवान बोले रिजर्वेशन खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार है। आंदोलनकारियों से मिले यूपी में डिप्टी सीएम। मुंबई के बुलेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, विशाल मूर्ति गिरने से दो लोगों की मौत हुई, 5 घायल। और देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हैं हालात, जम्मू कश्मीर की नदियों में उफान, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, खबर है मुंबई से, जहां गणेश प्रतिमा के आगमन कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर राजा की प्रतिमा गिरने की वजह से दो लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि पांच लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों में दो बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये घटना है भुवनेश्वर इलाके में हुई, जहां पर शुरुआती जांच में सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा नजर नहीं आया था, इसी वजह से संतुलन बिगड़ गया और प्रतिमा धड़धड़ाते हुए नीचे गिरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन दो लोगों की जान चली गई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें दो बच्चे इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि गड्ढा होने की वजह से, संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। और आपको ये भी बता दें कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरियों के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।

0: तो इस मीटिंग को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद थे। उनकी पूरी की पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें लिखा है कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरियों के बारे में होती है, जिनका मकसद है पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना। पुणे में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की, उनसे जुड़े मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया है। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उद्धरण को शर्मनाक भी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती हैं।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। समबडी विल से आवर इकोनॉमी, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था और सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू हुई हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। ये बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन बोल चाल वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: तो आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद्य की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरकों की निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।

0: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
1: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
2: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम भर रहे हैं।
3: उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोकदल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
1: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, तो उचित होगा।
4: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो BJP को घेर रहे हैं।
1: BJP भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है, तो अखिलेश यादव BJP को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
4: तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे गए तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
1: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे हम चीनी के बारे में, जिसके बढ़ते हुए दामों ने आम आदमी की टेंशन को बढ़ा दिया है। सरकार अब चीनी को विदेश से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है।
6: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
4: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
7: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
6: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं।
8: देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात करेंगे सीजेपी के बारे में, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके 24 घंटे बीत चुके हैं।
8: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
9: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थानी पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
3: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे, पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
8: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
10: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी, उसको अस्थाई तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको, ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
8: स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर लाखूट से भी आई, जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
11: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए, नई प्लेट लाकर, एक घंटे के लिए प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
8: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
5: संगम नगरी प्रयागराज, गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी वहां पर उफान पर हैं। सबसे बुरे हालात हैं यमुना पार के 12 तहसील में, जहां बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, लोगों के घरों को डुबो चुका है। गांव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खम्भों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है सबमर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके हिसाब से?
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: वो यहां रहने तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह बांट
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं पूरे आपके क्षेत्र की बात?
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद आया तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गया नहीं तो आएगा भीतर घुसा है पानी। अब देख ले
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, ये दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है नहीं।
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर? बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं देखा, जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव प्रयागराज आज तक।
6: अब बात करेंगे प्रयागराज शहर के बारे में, जहां गंगा और यमुना उफान पर हैं। संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूबे हुए हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चला करती थी, अब वहां सिर्फ और सिर्फ नाव नजर आ रही हैं।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा मामू में जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है? ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना।
2: ये जी पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन की कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटी के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
5: क्या कपूर के प्रयोग से मन की चिंताएं दूर हो सकती हैं? क्या कपूर का प्रयोग करके मन को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या आज के दिन भगवान कृष्ण की कृपा से संतान का वरदान मिल सकता है? क्या है कपूर की महिमा और क्या है सावन की एकादशी का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
6: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

बीजेपी की नई टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार कहा है इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग पर भड़के अखिलेश यादव कहा पीडीएस समाज के खिलाफ साजिश मंत्री चिराग पासवान बोले रिजर्वेशन खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार है आंदोलनकारियों से मिले यूपी के डेप्यूटी सीएम मुंबई के बुलेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा विशाल मूर्ति गिरने से दो लोगों की मौत पांच घायल और देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश के बाद बिगड़े हालात जम्मू कश्मीर की नदियों में उफान शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर

0: प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरियों के बारे में होती हैं, जिनका मकसद होता है पार्टी को मजबूत करना, लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है इस नई टीम के साथ, नई टीम के गठन के बाद। और आपको बता दें कि इसके बारे में प्रधानमंत्री ने लिखा भी है सोशल मीडिया पर कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरियों के बारे में होती हैं, जिसका मकसद होता है पार्टी को और मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना। पुणे में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उद्धरण को शर्मनाक बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होती है। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। समबडी विल से आवर इकोनॉमी, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imagination.

0: है सबमर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने,
1: कितनी आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके हिसाब से?
0: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहां रहने तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह
0: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: कितने बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं पूरे आपके क्षेत्र की बात?
0: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
2: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचन ना चढ़ी पानी तो कहूँ गया नहीं तो आ गया भीतर घुसा है पानी अब के देख ले।
1: आपके गांव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचन ना आई तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर की जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यह दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है। नहीं
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाया, जरा छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं। देखा जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
2: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे बाढ़ की समस्या भी घटे।
2: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव प्रयागराज आज तक।
6: बात करेंगे प्रयागराज शहर के बारे में जहां गंगा और यमुना उफान पर हैं, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूबे हुए हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चला करती थी अब वहां सिर्फ और सिर्फ नाव नजर आ रही हैं।

प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा मामुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि

0: साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि शहर की पहचान बन चुके नाग वासुकी रोड जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में और वन वे भी एक्चुअली सावन की कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: क्या कपूर के प्रयोग से मन की चिंताएं दूर हो सकती हैं? क्या कपूर का प्रयोग करके मन को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या आज के दिन भगवान कृष्ण की कृपा से संतान का वरदान मिल सकता है? क्या है कपूर की महिमा और क्या है सावन की एकादशी का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
6: बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
7: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

बीजेपी की नई टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना, अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा है इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या, बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग पर भड़के अखिलेश यादव, कहा पीडीएस समाज के खिलाफ साजिश, मंत्री चिराग पासवान बोले रिजर्वेशन खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार है, आंदोलनकारियों से मिले यूपी के डेप्यूटी सीएम। मुंबई के भुलेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, विशाल मूर्ति गिरने से दो लोगों की मौत, पांच घायल। और देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश के बाद बिगड़े हालात, जम्मू कश्मीर की नदियों में उफान, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूजा उपासना में हम सामान्यतः आरती के लिए कपूर का प्रयोग करते हैं। आज आपको बताएंगे कपूर के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में, और आज एक विशेष एकादशी भी है, उसकी महिमा की चर्चा भी करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 अगस्त 2026, दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र शाम के 5:44 तक, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कपूर के बारे में। आम आदमी कपूर के बारे में इतना ही जानता है कि कपूर जलाकर हम देवी देवता की आरती करते हैं। कपूर है क्या और इसका महत्व क्या है? देखिए, कपूर एक विशेष तरीके का रसायन है, एक विशेष तरीके का केमिकल है जो एक खास वनस्पति से प्राप्त होता है। इसको पौधे से आसवन क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपूर आम तौर पर 3 तरीके का होता है, जापानी कपूर, भीमसेनी कपूर और पत्री कपूर। कपूर का प्रयोग पूजा उपासना में

औषधि दवाई बनाने में और सुगंध के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा में देवी देवताओं की आरती के लिए कपूर का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। वैसे तो आरती दीपक से भी होती है और आरती कपूर से भी होती है, लेकिन सामान्यतः अनुष्ठानों के अंत में या पूजा के अंत में कपूर जलाकर देवी देवता की आरती की जाती है, या विशेष अवसरों पर किसी के स्वागत में किसी को सम्मान देने के लिए भी कपूर जलाकर आरती की जाती है। कपूर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के महीने का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, करियर में सफलता के योग हैं, लेकिन आज अपने निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, संतान की चिंता हो सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। आखिर कोई तो कारण होगा कि पूजा में कपूर का इतना ज्यादा प्रयोग होता है। आखिर जब हम कपूर का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे ऊपर या व्यक्ति के ऊपर कैसा असर डालता है? कपूर की जो खुशबू है, कपूर की जो सुगंध है, ये आपके मन को एकाग्र कर देती है, मन को कॉन्सेंट्रेट कर देती है। और कपूर से निकलने वाली अग्नि से कफ का और वात का नाश होता है। कपूर का विशेष औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है और जब आप कपूर का प्रयोग करते हैं तो ये दर्द का नाश करता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में कपूर का प्रयोग करना मादक प्रभाव और विष का प्रभाव उत्पन्न करता है। इसीलिए कपूर का प्रयोग पूजा में करें या औषधि के रूप में करें, अन्य किसी तरीके से कपूर का प्रयोग करने से आपको नुकसान हो सकता है, आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कपूर पर भी हमारी चर्चा जारी है और कार्यक्रम में आगे हम आपको आज की एकादशी के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ ये बताएंगे कि आज का दिन आपके जन्म की तारीख के अनुसार कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, अपयश से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अदिति ने हमें लिखा है और अदिति हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। 28 जुलाई 1989 का जन्म है।
रात में 11:20, जन्म स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। अदिति कह रही हैं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है और 2 साल से मैं अपने पति से अलग रह रही हूं, तो आगे क्या सेपरेशन होगा, शादी चल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अदिति, जिस विवाह के बारे में आप पूछ रही हैं, वो विवाह चलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2027 के पहले आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन होगा और आप इस विवाह से बाहर आ जाएंगी, ये संभावना बनती है। साल 2028 में आपकी दूसरी शादी के योग बनते हैं और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो आरती में कपूर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, तो आपको बताते हैं कि आरती में कपूर का प्रयोग किस तरह से आप करेंगे। एक बड़े से चौड़े मुंह के बर्तन में या थाल में कपूर के टुकड़े रखिए, इसको अग्नि से जलाइए, अग्नि प्रज्वलित करिए। इसके बाद इस अग्नि को देवी या देवता के सामने घुमाइएगा। अग्नि को जब आप घुमाएंगे या अग्नि को अपने हाथ में लेंगे तो अपने हृदय या उसके ऊपर की तरफ रखेंगे। आरती हो जाने के बाद कपूर की अग्नि को दोनों हथेलियों से लेकर के अपने चेहरे और सर पर लगाएंगे। कपूर से जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके शरीर में जाएगी और कपूर से जब आप आरती करेंगे तो आपके मन की नकारात्मकता, आपके मन की तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी। आज सावन की पुत्रदा एकादशी है, इसकी महिमा पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, कर्ज की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, समस्या से मुक्ति मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, आज यानी 23 अगस्त को सावन महीने की पुत्रदा एकादशी भी है। इसका महत्व क्या है और एकादशी का महत्व क्या है वो भी जानते हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं, लेकिन व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, मन की चिंताएं और तनाव दूर होते हैं, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है और हार्मोन्स की जो समस्या है, ये हार्मोन की समस्या ठीक होती है। जिन लोगों को डिप्रेशन है या जिन लोगों को कोई मनोरोग है, अगर वो एकादशी का उपवास रखें तो उनके मन की बीमारियां, मन की चिंताएं दूर होंगी। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो केवल पुत्र के लिए नहीं है, वो संतान प्राप्ति और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए रखा जाता है। भले ही इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हो, लेकिन मुख्यतः संतान प्राप्ति के लिए और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए इस व्रत को रखा जाता है। सावन महीना भगवान शिव का महीना है और एकादशी से संबंध माना जाता है भगवान विष्णु का, इसलिए सावन की पुत्रदा एकादशी बहुत ज्यादा फलदायी मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता का और हर समस्या का निवारण हो जाता है। आज किसी भी समय थोड़ा वक्त निकाल कर भगवान कृष्ण की पूजा करिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उनको तुलसी दल का भोग लगा के प्रार्थना करिएगा। संतान संबंधी जो समस्याएं हैं या संतान संबंधी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, आज सावन की पुत्रदा एकादशी है, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पति पत्नी आज संध्या काल में थोड़ा समय निकाल करके भगवान कृष्ण के बचपन के स्वरूप के सामने बैठें, उनका चित्र हो या उनकी मूर्ति हो, और उसके सामने बैठ करके संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। अगर ऐसा किया जाए और प्रार्थना की जाए आज के दिन, तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, आराम से पलंग पर बैठकर या लेटकर जैसे भी कर सकें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगी या मोबाइल पर लगा के आज संध्या काल में सुन लेंगी तो उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों को अपने संतान की उन्नति चाहिए, जो महिलाएं या जो पुरुष चाहते हैं कि उनके संतान की उन्नति हो, ऐसी महिलाओं को या ऐसे पुरुषों को आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और अपने बेटा या बेटी के उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, निश्चित रूप से उनकी उन्नति हो सकेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें
कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम मत टालें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर कहा गया है कर सकते हैं। इसके नियम क्या है? देखिए, सामान्य स्थितियों में शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना मना है, लेकिन स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। यानी सावन के महीने में भगवान विष्णु और शिव जी का स्मरण करके आप शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। बाकी महीनों में ऐसा करना वर्जित है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 8, रिश्तों में सावधानी रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं का समाधान होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न वीरेंद्र जी ने हमें लिखा है और वीरेंद्र जी हमें मेल लिखते हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 17 नवंबर 1990। जन्म का समय 4:30। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे की अब तक शादी नहीं हो पाई है, तो मेरे बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वीरेंद्र जी, आपके बेटे की कुंडली में विवाह का योग साल 2027 में बनता है। अप्रैल 2027 से दिसंबर 2027 का एक अच्छा समय है। इस समय में इनके विवाह की संभावना बन रही है
और ये विवाह करेंगे स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। देखिए इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब भी विवाह का निर्णय लिया जाए एक बार लड़की की कुंडली देख करके और अगर कोई उपाय है तो पहले करके तब विवाह किया जाए तो परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। अपने बेटे के लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें, इससे उनके विवाह की संभावनाएं बेहतर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन भूमि भवन आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। वृषभ राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें।

वाले काम करिएगा, अच्छा रहेगा। और आज एकादशी की तिथि है, आहार में भोजन में पवित्रता बनाए रखिएगा। सावन का पावन महीना चल रहा है और आपको अब बताते हैं सावन में सफलता के उपाय। सावन सूत्र में आप चाहें तो सावन में अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये शिवलिंग 12 अंगुल यानी 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

मुंबई के भुवनेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। विशाल प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, 5 घायल हुए। भुवनेश्वर चराजा की प्रतिमा गिरने के बाद मच गई थी अफरा तफरी। घायलों में 5 और 7 साल की 2 बच्चियां भी शामिल हैं। प्रतिमा का संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह माना जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ओडिशा के तट से 240 नॉटिकल मील दूर बंगाल की खाड़ी में पनामा के झड़ने वाला मालवाहक जहाज डूबा। ये जहाज ओडिशा से INS का कार्गो लेकर सिंगापुर जा रहा था। जहाज में 24 क्रू मेंबर्स थे, 20 चीनी, 3 म्यांमार के नागरिक थे, 1 क्रू मेंबर बांग्लादेशी था। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। वंदे मातरम पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। 1937 के फैसले को लेकर फिर से आमने सामने हैं दोनों ही दल। वंदे मातरम पर बीजेपी का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरे गाने के फैसले का खुलकर विरोध। समित पात्रा का कांग्रेस पर सीधा वार। कहा संसद बढ़िया कांग्रेस कार्य समिति, संविधान ने से समित कोई नाता नहीं। वंदे मातरम की पूरी विरासत की रक्षा करेगी बीजेपी। कांग्रेस के फैसले के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने का ऐलान किया गया। वंदे मातरम पर बंगाल में सियासी संग्राम तेज हुआ। शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। राष्ट्रवाद पर कोई समझौता नहीं, शुभेंदु अधिकारी का दावा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी स्थापित करेंगे राष्ट्रवाद। टीएमसी का पलटवार, वंदे मातरम के सम्मान में बीजेपी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम पर बंगाल में सियासी टकराव, शुभेंदु गोयम पर टीएमसी का पलटवार। स्वतंत्रता सेनानियों ने से आजादी की लड़ाई का नारा बनाया। जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर भी शुभेंदु का हमला, टीएमसी ने बीजेपी के इतिहास पर उठाए सवाल। छात्रों में गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का महिला अधिकारों पर जोर, बोली महिलाएं किसी के अधीन नहीं है। हजारों छात्राओं के बीच राहुल गांधी का संदेश, मनुस्मृति के उद्धरण को बताया शर्मनाक, बोले महिलाएं खुद की मालिक। जंतर मंतर पर लड़कियों के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, राहुल गांधी ने पूछा भेदभाव क्यों। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल बोले जनता काम के आधार पर मोदी पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान, 17 सितंबर से देश भर में चलेगा महीने भर का अभियान। नई टीम के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, संगठन मजबूत करने और जनता से जुड़ाव के बढ़ाने पर मंथन। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को मोदी का मंत्र, नए विचारों के साथ संगठन को मजबूत करने पर जोर। आगामी चुनावों की तैयारी पर बीजेपी का फोकस, यूपी पंजाब उत्तराखंड की रणनीति पर चर्चा। नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन की अगली बैठक, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर मंथन। 65 सदस्यीय नई टीम में 51 नए चेहरे होंगे। बीजेपी के सामने संगठन और विस्तार, चुनाव रणनीति को चुनौती। महंगाई पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, खड़गे बोले चीनी के दाम बढ़े, सरकार बताए वजह। चीनी के दामों को उछाल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, E20 नीति की समीक्षा की मांग की गई। राहुल खड़गे के बाद कांग्रेस का महंगाई पर सरकार को घेरा, कहा जनता सब याद रखेगी। लातूर में स्कूल ऑडिट को लेकर अभिजीत दीप के पर FIR, बिना अनुमति स्कूल में घुसने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप है। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत CJP नेता पर केस, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप। आरक्षण पर सियासी घमासान तेज हुआ, अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण खत्म करने की साजिश के आरोप। अखिलेश बोले आरक्षण PDA का अधिकार है, सुधार और समीक्षा के नाम पर अधिकार कमजोर करने की कोशिश। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, ब्रजेश पाठक बोले छात्रों की मांगों पर केंद्रीय नेतृत्व से कराएंगे बात। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर चिराग पासवान का बयान, बोले आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से चल रहे खरीफ और आने वाले रबी सीजन के लिए खाद्य विभाग की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की, कहा किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम भगवंत मान की पत्नी ने पूर्व जज को भेजा कानूनी नोटिस, लगाया था रेप केस दबाने के लिए 5 करोड़ मांगने का आरोप। गुरप्रीत कौर ने आरोपों पर भेजा कानूनी नोटिस, पंजाब में सियासी घमासान तेज हुआ।
5 करोड़ के कथित रिश्वत के आरोपों पर घिर गई है पंजाब सरकार, विपक्ष ने मांगा है जवाब। गुरप्रीत कौर पर आरोपों को आम आदमी पार्टी ने बताया बेबुनियाद, विपक्ष ने सरकार को घेरा। सीएम भगवंत मान की पत्नी पर आरोपों से गरमा गई सियासत, मंत्री हरभजन सिंह बोले चुनावी फायदे के लिए बदनाम करने की कोशिश। मंडी के नागलावा में दरगाह पहाड़, भरभराकर नाले में गिरा भारी मलबा, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। लैंडस्लाइड के बाद दहशत में नजर आए लोग, खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घरों को एहतियात के रूप में खाली कराया। कांगड़ा में हाईवे पर अचानक से गिरा था भारी बोल्डर, चपेट में आई कार, 5 श्रद्धालु सुरक्षित। बातू ब्रिज के पास रॉटफॉल में दो लेन बंद है, बारिश में बार बार पत्थर गिरने के बाद बढ़ गया हादसे का खतरा। कश्मीर में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा, तेज हवाओं के साथ नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और यूपी, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना। देवभूमि उत्तराखंड में फिर से बदल गया मौसम का मिजाज, देहरादून में देर रात हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ जारी रहेगी बारिश, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी किया गया। बिहार के दानापुर में दियारा में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नाव से नदी पार करने वाले लोगों को सुरक्षा की चिंता। भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर 2026 में शामिल हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। भारत मंडपम में 9वें इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का आयोजन, विजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह मौजूद। आईआईएम जम्मू की 10वीं सालगिरह पर समारोह में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विकास तकनीक भूमिका पर देश को सराहा। जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा 5 लाख रुपए से ज्यादा का ब्लड सपोर्ट, पुणे में ब्लड इन नीड ऐप का शुभारंभ किया गया, जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी की प्रेरणा से पहल। मुंबई की चौल के 7 युवाओं ने भूटान में एशियाई लंगड़ी चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है, रविंद्र चौहान ने बधाई देते हुए उनके संघर्ष और जज्बे को सराहा। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में नॉर्थ ईस्ट और स्थानीय छात्रों के बीच झड़प हुई, सीएम ने संज्ञान लिया। बख्तियारपुर में हवन के दौरान भड़की आग ने मचाई तबाही, 6 माह की बच्ची और 2 महिलाओं की झुलसकर मौत हुई। पठानकोट में स्कूटी सवार युवती को कार ने टक्कर मारी थी, 30 मीटर तक घसीटती रही, हादसे के बाद कार चालक फरार हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हैदराबाद में बहुमंजिला इमारत गिरने के बाद 2 लोगों की मौत हुई, बिल्डिंग गिरने का वीडियो भी सामने आया। नवसारी में नदी में डूब रही युवती को बचाने के लिए 10 युवकों ने छलांग लगाई, वीडियो वायरल हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बचाया जा सका। सूरत में पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली, ठेले पर 45 साल की शख्स को यह गोली लगी, जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात में मेहसाड़ा के कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 1 हफ्ते पहले ही शुरू किया था नया स्टोर। कच्छ में कबाड़ के उतारते समय जोरदार धमाका हुआ, 1 ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर, 2 मासूम भी इसमें शामिल है। नालंदा में सर्वे नर्सिंग छात्रों की 4थे दिन भी हंगामा और नाराजगी, रिजल्ट और मैनेजमेंट के नाम पर पैसे लेने के आरोप है। लातूर में स्कूल ऑडिट करना पड़ गया भारी, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक समेत 6 पे एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, 14वीं मंजिल से गिरे 2 मजदूरों की मौत हुई, सेफ्टी बेल्ट टूटने का आरोप है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला जेल से कैदी फरार हुआ, दीवार फांद कर भागा, पुलिस ने शुरू किया था सर्च ऑपरेशन। इटावा में पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे 25 साल के आकाश की दौड़ते समय मौत हुई, सिपाही बनने का अधूरा रह गया सपना। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में महिला ने डॉक्टरों पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए, अश्लील हरकत के भी आरोप लगाए गए, हंगामे के बाद जांच शुरू की गई। अजमेर सेंट्रल जेल में नशे का खेल, बेनकाबू, 500 रुपए में बिक रही हैं नशीली गोलियां।
नोएडा में काम करने वाले आईटी इंजीनियर की पीट पीट कर हत्या, ससुराल पक्ष के चार लोगों को हिरासत में लिया गया। मोदीनगर में दिनदहाड़े महिला के कान में झुमके छीनने की खबर, दो बदमाशों को सीसीटीवी कैमरे में कैद देखा गया, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव हुआ, पार्क रोड पर एमएलए आवासों के बाहर भी पानी भरा। फरीदकोट में एक शाते चोर ने महज 1.5 मिनट के भीतर 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हमीरपुर में अपनी ही बनाई मिठाई खाने से दुकानदार ने इनकार किया, एसडीएम ने उठाकर नष्ट करवा दी सारी मिठाई। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 492 खिलाड़ियों के भारतीय दल को मंजूरी दी, टीम में 265 पुरुष हैं और 227 महिला खिलाड़ी। भारतीय दल में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स खिलाड़ी, टीम में 35 पुरुष और 38 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। 30 सदस्य निशानेबाज टीम में मनु भाकर प्रमुख नाम है, टीम में 15 पुरुष हैं और 15 महिला निशानेबाज। 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम में पीवी संधु और लक्ष्य सिंह को मिल गई है जगह, सात्विक चिराग और गायत्री त्रिसा की जोड़ी भी टीम में शामिल। भारतीय दल में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और साथ ही अंतिम पंघाल जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे एशियन गेम्स।

0: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट अभी अमेरिकी इलाका है। ईरान पर बढ़ते आर्थिक दबाव के बावजूद सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का बड़ा बयान, कहा पड़ोसी देश चाहते नई सुरक्षा नीति, सुरक्षा आर्थिक रूपरेखा के लिए संपर्क किया। यूक्रेनी सेना का रूस पर भीषण हमला, ई कॉमर्स ऑनलाइन रिटेलर कंपनी ओजोन को बनाया गया निशाना, हमले में कई लोगों की मौत की खबर, कई घायल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पार्टी की बैठक में देशवासियों को एकजुट रहने की अपील की, साथ ही पुतिन ने कीव पर बर्बर हमले की कड़ा एतराज भी जताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के बिना रूस यूक्रेन युद्ध में स्थायी शांति संभव नहीं है, शांति के लिए अमेरिका की बड़ी भूमिका जरूरी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इसराइल से अवैध बस्ती योजना तुरंत रोकने की मांग की है, महमूद अब्बास ने कहा यह योजना पूर्वी यरूशलम को अलग थलग करने की योजना है। टैरिफ पर आमने सामने आए कनाडा और अमेरिका, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर नहीं बनी है बात, अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की, लुला ने अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया। पाकिस्तान में इमरान खान के इलाज पर बवाल है, प्राइवेट अस्पताल न भेजने पर बढ़की पीटीआई, शहबाज सरकार के खिलाफ कोर्ट में दायर किया अवमानना याचिका। 80 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला बन सकती है यूएन की महासचिव, फिलहाल इस रेस में कुल 8 दावेदार हैं, इनमें 5 महिलाएं शामिल हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
3: बिजली का बिल पेड
4: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
5: इतना माही वे।

0: The new BE6 Sportage.
1: बहुत टायर्ड हो गई.
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
3: लायन डेट नट बाइट्स.
4: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: B.R. अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अंबेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: The new BE6 Sportec.
1: राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर कवरपुरा जयपुर के इस सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इमारत कभी भी धस सकती है।
2: ये देखिए, ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत, एक ही सपना, भविष्य हो अपना, ये सब लिखा हुआ है। और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये रस्सी है यहाँ पर, और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है। ये कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए, और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है सीजेपी कार्यकर्ताओं से आने से पहले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं। विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में। आप लोग यहीं रहते हैं गांव में?
3: तो
2: गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं?
3: देख रहे थे, टूट रही चन पड़ रही चन,
2: इसको तो बननी चाहिए।
3: बाउंडी खोल मिला बाड़ा में
2: खोल रखा है।
3: अंडा बनावला जितना उंडी पटो।
1: जब आज तक की टीम सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत के पास तबेले में चल रहे विद्यालय की रिपोर्ट करने पहुंची, तो वहां जिला शिक्षा अधिकारी आ चुके थे। उनसे आज तक का सीधा सवाल,
2: ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी?
4: ये अजी तबेला नहीं, आप फिर आप तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट कर दे सुरक्षा के लिए। यानी सबसे पहले सेफ्टी है बच्चे की, बच्चे की को दुर्घटना नहीं होनी चाहिए।
2: लोग तो कह रहे हैं 2.5 साल से कर,
4: कौन कह रहा है?
2: जो इसका मालिक है।
4: अब मालिक तो कुछ भी कहते हैं, 2.5 साल कहाँ होगी? जब जर्जरी आपने 1 साल पहले किया है तो 2.5 साल कैसे हो जाएंगे भाई साहब?
2: तो कब इनको बेहतर जगह?
4: बहुत जल्दी हो जाएगा। 1000 करोड़ का प्रस्ताव पूरे राजस्थान का भेजा हुआ है सर सेंटर केंद्र में, और जल्दी वो पैसा आने वाला है।
2: चाहिए बताइए, यहाँ गांव वालों को बताया गया है कि 14 अगस्त को 18 लाख रुपए डीएमएफटी फंड से आ गया है, और आप कह रहे हैं भारत सरकार से आएगा।
4: डीएमएफटी अलग फंड होता है, डीएमएफटी तो अपने कलेक्टर के पास होता है। उसमें क्या होता है कि एमएलए को एक अधिकार होता है, विधायक महोदय को, विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं।
2: तो क्यों नहीं हो रहा है? वो तो हो सकता है।
4: अजी पैसा आया थोड़ी है, जैसे आप एमएलए साहब आए, उन्होंने घोषणा कर दी साहब 12 लाख रुपए हम इस चीज को लिए निर्माण के लिए देंगे।
2: कितना दिन लगेगा?
4: अब इसमें 2-4 मिनट लगते ही है।
1: 10 मिनट की बातचीत में डीईओ साहब ने तमाम सियासी और अफसरशाही की पेचीदगियां बता दी, बस तारीख नहीं बता रहे थे। अगला सवाल तारीख पर था,
2: तो डेट पूछ रहा हूँ मैं। तो
4: डेट नहीं होती इसमें। अब जैसे बात सैंक्शन जो पैसा हुआ, अब काम 2-4 महीने तो काम में चालू होने में लगेंगे, और 2-3 महीने में बनेगा, नींव खुदेगी, नींव खुदने के बाद उसका प्लेंथ लेवल पे आएगा, फिर इसमें छत पड़ेगी, फिर रंग रोगन होगा, फिर टाइम तो लगता ही भाई साहब।
2: जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हम इन बच्चों को अभी जल्दी शिफ्ट कर देंगे इस यहाँ से। ये जो स्थिति है जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप दिख रहे हैं कि चारा भी रखा हुआ है, और 2 कमरों में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और 2-4 महीने में स्कूल भी बन जाएगा।
5: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं, तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।
6: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है, और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया, और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद
7: किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है।
8: जाट समाज को लेकर
7: नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया।

वृश्चिक राशि, समस्या से मुक्ति मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए आज यानी 23 अगस्त को सावन महीने की पुत्रदा एकादशी भी है। इसका महत्व क्या है और एकादशी का महत्व क्या है वो भी जानते हैं। देखिए वैसे तो हम लोग बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं, लेकिन व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, मन की चिंताएं और तनाव दूर होते हैं, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है और हार्मोन्स की जो समस्या है ये हार्मोन की समस्या ठीक होती है। जिन लोगों को डिप्रेशन है या जिन लोगों को कोई मनोरोग है अगर वो एकादशी का उपवास रखें तो उनके मन की बीमारियां, मन की चिंताएं दूर होंगी। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो केवल पुत्र के लिए नहीं है, वो संतान प्राप्ति और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए रखा जाता है। भले ही इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हो लेकिन मुख्यतः संतान प्राप्ति के लिए और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए इस व्रत को रखा जाता है। सावन महीना भगवान शिव का महीना है और एकादशी से संबंध माना जाता है भगवान विष्णु का, इसलिए सावन की पुत्रदा एकादशी बहुत ज्यादा फलदायी मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता का और हर समस्या का निवारण हो जाता है। आज किसी भी समय थोड़ा वक्त निकाल कर भगवान कृष्ण की पूजा करिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उनको तुलसी दल का भोग लगा के प्रार्थना करिएगा, संतान संबंधी जो समस्याएं हैं या संतान संबंधी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए आज सावन की पुत्रदा एकादशी है, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पति पत्नी आज संध्या काल में थोड़ा समय निकाल करके भगवान कृष्ण के बचपन के स्वरूप के सामने बैठें, उनका चित्र हो या उनकी मूर्ति हो और उसके सामने बैठ करके संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। अगर ऐसा किया जाए और प्रार्थना की जाए आज के दिन तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं आराम से पलंग पर बैठकर या लेटकर जैसे भी कर सकें गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगी या

काल में सुन लेंगी तो उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों को अपने संतान की उन्नति चाहिए, जो महिलाएं या जो पुरुष चाहते हैं कि उनके संतान की उन्नति हो, ऐसी महिलाओं को या ऐसे पुरुषों को आज भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और अपने बेटा या बेटी के उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से उनकी उन्नति हो सकेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम मत टालें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर कहा गया है कर सकते हैं। इसके नियम क्या है? देखिए, सामान्य स्थितियों में शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना मना है, लेकिन स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। यानी सावन के महीने में भगवान विष्णु और शिव जी का स्मरण करके आप शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ा सकते हैं, बाकी महीनों में ऐसा करना वर्जित है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 8, रिश्तों में सावधानी रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं का समाधान होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न वीरेंद्र जी ने हमें लिखा है और वीरेंद्र जी हमें मेल लिखते हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 17 नवंबर 1990। जन्म का समय सुबह के 4:30। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे की अब तक शादी नहीं हो पाई है, तो मेरे बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वीरेंद्र जी, आपके बेटे की कुंडली में विवाह का योग साल 2027 में बनता है। अप्रैल 2027 से दिसंबर 2027 का एक अच्छा समय है। इस समय में इनके विवाह की संभावना बन रही है
और ये विवाह करेंगे स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। देखिए इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब भी विवाह का निर्णय लिया जाए एक बार लड़की की कुंडली देख करके और अगर कोई उपाय है तो पहले करके तब विवाह किया जाए तो परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। अपने बेटे के लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें, इससे उनके विवाह की संभावनाएं बेहतर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन भूमि भवन आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। वृषभ राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें।

वाले काम करिएगा, अच्छा रहेगा। और आज एकादशी की तिथि है, आहार में भोजन में पवित्रता बनाए रखिएगा। सावन का पावन महीना चल रहा है और आपको अब बताते हैं सावन में सफलता के उपाय। सावन सूत्र में आप चाहें तो सावन में अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये शिवलिंग 12 अंगुल यानी 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: और अब बात करेंगे नेशनल स्पेस डे के बारे में। चंद्रयान 3 के चंद्र लैंडिंग की याद में आज यानी कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। पोस्ट करके कहा है कि आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट करके कहा है कि चंद्रयान मिशन की ऐतिहासिक सफलता से लेकर गगनयान मिशन की महत्वाकांक्षी योजना तक अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय यात्रा राष्ट्र की वैज्ञानिक उत्कृष्टता, तकनीकी क्षमता और नवाचार के अटूट जज्बे को दर्शाती है। इस अवसर पर मैं हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और भारत के अंतरिक्ष समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सलाम करता हूं जिनकी लगन और प्रतिभा राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।

0: काल चक्र का उद्गम है।
1: इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है।

0: सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है।
1: आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।

0: मस्त बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करता है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है।
1: और अब बात करेंगे मॉनसून की आफत के बारे में, क्योंकि देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी है उफान पर, जिससे कि प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पानी भर चुका है। एक बार फिर से नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिर के आसपास का जो इलाका है, पूरी जलभराव की स्थिति वहां बनी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार हो रही बारिश के बाद हर इलाका, हर जगह जलमग्न है। देखिए जरा तमसा नदी है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितना तेज बहाव है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं टपकेश्वर मंदिर में भी पानी भरा हुआ है। हर साल इस मंदिर में पानी का भराव इसी तरह से होता है और ये जो नदी है हमेशा इसी फ्लो में बारिश के मौसम में देखने को मिलती है, और इसीलिए श्रद्धालुओं का बारिश के मौसम में वहां पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमसा नदी देखिए, साथ ही साथ देखिए कि किस तरीके से टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी पानी भरा हुआ है, और लोगों को एहतियात बरतने की बात प्रशासन की तरफ से कही गई है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे पहाड़ी इलाकों के बारे में भी, जहां लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के चलते हड़कंप मच गया। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक लैंडस्लाइड, बोल्डर, ओलावृष्टि ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मंडी में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नाले में गिर गया था, तो कांगड़ा शिमला हाईवे पर भारी बोल्डर गिरा और सड़क जाम हो गई। बोल्डर से बचने की कोशिश में श्रद्धालुओं की कार पलट गई थी। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि ये श्रद्धालु सुरक्षित हैं, जान इनकी बच गई है। कितना बड़ा ये बोल्डर है ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। अलग अलग जगहों पर तमाम जो रोड मार्ग हैं वो इसी तरह से बाधित हो जाते हैं लैंडस्लाइड या बोल्डर गिरने की वजह से। और सबसे मुश्किल काम होता है फिर भारी बारिश के बीच सड़क को फिर से सुचारू रूप से तैयार करना। लगातार हो रही बारिश और उसके साथ ही ओलावृष्टि, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है, बोल्डर गिरने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खासतौर से पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में ये और ज्यादा आफत को बढ़ा देते हैं।
2: कुदरत का कहर, तर का पहाड़ भर भरा कर गिरा मलबा, कहीं नाले में समाया मलबा तो कहीं सड़क पर गिरा भारी बोल्डर। मंडी जिले के कटौला तहसील के नागनाला में शनिवार सुबह पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ। अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भर भरा कर नीचे आ गिरा और मलबा नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। भूस्खलन होते देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि राहत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। उधर कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे 503 पर बाथू ब्रिज के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर सड़क पर आ गिरा, जिससे एक तरफ की 2 लेन पर यातायात प्रभावित हुआ। इसी दौरान बैजनाथ मंदिर से लौट रहे 5 श्रद्धालुओं की कार बोल्डर से बचने की कोशिश में पलट गई। गनीमत रही कि 5 लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एयरबैग खुल गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला, वहीं यातायात को दूसरी तरफ से डायवर्ट किया गया। स्थानीय लोगों ने संवेदनशील हिस्से पर मानसून के दौरान पहले से सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। उधर जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश ने मुश्किल बढ़ाई है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला और हंदवाड़ा में तेज बारिश और हवाओं के चलते अचानक नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं शोपियां के कई इलाकों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। सेब के बागानों समेत खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुई। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बारिश, लैंडस्लाइड और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में प्रशासन के सामने लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज तक ब्यूरो
1: तो मैदानी इलाकों का भी हाल कुछ वैसा ही है। यूपी के प्रयागराज और वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, घाट डूबे हुए हैं पानी में। पानी बढ़ जाने की वजह से गंगा आरती को भी अब ऊपरी हिस्सों में ही शिफ्ट कर दिया गया है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए।
3: कुछ दिनों से गंगा में आई बाढ़ की वजह से बढ़ते जलस्तर के कारण लगातार जो ये चीजें हैं ये भी प्रभावित हो रही हैं। और इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के इस अस्सी घाट पर है, जो न केवल धार्मिक आध्यात्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे काशी की चौपाटी भी कही जाती है। रोज यहाँ हजारों लाखों की संख्या में आस्थावान श्रद्धालु आते हैं। साथ ही सावन का पावन माह चल रहा है तो यहाँ गंगा स्नान करते हैं, बाबा के जलाभिषेक के लिए जल भी ले जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं हमारे ठीक सामने की ओर जो हवन कुंड है सुबह बनारस का, वे जलमग्न हो गया है। तो वहीं दाहिने तरफ जो 7 प्लेटफॉर्म आरती के बने हुए हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। तो ठीक पीछे सुबह बनारस का जो मंच है, यहां पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गया है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ाव जारी है। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में चेतावनी बिंदु से तक गंगा का पानी आ जाएगा, तो खतरे के निशान तक भी अगले 3 से 4 दिनों में पहुंच जाएगा। हालांकि अभी चेतावनी बिंदु से गंगा 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे बह रही है। एहतियातन नौका संचालन पर पहले से ही रोक लगी हुई है। गलियों में और छतों पर चौदह महाशमशान, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर हो रहा है, तो छतों पर ही आरती भी हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोर की टीम लगाई गई है। 46 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, तो 21 बाढ़ चौकियां भी हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर सुरक्षा के इंतजाम में कमी देखी जा रही है। लोग रिस्क उठाकर अभी भी बाढ़ के पानी में बड़े जलस्तर में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जान जोखिम में डालकर यहाँ अभी भी लोग खतरा मोल ले रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर बाढ़ की रफ्तार ऐसी रही तो अगले 1 से 2 दिनों में चेतावनी बिंदु के बाद गंगा खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।
1: तो बिना ब्रेक के खबरें लगातार जारी रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं हेडलाइंस।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।

बीजेपी की नई टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना है। अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति को किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले राहुल को भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। आरक्षण हटाने की मांग पर यूपी में सुलगी है सियासत। अखिलेश के बाद मायावती ने भी खोला मोर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की आंदोलनकारियों से मुलाकात। मुंबई के भुलेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। विशाल मूर्ति गिरने से दबकर दो लोगों की मौत हुई, 5 घायल। और श्रीलंका के साथ कोलंबो में आज से दूसरा और आखिरी टेस्ट। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। कुलदीप यादव की जगह ऑफ स्पिनर सारांश जैन को मिल सकता है मौका।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर
1: मंडी के नागनाला में दरका पहाड़, भरभरा कर नाले में गिरा भारी मलबा, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। लैंडस्लाइड के बाद दहशत में लोग नजर आए, खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घरों को एहतियातन खाली करवा दिया है। कांगड़ा में हाईवे पर अचानक से गिर गया था भारी बोल्डर, चपेट में आई थी कार, 5 ही यात्री सुरक्षित। बाथू ब्रिज के पास रॉकफॉल से 2 लेन बंद करनी पड़ी, बारिश में बार बार पत्थरों के गिरने के बाद हादसे का खतरा बढ़ा। कश्मीर में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा, तेज हवाओं के साथ नदी नाले उफान पर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज और भारी बारिश जारी है, बांदा में भीषण बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कें बन गई हैं तालाब। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना। देवभूमि उत्तराखंड में फिर से बदल गया मौसम का मिजाज, देहरादून में देर रात हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ जारी रहेगा बारिश का दौर, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट। बिहार के दानापुर दियारा में बढ़ गया गंगा नदी का जलस्तर, नाव से नदी पार करने वाले लोगों की सुरक्षा की चिंता बढ़ी। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरा, 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। झमाझम बारिश के साथ दिल्ली और एनसीआर के दिन की शुरुआत हुई, वीकेंड हुआ कूल कूल। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में रेन संडे का लुत्फ उठाने के लिए निकले लोग, रिमझिम बारिश के बीच मौसम का मजा लिया, तापमान में दर्ज की गई कमी। गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक से करवट लिया, काले बादलों के साथ मूसलाधार बारिश। मुंबई के भुलेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ, विशाल प्रतिमा के गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, 5 घायल हुए। भुलेश्वर चौराहा की मौजूदगी की प्रतिमा गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई थी, 5 और 7 साल की 2 बच्चियां भी इसमें घायल हो गई हैं। प्रतिमा का संतुलन बिगड़ना हादसे की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ओडिशा के तट से 240 नॉटिकल मील दूर बंगाल की खाड़ी में पनामा के झंडे वाले मालवाहक जहाज के डूबने की खबर, ये जहाज ओडिशा से आयन और कार्गो लेकर सिंगापुर जा रहा था। जहाज पर 24 क्रू मेंबर से, इनमें 20 चीनी, 3 म्यांमार के रहने वाले, 1 क्रू मेंबर था बांग्लादेशी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स और इंडियन नेवी ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए। वंदे मातरम पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, 1937 के फैसले को लेकर फिर से आमने सामने हैं दोनों ही दल। वंदे मातरम पर बीजेपी का प्रस्ताव पारित हुआ, कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरे गाने के फैसले का खुलकर विरोध। समित पात्रा का कांग्रेस पर सीधा वार, पूछा संसद बड़ी या कांग्रेस कार्य समिति, संविधान से बड़ा कोई नहीं। वंदे मातरम की पूरी विरासत की रक्षा करेगी बीजेपी, कांग्रेस के फैसले के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने का ऐलान। वंदे मातरम पर बंगाल में सियासी संग्राम तेज हुआ, शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। राष्ट्रवाद पर कोई समझौता नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी स्थापित करेंगे राष्ट्रवाद। टीएमसी का पलटवार, वंदे मातरम के सम्मान पर बीजेपी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम पर बंगाल में सियासी टकराव, शुभेंदु के बयान पर टीएमसी का पलटवार, स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे आजादी की लड़ाई का नारा बनाया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी का हमला, टीएमसी ने बीजेपी के इतिहास पर सवाल उठाए। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का महिला अधिकारों पर जोर, बोले महिलाएं किसी से कम नहीं है ना ही अधीन। हजारों छात्राओं के बीच राहुल गांधी ने संदेश दिया, मनुस्मृति के उद्धरण को बताया शर्मनाक, बोले महिलाएं खुद की मालिक हैं। जंतर मंतर पर लड़कियों के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा, राहुल गांधी ने पूछा भेदभाव क्यों। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोल्स बोले जनता काम के आधार पर मोदी पर भरोसा करती है। अमित मालवीय ने कहा भारत की सभ्यता को अंग्रेजी के चश्मे से पढ़कर समझने का दावा नहीं किया जा सकता। देश आज मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ, 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों को छूने का आह्वान भी किया। अमित शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी। चंद्रयान से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से देशभर में चलेगा।

ये महीने भर का अभियान। महंगाई पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। खड़गे बोले चीनी के दाम बढ़े, सरकार बताए इसकी वजह क्या है। चीनी के दामों में उछाल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, E20 नीति की समीक्षा की मांग की गई। योगी आदित्यनाथ ने 3.54 लाख मिड डे मील रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण का शुभारंभ किया है। रसोईया माताओं और बहनों के सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर। मायावती ने जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को अनुचित बताया है। SC ST और OBC हितों की अनदेखी को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मायावती ने कहा आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे विकसित और सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। आरक्षण पर सियासी घमासान तेज हुआ। अखिलेश ने बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश के आरोप लगाए। अखिलेश यादव बोले आरक्षण PDA का अधिकार है, सुधार और समीक्षा के नाम पर अधिकार कमजोर करने की कोशिश। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। ब्रजेश पाठक बोले छात्रों की मांगों पर केंद्रीय नेतृत्व से कराएंगे बात। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर चिराग पासवान का बयान, बोले आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चल रहे खरीफ और आने वाली रबी सीजन के लिए खाद्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। कहा किसानों को खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता। CM भगवंत मान की पत्नी ने पूर्व जज को कानूनी नोटिस भेजा है। लगाया था रेप केस दबाने के लिए 5 करोड़ मांगने का आरोप। गुरप्रीत कौर ने आरोपों पर भेजा है कानूनी नोटिस। पंजाब में सियासी घमासान तेज हुआ। 5 करोड़ के कथित रिश्वत आरोपों पर घिर गई है पंजाब की सरकार। विपक्ष ने मांगे हैं जवाब। गुरप्रीत कौर पर आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने बताया उसे बेबुनियाद। विपक्ष ने सरकार को घेरा। CM भगवंत मान की पत्नी पर आरोपों से गर्मा गई है सियासत। मंत्री हरभजन सिंह बोले चुनावी फायदे के लिए बदनाम करने की हो रही है कोशिश। जाला में मराठा आरक्षण मुद्दे पर अब्दुल सत्तार ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। जरांगे ने 29 अगस्त को विरोध प्रदर्शन की बात को दोहराया। मुर्शिदाबाद में पूर्व TMC के नेता अनुव्रत मंडल ने सुरक्षाकर्मी के घर पर बीरभूमि पुलिस ने छापेमारी की है, जांच जारी। राजस्थान के जयपुर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा। संदिग्ध मूंगफली के तेल का 6,900 लीटर स्टॉक जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 60 जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान लिए गए 100 से ज्यादा नमूने। उदयपुर में 600 लीटर नकली दूध को किया गया नष्ट। कई जिलों में बासी मिठाई, मावा, घी और तेल पर भी कार्रवाई। इस साल नवंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। निर्माण कार्य ने पकड़ी है रफ्तार। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी रात्रि विमान सेवा। फिलहाल यहां से सिर्फ दिन में ही उड़ानों का हो रहा है संचालन। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक फ्री यात्रा। रक्षाबंधन पर अकोला रेल मेल सर्विस की खास पहल। राखी भेजने के लिए स्टेशन परिसर में स्पेशल काउंटर होगा, बहनों को लंबी कतार से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नॉर्थ ईस्ट और स्थानीय छात्रों के बीच झड़प हुई, CM ने संज्ञान लिया। बख्तियारपुर में हवन के दौरान भड़क गई थी आग, तबाही में 6 माह की बच्ची और 2 महिलाओं की झुलसकर मौत हुई। पठानकोट में स्कूटी सवार युवती को कार ने जोरदार टक्कर मारी थी, 30 मीटर तक इस स्कूटी को घसीटा भी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद, ड्राइवर फरार। हैदराबाद में बहुमंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर। बिल्डिंग गिरने का वीडियो भी सामने आया। नवसारी में नदी में डूब रही युवती को बचाने के लिए 10 युवकों ने छलांग लगाई थी, वीडियो वायरल हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को बचाया जा सका। पटना के मनेर थाना गेट के पास फायरिंग के मामले में 3 की गिरफ्तारी, पूछताछ अभी जारी है। सूरत में पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर से चली थी गोली, ठेले पर खड़े 45 साल के शख्स को यह गोली लगी, जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात के मेहसाड़ा में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 1 हफ्ते पहले ही शुरू किया गया था नया स्टोर। कच्छ में कबाड़ उतारते समय जोरदार धमाका हुआ, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर, 2 मासूम भी इसमें शामिल थे। नालंदा में नर्सिंग छात्रों का 4th दिन भी हंगामा, रिजल्ट और मैनेजमेंट के नाम पर पैसे लेने के आरोप। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, 14वीं मंजिल से गिरे थे 2 मजदूर, मौत हुई, सेफ्टी बेल्ट टूटने का आरोप है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला जेल से कैदी फरार हुआ, दीवार फांद कर भागे थे, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इटावा में पुलिस भर्ती तैयारियां कर रहे 25 साल के आकाश की दौड़ते दौड़ते मौत हुई, सिपाही बनने का सपना अधूरा रह गया। अजमेर के JLN अस्पताल में महिला ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के आरोप लगाए, हंगामे के बाद जांच शुरू की गई।

अजमेर सेंट्रल जेल में नशे का खेल बेनकाब हुआ, 500 रुपए में बिक रही है नशीली गोलियां। हैदराबाद में टॉक्सिक प्री रिलीज इवेंट में साउंड सिस्टम का बड़ा सेटअप गिरा, 2 छात्राएं घायल हुई, 1 छात्रा बेहोश। मोतिहारी में हॉस्टल की रसोई में गर्म तेल से 3 इंजीनियरिंग के छात्र झुलस गए थे, गुस्साए छात्रों ने फिर प्रदर्शन किया। नोएडा में काम करने वाले आईटी इंजीनियर की पीट पीट कर हत्या, ससुराल के पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मोदीनगर में दिनदहाड़े महिला के कान से झुमके लेकर बदमाश फरार हुए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। श्रीलंका के साथ कोलंबो में आज से दूसरा और आखिरी टेस्ट है, क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, कुलदीप यादव की जगह ऑफ स्पिनर सारांश जैन को मिल सकता है मौका। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 492 खिलाड़ियों को भारतीय दल को मंजूरी दी है, टीम में 265 पुरुष हैं और 227 महिलाएं। भारतीय दल में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स खिलाड़ी, टीम में 35 पुरुष और 38 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। 30 सदस्य निशानेबाज टीम में मनु भाकर का प्रमुख नाम है, टीम में 15 पुरुष हैं और 15 महिला निशानेबाज। 20 सदस्य बैडमिंटन टीम में पीवी सिंधु लक्ष्य सेन को मिल गई है जगह, सात्विक चिराग और गायत्री त्रिसा की जोड़ी भी टीम का हिस्सा। भारतीय दल में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और अंतिम बंगाल जैसे दिग्गज शामिल हैं। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे एशियन गेम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, का हॉर्मुज स्ट्रेट अभी अमेरिका का इलाका है, ईरान पर बढ़ते हुए आर्थिक दबाव के बावजूद सैन्य विकल्प हमारे पास खुले। ईरानी संसद के स्पीकर कैलिवाफ का बड़ा बयान, कहा पड़ोसी देश चाहते हैं नई सुरक्षा नीति, सुरक्षा और आर्थिक रूपरेखा के लिए संपर्क किया गया। यूक्रेनी सेना का रूस पर भीषण हमला, ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलर कंपनी ओजोन का बनाया था निशाना, हमले में कई लोगों की मौत हुई, कई लोग इसमें घायल हुए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पार्टी की बैठक में देशवासियों को संबोधित किया, एकजुट रहने की अपील की गई, साथ ही पुतिन ने कीव के बर्बर हमले पर कड़ा एतराज जताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के बिना रूस यूक्रेन युद्ध में स्थायी शांति संभव नहीं है, शांति के लिए अमेरिका की भूमिका जरूरी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इसराइल की अवैध बस्ती योजना को तुरंत रोकने की मांग की है, महमूद अब्बास ने कहा यह योजना पूर्वी यरूशलम को अलग थलग कर डालेगी। टैरिफ पर आमने सामने आ गए हैं कनाडा और अमेरिका, दोनों ही देशों के बीच ट्रेड डील पर बात नहीं बन पाई है, अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है, लूला ने अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया है। पाकिस्तान में इमरान खान के इलाज को बवाल जारी, प्राइवेट अस्पताल न भेजने पर भड़की है पीटीआई, शहबाज सरकार के खिलाफ कोर्ट में दायर की अवमानना याचिका। 80 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला बन सकती है यूएन की महासचिव, फिलहाल इस रेस में 8 दावेदार हैं जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
3: Lion date, not bites.
5: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
6: बिजली का बिल पेड
7: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
8: कैसे?
7: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
8: इत्ता माही वे।
9: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.
10: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
3: बी.आर. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर कंवरपुरा जयपुर के इस सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इमारत कभी भी धस सकती है।
1: ये देखिए, ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत एक ही सपना, भविष्य हो अपना, ये सब लिखा हुआ है। और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये रस्सी है यहाँ पर, और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है। ये कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए, और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है सीजेपी कार्यकर्ताओं से आने से पहले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं। विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में। आप लोग यहीं रहते हैं गांव में?
2: गांव में ही रहवा सब।
1: तो गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं?
2: देख रहे थे, टूट रही चने, पड़ रही चने।
1: तो इसको तो बननी चाहिए।
2: बहुंडी खोल मिला बाड़ा में,
1: बाड़ा में खोल रखा है।
2: हाँ, अंडा बनावला जितना उंडी पटो।
0: जब आज तक की टीम सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत के पास तबेले में चल रहे विद्यालय की रिपोर्ट करने पहुंची, तो वहां जिला शिक्षा अधिकारी आ चुके थे। उनसे आज तक का सीधा सवाल,
1: ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी?
3: ये अजी तबेला नहीं, आप फिर वो आप तबेला तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट कर दे सुरक्षा के लिए। यानी सबसे पहले सेफ्टी है बच्चे की, बच्चे की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए।
1: लोग तो करेंगे 2.5 साल से कर,
3: कौन कह रहा है
1: जो इसका मालिक है?
3: मालिक तो कुछ भी कहते, सब 2.5 साल कहाँ होगी, जब जर्जरी आपने 1 साल पहले किया है तो 2.5 साल कैसे हो जाएंगे भाई साहब?
1: तो कब कब इनको बेहतर जगह?
3: बहुत जल्दी हो जाएगा। 1000 करोड़ का प्रस्ताव पूरे राजस्थान का भेजा हुआ है सर सेंट्रल केंद्र में, और जल्दी वो पैसा आने वाला है।
1: अच्छा ही बताइए, यहाँ गांव वालों को बताया गया है कि 14 अगस्त को 18 लाख रुपए डीएमएफटी फंड से आ गया है, और आप कह रहे हैं भारत सरकार से आएगा।
3: डीएमएफटी अलग फंड होता है, डीएमएफटी तो अपने कलेक्टर के पास होता है। उसमें क्या होता है कि एमएलए को एक अधिकार होता है, विधायक महोदय को, विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं।
1: तो क्यों नहीं हो रहा है? वो तो हो सकता है।
3: अजी पैसा आया थोड़ी है, जैसे आप एमएलए साहब आए, उन्होंने घोषणा कर दी साहब 12 लाख रुपए हम इस चीज को लिए निर्माण के लिए देंगे।
1: कितना दिन लगेगा?
3: अब इसमें 2-4 मिनट लगते ही है।
0: 10 मिनट की बातचीत में डीईओ साहब ने तमाम सियासी और अफसरशाही की पेचीदगियां बता दी, बस तारीख नहीं बता रहे थे। अगला सवाल तारीख पर था,
1: तो डेट पूछ रहा हूँ मैं। तो
3: डेट नहीं होती इसमें। अब जैसे बात सैंक्शन जो पैसा हुआ, अब काम 2-4 महीने तो काम में चालू महीने में लगेंगे, और 2-3 महीने में बनेगा, नींव खुदेगी, नींव खुदने के बाद उसका प्लेंथ लेवल पे आएगा, फिर इसमें छत पड़ेगी, फिर रंग रोगन होगा, अब फिर टाइम तो लगता ही भाई साहब।
1: जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हम इन बच्चों को अभी जल्दी शिफ्ट कर देंगे इस यहाँ से। ये जो स्थिति है जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप दिख रहे हैं कि चारा भी रखा हुआ है, और 2 कमरों में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और 2-4 महीने में स्कूल भी बन जाएगा।
4: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं, तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे उस समय, निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें। तो
5: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दंभ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है, और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया, और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद
6: किसी का पता नाता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है,
7: जाट समाज को लेकर
6: नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बीजेपी की नई टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना, अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या, गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता। आरक्षण हटाने की मांग पर यूपी में सुलगी है सियासत, अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी खोला मोर्चा, डेप्यूटी सीएम बृजेश पाठक ने की आंदोलनकारियों से मुलाकात। मुंबई के भुलेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, विशाल मूर्ति गिरने से दबकर दो लोगों की मौत, 5 घायल। और कोलंबो टेस्ट में भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला, कुलदीप यादव की जगह ऑफ स्पिनर सारांश जैन को मौका, क्लीन स्वीप के इरादे से उतरी टीम इंडिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कवच हूं मैं, अरिका मैं ही हूं संहारक। थर थर कांपे शत्रु मुझसे, परम शक्ति का मैं धारक। भारत माता की जय। ऊर्जा मुझ में है अग्नित, लक्ष्य भेदी प्रण है मेरा। जल थल नभ में सर्वव्यापी, शौर्य ही कर्तव्य मेरा। वंदे मातरम।
1: अनमैन्ड सिस्टम्स, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, इनका इंपॉर्टेंस काफी।

0: भी लड़ाइयाँ होंगी उसमें ड्रोन जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे।
1: डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब हमें महारत हासिल हो चुकी है, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री।
2: थर थर कांपे शत्रु मुझसे, परम शक्ति का मैं धारक, ऊर्जा मुझ में है अगणित,

0: आज जितने भी मिसाइल हमारे यहाँ बन रहे हैं, आई वुड से 85-90% इंडिजिनस है।
1: हमारी जो डिजाइन क्षमता है, जो हमारी टेस्टिंग क्षमता है, वो हमारी पूरी परफेक्ट हो चुकी है।
2: सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया।
3: हमारा जो सिस्टम है अमंगस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं।
4: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। वंदे मातरम में हम आपको हमेशा युद्ध भूमि में लेकर चलते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, जिन सैनिकों को आपने देखा है। लेकिन इस बार के वंदे मातरम में हम आपको उस युद्ध भूमि में लिए चलेंगे जो वर्तमान की और भविष्य की युद्ध भूमि है। उन योद्धाओं से मिलाएंगे जो भविष्य के योद्धा हैं और जो भारत को विश्व की शक्ति बनाने के लिए अपने हाथों को जय जवान और जय विज्ञान के नारों के साथ मजबूत कर रहे हैं।
5: ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत का सुरक्षा कवच है।
6: आकाश मिसाइल का कैपेबिलिटी है, हम लोगों ने आप सिंदूर में देखा है। हम लोग एनिमी इसको जाम नहीं कर सकते या इसको सप्रेस नहीं कर सकते।
7: इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एज फार एज द डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न।
5: ये सिर्फ निशाना नहीं लगाती, ये आधुनिक भारत का अमोघ अस्त्र है।
6: बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसका मतलब जब मिसाइल फायर करेंगे दुश्मन का जहाज बहुत दूर होगा, क्योंकि पास जाने से वो हमारा एयरक्राफ्ट एंगेज कर सकते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो बहुत दूर से लॉन्च करने वाले मिसाइल है।
5: ये केवल प्रतिरोध का प्रतीक नहीं, प्रतिकार का ब्रह्मास्त्र है।
8: ब्रह्मोस से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
0: हमारे जो एडवर्सरीज थे, जो एनिमीज थे, उनको रियली एक लेसन मिला कि आप हमारे साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा पोटेंट वेपन है।
5: ये केवल समुद्र की गहराई नहीं नापती, ये पानी के अंदर दुश्मनों की औकात नापती है।
9: टारगेट को, जो पायलट को नजर नहीं आ रहा है उसको टारगेट करना है, तो कम से कम 40 किलोमीटर की रेंज की आपके पास में कोई मिसाइल होनी चाहिए।
5: ये सिर्फ हवा से जमीन पर वार नहीं करती, ये रौद्र रूप है रुद्र का।
6: एक बार हम मिसाइल लॉन्च करेंगे तो जरूर जाके वो जो टारगेट है उसको हिट करेगा।
5: ये केवल एक छोटा सा हथियार नहीं, पलक झपकते खत्म कर देता है दुश्मन का वजूद। ये है आधुनिक भारत के अत्याधुनिक मिसाइल शक्ति की तैयारी, जहां मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं, भारत का जय घोष है।
0: आज जितने भी मिसाइल हमारे यहाँ बन रहे हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे लेटेस्ट मिसाइल जैसे आपने देखा प्रलय मिसाइल हुआ, या रुद्रा मिसाइल हुआ, या अग्नि 5 मिसाइल हुआ, या इवन सब मैंने लॉन्च जिस तरह K4 मिसाइल है, K6 मिसाइल है, ये सब मिसाइल जितने भी हैं, या आकाश मिसाइल है, या LRSAM है, ये सब मिसाइल जो हैं, आई वुड से 85-90% इंडिजिनस है।

0: ये वो तैयारी है जिसमें स्क्रू से सॉफ्टवेयर तक आधुनिक होते भारत की छाप।
1: इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है स्पेशली रिलेटेड टू डिफेंस, सो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब हमें महारत हासिल हो चुकी है।
0: आज की युद्ध भूमि में ये आने वाले कल की ताकत है। ये वो कर्मवीर हैं जो वर्तमान और भविष्य के युद्ध का स्वरूप भी तय कर रहे हैं और योद्धाओं का रूप भी।
2: इस समय हमारे देश में DRDO से जो वेपन्स या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उनका जो प्रोडक्शन वैल्यू, करंट प्रोडक्शन वैल्यू है वो 6.6 लाख करोड़ है।
3: DRDO अब हर तरह की मिसाइल जो भी हमारी आर्म फोर्सेस को चाहिए उन सबको बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है।
0: आज वंदे मातरम में हम भारत के उन अमोघ अस्त्र की शक्ति से आपका परिचय कराएंगे जो वर्तमान के युद्ध में सबसे निर्णायक है, मिसाइल। और ये भी बताएंगे कि भारत एक मिसाइल शक्ति के रूप में दुनिया में कहां खड़ा है। सबसे पहले भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस, जिसके नाम में ही ब्रह्म है। ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं, ये हिंदुस्तान का हौसला है और दुश्मन की हार है। आधुनिक भारत का सबसे अत्याधुनिक ब्रह्मास्त्र। इसकी 3 मैक की खौफनाक रफ्तार है, यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब यह चलती है तो दुश्मन को एयर रेड सायरन बजाने तक का मौका नहीं मिलता। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 800 प्लस किलोमीटर तक है, जो कि ER वेरिएंट है। जिस तकनीक पर यह बनी है उसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, निशाना चूकना और दुश्मन का बचना नामुमकिन। इसकी ताकत का हिसाब इस बात से पता चलता है कि यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाकर 5 मीटर की नीची उड़ान से रडार को चकमा देकर सीधे तबाही मचाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है। जमीन, हवा, समुंदर, पनडुब्बी, हर जगह से यह तबाही ढाने में सक्षम है।

0: मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने सीमा पार की तो भारत ने ब्रह्मोस का वो रूप दिखाया कि रावलपिंडी तक दहल गया। पाकिस्तानी पीएम और जनरल आसिम मुनीर को बंकर में छुपना पड़ा। सुखोई 30 एमकेआई से दागी गई एयर लॉन्च ब्रह्मोस ए दुश्मन के लिए बंकर बस्टर के साथ साथ मिथ बस्टर भी साबित हुई।
1: कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है।
0: ये पाकिस्तान की शान नूर खान एबेस है। सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने 90 डिग्री के स्टीप डाइव अटैक से अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को पाकिस्तान के घमंड के साथ नष्ट कर दिया।
2: अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है।
0: 5 मीटर से कम सीईपी की सटीकता के साथ पूरे मेड इन चाइना एयर डिफेंस को खंड खंड कर दिया।
3: जो ब्रह्मोस है इसको रोकना बहुत मुश्किल है, तो नूर खान में जो भी स्ट्रेटेजिक असेट्स थे, उनकी जो भी एंट्री थी, एग्जिट थी, अप्रोच रोड थी, या जो एयर स्ट्रिप होती है, हवाई पट्टी जिससे हवाई जहाज उड़ सकते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, तो उन सबको खत्म कर दिया गया। तो खत्म कर दिया गया तो उसके कारण जो भी उनके असेट्स थे उस किराना हिल्स में, तो वो फिर बाहर निकल नहीं पाए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद उनको भी कुछ नुकसान हुआ होगा।
0: ये रहीम यार खान में तबाही की तस्वीरें हैं। दुश्मन के ड्रोन्स और रनवे को ऐसा उड़ाया कि महीनों तक वहां उड़ानों पर सन्नाटा छा गया।
1: पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया।
0: ब्रह्मोस की खासियत ये रही है कि उसको पाकिस्तान के रेडार पकड़ नहीं सके, लेकिन उससे हुई तबाही पाकिस्तान के आवाम ने अपनी आंखों से देखी। चीन का दिया HQ-9 और LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस की लो ऑल्टीट्यूड सी स्किमिंग तकनीक के आगे खिलौना बनकर रह गए।
3: ये एक स्टेल्थ मिसाइल है, कंपोजिट्स हैं इसमें और मेटल का काफी कम उपयोग हुआ है, तो ये जो दुश्मन के रडार में ये मिसाइल आती नहीं है। और दूसरी बात है कि इसकी जो स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो चाइनीज रडार थे वो इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। और तीसरी बात क्या है कि इस मिसाइल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो लगा के रखा है, तो वो पाकिस्तानी जो राडार्स अगर पकड़ भी लेते तो उनको इस मिसाइल को जैम करना बहुत मुश्किल था।
0: आज ब्रह्मोस सिर्फ रक्षा कवच नहीं, भारत की आत्मनिर्भर ताकत का सबसे बड़ा चेहरा है। 85% स्वदेशी तकनीक से लैस ये मिसाइल अब दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। फिलीपींस साल 2024 में ही ब्रह्मोस को अपनी सुरक्षा में तैनात कर चुका है। इंडोनेशिया से करीब $450 मिलियन की डील फाइनल हो चुकी है। वियतनाम और यूएई $700 मिलियन की डील के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ब्रह्मोस की खरीदार देशों में सऊदी अरब, मिस्र, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे दर्जनों मुल्क भारत की चौखट पर कतार में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नए बनते वर्ल्ड ऑर्डर में ये ब्रह्मोस डिप्लोमेसी का नया आयाम है।
1: ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए।
3: इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसको देखते हुए बहुत सारे देश इन ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए अब उत्सुक हैं। एक बात और है कि जब भी वॉर होती है तो वॉर में जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, तो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की टेस्टिंग हो गई, मतलब जहां पर दुश्मन के रडार भी हैं, दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइल्स भी हैं, जहां पर हमको कुछ मालूम नहीं है, हम पहली बार अटैक करने जा रहे हैं, तो वहां पर इस मिसाइल की टेस्टिंग हो गई। और इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 12-13 देश हैं जिन्होंने इस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है।
0: चाहे हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 हो या लड़ाकू विमानों के लिए नई ब्रह्मोस एनजी, संदेश साफ है, नया भारत अब केवल रक्षा नहीं करता, दुश्मन के घर में घुसकर तबाही का हिसाब करता है। ब्रह्मोस की ताकत ही है जो पाकिस्तान लगातार अपनी सुरक्षा के लिए नए नए समझौते कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को और उसका साथ देने वाले मुल्कों को याद रखना चाहिए कि आतंकी सरपरस्ती केवल और केवल मौत का सौदा है।
3: देखिए, ब्रह्मोस एनजी एक ब्रह्मोस के समान ही एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस को 1990 फिर 2000 इस बीच में विकसित किया गया था, तो अब नेक्स्ट जनरेशन में जो है बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मटेरियल्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ नया होगा इस मिसाइल में। और ब्रह्मोस एनजी उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से हमारी जो एक विंटेज ब्रह्मोस काम करती है।
0: आसमानी सरहदों की सुरक्षा करने वाली आकाश मिसाइल यानी आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता सबूत जिसने दुश्मनों के हर वार को बेकार किया, हर हमले को नाकाम किया, हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। मेरे साथ में आप ये आकाश मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं, ये केवल मिसाइल्स नहीं है बल्कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, प्रणाली है। आकाश पूरी तरीके से स्वदेशी है, इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये एक मध्यम दूरी की सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है। दुश्मन की तरफ से हवा में जो ड्रोन्स भेजे जाते हैं, मिसाइल्स दागी जाती हैं या किसी भी तरह का खतरा होता है, ये हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया। जब पाकिस्तान ने आसमान में ड्रोन्स की बरसात शुरू की तो भारत की तरफ से मोर्चा संभाला भारत में ही विकसित हुए एक रक्षक ने, एक ऐसा रक्षक जिसका निशाना जितना अचूक उसका वार उतना ही घातक। ऑपरेशन सिंदूर के इस स्वदेशी गेम चेंजर ने आकाश की सरहदों को दुश्मन के नापाक मंसूबों से पाक किया और बाआवाज़े बुलंद अपनी मौजूदगी का ऐलान किया, आकाश मिसाइल सिस्टम।
4: आकाश मिसाइल का जो उसका कैपेबिलिटी है, हम लोगों ने आप सिंदूर में देखा है। हम लोग आकाश मिसाइल पहले, अभी तो एक नहीं, अभी तो 3-4 वेरिएंट्स आ गए हैं। जो पहले था वो कमांड गाइड से चलते थे, उसको एनिमी इसको जाम नहीं कर सकते या इसको सप्रेस नहीं कर सकते। अभी इसलिए हम लोग इसका रिजल्ट तो देखा हम लोगों ने, जो अपना दुश्मन का जितना भी एफर्ट्स थे उन सबको आकाश मिसाइल ने उसको इनफेक्टिव कर दिया है। और अभी नया जो वर्शंस आ रहे हैं इसे कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा।
0: दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के हवाई क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिशें तेज हुई। ड्रोन और मिसाइलों के जरिए लगातार हवाई हमले किए गए, लेकिन भारतीय आसमान की सुरक्षा के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम मजबूती से सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए खतरों को एक तरफ S-400 नाकाम कर रहा था, दूसरी तरफ उतनी ही परफेक्शन के साथ आकाश अपने काम पर लगा हुआ था। ये इस बात की गवाही देता है कि भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता कितनी मजबूत हो चुकी है।
5: जो हमारे पास कैपेबिलिटीज अब आ गई हैं कि हम जो बैटलफील्ड में जिस टाइप की कंडीशंस होती हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी लेबोरेटरी हो, चाहे वो हमारे टेस्टिंग ग्राउंड्स हो, तो हमारी जो डिजाइन क्षमता है, जो हमारी टेस्टिंग क्षमता है, वो हमारी पूरी परिपक्व हो चुकी है। एंड द वे द सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड इन बैटलफील्ड, वी कैन टेस्ट नाउ एंड वी कैन प्रूव द परफॉर्मेंस इन एक्चुअल बैटल कंडीशंस।
0: आकाश की रेंज 25 से 45 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है। मिसाइल में करीब 60 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। इसका डिजिटल फ्यूज लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचने पर वॉरहेड को सक्रिय करता है। हर बार लक्ष्य को सीधे छूना जरूरी नहीं, बल्कि सही दूरी पर विस्फोट करके भी उसे नष्ट किया जा सकता है। आकाश की खासियत यह है कि उड़ान के दौरान लक्ष्य की जानकारी के आधार पर मिसाइल का रास्ता बदला जा सकता है, यानी उसे मिड कोर्स करेक्शन दिया जा सकता है। मिसाइल ही नहीं, भारत ड्रोन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए वंदे मातरम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: एक दो, एक श्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
9: कैसे?
8: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
9: इतना माही वे।

0: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप।
1: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
4: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
5: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही गलतिस्तान भी बनता है।

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त हर वाहन मालिक की यही कोशिश होती है कि माइलेज अच्छा मिले और इंजन लंबे समय तक बेहतर चलता रहे। ऐसे में पेट्रोल में इथेनॉल की बढ़ती मिलावट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से आगे बढ़ने को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। आसान भाषा में समझें तो E20 पेट्रोल पर सरकार का भरोसा बना हुआ है। अलग अलग टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल्स में इंजन पर किसी बड़े नकारात्मक असर का कोई सबूत नहीं मिला है और सरकार ने E20 कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से अहम बताया है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को भी खारिज किया है। मंत्रालय के अनुसार फील्ड ट्रायल्स में इंजन में जंग, असामान्य घिसाव या वाहन की उम्र घटने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जबकि इथेनॉल ब्लेंडिंग से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। सरकार ने इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा, जल उपयोग और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू करने की बात कही है। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी सरकार ने जानकारी दी है। देश में ईंधन मिश्रण के लिए अलग अलग कृषि स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत गन्ने के रस, मक्का, खराब हो चुके अनाज और टूटे चावल से इथेनॉल बनाया जा रहा है। वहीं इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली फसलों की सिंचाई से जुड़ी जरूरतों पर एक्सपर्ट्स की सिफारिशों का अध्ययन चल रहा है और सरकार E20 कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर ही फोकस बनाए हुए है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ाने की है। वहीं E20 से ज्यादा इथेनॉल मिश्रण या उससे जुड़े किसी नए नीति ढांचे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। साफ है कि सरकार E20 पेट्रोल को देश की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल पंप्स पर E20 की मौजूदगी बढ़ सकती है, जबकि इससे आगे के कदमों पर फैसला भविष्य की स्टडी और जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: आकाश सुपरसोनिक यानी ध्वनि की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है। ये मार्क 1.8 से मार्क 2.5 तक की रफ्तार से उड़ सकता है। आकाश की ताकत केवल इस मिसाइल में नहीं है बल्कि उसके रेडार और कमांड नेटवर्क में भी है। इसका रेडार एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 12 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकता है। आकाश एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें शामिल है लॉन्चर जो मिसाइल को लक्ष्य की ओर लॉन्च करता है, आकाश मिसाइलें जो हवाई खतरे को इंटरसेप्ट और नष्ट करती हैं, कंट्रोल सेंटर जो पूरे सिस्टम के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, मिशन गाइडेंस सिस्टम जो मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है, मल्टीफंक्शन फायर कंट्रोल रेडार जो लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है, आर्मिंग और एक्सप्लोजन सिस्टम जो सही समय पर मिसाइल के वॉरहेड को सक्रिय करता है, डिजिटल ऑटो पायलट जो उड़ान के दौरान मिसाइल को स्थिर और नियंत्रित रखने में मदद करता है, C4 सिस्टम यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके साथ इसमें कई तरह के सपोर्टिंग ग्राउंड इक्विपमेंट भी होते हैं। मिसाइल और स्पेस वॉर के इस दौर में DRDO की रिसर्च और अनुसंधान का सबूत आकाश भारत को न्यू एज वॉरफेयर के लिए तैयार करता है। अस्त्र भारत में निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। नाग मिसाइल आसमान में भारत की ताकत को और बढ़ाती है। ये एक फायर एंड फुगेट प्रणाली है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद मिसाइल खुद ही लक्ष्य का पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है। ये टैंक पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई है। भारत अपनी रक्षा प्रणाली को लगातार सशक्त बना रहा है। ब्रह्मोस NG हल्की और फुर्तीली मिसाइल जो दुश्मन को पल भर में नष्ट करने में सक्षम है, इसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। रुद्रम 2, 3, 4 मिसाइलें दुश्मन के रेडार सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आवाज से 5 गुना तेज है जो दुश्मन की सुरक्षा को ध्वस्त कर दे। युद्ध में ड्रोन आज सबसे कारगर हथियार बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में भी जो भारतीय ड्रोन्स रहे उनका बहुत महत्व रहा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को धोखा देने, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए मानव रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, साथ ही हमले के लिए भी इनका उपयोग किया और पाकिस्तानी सेना फंस गई भारतीय ड्रोन्स के माया जाल में। आज की जंग सिर्फ ताकत से नहीं तकनीक से जीती जाती है। भारत के पास वो तकनीकी ताकत है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर दे। DRDO द्वारा विकसित किए गए ड्रोन भारत की शक्ति को और बढ़ाते हैं। रुस्तम 2 ड्रोन जो दिन और रात दोनों में उड़ान भर सकते हैं, भारत ड्रोन जो AI और नाइट विजन से लैस हैं, और त्रिनेत्र UAV जो बर्फीले मोर्चों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में काम आता है। ये सब भारत को हर मोर्चे पर अपराजेय बनाते हैं। साथ ही भारत के पास है निशान, नेत्रा और लक्ष्य जैसी ड्रोन प्रणालियां। ये सीमाओं की निगरानी में तैनात हैं जो हमेशा दुश्मन पर नजर रखती है। भारत की सैन्य ताकत केवल निगरानी तक सीमित नहीं है बल्कि युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र ड्रोन का इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर के रूप में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। स्काई स्ट्राइकर एक वर्टिकल UAV ऊंचाई से सटीक हमले करने में सक्षम है, जिससे इसे ऑपरेशन के दौरान सटीक और प्रभावी हमलों के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया।
1: जब हम एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करते हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम में से 3 किलोमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, मतलब जैसे जैसे हम दुश्मन के ड्रोन्स को देखते हैं उनको इंटरसेप्ट करके उनको बर्बाद करने की जो काबिलियत और क्षमता हम लोग हासिल कर रहे हैं, और खास कर रहे थे कि जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये जो भारत के अंदर बन रहा है, तो ये और उसके साथ साथ रेडार, उसके साथ साथ किस प्रकार से उनको ट्रैक करना, डिटेक्ट करना और उसको एंगेज करके उसको बर्बाद करना, तो सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया।
2: मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स आर हेयर टू स्टे, यानी कि आने वाले समय की जितनी भी लड़ाइयां होंगी उसमें ड्रोन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उनका रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। ये बात जो है हमने अभी ऑप सिंदूर के टाइम भी देखी, जहां पे भारत के जो ड्रोन्स हैं कामिकाजी ड्रोन्स, उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जैसे बर्बाद किया। जो हैरप ड्रोन्स हैं जो इसराइल की मदद से भारत ने बनाए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में काफी बर्बादी की, काफी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है उनको नेस्तनाबूद किया।
0: भविष्य के युद्ध के लिए लेजर आधारित हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं जो नई दिशा और तकनीकी श्रेष्ठता का संकेत देते हैं। देश की संप्रभुता की असली ताकत है DRDO जैसी संस्थाएं, ब्रह्मोस की गूंज, पिनाका की वर्षा, आकाश तीर की उड़ान, ये सिर्फ हथियार नहीं आत्मविश्वास है हिंदुस्तान के। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया स्वदेशी तकनीक अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार।
3: हमारे हिसाब से द वे इंडिया इज गोइंग दे जस्ट वन स्टेप टुडे द वे थिंग्स आर देयर यू कैन लुक फॉर 10 इयर्स डाउन द लाइन इंडिया मे बी द कंट्री व्हिच विल हैव द बेस्ट ऑफ द वेपन्स, बेस्ट ऑफ द मिसाइल्स, बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड पीपल विल बी क्यूइंग इन लाइन टू बाय इट फ्रॉम इंडिया।
4: अभी हम आत्मनिर्भर हुए हैं 80% कह सकते हैं हमारे फंड्स के माध्यम से, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमें और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने बहुत सारे कदम ऐसे लिए हैं कि जैसे मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अलावा IDDM के लिए भी एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है मिनिस्ट्री में, उसके अलावा जो मिशंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, चाहे वो AI का मिशन हो, चाहे वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स का मिशन हो, ये सब भी हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स के लिए फीड इन मिशंस होंगे।
0: जब देश अपने टैंकों से लेकर तारों तक की यात्रा खुद तय करता है तो वो केवल आत्मनिर्भर नहीं होता, भविष्य भी गढ़ता है। भारत अब रक्षक नहीं निर्माता है, एक राष्ट्र जो अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए मिसाल बन रहा है, यही है मेक इन इंडिया की असली ताकत। आजकल जो युद्ध का नया स्वरूप है उसमें ड्रोन्स की अहमियत हर कोई समझता है, आपका दुश्मन भी समझता है, यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसकी भी अहमियत उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन केवल सर्वेलांस का काम नहीं करते बल्कि वो बन चुके हैं हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म, सस्ते अटैक हथियार, स्वॉर्म अटैक का हिस्सा और सरहद लांघने का माध्यम। क्योंकि दुश्मन सस्ते ड्रोन्स भेजता है इसीलिए उनको मार गिराने में महंगी मिसाइलें खर्च करना जायज नहीं, यही वो जगह है जहां प्राइवेट कंपनियों का रोल भी अहम हो जाता है।
5: क्या मायने रखते हैं कि आप मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल भारत की तरफ से उन सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दे रहे हैं?
6: हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे जिन्होंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया उनमें हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए थे, उनको हम ईगल आईज भी बोलते हैं एयरफोर्स की। अच्छा। क्योंकि उनके थ्रू ही आप देख पाते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि उसके बिना प्लेन उड़ नहीं सकता, बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उन डिस्प्लेस पे आती है जो कि कॉकपिट्स में के थ्रू देखी जाती है, तो इसीलिए उनको आंखें भी कहा जाता है, तो ईगल आईज ऑफ द एयरफोर्स। एंड बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है, हम बहुत इस बात से गर्व फील करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो पाए और देश के लिए योगदान।
0: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत हुई तो न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल हुई। बदलते रक्षा उत्पादन के चलते आधुनिक हथियारों के विकास में अब भारतीय निजी कंपनियां भी उतर रही हैं।
7: हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर की है डीआरडीओ ने, उसमें उसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। उससे हम एक लेसर बीम को ड्रोन के अगेंस्ट में शूट करते हैं और उससे एक अटक में पूरा का ड्रोन खत्म हो जाता है। ये क्षमता इस समय डीआरडीओ ने डेवलप की है और ये प्रोडक्शन में है। 5 किलोमीटर दूर तक उड़ता हुआ ड्रोन 3 किलोमीटर की हाइट पे भी अगर है तो हमारा सिस्टम उसको एंगेज कर सकता है। इस क्षमता को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर तक हम ड्रोन को हाइट 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर भी हो तो उसको ख़त्म कर सकें।
0: एंटी ड्रोन सिस्टम एक मल्टी लेयर सेंसर सिस्टम है जो ड्रोन अटैक के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा देती है। इसके 6 मुख्य हिस्से, आरएफ बेस्ड ड्रोन डिटेक्टर, वीडियो बेस्ड ड्रोन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, रडार, डेटा फ्यूजन और कमांड सेंटर, ड्रोन आरएफ जैमर, हार्ड किल।
8: सबसे पहले इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रोन डिटेक्टर, जिसमें कि उसमें ये काबिलियत है कि वो तमाम फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है फ्रॉम 70 मेगाहर्ट्ज टू 12 गीगाहर्ट्ज। आज के तारीख में 12 गीगाहर्ट्ज है, जो हमने पहले सप्लाई किया है वो अप टू 6 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन जो अभी हम सप्लाई कर रहे हैं वो 12 गीगाहर्ट्ज तक ये पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी। इसका जो काबिलियत है एक DJI फैंटम ड्रोन जो कि 26 dBm पावर से कम्युनिकेट करता है अपने हैंडलर के साथ, ये उसे 10 किलोमीटर के रेंज पर पकड़ लेता है।
5: अच्छा।
8: उसके अलावा हमारे पास है एक्स बैंड डॉपलर इफेक्ट रडार है। ये एक्स बैंड डॉपलर इफेक्ट रडार उसी DJI फैंटम ड्रोन जिसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर है उसको ये 5 किलोमीटर के रेंज पे पकड़ता है।
5: अच्छा।
8: अगर वो बड़ा ड्रोन है जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर तो वो उसे 10 किलोमीटर पे पकड़ेगा। इसके अलावा डिटेक्शन के लिए हमारे पास एक और सिस्टम है जो इधर अभी डिप्लॉयड नहीं है, वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम EOIR ऑब्लिक थर्मल इमेजिंग सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो जो ड्रोन का के ऊपर फोकस करके उसको आइडेंटिफाई करता है। ये मेनली हार्ड किल के चाहिए। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम के साथ एक डाटा फ्यूजन एंड कमांड सेंटर होता है जो कंप्यूटर बेस्ड है, उस पर ये तमाम इनपुट्स को वो फ्यूज करके रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सा दुश्मन का ड्रोन है। कई किस्म का नॉइस जैसे कि कोई पंछी उड़ रहा वगैरह वो उठाते जो है वो सबको वो आइडेंटिफाई कर लेता कि ये नहीं है। उसमें एक एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम नॉइस को निकालता है और सिर्फ थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है। एक बार थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है सॉफ्ट किल या हार्ड किल। सॉफ्ट किल के लिए हमारे पास जैमर है, उसका ये मॉडल है। जो ये जैमर है ये एक फुल बैंड को जाम करता है, वो बैंड जो कि 70 मेगाहर्ट्ज और 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। कई बैंड होते हैं, उसमें से एक बैंड को वो जाम करेगा कंप्लीट बैंड।
0: ये भी सच है कि युद्ध में खतरा केवल एक दो ड्रोन का नहीं होता बल्कि दुश्मन स्वॉर्म ड्रोन अटैक करता है, यानी सैकड़ों या हजारों ड्रोन से एक साथ हमला करना।
8: कई ड्रोन होते हैं ऑटोनोमस जिसको जैमिंग से हम नहीं रोक सकते, तो हमारे पास उसके लिए अलग अलग किस्म के हार्ड किल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन जो के जाकर उसके बीच में जो स्वॉर्म ड्रोन आ रहा है उसके बीच में जाकर वो एक्सप्लोड करेगा, या इंटरसेप्टर ड्रोन जो जाकर हिट भी कर सकते हैं। फिर ये माइक्रो मिसाइल जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है, ये एक MEK-2 प्रोजेक्ट है, तो इसमें जेन और कई दूसरे कंपनी भी अभी फिलहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको हम डेवलप करेंगे। और सबसे जरूरी है हमारा रिमोट कंट्रोल वेपन प्लेटफॉर्म। ये रिमोट कंट्रोल वेपन प्लेटफॉर्म के हमारे पास कई मॉडल है जिसमें कि हम अलग किस्म के वेपन माउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 12.7 mm हेवी मशीन गन जो माउंट किया गया है, ये रिमोटली कंट्रोल होता है। एंटी ड्रोन सिस्टम से इसको टारगेट का एजिमुथ एलिवेशन रेंज दिया जाता है तो ये उसके ऊपर जाकर डायरेक्ट होता है।
5: मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड
8: है, बिल्कुल
5: के बावजूद। मतलब डिप्लॉयमेंट में क्या ये सारी चीजें एक साथ रहती?
8: नहीं, ये सारी चीजें एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम इंक्लूडिंग जैमर वो एक लोकेशन में होंगे, जो हार्ड किल सिस्टम्स हैं वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर इसका 10 किलोमीटर का रेंज है या 8 किलोमीटर आगे लगा सकते हैं।
5: अच्छा, पर ये इंटीग्रेटेड है?
8: ये सब इंटीग्रेटेड होंगे।
5: इन्फॉर्मेशन इसका है,
8: इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगा सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू और इसके पास जाएगा एजिमुथ एलिवेशन रेंज।
0: सरकारी R&D संस्थान तकनीक बना सकते हैं और प्राइवेट कंपनियां उस तकनीक को तेजी से जमीन पर उतार सकती हैं। यही वजह है कि रक्षा के क्षेत्र में आज DRDO, सुरक्षा बल, प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स का गठजोड़ बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
5: सरहद में दाखिल होता हुआ दुश्मन का कोई ड्रोन हो, कोई फाइटर जेट हो या फिर कोई मिसाइल हो जिसे इंटरसेप्ट करने की आवश्यकता है, फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को मार गिराने का अनुभव जो है वो सीधा युद्ध की भूमि में होता है, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे हो, उसका प्रशिक्षण कैसे हो, उसका जवाब होते हैं ये अत्याधुनिक सिम्युलेटर्स।
0: तकनीक तेजी से बदलती है और उससे कदम ताल करने के लिए हमारे सैनिकों का सबसे विश्वस्त साथी होते हैं ऐसे सिम्युलेटर। सिम्युलेटर केवल आक्रमण वाले हथियारों के लिए नहीं बल्कि बचाव वाली प्रणाली के लिए भी होते हैं। दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने और भारतीय वायु रक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बिना एक भी गोली चलाए असली दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की तकनीक होती है सिम्युलेटर। भयंकर तोपों से लेकर कंधे पर रखकर दागी जाने वाली घातक इगला और इगला एस मिसाइल सिस्टम तक अब हर हथियार की ट्रेनिंग सिम्युलेटर पर संभव है, ताकि रणभूमि में जब भी जरूरत पड़े सैनिक हर दम तैयार हो।
5: सरहद की सुरक्षा अब केवल भूमि तक सीमित नहीं है और न ही थल सेना की भूमिका इन तारों तक सीमित है। खतरा अब आसमानों की ऊंचाइयों से भी आता है और इसीलिए लड़ाई का दायरा बहुत विस्तृत हो चुका है। भारत के पास कई वायु सुरक्षा उपकरण हैं जो अलग अलग प्रणालियों का हिस्सा हैं और उन्हीं में से एक है ये L-70।
9: यह L-70 एयर डिफेंस गन है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना लोहा साबित किया है। कुछ समय पहले भारत ने इसको स्वदेशी रूप से तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस इलाके से गुजरने वाले ड्रोन्स को इफेक्टिवली इंगेज किया है तथा बर्बाद किया है।
5: L-70 एक विश्वस्त एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसका जबरदस्त आधुनिकीकरण हुआ है। इसका उत्पादन अब भारत में होता है। ये अब एक सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें लक्ष्य को ऑटोमेटिक तरीके से हासिल किया जाता है। इसमें लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता है, इसमें डिजिटल डिस्प्ले है, ये रेडार से भी लैस है। सबसे बढ़कर ये युद्ध सिद्ध है। इसकी तीन बातें इसे ऐसे मोर्चों के लिए अहम बनाती हैं। पहला, इसकी मोबिलिटी, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा, इसकी रगेडनेस, यानी ये टिकाऊ और मजबूत है। तीसरा, इसका क्विक सेटअप टाइम, यानी इसे बहुत तेजी से इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये ड्रोन्स के विरुद्ध रोल के लिए तैयार किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपनी काबिलियत दिखा दी। इसका इस्तेमाल ऑप सिंदूर के समय किया हमने।
10: यस मैम।
5: क्या मतलब डे नाइट सब समय ये पूरी तरीके से?
10: जो भारत ने कुछ समय से पहले अपग्रेडिंग किया, इसी कारण से इसको डे नाइट दोनों समय टारगेट का एंगेज करने में मदद मिला।
5: तो एक तरह से ये हमारा स्वदेशी हथियार है।
10: स्वदेशी हथियार।
11: हालांकि हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि भारत ने सरहद पर प्रलयंकारी एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं, जो दिन हो या रात हो दुश्मन की हर हरकत नाकाम करने के लिए तत्पर है। न केवल वर्तमान की शक्ति बल्कि निरंतर बदलती तकनीक। दुनिया से अगर भारत कदम ताल आज कर रहा है और एक महाशक्ति के रूप में लगातार अग्रसर है, तो इसके पीछे एक ही नारा है, जय जवान जय विज्ञान। अभी के लिए इतना ही, वंदे मातरम।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बिजली का बिल, पेंट,
1: तो मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: इतना माही वे।

जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।

स्वाद और सुविधा के इस दौर में पैकेज्ड फूड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर ग्राहक को ये साफ साफ क्यों नहीं बताया जाता कि वो जो खा रहा है उसमें चीनी, नमक और फैट कितना ज्यादा है। अदालत ने केंद्र सरकार और फसाई को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो अदालत खुद आदेश जारी करेगी। कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पूछा है कि क्या इस मामले में कॉरपोरेट दबाव काम कर रहा है। वहीं बढ़ते बच्चों और आम नागरिकों की सेहत को प्राथमिकता देने पर जोर देने की बात कही है। इसके लिए सरकार और FSSAI को 2 हफ्तों में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की सख्ती के पीछे लंबे समय से चल रही बहस है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फसाई पैकेट के सामने साफ चेतावनी देने की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। वहीं फूड इंडस्ट्री का तर्क है कि पैकेट पर चेतावनी वाले निशान लगाने से बिक्री प्रभावित हो सकती है। फसाई ने विकल्प के तौर पर न्यूट्रिशन टेबल को प्रमुखता देने का सुझाव दिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि कई पारंपरिक भारतीय स्नैक्स में नमक और फैट स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है और ऐसे मानक लागू होने पर कई उत्पादों पर चेतावनी चिन्ह लग सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कंपनियों का कारोबार जनता की सेहत से बड़ा नहीं हो सकता। अदालत के मुताबिक ग्राहक को ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो क्या खा रहा है, उसमें कितनी चीनी, नमक या फैट मौजूद है। दरअसल दुनिया के कई देशों में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल पहले से लागू है और वहाँ इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। इन लेबल्स का मकसद किसी उत्पाद की बिक्री रोकना नहीं, ग्राहक को खरीदारी के समय जरूरी जानकारी देना है। इन लेबल के लागू होने के बाद कई देशों में कंपनियों ने अपने उत्पादों की संरचना में बदलाव किए हैं और ग्राहकों में हेल्दी विकल्प चुनने की जागरूकता भी बढ़ गई है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि चेतावनी लेबल लगाने का मतलब किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, क्योंकि फैसला ग्राहक का ही रहेगा, लेकिन खरीदने से पहले उसे पूरी जानकारी मिलनी ही चाहिए। अगर भारत में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल का नियम लागू होता है तो पैकेट के सामने ही साफ दिखाई देगा कि किसी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है या नहीं। जाहिर है ये कदम करोड़ों ग्राहकों को ज्यादा जागरूक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इसमें चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन या कोई पैकेज्ड फूड खरीदने पर उन्हें कीमत और एक्सपायरी डेट के साथ ही उसमें मौजूद चीनी, नमक और फैट की मात्रा की भी जानकारी मिल जाएगी। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

टीम चुनावी मंथन में जुटी। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन यूपी उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बना रहे हैं रणनीति। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। आरक्षण हटाने की मांग पर यूपी में सुलगी सियासत। अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी खोला मोर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की आंदोलनकारियों

0: सर्कुलर के खिलाफ पीआईएल, स्कूलों की सच्चाई छुपाने की कोशिश का आरोप। और यूपी में उफान पर गंगा यमुना, प्रयागराज में डूबे घाट, रिवर फ्रंट पर अंतिम संस्कार, वाराणसी में बढ़ता हुआ पानी तो हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर लबालब, देहरादून में टपकेश्वर मंदिर तक सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है भलसवा डेयरी इलाके से। बड़ी और अहम खबर है कि पुलिस की टीम पर हमला किया गया है और हमले के शॉकिंग विजुअल्स भी सामने आए हैं। आरोपी है कि भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका था, ईंट पत्थरों से हमला बोला गया, डंडों से हमला बोला गया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ऐसी भी जानकारी है। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ भी लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुनील उर्फ पंकज इस हमले का आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पंकज इलाके का बदमाश है और उसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल, क्या जानकारी है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? ये नौबत यहां तक कैसे पहुंची जब इतनी गंभीर रूप से ही पत्थरों के साथ, मिर्च पाउडर के साथ, प्लानिंग के साथ पुलिस पर हमला बोला गया?
1: जी बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा है कि बहुत गहरी प्लानिंग की गई थी और पुलिस पर अटैक किया गया। दरअसल ये मामला कल करीब 12 बजे के आसपास हुआ, जब पुलिस के जो जवान थे वो यहां पर अपने बीट पर थे और अपने बीट पर राउंड लगा रहे थे, तभी इसी जगह के आसपास उन्हें एक बाइक लगी मिली। जब बाइक के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे और पुलिस ने जो बाइक है उसे सीज कर लिया। उसके बाद जब पुलिस उसे सीज करके पुलिस स्टेशन ले गई बाइक को, और जब वापस यहां पे अपने बीट पर राउंड पर आई तो 4 से 5 लोग लाठी डंडे और मिर्ची पाउडर लेकर उन पर अटैक कर दिया, और इस तरीके से अटैक किया कि 3 पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बाद अभी तक पुलिस ने एक नाबालिग को अपनी हिरासत में लिया है, एप्रीहेंड किया है, जबकि बाकी के 4 लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी कर ली है और पहचान के बाद ये सामने आया है कि जो इसका मास्टरमाइंड था जिसने ये पूरी प्लानिंग की, उसके खिलाफ पहले से ही कई क्रिमिनल मुकदमे दर्ज है और NDPS यानी नारकोटिक्स के भी 2 अन्य मामले उसके खिलाफ पहले से ही दर्ज है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं आम जनता में एक जो पुलिस के लिए कॉन्फिडेंस होता है उस पर क्षति पहुंचती हुई दिख रही है। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने टीम्स बनाई हैं और रेड्स और सर्चेस चल रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उन्हें हिरासत में लिया जाए, ताकि जो जनता का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अब डगमगाता हुआ दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस दोबारा से पुलिस पर आए, प्रशासन पर आए, कि अगर कोई बदमाश ऐसी हरकत करे तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ एक्शन ले पाए। लेकिन अभी तक 4 लोग इस पूरे मामले में फरार हैं, जिनके लिए सर्च अभी किया जा रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से भलसवा इलाके में जबरदस्त तरीके से पुलिस के ऊपर ये मारपीट की गई है और लाठी डंडों से हमला बोला गया, मिर्च पाउडर भी यहां पर पुलिस की आंखों में झोंक दिया गया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, बाकी के आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। भलसवा डेयरी से सामने आए पुलिस के ऊपर हमले की वीडियो को देखिए जरा, कि किस गंभीरता के साथ प्लान वे में यह हमला बोला गया। कल दोपहर करीब 3:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे शतक आज तक। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। वंदे मातरम पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, 1937 के फैसले को लेकर फिर से सामने आए दोनों ही दल। वंदे मातरम पर बीजेपी का प्रस्ताव पारित, कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरे गाने के फैसले का खुलकर विरोध। समित पात्रा का कांग्रेस पर सीधा वार, पूछा संसद बड़ी या कांग्रेस कार्य समिति, संविधान से बड़ा कोई नहीं। वंदे मातरम की पूरी विरासत की रक्षा करेगी।

0: बीजेपी कांग्रेस के फैसले के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने का ऐलान। वंदे मातरम पर बंगाल में सियासी संग्राम तेज हुआ। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। राष्ट्रवाद पर कोई समझौता नहीं, शुभेंदु अधिकारी का दावा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी स्थापित करेंगे राष्ट्रवाद। टीएमसी का पलटवार, वंदे मातरम के सम्मान पर बीजेपी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम पर बंगाल में सियासी टकराव, शुभेंदु के बयान पर टीएमसी का पलटवार। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे आजादी की लड़ाई का नारा बनाया। जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी का हमला, टीएमसी ने बीजेपी के इतिहास पर सवाल उठाए। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का महिला अधिकारों पर जोर, बोले महिलाएं किसी के अधीन नहीं है। हजारों छात्राओं के बीच राहुल गांधी का संदेश, मनुस्मृति के उद्धरण को बताया शर्मनाक, बोले महिलाएं खुद की मालिक। जंतर मंतर पर लड़कियों के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का निशाना, राहुल गांधी ने पूछा भेदभाव क्यों। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल बोले, जनता काम के आधार पर मोदी पर भरोसा करती है। अमित मालवीय ने कहा, भारत की सभ्यता को अंग्रेजी के चश्मे से पढ़कर समझने का दावा नहीं किया जा सकता। देश आज मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को बधाई दी, बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों को छूने का आह्वान किया। अमित शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी, चंद्रयान से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की गई। प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान, 17 सितंबर से देश भर में चलेगा महीने भर का अभियान। महंगाई पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, खड़गे बोले चीनी के दाम बढ़े, सरकार बताए इसकी वजह क्या है। योगी आदित्यनाथ ने 3,54,000 मिड डे मील रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। रसोईया माताओं और बहनों के सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर। कनौज सोना तस्करी पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, पुलिस बरामदगी में 26 बिस्किट्स की जगह 10 दिखाने के पर सवाल उठाए। दिखाया 16 गटकाया, भाजपा की पुलिस की माया। मायावती ने जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को बताया अनुचित, एससी एसटी ओबीसी हितों की अनदेखी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे विकसित और सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। आरक्षण पर सियासी घमासान तेज हुआ, अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण खत्म करने की साजिश के आरोप। अखिलेश यादव बोले, आरक्षण पीडीए का अधिकार है, सुधार और समीक्षा के नाम पर अधिकार कमजोर करने की कोशिश। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, ब्रजेश पाठक बोले, छात्रों की मांगों पर केंद्रीय नेतृत्व से कराएंगे बात। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर चिराग पासवान का बयान, बोले आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, खत्म करने का सवाल ही नहीं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चल रहे खरीफ और आने वाली रबी सीजन के लिए खाद्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की, कहा किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता। सीएम भगवंत मान की पत्नी ने पूर्व जज को भेजा कानूनी नोटिस, लगाया था रेप केस दबाने के लिए 5 करोड़ मांगने का आरोप। गुरप्रीत कौर ने आरोपों पर भेजा कानूनी नोटिस, पंजाब में सियासी घमासान उसके बाद तेज हुआ। 5 करोड़ के कथित रिश्वत आरोपों से घिर गई है पंजाब की सरकार, विपक्ष ने जवाब मांगा। गुरप्रीत कौर पर आरोपों को आम आदमी पार्टी ने बताया बेबुनियाद, विपक्ष ने सरकार को घेरा। सीएम भगवंत मान की पत्नी पर आरोपों से गरमा गई है सियासत मंत्री हरभजन सिंह, बोले चुनावी फायदे के लिए बदनाम करने की कोशिश। जाला में मराठा आरक्षण मुद्दे पर अब्दुल सत्तार ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की, जरांगे ने 29 अगस्त तक विरोध प्रदर्शनों की बात दोहराई। मुर्शिदाबाद में पूर्व टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के सुरक्षाकर्मी के घर वीरभूमि पुलिस ने छापेमारी की है, जांच जारी। राजस्थान के जयपुर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, संदिग्ध मूंगफली का तेल 6,900 लीटर स्टॉक सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 60 जगहों पर छापेमारी की है, कार्रवाई के दौरान लिए गए 100 से ज्यादा नमूने। उदयपुर में 600 लीटर नकली दूध किया गया नष्ट, कई जिलों में बासी मिठाई, मावा, घी और तेल पर भी कार्रवाई। इस साल नवंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्दी शुरू होगी रात्रि विमान सेवा, फिलहाल यहां से सिर्फ दिन में ही उड़ानों का हो रहा है संचालन। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक फ्री यात्रा। रक्षाबंधन पर अकोला रेल मेल सर्विस की खास पहल, राखी भेजने के लिए स्टेशन परिसर में स्पेशल काउंटर की शुरुआत, बहनों की लंबी कतारों से उन्हें राहत मिलेगी। मंडी के नागनाला में दरका था पहाड़, भरभराकर नाले में गिरा था भारी मलबा, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। लैंडस्लाइड के बाद दहशत में लोग हैं, खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घरों को एहतियातन खाली करवाया। कांगड़ा में हाईवे पर अचानक से गिरा था भारी बोल्डर, चपेट में आ गई थी कार, 5 यात्री सुरक्षित। बाथू ब्रिज के पास रॉकफॉल से 2 लेन बंद हो गई है, बारिश में बार बार पत्थर गिरने के बाद बढ़ गया है हादसे का खतरा। कश्मीर में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा, तेज हवाओं के बीच नदी नाले उफान पर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश जारी है, बांदा में भीषण बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कें तालाब। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना। देवभूमि उत्तराखंड में फिर से बदल गया मौसम का मिजाज, देहरादून में देर रात हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ जारी रहेगी बारिश, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए भी अलर्ट जारी। बिहार के दानापुर दियारा में बढ़ गया है गंगा नदी का जलस्तर, नाव से नदी पार करने वाले लोगों की सुरक्षा की चिंता। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पास में पड़े हुए 2 पेड़ गिरे, 2 वाहन क्षतिग्रस्त। झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली एनसीआर के दिन की शुरुआत, वीकेंड कूल हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में रेनी संडे का लुत्फ उठाने के लिए निकल आए लोग, रिमझिम बारिश के बीच लिया मौसम का मजा, तापमान में गिरावट। गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक से बदला है मिजाज, काले बादलों के साथ झमाझम बारिश। मुंबई के भुवनेश्वर में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, विशाल प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर, 5 घायल। भुवनेश्वर चाराजा की प्रतिमा गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई थी, 5 घायल हुए, 7 साल की और 2 साल की बच्चियां भी इसमें शामिल। प्रतिमा का संतुलन बिगड़ने के बाद हादसा हुआ, घायलों को इलाज के लिए तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ओडिशा तट से 240 नॉटिकल मील दूर पर बंगाल की खाड़ी में पनामा के झंडे वाला मालवाहक जहाज डूबा, ये जहाज ओडिशा से आयन अयस्क का कार्गो लेकर सिंगापुर जा रहा था। जहाज पर 24 क्रू मेंबर्स थे जिसमें 20 चीनी, 3 म्यांमार के नागरिक थे, 1 क्रू मेंबर बांग्लादेशी था। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नॉर्थ ईस्ट और स्थानीय छात्रों के बीच झड़प हुई, सीएम ने संज्ञान लिया। बख्तियारपुर में हवन के दौरान भड़की आग में मचाई है तबाही, 6 माह की बच्ची और 2 महिलाओं की झुलसकर मौत हुई। पठानकोट में स्कूटी सवार युवती को कार ने टक्कर मारी, 30 मीटर तक घसीटती गई, हादसे के बाद चालक फरार हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हैदराबाद में बहुमंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर, बिल्डिंग गिरने का वीडियो भी सामने आया। नवसारी में नदी में डूब रही युवती को बचाने के लिए 10 युवकों ने छलांग लगा दी, वीडियो वायरल हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद इस युवती को बचाया जा सका। पटना के मनेर थाना गेट के पास फायरिंग के मामले में 3 की गिरफ्तारी, पूछताछ जारी। सूरत में पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली, ठेले पर खड़े 45 साल के शख्स को गोली लगी, जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात में मेहसाणा के कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 1 हफ्ते पहले ही शुरू किया था नया स्टोर। कच्छ में कबाड़ के उतारने के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ, 1 ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, 2 मासूम भी इसमें शामिल। नालंदा में नर्सिंग छात्रों का 4वें दिन भी हंगामा, रिजल्ट और मैनेजमेंट के नाम पर पैसे लेने के आरोप। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, 14वीं मंजिल से गिरकर 2 मजदूरों की मौत हुई, सेफ्टी बेल्ट टूटने का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला जेल से कैदी फरार हुए, दीवार फांद कर भागा, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इटावा में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे 25 साल के आकाश की दौड़ते समय मौत हुई, सिपाही बनने का सपना अधूरा रह गया। अजमेर के JLN अस्पताल में महिला ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के आरोप लगाए, हंगामे के बाद जांच शुरू की गई। अजमेर सेंट्रल जेल में नशे का खेल बेनकाब हुआ, 500 रुपए में बेची जा रही थी नशीली गोलियां। हैदराबाद में टॉक्सिक प्री रिलीज इवेंट में साउंड सिस्टम का बड़ा सेटअप गिरा, 2 छात्र घायल हुए, 1 छात्रा बेहोश हुई। मोतिहारी में हॉस्टल की रसोई में गर्म तेल में 3 इंजीनियरिंग के छात्र झुलस गए, गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया। नोएडा में काम करने वाले IT इंजीनियर की पीट पीट कर हत्या, ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मोदीनगर में दिनदहाड़े महिला के कान में झुमके छीनने की घटना सामने आई, 2 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद। श्रीलंका के साथ कोलंबो में आज से दूसरा और आखिरी टेस्ट शुरू हुआ। टीम इंडिया ने चुनी है बल्लेबाजी। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स में 492 खिलाड़ियों के भारतीय दल को मंजूरी दी। टीम में 265 पुरुष हैं, 227 महिलाएं। भारतीय टीम में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। टीम में 35 पुरुष और 38 महिला खिलाड़ी। 30 सदस्यीय निशानेबाज टीम में मनु भाकर प्रमुख नाम है। टीम में 15 पुरुष हैं और 15 महिला निशानेबाज। 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम में पीवी सिंधु लक्ष्य सेन को जगह मिली। सात्विक चिराग और गायत्री त्रिसा की जोड़ी भी टीम में शामिल। भारतीय दल ने नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, मीराबाई चानू, लवलीना और अंदीप मंघाल जैसे दिग्गज इसमें शामिल हैं। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे एशियन गेम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट अभी अमेरिका के इलाका है। ईरान पर बढ़ते हुए आर्थिक दबाव के बावजूद सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर कैलिवाफ का बड़ा बयान, कहा पड़ोसी देश चाहते हैं नई सुरक्षा नीति। सुरक्षा और आर्थिक रूपरेखा के लिए किया गया संपर्क। यूक्रेनी सेना का रूस पर भीषण हमला, ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलर कंपनी ओजान को बनाया निशाना। हमले में कई लोगों की मौत की खबर और कई घायल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पार्टी की बैठक में देशवासियों को संबोधित और एकजुट होने की अपील की। साथ ही पुतिन ने कीव के बर्बर हमले पर कड़ा एतराज जताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के बिना रूस यूक्रेन युद्ध में स्थायी शांति संभव नहीं है। शांति के लिए अमेरिका की भूमिका जरूरी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इसराइल से अवैध बस्ती योजना तुरंत रोकने की मांग की। महमूद अब्बास ने कहा योजना पूर्वी यरूशलम को अलग थलग कर देगी। टैरिफ पर सामने आए कनाडा और अमेरिका, दोनों ही देशों के बीच ट्रेड डील पर नहीं बन पाई है बात। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। लूला ने अमेरिकी टैरिफ का विरोध भी किया। पाकिस्तान में इमरान खान के इलाज पर बवाल, प्राइवेट अस्पताल न भेजने में पड़की है पीटीआई। शहबाज सरकार के खिलाफ कोर्ट में दायर की अवमानना याचिका। 80 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला बन सकती है यूएन की महासचिव। फिलहाल इस रेस में 8 दावेदार, इनमें 5 महिलाएं शामिल हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: और अब बात करेंगे आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में हो रही बीजेपी की बड़ी बैठक के बारे में। आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है और इस बैठक में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद हैं चुनावी राज्यों में। इसके अलावा बैठक में पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के अन्य मुद्दों पर भी मंथन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संगठन के लिहाज से आज की जो बैठक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम बड़े नाम इसमें शामिल हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस हैं उन तमाम राज्यों के पदाधिकारियों के साथ साथ संगठन के भी बड़े नाम इसमें शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, क्या जानकारी है?
2: आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है शशि, बैठक चल रही है और आज इन बैठकों का दूसरा दिन है। तो अब बीजेपी के पास नए कप्तान हैं, नए कप्तान के पास अपनी टीम है, उनकी अपनी चुनौतियां और अपने लक्ष्य हैं। लक्ष्य जिसका जिक्र आपने किया विधानसभा चुनाव को, और चुनौतियां जो बदले हुए माहौल हैं, आपको नए युवा वोटरों की तरफ देखना है, उन्हें अपनी तरफ लाना है, उसी के साथ साथ आप बाकी जो सामाजिक चुनौतियां होती हैं उनसे कैसे लड़ेंगे। तो ऐसे में जब नई टीम आती है तो उसके पहले अनुभव क्या रहे हैं, उनको आप क्या लक्ष्य देने वाले हैं, जनसंवाद कैसे बेहतर होगा, जहां जहां पर सरकार है, राज्यों में सरकार है, उनके साथ तालमेल कैसे होगा, इन्हीं सब को लेकर के विचार मंथन होता है। क्योंकि जब तक आप विचार मंथन करके एक उद्देश्य, एक मकसद और एक संदेश के साथ नहीं जाएंगे तब तक कई सारी दिक्कतें आगे आएंगी। और बीजेपी में जो है संगठन सबसे पहले, हमेशा कहा जाता है कि देखिए संगठन सबसे पहले है। तो जब नए अध्यक्ष हैं वो अपने संगठन के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपना लक्ष्य दे रहे हैं, उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है। यहां तक अभी भी जानकारी है कि कल जब बैठक हुई, जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी कई सारे लोगों से उनके अनुभव पूछे, उनका फीडबैक तक लिया था। तो फीडबैक प्रोसेस हर संस्थान के लिए जरूरी होता है। बीजेपी एज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी जिसे कहा जाता है इंडिया में, तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सरकारें उनके पास हैं, राज्य में, केंद्र में सरकार है। समन्वय के साथ आगे बढ़ना और तब चुनौतियों से पार आना, संभवतः यही इसका लक्ष्य है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका। और आपको बता दें कि आज नेशनल स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओज के साथ खास संवाद किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के बढ़ते हुए स्पेस सेक्टर इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनियां और युवा स्टार्टअप्स भी भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई रफ्तार दे रहे हैं। इस संवाद में स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओज ने अपने इनोवेशन, भविष्य की योजनाओं और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को प्रधानमंत्री के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप से कहा कि नई सोच, तकनीक और आत्मविश्वास के साथ ही भारत को स्पेस सेक्टर में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। सरकार की कोशिश है कि देश में ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जहां युवा सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करें बल्कि दुनिया के लिए नई तकनीक भी तैयार करें। और इसी के साथ हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: Va.
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
1: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हाँ ला, ला भाई मेरा बैट,
2: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: चार्ज हुआ यार,
1: बैट किसका है?
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।
5: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहन और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये।

0: दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो। चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार, घेर कर लाठी डंडों से पीटा, नाबालिग गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। आरक्षण हटाने की मांग पर यूपी में सुलगी सियासत, अखिलेश के बाद मायावती ने भी खोला मोर्चा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की आंदोलनकारियों से मुलाकात। स्कूलों में वीडियोग्राफी पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, यूपी राजस्थान के सर्कुलर के खिलाफ पीआईएल, स्कूलों की सच्चाई छुपाने की कोशिश के आरोप। और यूपी में उफान पर गंगा यमुना, प्रयागराज में डूबे घाट, रिवर फ्रंट पर अंतिम संस्कार, वाराणसी में बढ़ता पानी तो हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर लबालब, देहरादून के टपकेश्वर मंदिर तक सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बड़ी और अहम खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से यह खबर है, भलसवा डेयरी इलाके में बड़ी और अहम खबर यह कि पुलिस की टीम पर जबरदस्त हमला किया गया और ये शॉकिंग विजुअल्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आरोप अब यह है कि भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थरों से हमला बोला, डंडों से हमला बोला गया। जी हाँ, इस हमले में 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुनील उर्फ पंकज इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और पुलिस के मुताबिक पंकज इलाके का बदमाश है, उसके खिलाफ पहले से 5 मामले दर्ज हैं जिनमें गंभीर अपराध भी शामिल हैं। तस्वीरें देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है, बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। भलसवा डेयरी से सामने आए वीडियो पुलिस पर हुए हमले की गंभीरता को साफ साफ दिखाते हैं। मामला है कल दोपहर करीब 3:30 बजे का। पुलिसकर्मी इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग के लिए, चेकिंग के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान एक वाहन को जब्त किया और इसके बाद वाहन मालिक समेत कुछ लोगों ने जबरदस्त हमला बोला पुलिसकर्मियों पर। तो तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। और आपको देखिए जरा दिल्ली की तस्वीरें, हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी की तस्वीरें, जहां पुलिस वालों की टीम पर जबरदस्त हमला बोला गया है, मिर्च पाउडर फेंका गया, लाठी डंडों से हमला बोला गया, ईंट पत्थर फेंके गए हैं और 3 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए हैं। मुख्य आरोपी जो पंकज है वो फरार है इस पूरे मामले में। कहा यह जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है और वो इलाके का बदमाश है। वाहन चेकिंग को लेकर यह कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद इस तरह से वो इस झगड़े में तब्दील हो गया, जहां पुलिस वालों को ही निशाना बनाया गया। तो टीमें बनाकर इन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर उनकी तलाश जारी है। 3 पुलिस वाले इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। और अब हम बात करेंगे आरक्षण के रण के बारे में। जाति आधारित आरक्षण हटाने को लेकर यूपी में सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हुआ, लेकिन अचानक से लड़ाई का मैदान शिफ्ट हुआ यूपी। सबसे बड़ा सवाल है कैसे, आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे राहुल गांधी की छात्र गूंज की। पुणे में राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बहाने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया है, यह खबर भी पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आरक्षण पर छिड़े हुए हंगामे और जंग के बारे में, क्योंकि यूपी में जाति आरक्षण पर तकरार तेज हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में नजर आई तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए तमाम सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगियों पर भी जाति आरक्षण के पक्ष में खड़े होने के आरोप लगाए हैं।
1: दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जाति आरक्षण हटाने की आवाज सियासी फिजाओं में गूंजने लगी। अखिलेश यादव ने जाति आरक्षण के खिलाफ उठी आवाजों का पुरजोर विरोध किया, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वर्ण छात्रों के साथ खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जाति आरक्षण के पक्ष में आवाज बुलंद की।
2: युवाओं का अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने,
3: किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं।
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामला तूल तब पकड़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्ण छात्रों के मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और इस बारे में ऊपर बात करेंगे।
2: केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
1: ब्रजेश पाठक ने ये नहीं बताया कि किस केंद्रीय मंत्री से वो मुलाकात करके जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे को उठाएंगे। इधर बीजेपी ने स्वर छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा, सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चिराग ने कहा कि आरक्षण खैरात में मिली चीज नहीं है, इसके खात्मे पर चर्चा हो ही नहीं सकती। अगर किसी को दिक्कत है तो बात कर ले।
3: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है।
1: चिराग ने कहा कि समाज में जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत अभी भी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे उत्तराखंड में उस जगह का शुद्धिकरण किया गया जहां खड़गे ने रैली की थी।
3: आज भी भाई 21वीं सदी में भी ये भेदभाव हो रहा है ना, आदरणीय खड़गे साहब के साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में घटना घटी, उनके मन से जाने के बाद जिस तरीके से मंच का शुद्धिकरण किया गया, ये आज भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो ये चिंता का विषय है।
1: मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने भी आरक्षण हटाने के मुद्दे पर बीजेपी से अलग स्टैंड लिया और इस मांग को संविधान के खिलाफ बता दिया।
4: सभी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है, सभी को न्याय देने वाली सरकार है।
1: भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक भेदभाव मिटाने और अवसरों में समानता देने के लिए सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। मोदी सरकार में इसमें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण भी जुड़ गया, लेकिन अब 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाति आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाया जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए हैं। संतोष, सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन मुद्दा है, आरक्षण को खत्म करने वाले बच्चों के साथ यहां नजर आ रहे हैं ब्रजेश पाठक, संभालने की कोशिश उसको भी हो रही है, दूसरी तरफ पक्ष को संभालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि विधानसभा इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। संतोष, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। संतोष से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम उन्हें ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और खासतौर से विधानसभा इलेक्शंस पास हैं और ऐसे में अलग अलग बयान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आना शुरू हो चुका है। कल जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से निशाना साधा गया था, उसके बाद मायावती की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं और आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि आरक्षण जो है वो संविधान से मिला हुआ है, उसे खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर जो आरक्षण खत्म करने वाले आंदोलनकारी थे, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे, जंतर मंतर पर इकट्ठा थे, उनके साथ नजर आए बृजेश पाठक। तो सियासी रण है और बहुत ही मुश्किल रण है, खास तौर से विधानसभा के इलेक्शंस को देखते हुए यूपी में। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संतोष का, उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी की खबर के राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद उस पर भी विवाद शुरू हो चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे थे कार्यक्रम में महाराष्ट्र में और पुणे में राहुल गांधी ने छात्र गूंज के और वहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में बताया है सबसे बड़ी बाधा। मनुस्मृति माइंडसेट है क्या, सबसे पहले देखिए।

0: पुणे की छात्र गुंज रैली में राहुल गांधी ने मनुस्मृति के खिलाफ आवाज बुलंद करके सियासी बहस छेड़ दी है कि मनुस्मृति माइंडसेट की वजह से भारत की महिलाएं पिछड़ गईं।
1: कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट।
0: वैसे तो राहुल गांधी छात्र गुंज में छात्रों के मुद्दे उठाकर बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन पुणे रैली महिलाओं को समर्पित थी।
1: आइदर अ मदर और अ वाइफ और अ डॉटर, एंड आईड लाइक टू कोट।
0: पहले तो राहुल गांधी ने महिलाओं को देश की ताकत बताया और फिर मनुस्मृति का जिक्र करके बीजेपी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की राह में मनुस्मृति का माइंडसेट ही सबसे बड़ी बाधा है।
1: कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
0: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया था।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना, कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है।
0: राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी निशाने पर लिया।
1: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
0: राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को अवसरों से वंचित रखा गया, वो भारत की बड़ी ताकत हैं, लेकिन मनुस्मृति माइंडसेट ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया।
1: बट आई एम वेरी क्लियर ऑन व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आवर बिगेस्ट एसेट, एंड दैट स्ट्रेंथ इज 70 करोड़ यूनिक जर्नीज, यूनिक इमेजिनेशंस, यूनिक ड्रीम्स दैट द वुमेन ऑफ इंडिया आर लिविंग।
0: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है।
2: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया। आखिर क्यों ये दुर्दशा रही? शिक्षा की दुर्दशा, रोजगार की दुर्दशा, ये राहुल गांधी को न मनुस्मृति का ज्ञान है, न भारत की संस्कृति का ज्ञान है, न भारत की आर्थिक स्थिति का ज्ञान है।
0: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा, मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद, पुराण, ग्रंथ, रामायण, महाभारत कुछ समझ में नहीं आता है। इसी पोस्ट में निशिकांत दुबे ने मनुस्मृति की दो प्रसिद्ध लाइनें शेयर की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रत्रा फलाह क्रिया। इसका हिंदी मतलब ये है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, और जहाँ नहीं होती है वहाँ सभी शुभ कार्य निष्फल होते हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिए गए उसके बाद जबरदस्त हंगामा होना तय था और तमाम बीजेपी की तरफ से पलटवार किए गए हैं, क्या इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए हैं या कुछ कहा गया है? एक तो बार बार लोगों के मन में सवाल यह है कि अगर कोई गाली दे रहा है तो जेंडर न्यूट्रलिटी गाली देकर कैसे हो सकती है पूरी?
4: जी बिल्कुल शशि, हर राजनेता के अपने अपने तर्क होते हैं और राहुल गांधी का भी अपना एक तर्क है और उसी तर्क के माध्यम से वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें भी कर रहे हैं। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं को लेकर उन्होंने बात की और साफ साफ कहा कि पेट्रियार्की जो है इस देश में खत्म होनी चाहिए। महिला किसी की, शी डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, ये उनके शब्द थे। ना वो अपने पति की है, ना अपने पिता की, ना अपने पुत्र की। महिला जो है उनको पूरी आजादी मिलनी चाहिए, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। इस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। उसके बाद निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद है, उन्होंने कहा कि आपको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, आपको प्रियंका गांधी को अपनी जगह दे देनी चाहिए और उनको आगे करना चाहिए। आप जानबूझकर उनको आगे नहीं कर रहे हैं। तो जहां तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है उसमें राहुल गांधी कुछ पीछे है। इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। साथ साथ बीजेपी का ये भी मानना है कि जो भी कार्यक्रम राहुल गांधी कर रहे हैं वो पूरी तरह से पेड प्रमोशनल इवेंट्स है, उसमें पैसा अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है। और जहां तक मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात कही, उसको लेकर कई बीजेपी सांसद और बीजेपी के नेताओं का ये साफ मानना है कि वो कभी समझ भी नहीं सकते कि मनुस्मृति है क्या, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखी हुई है और वो वेद पढ़ना नहीं जानते हैं। भारत की संस्कृति जो है वो मनुस्मृति में है। साथ साथ पिछले 60 सालों से कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उसमें अब तक वो भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर हो गया है। देखना ही होगा कि जिस तरह की बातें अब बीजेपी के सांसद कह रहे हैं उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पीयूष आपका। अपने दर्शकों का मैं भी बता दें कि कल मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण उस मुलाकात को माना जा रहा है और उसी से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर आज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन की टीम के साथ साथ करीब 4.25 घंटे तक ये बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी 65 पदाधिकारियों से व्यक्तिगत संवाद किया, उनके अनुभवों को सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने पदाधिकारियों के साथ अपने पुराने अनुभवों को साझा किया और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने, नए विचारों के साथ साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े रहिए, खास तौर पर युवाओं और नए सामाजिक वर्गों तक संगठन की पहुंच बढ़ाने का संदेश दिया गया। बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और साथ ही साथ संगठन से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा की गई। और अब बात करेंगे पीडीए की नई परिभाषा के बारे में जो कई बार अभी तक बदल चुकी है। अखिलेश यादव ने पीडीए में पी का क्या मतलब है, सीएम योगी ने कहा कि इसका मतलब है गिरगिट की तरह बदलते रहना, पी मतलब पाकिस्तान भी हो सकता है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी का मतलब कुछ और ही बताया है, देखिए।
5: की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
6: बीजेपी भाग जा पाकिस्तान।
7: अखिलेश यादव के पीडीए में पी मतलब को लेकर अब घमासान मच गया है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए में पी माने पाकिस्तान कह दिया है।
5: अब देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
7: योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के पी को पाकिस्तान कहा तो अखिलेश यादव ने बीजेपी का भी नया मतलब बता दिया।
6: अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान।
7: दरअसल अखिलेश यादव अपनी राजनीति को पीडीए की राजनीति कहते हैं। समाजवादी पार्टी से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहती थी, लेकिन समय समय पर अखिलेश यादव पीडीए के हर अक्षर का अलग अर्थ बताते रहे हैं। कभी पी से पंडित तो कभी पी से पिछड़ा। इसी बात को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पीडीए पर निशाना साधा।
5: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं, पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं।
7: दरअसल कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का दिन था, अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी थी। इस बात को सीएम योगी ने हिंदू मान सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कल्याण सिंह और हिंदुओं से द्वेष रखती है। इसी के जवाब में अखिलेश ने बीजेपी की नई परिभाषा गढ़ दी।
6: कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान।
7: यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं, तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे उस समय, निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।
1: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ, आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद
2: किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है।
3: जाट समाज को लेकर
2: नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया। तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो। चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार, घेर कर लाठी डंडों से पीटा, नाबालिग गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। आरक्षण हटाने की मांग पर यूपी में सुलगी सियासत। अखिलेश के बाद मायावती ने भी खोला मोर्चा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की आंदोलनकारियों से मुलाकात। स्कूलों में वीडियोग्राफी पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, यूपी राजस्थान के सर्कुलर के खिलाफ पीआईएल, स्कूलों की सच्चाई छुपाने की कोशिश के आरोप। और यूपी में उफान पर गंगा यमुना, प्रयागराज में डूबे घाट, रिवर फ्रंट पर अंतिम संस्कार, वाराणसी में बढ़ता पानी तो हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर लबालब, देहरादून के टपकेश्वर मंदिर तक सैलाब।

0: क्या वो मंदिर विशालकाय जहाजों को खींच लेता था अपनी तरफ?
1: कोणार्क में बहुत कुछ ऐसा अभी भी है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है।
0: क्या उस मंदिर की चुंबक से जहाज भटक जाते थे रास्ता?
2: इसका अंदर के 22 फुट वाला एक मूर्ति था जो सूर्यदेव के किरण के हिसाब से वो धीरे धीरे घूमता रहता था।
0: क्या उस मंदिर की चुंबक ने डुबो दिए कई जहाज?

0: को जिंदा रखने के लिए समुद्र को कूद पड़ा था।
1: और पत्थर के अंदर से वो क्लैंप है, जॉइंट।
2: कोणार्क सूर्य मंदिर और समुन्दर का वो सैकड़ों साल पुराना रहस्य जो आज भी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अनसुलझी पहेली है।
3: ना बोलोगे कोई फुल प्रूफ आंसर ASI दे देगा या कोई दे देगा, मेरे जानने में संज्ञान में ये नहीं।
2: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक मंदिर जिसमें आस्था सबकी है लेकिन पूजा कोई नहीं करता। एक मंदिर जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं लेकिन उसके गर्भगृह में जाना दशकों से मना है। क्या वाकई इस मंदिर में कोई चुंबकीय शक्ति, कोई मैग्नेटिक पावर थी? अगर थी तो वो कहां गायब हो गई? क्या है अद्भुत कोणार्क मंदिर के अविश्वसनीय इतिहास का वो अकल्पनीय सच जो सदियों से कोई नहीं जानता?

कोणार्क यानी सूर्य का कोना। सूर्य भगवान का एक ऐसा मंदिर जिसे कुछ लोग कहते हैं कि सदियों पहले मनवाया गया था, तो कुछ का मानना है कि ये मंदिर तो युगों पुराना है और इसकी आधारशिला द्वापर युग में ही रख दी गई थी। मान्यताएं कहती हैं कि कोणार्क समय की गति बताता था, लेकिन आज के कोणार्क मंदिर का हर पत्थर कहता प्रतीत होता है कि समय की गर्त में ही आज इसका हर सच दबा है।

0: क्या सच में 123 साल पहले अंग्रेजों ने कुछ ऐसा देख लिया था कि मंदिर का गर्भगृह बंद कर दिया?
1: जब भी अंग्रेजों को लूटने के लिए उड़ीसा आए, उनका पानी जहाज का कंपास भी सही तरह से काम नहीं किया।
2: 1903 में लॉर्ड कर्जन ने मंदिर को चारों तरफ से सील करके रखा था।
0: क्या वाकई मंदिर की सुरक्षा के लिए लाखों टन रेत से इसे भर दिया गया, या कोई रहस्य इसके नीचे आज भी कैद है?
3: एक इंजीनियर था बिशन स्वरूप, उसने क्या किया, उसने देखा मंदिर ढह जाएगा, तो उसने ऊपर से एक छेद करके उस मंदिर में बालू भर्ती कर दी।
0: क्या सच में कभी मंदिर के शीर्ष पर लगा कई टन भारी चुंबक जहाजों को खींच लिया करता था?
3: कैसे 35 टन का एक सिंगल स्टोन ब्लॉक को ऊपर लेके गए, पहले तो उसको क्वारी से यहां तक कैसे लाए, ठीक है, उसकी भी अगर आप बोलोगे कोई फुल प्रूफ आंसर ASI दे देगा या कोई दे देगा, मेरे जानने में संज्ञान में ये नहीं है।
0: क्या मंदिर के गर्भगृह में कभी भगवान सूर्य की विशाल प्रतिमा बिना किसी सहारे हवा में तैरती थी?
1: इसका अंदर एक 22 फुट वाला एक मूर्ति था जो सूर्यदेव के किरण के हिसाब से वो धीरे धीरे घूमता रहता था।
4: मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया था और जिसके बीच सूर्य की मूर्ति रखी हुई थी।
0: क्या सदियों पहले 12 साल के एक बच्चे की मौत के साथ मंदिर का सबसे बड़ा राज भी दब गया?
1: 1200 फैमिली और 1200 कारीगर को जिंदा रखने के लिए समुद्र को कूद पड़ा था।
2: बच्चा मंदिर का ऊपर जाके यहाँ समुद्र से कूद के मर गया।
0: क्या वाकई इस मंदिर की नक्काशी सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन है जो आज भी बिना किसी घड़ी के सटीक टाइम बताती है?
2: संडे उसी समय का 8:24 मिनट।
0: और सबसे बड़ा सवाल ये कि आज तमाम

0: आधुनिक मशीनों और तकनीक होने के बावजूद 123 साल बाद भी मंदिर के अंदर का सच बाहर क्यों नहीं आया?
1: कोणार्क की सारी कहानी लिखी नहीं गई है। मैंने जैसे आपको कहा, काफी सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब ढूंढने पर भी अभी तक नहीं मिलता है।
0: जो कोणार्क मंदिर है, ये उड़ीसा के पुरी जिले में बसा हुआ है। ये मंदिर भारत की सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत नहीं है, बल्कि इसकी जो संरचना है, इससे जुड़ा जो इतिहास है, इससे जुड़ी सदियों पुरानी जो मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, इसे आध्यात्म और विज्ञान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। इस मंदिर की मान्यताएं पुराणों से जुड़ती हैं, तो मध्यकाल के इतिहास में भी मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने एक श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की उपासना की और उनका मंदिर बनवाया। दावा किया जाता है कि कोणार्क मंदिर आज उसी स्थान पर है।
2: कृष्ण का पुत्र का नाम था सांब। सांब ने बहुत सुंदर था। सुंदर होने के बाद उसका मन में बहुत घमंड हो गया था। घमंड होने के बाद कुछ माताओं के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करने के बाद नारद मुनि ने देख लिया। नारद मुनि देख के जाके कृष्ण भगवान को बता दिया कि भगवान आपका बेटा कुछ गलत काम कर रही। तो भगवान आके रंगे हाथ उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनका बेटा को अभिशाप दिया कि जिस शरीर से इतना गर्व और घमंड कर रहे, उस शरीर को कुष्ठ हो जाए, मतलब लेपर्सी। सारा विश्व में अभी तक इसके लिए दवाई निकला ही नहीं, लेकिन यहाँ पे दबाई है। फिर नारद मुनि मिलते हैं।
3: नारद बताया नदी और समुद्र संगम 1238 में ये जगह में नदी समुद्र मिलन था।
2: उस नदी से हर रोज स्नान करने से सूर्य देव का पहला किरण आपका शरीर का ऊपर गिरेगा, तो आपको कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल सकता है।
0: दावा ये भी किया जाता है कि तब से, यानी युगों पहले से, वहाँ सूर्य देव की विधिवत पूजा हुआ करती थी।
4: पुरंदर के सर जो बनाए थे वो 200 साल पूजा हुए थे, और नांगुला नरसिंह जो मंदिर बनाए थे 300 साल तक पूजा हुए थे।
0: तब मंदिर कैसा था, किस रूप में था, उसका कोई हिस्सा या आकृति आज के कोणार्क मंदिर से मिलता था या नहीं मिलता था, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कोणार्क मंदिर के प्रथम अस्तित्व का पन्ना खुलता है 1250 ईस्वी से। इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था।
1: ये एक यूनिक मंदिर है, क्योंकि हमें पता है सूर्य मंदिर भारत में इतने ज्यादा नहीं है, और इतना बड़ा तो कहीं भी नहीं था। ठीक है, अब उस समय के राजा ने सोचा था मैं कुछ अलग हटके करूं। ठीक है, वो चाहता तो कोई शिव का मंदिर बना सकता था। उसी के कंटेम्प्रेरी 100 साल ऊपर नीचे बहुत मंदिर बने थे, भला इतने बड़े नहीं बने थे। कोणार्क की जो एक्सक्लूसिविटी है, जो अलगपन हुआ है, वो है जो उसका शेयर साइज, नंबर वन। नंबर टू, उसका लोकेशन।
0: मंदिर निर्माण आसान नहीं था, क्योंकि एक तो समुद्रीय तट और दूसरे वहां घना जंगल था, पत्थर कैसे आते। इतिहास के इस सवाल का उत्तर भी इतिहास के ज्ञाताओं के पास ही मिलता है।
1: मंदिर बनाना की जो शैली थी वो सहज नहीं थी, क्योंकि उसके आजू बाजू में कोई भी ऐसी क्वारी नहीं थी जहां इतने बड़े बड़े पत्थर वहां पर ट्रांसपोर्ट करना। उस टाइम तो ट्रक वगैरह होते नहीं थे। यहाँ तक कि उस मंदिर को बनाने के लिए एक छोटी सी नदी भी खोदी गई थी, जिसको पथरबुहा कैनल बोलते हैं। वो बड़ी नदी थी, क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक आते थे, जो 2, 4, 6, 7 टन तक के थे, उसको फ्लोट करके लाया जाता था। तो उसको मंदिर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर तक लाते थे, फिर हो सकता है हाथियों से उसे खींच कर मंदिर के साइड पर लेके जाते हैं। उस जगह में राजा ने क्यों बनाई, उसका हमारे पास उत्तर नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो इस वजन का 30 टन 35 टन का जो हेडस्टोन होता है वो सिंगल स्टोन ब्लॉक है उसको ऊपर कैसे लेके गए। उस टाइम तो क्रेने होती नहीं थी। उस जमाने के बहुत बड़े बड़े ऐसे शिलाएं अभी भी नदी के इर्द गिर्द पड़ी हैं।
0: जानकार भी इस बात से हैरान है कि उस समय न तकनीक थी न मशीन, फिर बड़े बड़े पत्थर ऊंचाई तक कैसे ले जाए गए और कैसे ये अद्भुत मंदिर बन सका। मंदिर निर्माण को लेकर और भी कई अद्भुत कहानियां हैं जो पूरे विश्वास के साथ कही जाती हैं।
3: ये मंदिर को राजा नरसिंह देव बनाया 1238 मसीह में।
2: उनका माता का नाम था कस्तूरी देवी। कस्तूरी देवी शादी होने का कई साल तक उनका गोद में बच्चा पैदा नहीं हुआ।
3: वो बताया था भगवान यदि मेरा बेटा हो जाएगा राजा हो जाएगा कोई सूरज मंदिर बनाएंगे।
2: तो पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे राजा बड़ा होकर राजा के आसन पर बैठ जाते हैं। उनका माता कस्तूरी देवी बुलाता है, बेटे नरसिंह पास आओ।
3: जो कृष्ण भगवान बेटा शंभु को अभिशाप दिया था ये घर में अच्छा है, यहाँ से के सूरज मंदिर बेटा को ऑर्डर किया बनाने को।
2: इससे सूर्य मंदिर हमारा बचपन जवानी और बुढ़ापा तीन स्टेप मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन स्टेप।
3: तो 12 साल में चीज बनाना चाहिए। 40 करोड़ माँ ने बेटा को दिया, बेटा 1200 कारीगर को बुलाया।
2: राजा ने ऑर्डर किसको देते हैं? शिवे सांतरा उसका नाम था, मंत्री का नाम। तो शिवे सांतरा ने 1200 कारीगर को ढूंढ लिया। तो 1200 कारीगर इधर आ गए मंदिर बनाने के लिए।
3: 1200 कारीगर में इंजीनियर होता विश्व महाराणा प्रेसिडेंट, वो राजा से पैसा लाया था 12 साल कंडीशन करके।
2: ये मंदिर धीरे धीरे बनते गया, लेकिन इसका 1200 कारीगर मंदिर बना दिया, लेकिन इसका कलश किसी ने नहीं बिठा सका।
3: 3 नंबर वाला जो मेन मंदिर था इसके ऊपर जो मैग्नेट लगाने का, वो मैग्नेट को 1200 कारीगर कोई लगा सकते नहीं।
2: जो कलश बिठा रहे थे वो समुद्र का अंदर गिर जाता था। राजा ने ऑर्डर दे दिया कल सुबह 12 साल हो जाएगा इसका कलश सही तरह से नहीं बिठाएंगे तो 1200 कारीगर का स्वर अलग कर देंगे।

0: माना जाता है कि मंदिर की दीवारें तो तैयार हो गई थी, लेकिन तेज समुद्री हवाओं के कारण शिखर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। और राजा की तरफ से निश्चित किया गया समय बीत रहा था, जिससे सभी शिल्पकार चिंतित थे।
1: वो जो इंजीनियर घर छोड़ गया था, इंजीनियर कह के बेटा घर में था, बेटा को 12 साल हुआ था, बेटा का नाम होता धर्मपद।
2: उनका मम्मी को पूछता है, मम्मी हमारा पापा कहाँ है? ना पापा गए हैं गजपति लांगुरा नरसिंह देव का के भव्य सूर्य मंदिर बनाने के लिए, ना मैं जाऊंगा देखने के लिए।
1: वो बेटा ने पिताजी के पास आया था मीट करने को, पिताजी को, पिताजी के साथ बेटा का जब मीट हो गया, पिताजी बेटा को सारा बात बताया, जे बेटा हम राजा से पैसा लाया 12 साल कंडीशन करके, ये सारा सामान बनाया, आज रात बाकी है, इसके ऊपर एक मैग्नेट लगाना का, वो 1200 कारीगर का दिमाग में आता नहीं, सुबह 1200 कारीगर को राजा मार डालेंगे।
2: तो बेटे ने तुरंत बोलता है, पिताजी मेरे को ऑर्डर दीजिए, इसका कलश सही तरह से बिठा सकता हूँ। 1200 कारीगर हंसने लगते हैं, जो कि जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पाए तो कैसे करेगा?
1: ना पिताजी चिंता मत करिए, मैं इतना रास्ता आया है, आप यदि मेरे को चांस दे देंगे मैं उसको ठीक कर देंगे। वो पिताजी से ऑर्डर लेके बच्चा ने इसी के ऊपर मैग्नेट रात में फिटिंग किया था।
2: इसका ऊपर जो कलश बिठा रहे थे वो गिर जाता था, उस बच्चे ने क्या किया, इसका ऊपर पहले लोहा रखा, इसका ऊपर 53 टन का एक चुंबक रखा, इसका ऊपर कलश बिठा दिया, मंदिर कंप्लीट।
1: तो सुबह जब हो गया, 1200 कारीगर इसके पिताजी को डिमांड किया, जे विश्व ये बात राजा को मालूम होगा, कल रात में तुम्हारा बच्चा ये चीज बनाई है, तो राजा बोलेगा 1200 कारीगर 12 साल में जो काम नहीं किया, एक 12 साल का बच्चा 12 घंटा में किया, इसका जिंदगी में 12000 आदमी का काम करेगा।
2: फिर 1200 कारीगर का स्वर अलग कर देंगे।
1: वो 1200 कारीगर को बचाने के लिए और बात को छुपाने के लिए बच्चा मंदिर का ऊपर जाके यहाँ समुद्र तक कूद के मर गया।
0: जानकारों के दावों के अनुसार मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसी के साथ जुड़ गई 12 साल के बालक धर्मपाद के बलिदान की कथा।
3: कहा जाता है कि 12 साल के बालक धर्मपाद ने गणितीय सूझबूझ के साथ चुंबक का इस्तेमाल किया शिखर को स्थापित करने में। कई लोग आज भी ये दावा करते हैं कि मंदिर निर्माण में जो पत्थर लगे उनमें भी चुंबकीय तत्व थे, और इसी वजह से मंदिर में जो सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित हुई वो किसी समय बिना सहारे के हवा में तैरती थी।

0: क्या वाकई हवा में बिना सहारे तैरती थी? कोणार्क मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा, क्या सैकड़ों वर्ष पहले ऐसी तकनीक संभव थी जो प्रतिमा को हवा में स्थापित कर सके? क्या चुंबक के सहारे तैयार हुआ था भगवान सूर्य देव का मंदिर और प्रतिमा? स्थानीय दावों और आस्थाओं के अनुसार जब मंदिर निर्माण हुआ तो उसमें भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को ऐसे स्थापित किया गया कि वो हवा में तैरती हुई प्रतीत।
1: मुझे इतिहास से ज्यादा जो मुझे वैज्ञानिक लग रहा है, साइंटिफिक, कि यहाँ पे जो मैग्नेट वगैरह था उससे हमारी जो मूर्ति थी वो जमीन से उठ के थी, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो चीजें पौराणिक है, पीछे है, वो खाली खाली मतलब अंधविश्वास से न रहते हुए हमारी मतलब साइंटिफिक भी था, हमारा धर्म भी साइंटिफिक था और इसमें बनाई हुई चीजें बहुत ही ज्ञानवान थी। आज तक ऐसी चीज ना हिंदुस्तान में है ना वर्ल्ड में है जिस चीज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है।
2: कहा जाता है कि यहाँ सूर्य की मूर्ति थी जो मैग्नेटिक, ये से पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया था और जिसके बीच सूर्य की मूर्ति रखी हुई थी।
0: सैकड़ों साल पहले मंदिर के निर्माता क्या वैज्ञानिक रूप से इतने सक्षम थे और क्या चुंबक का वो इस तरह से इस्तेमाल करना जानते थे? ये एक पहेली थी जो हमें सुलझानी थी।
3: 800 साल पुराने कोणार्क मंदिर में सूर्य देव की हवा में स्थित प्रतिमा का जैसा दावा किया जाता है वैसा ही दावा सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर भी किया जाता है। कहा जाता है कि अब से लगभग 1000 साल पहले तक सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में तैरता था, इसे लेविटेटिंग शिवलिंग कहा जाता था। तो क्या पहले के विद्वान मैग्नेट का यानी चुंबक का प्रयोग अच्छी तरीके से समझते थे?
0: कोणार्क मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां सूर्य देव की प्रतिमा हवा में तैरती थी और इसके पीछे कारीगरों का मैकेनिज्म था। यही बात सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग को लेकर भी सामने आई। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग अब से 1000 साल पहले तक 3 फीट ऊपर हवा में तैरता था। न शिवलिंग के नीचे कोई आधार, न शिवलिंग के ऊपर कोई जंजीर या रस्सी। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के हवा में स्थित होने की बात कही गई है। कई विद्वानों का भी यह मानना है कि अब से 1000 साल पहले तक शिवलिंग हवा में ही स्थिर रहता था।
4: इतिहास बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अंगुष्ठ प्रमाण था भगवान का जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप था, कहीं कोई सपोर्ट नहीं था, ऊपर नीचे कहीं सपोर्ट नहीं था,
5: और इसलिए इसको लेविटेटिंग शिवलिंगा कहा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली 1026 AD में महमूद गजनी के अटैक में महमूद गजनी ने उस शिवलिंग को गिरा के तोड़ दिया था।
0: आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग किसी ऐसे पत्थर से बना रहा होगा जिसमें कहीं न कहीं कोई धातु का अंश जरूर रहा होगा या कोई चुंबकीय विशेषता रही होगी। आमतौर पर ऐसे पत्थर अंतरिक्ष से आए माने जाते हैं। इन पत्थरों को मीटियोर कहते हैं।
5: जो ये शिवलिंग था ये बेसिकली एक उल्का पिंड या मीटियोराइट का पीस था। इसका हमारे पास काफी एविडेंस है। सबसे ज्यादा एविडेंस है कि उनकी अपनी कथाओं में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई तो शिवजी ने आसमान को एक ब्राइट लाइट की तरह चीर दिया और ब्राइट लाइट चीर के उल्कापिंड ही आता है, यानी कि मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स निकल आयरन की काफी तादाद होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं, और क्योंकि जब वो नीचे गिरते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक पुराना में भी लिखा है कि ये अंडे के साइज का था, ये नॉर्मल शिवलिंग से छोटा था, ये जो सोमनाथ का लेविटेटिंग शिवलिंग था।
0: हालांकि सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई विद्वान इस पर अलग मत रखते हैं, लेकिन हमारे सामने सवाल ये नहीं कि ये उसी शिवलिंग का हिस्सा है या नहीं। हमारे सामने प्रश्न ये है कि कि हजारों साल पहले वो कौन सा ज्ञान, तकनीक और शक्ति थी जिसने इसे संभव किया होगा।
5: श्री सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो हवा में तैरता था, ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये अब करना बहुत आसान है, सुपरकंडक्टर से, लेविट्रॉन से, डायनामिक फीडबैक से। उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त हमने इन चीजों के बगैर किया है।
0: इसका जवाब हमें चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लेविटेशन की थ्योरी बताती है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो मैग्नेटिक लेविटेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है और सोमनाथ से पहले इसका कहीं और सबूत दिखाई नहीं देता। शिवलिंग हवा में तभी ठहरा होगा जब इसके ऊपर और नीचे दोनों ओर शक्तिशाली मैग्नेट लगे होंगे, यानी मंदिर की छत पर और शिवलिंग के ठीक नीचे। दोनों चुंबक इतना बराबरी से फोर्स लगा रहे होंगे कि बीच में शिवलिंग अपनी जगह स्थिर हो गया होगा।
5: और इसको हवा में तैराने के लिए उन्होंने क्या किया था, हवा में कोई चीज जब भी तैरती है तो आप लोगों को लगे बहुत आसान है, ऊपर मैग्नेट लगा दो, नीचे मैग्नेट लगा दो, साइड में लगा दो, बैलेंस बना लो और बीच में तैरा लो, ये इम्पॉसिबल है। मॉडर्न साइंस के लिए भी इम्पॉसिबल है, उस समय भी इम्पॉसिबल था, एक चीज को छोड़ के जिसको जो उन्होंने भी यूज किया और जो मैं बताऊंगा।
0: फारसी इतिहासकार कजीवनी ने लिखा है कि 1205 में जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसने अपने सैनिकों से हवा में स्थिर शिवलिंग के बारे में पूछा।
6: गजनवी के सैनिकों ने भाले से शिवलिंग के चारों तरफ घुमाकर देखा तो कोई रुकावट नहीं मिली। फिर किसी ने कहा कि छत में चुंबक और शिवलिंग में लोहा हो सकता है। महमूद के आदेश पर छत के कुछ पत्थर हटाए गए तो शिवलिंग झुकने लगा।
0: ब्रिटिश वैज्ञानिक सैमुअल अर्नशॉ की 1842 में अर्नशॉ थ्योरम प्रकाशित हुई। इस थ्योरम के अनुसार एक चुंबक दूसरे चुंबकों की मदद से हवा में कभी स्थिर नहीं ठहर सकता, या तो वो चुंबकों से चिपक जाएगा या फिर दाएं या बाएं निकल जाएगा। इसके लिए एक डायमैग्नेटिक पदार्थ इस्तेमाल करना होगा।
5: डायमैग्नेट्स क्या होते हैं? डायमैग्नेट्स नोन है, हमारा उस वक्त का मेटलर्जी बहुत एडवांस था, उसको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है। ये तो 10th century AD का है, 1026 AD में या 9th century में बना था ये, जबकि इंडियन मेटलर्जी तो 2nd century AD से बहुत एडवांस है, जिंक यूज कर रहे थे। कुछ नहीं करना होता है, आपने ऊपर मैग्नेट लगा दिया, नीचे मैग्नेट, साइड पे मैग्नेट, और बीच में आपने बिस्मत की दो प्लेटें डाल दी। ऐसे बहुत से बच्चों के टॉयज भी मिलते हैं, बिस्मत डायमैग्नेटिक है। इसका आप लगा दीजिए कि एक आदमी लड़खड़ा रहा है और चार आदमी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो ज्यादा खींचेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। ये नॉर्मल मैग्नेट के साथ उल्का पिंड है। और अगर आपने बिस्मत बीच में डाल दिया तो उसके बीच में दो दोस्त भी आ गए। बिस्मत दोस्त का काम करता है, वो जब आदमी गिरने लगेगा उसको संभाल के कम फोर्स वाले हिस्से में शिफ्ट कर देगा। बिस्मत का हमारे पास बहुत सॉलिड डाटा है श्री सोमनाथ मंदिर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जगह जगह लिखा है कि सोमनाथ का मंदिर जो महमूद गजनी ने तोड़ा था, उस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, वो 56 टीक यानी कि लकड़ी के पिलर्स पे था, जिनके ऊपर सीसा यानी लेड चढ़ाया हुआ था। और वो सीसा नहीं था, वो बिस्मत था। सीसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेड वैसे भी हिंदू कल्चर में हम यूज नहीं करते, हम चांदी यूज करेंगे, गोल्ड यूज करेंगे, इतना अमीर टेम्पल था हम तो गोल्ड से ढक सकते थे। स्पेसिफिकली सीसा क्यों चुना, यानी कि लेड क्यों चुना? उनके मुताबिक था वो बिस्मत, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक है।
0: अद्भुत है कि जो शोध 1842 में सामने आई उसकी जानकारी आज से हजारों साल पहले कैसे थी? प्राचीन हिंदू कारीगरों को ये कैसे मालूम था कि सिर्फ चुंबकों की मदद से शिवलिंग को हवा में रोकना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि बिस्मत या ग्रेफाइट जैसे डायमैग्नेटिक पदार्थ भी इस्तेमाल करने होंगे? तो क्या मंदिर बनाने वालों ने बिस्मत का प्रयोग किया? लेकिन बिस्मत तो 1753 में खोजा गया, फिर उस समय क्या प्रयोग किया गया? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास के कई पन्नों को मिटाया गया, कि दुनिया के जानने से सैकड़ों सदियों पहले भारत की भूमि पर ये ज्ञान मौजूद था? कोणार्क मंदिर के बारे में स्थानीय लोग आज भी यही कहते हैं कि मंदिर के शीर्ष पर लगा टनों वजनी चुंबक और पत्थरों को जोड़ने के लिए किया गया लोहे के इस्तेमाल से सूर्य देव की प्रतिमा हवा में स्थापित हो सकी।
3: मंदिर के निर्माण के लिए बाहर से जब बड़ी बड़ी शिलाएं लाई गईं, तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए आयरन लॉक सिस्टम का प्रयोग किया था। इसके लिए पत्थरों के बीच खांचे बनाए गए और उनमें पिघला हुआ लोहा भर दिया, जिसके कारण चट्टानों को एक दूसरे से मजबूती से जोड़ा जा सका।
7: अंदर में देखिए लोहा क्लैंप जॉइंट, वो अंदर से देखिए लोहा क्लैंप जॉइंट,
8: इसको मैग्नेटिक ऊपर कंट्रोल किया, ये साइंस को उनको गरम करके बाकी सारा पत्थर जितना खराब हो जाता सारा सॉल्ट हवा से।
7: ये मंदिर के अंदर लोहा बीम था, ये पत्थर को गर्म करके लोहा निकाल के उन लोगों फिटिंग किया था। उसी समय में इंडस्ट्रिक फैक्ट्री कुछ नहीं था, सीमेंट का सामान कुछ नहीं था, ये लोहा को सारा अंदर में डाल के इसके ऊपर मैग्नेट कंट्रोल किया था, जैसे हमारा बॉडी को दिमाग कंट्रोल करते हैं। अंग्रेज लोग को जब दिमाग निकाल के ले लिया, बाकी जो फ्रेम है वो फ्रेम का सपोर्टिंग नहीं है।
3: सदियों पहले जब तकनीक नहीं थी तब इंसानों ने ऐसा कर दिखाया, तो ये भी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय ही है और भारतीय कारीगरों की बुद्धिमत्ता का परिचायक है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इतनी ऊंचाई तक लोहा जड़ित भारी पत्थर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कहा जाता है कि रेत और मिट्टी के ढलान तैयार करके उनकी सतह चिकनी की गई और फिर पत्थर ऊपर खींचे गए, जैसा कि हजारों साल पहले मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के समय किया गया था। यानी वाकई अद्भुत थी भारत की प्राचीन शिल्प कला और अविश्वसनीय रूप से विद्वान थे भारत के कारीगर। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी तक कोणार्क मंदिर उसी अवस्था में रहा जैसा उसका निर्माण हुआ था, लेकिन 16वीं शताब्दी में मंदिर पर हुए आक्रमण ने इसे तहस नहस कर दिया। धीरे धीरे मंदिर अपनी आध्यात्मिक चमक खोता चला गया। कुछ लोगों का मानना है कि धर्मपाद की आत्महत्या के कारण मंदिर में निर्माण के बाद भी पूजा नहीं हो सकी, तो कुछ लोगों का मानना है कि तब पूजा होती थी और इसी क्रम में शताब्दियां बीतती चली गईं। 16वीं शताब्दी के साथ कोणार्क मंदिर के इतिहास ने एक ऐसी करवट ली कि मंदिर का अस्तित्व ही लगभग नष्ट हो गया। अफगान के सुलेमान कर्रानी ने कलिंग पर आक्रमण किया तो राजा मुकुंददेव के पुत्र और सेनापति राजीव लोचन रॉय ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। तब सुलेमान कर्रानी ने एक लड़की को राजीव लोचन के पास भेजा। राजीव लोचन ने उससे विवाह कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जब दोबारा वो अपने पिता के पास गए और वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहा, तो पिता ने अस्वीकार कर दिया और राजीव लोचन राय महमूद फार्मूली हो गए। राजीव लोचन ने इसके बाद मंदिरों पर आक्रमण शुरू किए, जिसमें सबसे भीषण हमला कोणार्क के सूर्य मंदिर पर किया। कहा जाता है कि फार्मूली ने मंदिर के अंदर स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा को तोड़ दिया और शिखर को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे मंदिर की संरचना कमजोर हो गई।
9: इसको मुसलमान आदमी आकर गिरा दिया, फिर नांगुला नरसिंहदेव आकर वो सामना मंदिर जो है कोणार्क मंदिर इसको बनाए थे।
3: महमूद फार्मूली को काला पहाड़ कहा जाता था। उसके उजाड़ने के बाद मंदिर का वैभव धीरे धीरे नष्ट होता चला गया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मंदिर की संरचना के ढहने के पीछे इसके शिखर पर लगी टनों वजनी चुंबक थी। दावा किया जाता है कि मंदिर के शिखर पर लगे चुंबक के कारण ये गुजरने वाले जहाजों के कंपस को बाधित करता था, इससे नेविगेशन संबंधी समस्याएं पैदा होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ही पुर्तगाल के जो नाविक थे उन्होंने चुंबक शिला को हटा दिया और इसके कारण मंदिर की मुख्य संरचना ढह गई, ऐसी मान्यता है। माना जाता है कि मंदिर का शिखर एक विशालकाय और कई टन वजनी चुंबक की मदद से स्थापित किया गया था, जिसके कारण समुद्र से निकलने वाले जहाजों के दिशा सूचक यंत्र भ्रमित हो जाते थे और वो भटककर चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे।
10: वो ट्रेड करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनका कंपास ना अचानक से ना अब्रप्टली जो होता है ना मूव करने लगा, जिससे उनको लगा इधर कुछ गलत है, इधर काला जादू होता है। वो लोग राजा के पास गए, उन्होंने ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज थी उसको हटा दिया।
3: हालांकि इस मान्यता का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन 16वीं शताब्दी के एक नाविक की डायरी में कोणार्क सूर्य मंदिर का उल्लेख अदृश्य शक्तियों द्वारा थामे हुए एक काले पत्थर के रूप में वर्णन किया गया है। 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र पात्रा ने भी कोणार्क मंदिर में चुंबक के दावों को लेकर खोज की थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के कुछ हिस्सों में चुंबकीय अयस्क के निशान मौजूद हैं। दीवारों और ढांचे के अंदर खाली स्थान भी पाए गए जहां कभी चुंबकीय पत्थर लगाए गए होंगे।
11: उस मंदिर में और एक शैली थी, वहां हमारे पास लंबे लंबे अभी भी पड़े हैं आयरन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो जैसे जो आयरन पिलर कुतुब मीनार में है जो आज तक जंग नहीं खाया, तो ये जो पिलर भी चार पड़े हैं, लंबे लंबे जो आयरन ब्लॉक्स हैं अभी भी पड़े हैं वहां पर, चार छह हैं, कुछ इसको मंदिर के निर्माण में भी यूज किया गया था वहां पर, वहीं पर कास्टिंग करके, वो आज तक जंग नहीं खाए हैं, ठीक है।
3: डॉक्टर पात्रा की ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गर्भगृह के निकट खोजे गए कुछ गुप्त कक्षों से ऐसे संकेत मिले हैं कि वहां किसी अत्यंत उन्नत तंत्र को स्थापित किया गया हो सकता था। इन खोजों ने इस संभावना पर आगे की रिसर्च का रास्ता खोला है कि हवा में तैरती हुई प्रतिमा वास्तव में प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण थी, या फिर समय के साथ लोक कथाओं और जन विश्वासों ने उसे एक रहस्यमयी मिथक का रूप दे दिया।
12: जब भी अंग्रेजों लोग को लूटने के लिए उड़ीसा आए, उनका पानी जहाज का कंपास भी सही तरह से काम नहीं किया, उन लोगों ने सोच में पड़ गए। जिस चुंबक को नष्ट करने के लिए डायनामाइट और बॉम्बिंग करके नष्ट कर दिया, नष्ट करने के बाद ये मंदिर नष्ट हो गया।
3: कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविकों को जब बार बार मंदिर के मैग्नेट के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उसे खींच कर हटा दिया, जिससे शिखर के साथ मंदिर की इमारत भी कमजोर हो गई। इस मंदिर का निर्माण जिस शैली में किया गया वो पूरी दुनिया में अद्भुत है। सूर्यदेव को समर्पित मंदिर देखने पर यह लगता है जैसे सात घोड़े सूरज के रथ को खींच रहे हों, और इसमें इस तरीके के जो 24 पहिए लगे हैं, जिस तरह समय की गणना ये बताते हैं, वो सैकड़ों वर्षों बाद भी अविश्वसनीय लगता है। सदियों के थपेड़े सहने के बाद कोणार्क मंदिर आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और उन्नत कारीगरी का प्रतीक बनकर खड़ा है। इसकी संरचना आज भी कई रहस्यों की परतें खोलती है, जिनको लेकर देश दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं। मंदिर में भगवान सूर्य देव के सात घोड़ों के रथ में 24 पहिए लगे हैं। इन पहियों में 8-8 मोटी अरी हैं और 8 पतली तीलियां भी हैं। इन अरियों के बीच गोल गोल 8-8 आकृतियां भी हैं।
13: ईस्ट होता ही है, ईस्ट से तो सूरज होगा निकलेंगे, सूरज का लाइट एक्सेल के ऊपर गिरेंगे। ये चक्र का हाइट होता 9 फुट 10 इंच, ये चक्र में 8 स्पोक है, 8 तिल को होता 24। हमारा रात और दिन होता 24 घंटा, दिन 12 घंटा, रात 12 घंटा। सूरज पूरब से निकलेंगे, पश्चिम को चलेंगे, आपका लाइट पश्चिम से पूरब को चलेंगे। एक्सिल का पर लाइट गिरने से आप दंडा डालेंगे, दंडा का लाइट वो साइड आधा बड़ा स्पोक में गिरने से मॉर्निंग 6, मिडिल में जो छोटा स्पोक 1.5 घंटा 7.5, इसके बाद 9, 10.5, 12, 3.5, 4.5, शाम का 6, 12 घंटा हो गया। बड़ा से बड़ा होता 3 घंटा, 8 स्पोक 24 घंटा, बीच में से वो 1.5 घंटा डिवाइड। बड़ा स्पोक से बड़ा स्पोक साइड में 60 डॉट, ईज बॉल 3 मिनट। आप बीच में ऐसे हाथ डालने से आपका लाइट नीचे बॉल के ऊपर गिरेंगे, वो बॉल को काउंटिंग करने से कुछ टाइम मिलेंगे। ये होता सनडाइल उसी समय का, 8 स्पोक 24 मिनट।
3: सात घोड़े 7 दिनों का प्रतीक है और 24 पहिए दिन और रात के 12-12 घंटे दर्शाते हैं। जो 8 मोटी अरियां हैं वो दिन और रात के 8 प्रहर का प्रतीक है, जो हर 3 घंटे के हिसाब से 24 घंटों के समय का वर्णन करते हैं। इसी तरह पतली तीलियां हर 1.5 घंटे के समय का प्रतीक है, जो एक एक अरी के अंदर 2 भागों में बटी हैं। माना जाता है कि सूर्य की परछाई के हिसाब से ये चक्र समय का सही समय बताता है।
14: जैसे कि बोलते हैं कि फर्स्ट सनराइज जो होता है, फर्स्ट सूर्य का किरण यहाँ पे आता
15: है। सूर्य भगवान का रथ चक्र इधर 14 चक्र में है ना, घड़ी का जैसा बोला ना, 1 मिनट का भी है और सेकंड का भी है और 1 घंटा का भी दिखा सकता है, उधर देख सकता हम लोग।
14: जो चक्र है वहाँ इसके वजह से ये फेमस है।
3: 8 मोटी अरियों के बीच जो 8 गोल छोटे चक्र हैं, उनमें जो आकृतियां हैं वो किसी भी व्यक्ति की किस समय क्या दिनचर्या होनी चाहिए उसका वर्णन करती है।
2: ये उस समय समय देखने के लिए मतलब कि सन का जो जितने सेट पड़ते हैं उसमें, और स्थापित कला के हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी, ये शायद ये यहाँ की शैली है, गंधार शैली शायद इसमें आती है, ये जो ये कोणार्क है, और यूनेस्को में तो इसे मिला ही चुका है वर्ल्ड का।
16: ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के वास्तुकारों ने सूर्य घड़ी बनाने के लिए खगोल विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग किया था और इसका डिजाइन जटिल गणितीय गणनाओं पर आधारित रखा था, जिसमें पृथ्वी के घूमने, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की चाल को ध्यान में रखा गया है। यह पूरे दिन और पूरे वर्ष सूर्य की चाल के अनुसार है।
11: 100% एक्यूरेसी है। सर्टेनली उन लोग के पास नॉलेज था अलाइंट की, सूरज की पहली किरणें कहाँ पड़ेंगी और जब सूर्य उदय होगा, यू नो उस टाइम ये क्या होगा। यस, ये आप कह सकते हैं कि बहुत उनके पास एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज काफ़ी हाइटेंड की थी। और अचंभे की बात यह है कि बिना उस टाइम टेलीस्कोप नहीं था, उस टाइम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं था, उस टाइम उनके पास कोई ऐसा नहीं था, पर वो अपने ही तरीके से उसको बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल करके।
16: कहा जाता है कि रथ की पहियों की सूर्य घड़ी का उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों के लिए सटीक समय की गणना करने के लिए किया जाता था। यानी भारत का ज्ञान विज्ञान सदियों पहले कितना विकसित था, इसकी घोषणा भी कोणार्क मंदिर करता है। 1903 में मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। आगे चलकर इस मंदिर को खोला गया, लेकिन आज भी पर्यटक के तौर पर लोग वहां ज्यादा जाते हैं और एक धार्मिक स्थल के तौर पर कम। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि जल्द ही मंदिर का पूरा सच सामने आएगा और इसके लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कोणार्क मंदिर का जब निर्माण हुआ तब उसके तीन मुख्य भाग थे, नाट्य मंडप, सभा मंडप जिसे जगमोहन कहा जाता था, और गर्भगृह। नाट्य मंडप के अवशेष बचे हैं, गर्भगृह कुछ दीवारों के अलावा गिर चुका है। जो दूर से अब भी दिखाई देता है वो है जगमोहन यानी सभा मंडप।
11: कोणार्क मंदिर जो आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ 25% है, ठीक है, 75% वो टूट चुका है। जो मेन उसकी जो रेखा थी, जो मेन मंदिर था, वो गिर गया। वो तो बहुत मालूम नहीं उसका एग्जैक्ट हिस्ट्री है ना, वो गिर गया। और जो नाट्य मंडप था सामने, उसकी छत नहीं है, तो बस एक ही जो जगमोहन है बस वही है।
1: देख करके फील हुआ कि अब थोड़ा ही डैमेज होना शुरू हो गया है। पहले जब लोग आए थे 10-12 साल पहले तो बहुत अच्छा कंडीशन में था, बट इसका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारा सपोर्ट वो लोग डाले हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर भी वो तो बहुत हेवी है स्ट्रक्चर।
16: कहा जाता है कि 1903 में ब्रिटिश हुकूमत ने मंदिर के शेष ढांचे को बचाने के लिए रेत और बालू से भरकर बंद कर दिया था, जिसके कारण गर्भगृह की दीवारों में लोहे, चुंबक के प्रयोग और हवा में तैरती सूर्य देव की मूर्ति से जुड़े रहस्य रहस्य ही रह गए। एएसआई ने अब धीरे धीरे मंदिर के अंदर से 123 साल से जमा रेत को निकालना शुरू कर दिया है। दीवारों और ढांचे को नुकसान न पहुंचे इसके लिए बेहद सावधानी बरती जा रही है।
11: ओवर द इयर्स इतने सालों में वो जो इन्होंने छत तक बालू की भर्ती की थी वो कॉम्पैक्ट होकर नीचे हो गई है। बालू भी धिसते हैं, पत्थर बनता है। आज 25 साल हो गए हैं इन्होंने उसको एग्जामिन किया है। जो छत को बालू सपोर्ट कर रही थी वो अब तकरीबन 7 से 8 मीटर नीचे है, यानी वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। रादर एक्सपर्ट ने कहा है कि वो जो इतनी सारी वहाँ पर बाली भर्ती है वो साइड की दीवारों पर प्रेशर कर रही है। अब उन्होंने 1.5 साल पहले डिसीशन लिया है, अब बालू बाहर करने की उन्होंने प्रक्रिया आरम्भ की है, और उसमें से जो अंदर भर्ती थी सारी सैंड उसको निकाल के उसके अंदर सपोर्ट देंगे।
16: इस प्रक्रिया में लेजर स्कैनिंग और रोबोटिक कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेजर तकनीक से गर्भगृह के अंदर के हर पत्थर को स्कैन किया जा रहा है, यानी जो सदियों से नहीं देखा जा सका वो अब देखा जा रहा है। कोणार्क मंदिर सिर्फ भारत की समृद्ध विरासत ही नहीं बल्कि एक विश्व धरोहर है, जिसकी घोषणा यूनेस्को ने भी की हुई है। कोणार्क मंदिर मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और जैसे जैसे इसका डिजिटल डेटा बाहर आता जाएगा सदियों से खड़े हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। कोणार्क मंदिर अभी आध्यात्मिक महत्व को बताता एक पर्यटन स्थल है, लेकिन विश्वास जताया जा रहा है कि गर्भगृह की ओर जाने से रोकने वाली पट्टी एक दिन हटेगी और लोग उसके आगे जाकर फिर से वैभवशाली सूर्य मंदिर को देख सकेंगे और तब शायद सदियों बाद फिर से पूजा का क्रम भी शुरू हो सके। हजारों साल की आस्था, सैकड़ों साल का इतिहास और एक सदी से अधिक समय बीत चुका, लेकिन मंदिर का सच आज भी पूर्ण रूप में किसी को नहीं पता। पर कहते हैं ना, सच को सात तालों के पीछे भी छुपा कर रख दो तब भी वो सामने आ ही जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी उस घड़ी की प्रतीक्षा है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। पंकज शर्मा, अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: बी आर अम्बेडकर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है?
1: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता है।

0: जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की, बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है, आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है, अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट है जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट है, ये वो ट्राइब्स है जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्रावधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज्यादा सशक्त करने का काम किया गया, और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बांग्लादेश के रंगपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत। रिटायर्ड टीचर, पत्नी, बेटी और 12 साल के बेटे के शव मिले। गला घोटकर हत्या का शक। दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो। चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार किया, घेर कर लाठी डंडों से पीटा, नाबालिग को पकड़ा, मास्टरमाइंड फरार। आरक्षण हटाने की मांग पर यूपी में सुलगी सियासत। अखिलेश के बाद मायावती ने भी खोला मोर्चा। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने की आंदोलनकारियों से मुलाकात। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। और यूपी में उफान पर है गंगा यमुना। प्रयागराज में डूबे घाट, रिवर फ्रंट पर अंतिम संस्कार। वाराणसी में बढ़ता पानी तो हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर लबालब। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर तक सैलाब।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। टीवी स्क्रीन पर तुलसी बनकर घर घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि जीत और हार के बीच झूलती सियासत की कहानी है। कभी राहुल गांधी को हराकर अमेठी में जॉइंट किलर बन गई, तो कभी उसी अमेठी में हार कर सत्ता से बाहर हो गई, मंत्री पद गया, विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी और अब बीजेपी ने उन्हें संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर साफ कर दिया कि उनकी सियासी पारी अभी खत्म नहीं हुई है। आज कहानी में बात स्मृति ईरानी के संघर्ष वापसी और नई भूमिका की पूरी दास्तान की।
1: जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता ये ना कहे कि अरे इनको तो पैराशूट किया गया है राजनीति में।
2: स्मृति जहाँ पहुँचती है वहाँ पर उनकी जुबान में बात करती है।
3: गुजरात थी, क्या थी, आए थे, कौन कौन थे,
4: ये ऊपर वाला है। यहाँ पे माँ, तीन बेटियाँ, नाना नानी, दो मासियाँ, एक मामा, ऐसा साल बिता दिया।
1: फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ।
2: जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी जैसी एक ताकतवर मजबूत स्पोक्स पर्सन की जरूरत है, जो खास तौर से गांधी परिवार पर सीधा हमला कर सके।
1: तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नियत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफी होते हैं। 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद हूं। मैंने वो किया जो शायद मेरी पार्टी में कोई ना कर पाया, जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को हराया। चार में मैं चांदनी चौक का चुनाव हारी थी, तब लोगों को लगा था खत्म। मैंने कहा आज जिन लोगों को ये खुशफहमी हो रही है, क्या पता 20 साल बाद वो फिर आए लौट कर सलाम करने के लिए।
0: स्मृति ईरानी की सियासत में वापसी तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी ने उन्हें संगठन में इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी क्यों दी है। क्या पार्टी एक बार फिर स्मृति ईरानी के राजनीतिक अनुभव, उनकी आक्रामक शैली और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता पर भरोसा जता रही है, या फिर संगठन में उनकी नई भूमिका पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है।
1: राज्यसभा के माध्यम से एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिनके बारे में असम की जनता कहती थी कि ना वो आते हैं ना उनके माध्यम से असम का कल्याण होता है।

0: गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए।
1: भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल का हारना ये तो मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेड आउटकम था।
2: हम भी अमेठी वाले, हम भी जानते हैं कांग्रेस ने आज तक नहीं बांटी।
1: वो विक्टिम पॉलिटिक्स करेंगे और जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और जनता को समझ नहीं आएगा, तो मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी।
3: अगर आज जनता आक्रोशित है तो तृणमूल कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है।
4: सियासत की दुनिया की धाकड़ खिलाड़ी, नेता के तौर पर जुझारू, वक्ता के तौर पर बेबाक और तेवर ऐसे कि विरोधियों को जवाब देने पर मजबूर कर दे। स्मृति ईरानी, सवाल उठे, विरोध हुआ, आलोचनाएं हुई, लेकिन स्मृति ईरानी ने हर बार अपनी आवाज बुलंद रखी। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मुकाबला हो या संसद में विपक्ष के सवालों का सामना, वो बीजेपी की तरफ से लगातार मुखर नजर आईं।
5: साइबर पोर्नोग्राफी से हमने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, मोदी सरकार ने इस बिल को दोनों सदनों में पारित किया, तब राहुल जी नहीं बोले थे बच्चों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में। तो एक है हेडलाइन चीजें, एक है फोटो अच्छी आनी चाहिए कि मुझे उठाया पुलिस ने, मैं नरेंद्र मोदी के घर के बाहर था, लेकिन क्या हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं?
4: अमेठी की जीत ने यह दिखाया कि सियासत में बड़े नाम के सामने जमीन पर की गई मेहनत भी असर छोड़ती है।
5: ये तो कब से कह रहे हैं, ये तो कहते थे कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये तो डेज की ही कल्पना नहीं कर रहे थे। और मोदी इज डेज आर ओवर, ये बात तो कांग्रेस पार्टी पिछले 12-13 साल से बोल रही है और नरेंद्र मोदी ने अर्चना जी बार बार कहा है। मोदी से बैर है लेकिन दुश्मनी देश से मत निकल, मोदी से बैर है तो अपमान वंदे मातरम का मत करो, मोदी से बैर है तो पैरामिलिट्री सर्विसेज का अपमान मत करो, मोदी से बैर है तो दिल्ली पुलिस पर आक्रमण हो इसका समर्थन मत करो, मोदी से बैर है तो जाकर एक यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा मत दो।
4: सरकार के फैसले का बचाव करना हो, विपक्ष पर पलटवार करना हो या किसी मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष जनता के सामने रखना हो, स्मृति ईरानी हर बार आगे खड़ी दिखाई देती है।
1: पाँच साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूंगी।
4: नक्सलवाद पर सवाल हो, जंतर मंतर पर पुलिस के साथ टकराव का मुद्दा हो या विपक्ष का कोई बड़ा हमला, पार्टी की लाइन को सामने रखने में उनका अंदाज हमेशा बेबाक रहा है।
6: खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने कभी अपने लिए राजनीति में कम से कम जगह तलाशने की कोशिश नहीं की। मैंने अपना काम किया और मेरे काम के चलते मुझे सराहना मिली और मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया। मैंने कभी जाकर अपने बड़ों से नहीं कहा कि अरे मेरे लिए कोई नया स्थान ढूंढो या मेरे लिए कुछ और जगह बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आज आप पर्सनल एम्बिशन से ना आए और केवल इस भाव से आए कि मुझे जो काम दिया गया है वो मैं करना चाहती हूँ, अगर वो काम मैंने जो मेरा जो दृष्टिकोण है राजनीति की और उससे मेल खाता है तो मुझे वो करना है। आई थिंक आज कम से कम मेरी पार्टी में हमें अपने काम के बलबूते पर आकर हमें अपनी जगह दी जाती है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद चेहरों में शुमार स्मृति ईरानी ने संगठन से लेकर सरकार तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली, कभी संसद में, कभी चुनावी मैदान में तो कभी सड़कों पर। बीजेपी के लिए उनकी मौजूदगी लगातार दिखाई दी।
5: तो इन्हीं के सरकार के संरक्षण में यहाँ दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया, तो अगर ये कहते हैं दिमागी नक्सल है तो मैं उसको काउंटर नहीं करूंगी। इन्होंने तो जश्न मनाया ना जो पैरामिलिट्री, आपको याद होगा, आप तो तब थी पत्रकार, तो अगर ये स्वीकार करते हैं कि ये है तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो किसी विशेष का नाम नहीं लिया, कहा जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जो देश की प्रगति की गति को रोकना चाहते हैं, जो संविधान का हनन करते हैं,

0: देश की सेना का अपमान करते हैं, यही है ना परिभाषा। अगर इस परिभाषा में चिदंबरम साहब अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं, तो इस स्वतंत्र राष्ट्र में क्या मैं चिदंबरम साहब को रोक सकती हूँ? अगर यही तमगा अरविंद केजरीवाल जी स्वेच्छा से शान से पहनना चाहते हैं, तो मैं क्या रोक सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो इन दोनों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा देश विरोधी ताकतें। तो आपको अजीब नहीं लगता कि ये दोनों नेता अपने आप को देश विरोधी ताकत मानते हुए डिक्लेयर करते हैं अपने आप को?
1: संघर्ष से पहचान बनी, बेबाकी से आवाज मिली और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ने सियासत में अलग मुकाम दिया। स्मृति ईरानी की कहानी उस नेता की कहानी है जो सवालों से बचने के बजाय उनका सामना करना पसंद करती हैं। आज कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मृति ईरानी की वापसी संगठन में क्यों हुई है, क्या बंगाल चुनाव में मेहनत का इनाम मिला है, या फिर यूपी चुनाव में स्मृति ईरानी की भूमिका बड़ी होने वाली है, या फिर पंजाब चुनाव के लिए स्मृति ईरानी को चुना गया है। स्मृति ईरानी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। 8 राष्ट्रीय महासचिवों की इस टीम में स्मृति ईरानी इकलौती महिला है, यानी संदेश साफ है। अमेठी की हार के बाद भी बीजेपी के लिए स्मृति ईरानी की राजनीतिक उपयोगिता खत्म नहीं हुई थी। स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जिसमें एक टीवी कलाकार घर घर पहचानी जाने वाली तुलसी वीरानी बनी और फिर वही चेहरा बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में शामिल हो गया।
2: राजनीति में मैं आक्रामक क्यों हूँ? तो जब जब असत्य से सामना होता है तो जिनके पास सत्य का प्रमाण होता है उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है।
1: कभी राहुल गांधी को अमेठी में हराकर जॉइंट किलर बनी तो कभी खुद अमेठी में हारकर सत्ता से बाहर हो गई। कभी मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्रियों में शुमार हुई तो कभी मंत्री पद जाने के बाद फिर टीवी के पर्दे पर लौट आई। और करीब 26 महीने बाद स्मृति ईरानी की एक और वापसी हुई है। इस बार वापसी संसद या सरकार में नहीं बीजेपी के संगठन में हुई है।
3: पिछले कुछ दिनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही, औपचारिक तौर पर नहीं था लेकिन अनौपचारिक तौर पर वो लगातार महिलाओं के लिए और पार्टी के जो और काम है उनको करती रही। अब जब 2029 के चुनाव और उससे पहले 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी जैसी एक ताकतवर मजबूत स्पोक्स पर्सन की जरूरत है जो खास तौर से गांधी परिवार पर सीधा हमला कर सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जरूरत के तौर पर देखता हूँ मैं स्मृति ईरानी की वापसी।
2: स्पष्ट थी पहले दिन से कि मुझे स्पष्ट रूप से जमीन से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत करनी है। मैं बहुत ही क्लियर थी अपनी मंशा में कि मैं तुलसी वीरानी का पात्र करती हूँ, इसलिए मुझे आसान सी कोई डगर मिल जाएगी। मैं चाहती थी जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी था।
1: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, यानी जिस नेता को अमेठी की हार के बाद राजनीतिक हाशिए पर जाने की अटकलों से जोड़ा जा रहा था वही अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में अहम भूमिका निभाएंगी।
3: खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ही ये एक बड़ा फेरबदल है। हालांकि ये नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब की नई टीम है और उसमें सबसे पावरफुल महामंत्री के तौर पे स्मृति को देखा जा सकता है और उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के झटके से निकलना भी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार का जो पूरा रायबरेली अमेठी का हिस्सा भी है और महिलाओं का वोटर के लिए भी वो काम में आ सकती हैं, तो दोनों तरह की जिम्मेदारियां या दोनों तरह की जरूरतों को ध्यान में रखकर शायद ये फैसला पार्टी ने किया होगा।
4: अमेठी वाला जब रिजल्ट आया उस दिन कुछ आंसू, कुछ
2: बिल्कुल
4: इमोशनल नहीं?
2: मैंने उस दिन मेरे घर में प्रभु की कृपा से, एक छोटा मंदिर है माँ भगवती की, वहां पर मूर्ति है, मैं अकेली ही व्यक्ति थी जो उस प्रांगण में मुस्कुरा के माँ को देखकर कह रही थी, जो हुआ तूने अच्छा किया। और आसपास के लोगों को लगा कि मुझे सदमा पहुंचा है, क्योंकि वो रो रहे थे।
1: स्मृति ईरानी की कहानी में हार और वापसी दोनों साथ साथ चलती रही। अमेठी की हार के बाद ये जरूर लगा था कि उनकी सक्रिय राजनीति का दायरा सीमित हो गया है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब भी उनकी राजनीतिक क्षमता और जनसंपर्क की ताकत पर भरोसा करती है।

यानी स्मृति ईरानी की सियासी पारी खत्म नहीं हुई बल्कि एक नए रोल के साथ फिर शुरू हुई है। अब नजर इस बात पर होगी कि संगठन की इस नई जिम्मेदारी में स्मृति ईरानी कितना असर छोड़ती हैं और क्या बीजेपी का ये दाव आने वाले चुनावों में गेम चेंजर साबित होता है।

0: टीवी के जरिए घर घर में लोकप्रिय तुलसी से लेकर बीजेपी की जायंट किलर नेता तक स्मृति ईरानी का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद मोदी कैबिनेट में जगह मिली। 2019 में उसी अमेठी में राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचा, लेकिन 2024 में फिर हार का सामना करना पड़ा। तो अब सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी की नई जिम्मेदारी सिर्फ संगठन तक सीमित है या बीजेपी उन्हें 2029 के लिए बड़ी भूमिका में तैयार कर रही है।
1: मेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक यह है कि जिस चीज में मैं बिलीफ रखती हूँ उसके लिए आवाज ना होगा।
2: जी, न सिर्फ अमेठी की जनता को बल्कि देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
3: इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में उत्तीर्ण होना है तो आप गुजरात आए।
4: रेली में तो रेलवे का रैक उतरता है खाद का, लेकिन अमेठी के हिस्से में पूरा खाद नहीं आता।
5: मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
6: मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा।
7: 26 मई 2014 रायसीना हिल्स में जैसे जैसे शाम उतर रही थी, स्मृति जुबिन ईरानी की जिंदगी में एक नया सूरज उग रहा था। राजनीति की गलियों में करीब 11 साल का सफर और अब मंजिल थी देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट। जिस चेहरे को देश ने कभी टीवी स्क्रीन पर तुलसी के किरदार में देखा था, वही स्मृति ईरानी अब देश के लिए नीतियां बनाने वाली टीम का हिस्सा थी। यकीनन उस पल स्मृति ईरानी को अपने संघर्ष का हर वो लम्हा याद आया होगा जब शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो देश की कैबिनेट मंत्री बनेंगी।
8: एक परिवार संभाला, घर घर का हाउसहोल्ड नेम बनी, वहां से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से वापस टीवी को फिर से टीवी पर जाना, तीन ऐसी बड़ी बातें जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करती हूँ।
9: मुझे लगता है कि तीन शब्द अगर मेरे जीवन को डिफाइन करते हो तो एक है संघर्ष, दूसरा है समर्पण और तीसरा है संवाद। संघर्ष जिसका एक शायद आपने छोटा सा अंश देखा, संवाद जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे कितना भी कर्कश हो सत्य, संवाद कभी छूटना नहीं चाहिए। और जहाँ तक समर्पण की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ। जब तक भगवान के प्रति समर्पण की भावना ना हो तब तक तपिश सहने की क्षमता इंसान में होती नहीं है। तो संघर्ष, समर्पण और संवाद, ये तीन।
7: कैबिनेट मंत्री बनने की कहानी आसान नहीं थी। कभी कैमरे के सामने एक्टिंग, कभी चुनावी मैदान, कभी हार और कभी पार्टी संगठन में लगातार खुद को साबित करने की चुनौती। स्मृति ईरानी ने ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया से आगे बढ़कर राजनीति की रपटीली राह पर चलने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद संगठन में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती गई।
10: युद्ध में तो कर गए, विजय हो इसका आशीर्वाद दीजिए।
11: घर में ये था कि भाई आपको सामाजिक सेवा करनी है तो आप संघ में सेवा दीजिए, राजनीति में जाने की क्या जरूरत है। तो मेरा ये विचार था कि मुझे पॉलिसी निर्धारण करने में भूमिका निभानी है, तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी।
7: स्मृति ईरानी को महाराष्ट्र बीजेपी यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसी साल पार्टी ने उन्हें सीधे चुनावी मैदान में भी उतार दिया। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट और सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल। मुकाबला आसान नहीं था। स्मृति ईरानी ने पूरी ताकत लगाई लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन यह हार स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर की मंजिल नहीं बनी बल्कि एक नई शुरुआत बन गई। क्योंकि पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद उनकी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता को नजरअंदाज नहीं किया। उन्हें बीजेपी की केंद्रीय समिति में जगह मिली और संगठन में उनकी भूमिका आगे बढ़ती गई।
11: मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कठिन परिश्रम से मैं गुजरी, एक कठिन दौर से गुजरी उस वक्त, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समझौते जो जिनकी अपेक्षा की जाती है एक पॉलिटिशियन से, वो मैंने समझौते नहीं किए। हार गई, लेकिन हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। जब बॉम्बे पहली बार आई थी तब भी मेरे हाथ में क्या था।
7: ये वो दौर था जब बीजेपी खुद एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूर हो रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी के दौर के बाद पार्टी में नई पीढ़ी के नेताओं का उभार शुरू हो चुका था और स्मृति ईरानी इसी नई पीढ़ी के तेज तर्रार चेहरों में अपनी जगह बनाती जा रही थी।
11: कहीं ना कहीं मेरे संस्कार मिलते थे
12: क्या?
11: कहीं ना कहीं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम, उनकी हिस्ट्री ने प्रभावित किया। मेरे साथ आज तक बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता काम कर चुके हैं, वो भी खासकर मेरे गाँव में, मैंने उनमें एक कहीं ना कहीं निष्ठा देखी है, लालच नहीं देखा कुछ पाने का।
7: युवा चेहरा, तेज तर्रार अंदाज, बेबाक भाषण और टीवी के जरिए लोगों के बीच पहले से बनी पहचान, स्मृति ईरानी की राजनीतिक पूंजी लगातार बढ़ रही थी। साल 2010, बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी और उसी साल उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव, 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद। साल 2011 में स्मृति ईरानी राज्यसभा पहुंची।
13: ऐसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है ये कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउस वाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं।
7: अब वो सिर्फ बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता नहीं थी, बल्कि संसद के भीतर भी अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक मुद्दों पर उनका आक्रामक अंदाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा था।
14: शिक्षा के जितने भी आयाम, जितनी भी संस्थाने, जितने भी कदम भारत सरकार उठाएगी, ये मेरा दायित्व है कि वो सारे कदम संविधान की मर्यादा में ही उठाए जाए। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। 17 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या 20 लाख विवाह रोके गए हैं, ऐसे रिसर्च हमको बतलाती है।
15: बोलो भारत माता की।
7: फिर आया साल 2014। बीजेपी की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक थी अमेठी। कांग्रेस का मजबूत किला और सामने थे राहुल गांधी, और बीजेपी ने इस मुकाबले के लिए स्मृति ईरानी को चुना था। स्मृति ईरानी ने अमेठी को सिर्फ चुनावी सीट नहीं माना, उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक चुनौती बना लिया। दिन रात प्रचार, गांव-गांव संपर्क, लोगों के बीच पहुंच और राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान।
16: लोगों को ये कहीं ना कहीं शक था, संदेह था कि ये गांधी परिवार का गढ़ है। जब प्रत्याशी के रूप में मेरी घोषणा हुई, तब कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आपने राहुल को ललकारा है। मैंने कहा नहीं भैया, अमेठी की जनता ने हमें पुकारा है।
7: अमेठी का मुकाबला पूरे देश की नजरों में था। नरेंद्र मोदी खुद अमेठी पहुंचे और स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया।
17: हम बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं।
12: और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा।
7: स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, लेकिन इस हार में भी एक जीत छिपी थी। उन्होंने राहुल गांधी की जीत का अंतर काफी कम कर दिया था। 2009 में करीब 370,000 वोटों का अंतर था, जो 2014 में घटकर करीब 108,000 रह गया। और शायद बीजेपी ने इसी प्रदर्शन में आगे की कहानी पढ़ ली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार में स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली।
6: मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
7: यानी जिस महिला ने 2004 में कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव हारकर शुरुआत की थी, जिसने 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा और हार का सामना किया, वही स्मृति ईरानी अब भारत सरकार की कैबिनेट में बैठ रही थी।
11: सुबह फोन आया कि आपको शपथ लेनी है।
8: 2014 26 जून आपको सुबह में कॉल आया?
11: हाँ, मेरे को उससे पहले एक दिन पहले भी नहीं थी, नहीं। और तब मुझे कहा गया, तो मैं परिवार के साथ थी, हमने कहा चलो गाड़ी निकालो, ड्राइव डाउन करो फटाफट। मैं ये सोची थी एक ही व्यक्ति है जो टाइम पे नहीं पहुँचे, और क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी इसलिए कपड़े वपड़े बाकी लोग तो तैयारी करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो अगर आप देखें मैंने एक साड़ी पहन रखी है जिसमें कमल का फूल है, वो किसी कार्यकर्ता की धर्मपत्नी ने दी थी प्रचार के लिए। और जब ड्राइव डाउन कर रही थी शिमला से, तो पीयूष को मैंने फोन किया था, पीयूष गोयल को, मैं पीयूष भाई देखो ना एक बेटी को साथ आना है और हमारे पास पास नहीं है, तो आप मुझे एक पास देंगे क्या कि मेरा परिवार आके देख सके? तो मैंने कहा अरे तुम कैबिनेट मिनिस्टर बनना, तब पता चला मुझे
8: कि क्या
11: चीज़ होती है। मुझे तब भी नहीं पता था कि मुझे कैबिनेट में ला रहे हैं। तो पीयूष भाई ने नहीं बोला होता तो वहाँ राष्ट्रपति भवन पहुँच के सीट देख के पता चलता।
7: टीवी की दुनिया की तुलसी अब सत्ता के गलियारों की स्मृति ईरानी बन चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अगले 5 साल में स्मृति ईरानी को सिर्फ मंत्रालय नहीं संभालना था, उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान भी लगातार मजबूत करनी थी।
0: वक्त इशू से ब्रेक का उछला है, ब्रेक के बाद देखिए आखिर स्मृति ईरानी ने दिल्ली से मुंबई कैसे सफर तय किया।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
3: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता है।

0: Many times people ask me, what is India's biggest strength? And you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy. Somebody will say our military. Somebody will say our medical system. Somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
1: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं पी की परिभाषा पहले पिछड़े से फिर पी की परिभाषा पंडित से और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे ये वही लोग हैं हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं कितना द्वेष रखते हैं उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया बहन और भाइयों इससे बड़ा अपमान ये जाति अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए हिंदू गौरव के लिए समर्पित था उस हर हिंदू का अपमान था ये

0: स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ चुनावी नतीजों की कहानी नहीं है, बल्कि लगातार खुद को साबित करने की भी कहानी है। कभी सत्ता के केंद्र में रही, फिर चुनावी झटके ने उनकी राह जरूर बदली, लेकिन सक्रियता बनी रही। अलग अलग राज्यों में पार्टी के लिए मैदान संभालने से लेकर नए सियासी समीकरणों में अपनी जगह बनाने तक उन्होंने लगातार काम किया।
1: स्मृति ईरानी की सियासत की एक बड़ी ताकत है संवाद की कला। वो सिर्फ भाषण नहीं देती, जनता की भाषा में जनता से जुड़ना जानती है। हिंदी पर मजबूत पकड़,
2: ये जय श्री राम का नारा है, जय घोष है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है ममता जी।
1: अंग्रेजी में बेहतरीन संवाद,
2: इक्वल राइट्स टू मेन एंड वुमेन टू एंटर इनटू मैट्रिमोनी।
1: संस्कृत का भी सदा व ज्ञान,
3: एतो तताच एतादृशः ज्ञान वृद्धाः विद्वांसः भारतस्य ज्ञान निध्ययः सन्ति।
1: और जरूरत के मुताबिक बांग्ला और पंजाबी में भी लोगों से सीधे करें।
2: ए बाइडेन लोग के, तुम्हें बांग्ला बोलते पड़ो, आमी वो बोलते पड़ी, हमारो दादू पड़ी एक है।
4: मेरी बंगाली सुन ली है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं मल्होत्रा हूँ देती यहाँ, तो चिंता ना करो।
1: यानी स्मृति ईरानी सिर्फ मुद्दों से नहीं, भाषा और संवाद के जरिए भी सियासत साधने का हुनर रखती हैं। स्मृति ईरानी का सियासी सफर एक ऐसा राजनीतिक सफर है जिसमें सत्ता का शिखर भी आया, विवादों का दौर भी आया, चुनावी जीत का जश्न भी आया और हार की कसक भी।
4: मेरे नाना बंगाली हैं, मेरी नानी जब भारत का विभाजन हुआ तब वो असम में आके धुबड़ी में बसी। मेरे दादाजी जो जब भारत का विभाजन हुआ तो वो आकर दिल्ली में बसे, फिर गए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में रहे। मेरी दादी महाराष्ट्र से हैं, मेरे पति गुजराती हैं, पारसी हैं, तो
5: कोई कोना छोड़ा नहीं है इन्होंने भारत का।
4: अभी तक तो कोई कोना छूटा नहीं है, क्योंकि एक बहू हमारे खानदान में दक्षिण भारत की भी है।
1: 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी और स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। टीवी की दुनिया से राजनीति में आई स्मृति ईरानी देश की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन मंत्री पद के साथ ही विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। सबसे पहला बड़ा विवाद उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर हुआ। उनके 2004 और 2014 के चुनावी हलफनामों में शैक्षणिक योग्यता को लेकर अलग अलग जानकारी का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। स्मृति ईरानी ने इन आरोपों का जवाब दिया, लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आया जर्मन बनाम संस्कृत का विवाद। केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के तौर पर जर्मन की जगह संस्कृत को बढ़ावा देने के फैसले को लेकर स्मृति ईरानी विपक्ष के निशाने पर आ गई।
6: मैं बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग को उपलब्ध कराया है। साथ ही जो भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट पढ़ना चाहें, जो भी, मैं इसमें संस्कृत का मात्र उल्लेख नहीं कर रही हूँ, जो भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। उनके लिए अगर मान लीजिए एक छात्र को तमिल पढ़ना है तो उस एक छात्र के लिए एक टीचर उपलब्ध कराया जाएगा। जर्मन एक फॉरेन लैंग्वेज है जो फॉरेन लैंग्वेज के भांति पढ़ाई जा रही है, और मुझे लगता है कि जानबूझकर कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट की जा रही है क्योंकि मैंने प्रेस ब्रीफिंग में लगभग 4 दिन पहले लिखित रूप में सारे बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया था।
1: इसके बाद रोहित वेमुला का मामला सामने आया। वेमुला की आत्महत्या ने देश की राजनीति को हिला दिया। विपक्ष ने स्मृति ईरानी के मंत्रालय पर सवाल उठाए और फिर सामने आया जेएनयू का विवाद। जेएनयू में लगे कथित देश विरोधी नारों के मुद्दे पर स्मृति ईरानी विपक्ष के सीधे निशाने पर थीं, लेकिन स्मृति ईरानी का अंदाज भी बदला नहीं। वो लगातार जवाब देती रही, पलटवार करती रही और अपनी राजनीतिक पहचान को और मजबूत करती गई।
4: आपने जब तय कर लिया जिंदगी में तो हर चीज की कीमत होती है। इसकी कीमत ये कि आप पर हर दिन तोहमत लगाई जाएगी, इसकी कीमत ये कि आपको हर दिन लांछित किया जाएगा। लेकिन अगर आप अडिग हैं कि मुझे अपने देश में इतिहास बदलना है, अपने देश में कुछ लोगों का स्वभाव बदलना है, अपने देश में कुछ ऐसे मोड़ हैं जहां पर आकर कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
1: स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर में विवाद आते रहे। हर विवाद के बाद उनकी राजनीतिक मौजूदगी और ज्यादा दिखाई देने लगी। देश का कोई कोना है जहां चुनाव वहां स्मृति ईरानी, क्योंकि स्मृति ईरानी कई भाषाओं में जनता को जोड़ने की कला जानती है।
4: ये संकेत है वाहेगुरु का कि इस बार मैं पंजाबी च चुनाव च गल करांगी, तुसी चिंता नहीं करो।
1: विवाद बढ़ा तो 2016 में उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन विवाद साथ साथ चलते रहे। यानी 2014 से 2019 तक मंत्रालय बदले, विवाद बदले, लेकिन स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। और फिर आया साल 2019, अमेठी। वही अमेठी जहां 2014 में वो राहुल गांधी से हार गई थी, लेकिन हार के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी को छोड़ा नहीं। पांच साल तक लगातार अमेठी में सक्रिय रहीं, गांव-गांव गई, प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क किया।
7: पूरा परिवार एकजुट होकर बैठता है तो निर्णय लेता है कि दीदी गांव-गांव जाएंगे।
1: महिलाओं के बीच पहुंची और एक एक वोट को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश की। चुनाव के वक्त एक दिन में छोटी बड़ी 15-15 जनसभाएं तक की। 2014 में जहां स्मृति ईरानी को करीब 3 लाख वोट मिले थे, वहीं 2019 में उनका वोट बढ़कर करीब 4,69,000 पहुंच गया। और सबसे बड़ा उलटफेर ये हुआ कि राहुल गांधी की हार हो गई। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया।
4: तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नियत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफी होते हैं। तो इसीलिए जब मैं 19 में वहां से सांसद बनी, 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के घर बनवाए, 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री की योजना से जुड़वाया, पहला अमेठी का 200 बेड का अस्पताल बनवाया, अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज बनवाया, अमेठी की पहली पुलिस लाइन बनवाई।
1: जिस अमेठी को गांधी परिवार का अभेद्य किला माना जाता था, उसी अमेठी में स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया और इसी जीत ने उन्हें बीजेपी का जॉइंट किलर बना दिया। 2019 के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली।
8: तक बच्चों और महिलाओं की बात है, अगर आप बजट की डिटेल्स पढ़ें, अक्रॉस मिनिस्ट्री महिलाओं पे और बच्चों पे जो वेलफेयर स्पेंड है सरकार का, वो आपको बढ़ता दिखेगा।
7: नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना।
1: लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव का वक्त आया तो इस बार अमेठी का मुकाबला आसान लग रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी की जमीन छोड़ दी थी। इस बार मुकाबला राहुल गांधी से नहीं था, कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतारा और नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी हार गई।
4: वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वभाव का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने ये चिंता की कि तुमने इतना काम किया और हार गई। लोग अगर ये लांछन लगाते कि भाई तूने कुछ नहीं किया इसलिए हरा दिया, तो मुझे ज्यादा दुख होता। तो आज मैं उस दुख के दायरे में नहीं हूँ। आज मुझे सुख की अनुभूति है कि आज 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद
7: थी।
1: अमेठी में करीब 1,67,000 वोटों से हार के साथ स्मृति ईरानी की सत्ता से विदाई भी हो गई, मंत्री पद भी गया और सरकार से दूरी बन गई। और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक सितारा अब ढलने लगा है? लेकिन स्मृति ईरानी ने राजनीति नहीं छोड़ी। पहले बिहार चुनाव में नजर आई और फिर बंगाल चुनाव में। बंगाल में रैलियां, महिलाओं से संवाद और सबसे खास बांग्ला भाषा में लोगों से सीधा कनेक्ट।
9: के बोले छे মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত করবে কে বাইরের লোক কে বাড়ির কে বলেছে
2: एफआईआर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं आप लोगों।
9: सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों घुसपैठियों का समर्थन करती हैं? सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों हिंदुस्तान का जो लीगल वोटर है उसका संरक्षण नहीं चाहती?
1: महिला सुरक्षा से लेकर आरजीकर कांड और ममता बनर्जी सरकार पर हमले तक स्मृति ईरानी ने बंगाल में बीजेपी के लिए आक्रामक प्रचार किया।
9: मैं कभी नहीं भूलूंगी कि एक जुडिशियल ऑफिसर एक महिला फोन कर हाईकोर्ट से अपील कर रही है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना अगर मुझे कुछ हो गया। ये हालात है पश्चिम बंगाल में, और अगर आज जनता आक्रोशित है तो तृणमूल कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है।
1: यानी 2024 की हार के बाद जो नेता राजनीतिक नेपथ्य में जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो 2026 में फिर चुनावी मैदान में नजर आई, और अब एक और वापसी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। 8 राष्ट्रीय महासचिवों में वो इकलौती महिला है। बीजेपी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया कि स्मृति ईरानी की राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
0: स्मृति ईरानी की कहानी में कई ट्विस्ट हैं। उनके बयान और फैसले चर्चाओं में रहते हैं, पर उनकी कहानी एक ऐसे आम हिंदुस्तानी लड़की की कहानी है जिसने सपनों से समझौता नहीं किया, उनके लिए संघर्ष किया।
1: तुलसी, ये वो नाम है जिसने स्मृति ईरानी को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये वो किरदार था जो लोगों की जुबान पर था, जिसका जादू सिर चढ़कर बोलता था।

0: लेकिन यह शोहरत आसान ना थी। ऐसी कामयाबी हासिल करने से पहले स्मृति रानी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। अपने माँ बाप की ख्वाहिश के खिलाफ वो मुंबई तो आ गई थी, लेकिन उनके पास ना काम था और ना ही पैसे।
1: जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है हंसी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
0: दिल्ली की गलियों में 50 साल पहले एक नन्ही सी लड़की पंख लगाकर दौड़ी थी। द्वारका का इलाका तब दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से दूर ही था। पंजाबी पिता और बंगाली माँ की बिटिया स्मृति मल्होत्रा। स्मृति दिल्ली के इस होली चाइल्ड ऑक्सिलियम में पढ़ा करती थी। खेल में अच्छी थी और वो स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन भी थी। इस स्कूल में उन्होंने 12वीं तक शिक्षा हासिल की।
2: वहाँ पे कुछ स्वयंसेवकों द्वारा एक छोटा सा स्कूल था,
3: हाँ।
2: टेंट वाला, वहाँ पढ़ती थी।
3: अच्छा।
2: सामने एक कॉन्वेंट स्कूल होता था, पक्की दीवार वाला।
3: हाँ।
2: और मेरी बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पढ़ूं
3: कॉन्वेंट स्कूल,
2: लेकिन
3: में, हाँ।
2: माँ ने कहा कि पैसे नहीं थे। तो माताजी जो है ताज मानसिंह, जो दिल्ली में है, वहाँ हाउसकीपर का काम करती थी। तो ताज में एक टाटा ग्रुप ने सुविधा दी थी कि जो बच्चे हैं, जिन लोगों की नौकरियां हैं टाटा ग्रुप में और विशेषता ताज में, उनके बच्चों की स्कूली फीस अगर बच्चे 60% से फर्स्ट डिविजन लाते थे तो दी जाती थी। मैंने अम्मा से कहा कि भाई अगर मैं फर्स्ट डिविजन लाऊं तो फिर आपको नहीं मिलेगी मेरी फीस। तो उन्होंने कहा लेकिन वहाँ जाके आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो मैं हर दिन जाके स्कूल के बाहर खड़ी रहती थी। तो नंस परेशान हो गई थी, एक दिन कहा कि भाई क्या है, हर दिन तुम यहाँ आ जाती हो। मैंने कहा आपके स्कूल में दाखिला कैसे होगा। तो उन्होंने कहा भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लगता है नंस भी मुझे करीबन एक डेढ़ महीना वहाँ देख देख के परेशान थी। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुई और फिर छठी कक्षा में वहाँ गई।
0: स्मृति ने परिवार का हाथ पटाने के लिए पढ़ाई छोड़ी। खबरें तो यहाँ तक हैं कि 10वीं के बाद एक ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रमोशन के जरिए वो रोजाना 200 रुपए कमाया करती थी। लेकिन स्मृति कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ज्यादा हासिल करना चाहती थी। साधन की कमी थी पर वो चुनौती स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाई और मुंबई चली आई।
4: मेरे पास पैसों की कमी थी तो नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं भी, और पिताजी से लिया हुआ पैसा, वो कर्ज चुकाना था उन्हें और अपने लिए एक फ्यूचर बनाना था। और स्ट्रगल के उस दौरान मैंने सोचा कि अब घर बैठे माता पिता से पैसे लेने के बजाय खुद जाकर बाहर कोई नौकरी ढूंढे। एक ही जगह मुझे नौकरी मिली, वो थी मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पर मुझे आज भी याद है कि जब मैं गई तो मुझे लगा कि शायद कोई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी। तो उन्होंने मुझे देख कर सिर्फ हाथ में एक झाड़ू थमाया, एक मॉप थमाया और कहा कि यहाँ से शुरुआत होगी।
0: 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन आगे का रास्ता उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगा। उन्नीस सौ अट्ठानवे में गायक मीका के साथ एक म्यूजिक एल्बम बोलियां में भी नजर आई। 2000 में स्मृति को टीवी सीरियल आतिश और हम हैं कल आज और हम में एक्टिंग करने का एक मौका मिला। 2002 में उलाला नाम के एक शो की एंकरिंग का मौका मिला, जहां एकता कपूर से मुलाकात हुई। और उसके बाद एकता कपूर ने स्मृति को क्योंकि सास भी कभी बहु थी में लीड रोल दिया।
2: मुझे रिसेप्शन पे देखा, एकता के साथ वो ऑफिस में बैठे थे। तो उन्होंने कहा ये लड़की जो भी, इसको रोको, इसको चेहरा पढ़ते हैं शायद। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। और तब मैं मतलब बेडंगा से जीन्स फटाफट टी शर्ट झोला लेके कॉन्ट्रैक्ट नौकरी मांगने के लिए आई थी
3: रिसेप्शन पे।
2: हाँ,
3: क्योंकि सास बहु के लिए वो नहीं दे रही थी।
2: मैं किसी और कार्यक्रम घर एक मंदिर करके चलता था सोनी टीवी पे, उसमें कोई थर्ड रंग का वो चाहिए था एक्टर, भीड़ भाड़ में खड़ा होने वाला, मैं वो थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आई थी, जब एकता बाहर आई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैंने कहा हे राम, अभी तो नौकरी मिली थी। ने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप ये किरदार करेंगे, आपको पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ।
0: स्मृति ईरानी ने तुलसी के किरदार के साथ पूरा इंसाफ करते हुए घर घर में अपनी पहचान बना ली थी। तुलसी के रोल के लिए स्मृति ईरानी को लगातार 5 साल तक बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर का इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिला, चार बार इंडियन टेली अवार्ड और 8 बार स्टार परिवार अवार्ड से नवाजा गया।
5: उन्होंने मुझे फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा अगले दिन आ जाना अपना टेस्ट देना। अगले दिन गई तो चौकीदार अंदर घुसने ना दे बिल्डिंग के। तो मैंने कहा भाई साहब मैं एक्टर हूँ, उन्होंने कहा लगता तो है नहीं। फिर जब मैंने कुछ उनसे मिन्नत करके अंदर गई तो एकता कपूर की जो ऑफिस की क्रिएटिव हेड थी उन्होंने मेरा टेस्ट लेने से इनकार कर दिया, कहा आपकी शक्ल वैसी दिखती नहीं है। तो थोड़ा बहुत मिन्नतें हाथ पैर जोड़ते जोड़ते जोड़ते एक्टिंग की एक ऑडिशन दिया जिसमें फेल हो गई। फिर भी एकता अडिग रही कि नहीं तुलसी तो यही है।
0: संघर्ष की ये वो कहानी है जिसमें स्मृति ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई और टीवी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड, एक नई मिसाल पेश की। लेकिन ये उनके करियर का अंजाम नहीं था, जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। टीवी की चमचमाती जिंदगी से निकलकर सियासत के मैदान में पहुंच गईं।
6: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते,
3: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
4: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं, तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्ब भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है, और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया, और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ, आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद
3: किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है।
4: जाट समाज को लेकर
3: नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोकदल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

यूपी की लड़ाई राष्ट्र गीत गान पर आई। बीजेपी ने वंदे मातरम दिमाग नक्सली वाले पोस्टर से विपक्ष को घेरा तो कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर सतीश महाना पर जनगण मन बीच में छोड़ने के आरोप लगाए। आरक्षण हटाने की मांग पर सुलगी सियासत। सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च। अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार। कहा महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार, घेर कर लाठी डंडों से पीटा, नाबालिग को पकड़ा, मास्टरमाइंड फरार। बांग्लादेश के रंगपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत। रिटायर्ड टीचर, पत्नी, बेटी और 12 साल के बेटे के शव मिले, गला घोटकर हत्या का शक।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बज गए हैं, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के बहावलपुर में फिर से आतंकवादी कैंप सक्रिय हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर का जैश आतंकवादी कैंप भारतीय सेना ने तबाह कर डाला था, नेस्तनाबूद कर दिया था। और तस्वीरें अब सामने आई है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से उस आतंकवादी कैंप को सक्रिय कर दिया है, वहां फिर से कैंप नजर आया है। तो ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें आपको याद होंगी, बहावलपुर का वही जैश आतंकवादी कैंप जिसे पूरी तरह से भारतीय सेना की तरफ से तबाह कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। अब उसी कैंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की मंशा पर जो सवाल खड़े करती हैं कि कैसे एक बार फिर से आतंकी कैंप

0: पाकिस्तान के बारे में जो भारत लगातार कहता रहा है इंटरनेशनल मंच पर, वो फिर से साबित कर दिखाया है। जिस कैंप के बर्बाद होने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसी कैंप की जगह अब नई तस्वीरें, बनाया हुआ पूरा का पूरा कैंप एक बार फिर से नजर आ रहा है।
1: देखिए, ये बहावलपुर की तस्वीरें हैं, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मरकज सुभान अल्लाह। 7 मई को इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल से आतंक के इस ठिकाने पर वार किया था, जहां कई आतंकी मारे गए थे। उसके बाद से तकरीबन 15 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर के इस आतंकी ठिकाने को फिर से खड़ा किया गया है। और हैरानी की बात यह है, जो एजेंसियों के बारे में जानकारी मिली है, कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ने करोड़ों रुपए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को दिया इस मरकज सुभान अल्लाह, जो आतंकी ठिकाना है, इसको खड़ा करने के लिए। अगर आप देखें तो जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है गुंबद, जिसको ब्रह्मोस मिसाइलों ने छेद दिया था और फिर अंदर तबाही मचाई थी, वहां पर निर्माण कार्य हो चुका है और कमोबेश पूरी तरह से उसे बनाया गया है। जबकि अंदर की तस्वीरें भी आज तक के पास है, जिसे फुल्ली फर्निश्ड किया गया है, वहां पर भी साफ सफाई की गई है, उसको भी बना दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, वो आतंकियों को पालती पोसती है, एक बार फिर साबित हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था, और जो आतंकी ठिकाने थे सिर्फ उनको निशाना बनाया था, जिसमें लश्कर का हेडक्वार्टर था, जैश का हेडक्वार्टर था, और बहावलपुर के इस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। इस मरकज से भारत में कई आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी, इस वजह से इसको निशाना बनाया गया था। लेकिन फिर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करोड़ों रुपए देकर इसे फिर से खड़ा करवा दिया है, और आतंकी संगठन एक बार फिर से मरकज सुभान अल्लाह में सक्रिय हो गए हैं।
0: पाकिस्तान एक बार फिर से, हम कह सकते हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देता है, किस तरीके से फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है, ये तस्वीरें वो बयां करने के लिए काफी हैं। अब सवाल ये है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तस्वीरें देखी है कि किस तरह तबाही की तस्वीरें यहां से सामने आई थी, क्या इसके बाद अब जो अभी हाल फिलहाल की तस्वीरें आज तक पर हम दिखा रहे हैं, कुछ भी प्रशासन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है?
1: देखिए, अभी इस निर्माण कार्य के बारे तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके बाद रह रहकर जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हो, चाहे पाकिस्तान की सरकार के नुमाइंदे हो, लगातार ये बयानबाजी करते रहे थे कि जितने भी आतंकी ठिकाने नष्ट हुए हैं, चाहे वो लश्कर का हेडक्वार्टर हो, चाहे जैश का हेडक्वार्टर हो, चाहे पीओके में आतंकी ठिकाने थे, उन सबको फंड करेगी पाकिस्तान की सरकार। ये लगातार वहां के मंत्रियों के जरिए बयानबाजी आती थी, और वो साबित भी हुआ। ये आतंक का ढांचा फिर से खड़ा हुआ है, जिससे अब फिर से एक बार आतंकी साजिश रची जाएगी, और ये सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरपरस्ती में किया गया है।
0: आर्मी और साथ ही साथ ISI और वहां का प्रशासन एक बार फिर से दुनिया के सामने वही साबित हुआ है जिसके बारे में भारत लंबे समय से लगातार बात करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अरविंद। आपको यह भी बता दें कि बड़ी और अहम खबर एक बांग्लादेश से भी आई है, जहां रंगपुर शहर से सनसनीखेज घटना सामने आई। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक दासपाड़ा इलाके में एक घर से 65 साल के गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीतिलता, 23 साल की बेटी आगमी और साथ ही 12 साल के बेटे प्रियम के शव बरामद किए गए हैं। घर बाहर से लॉक था, परिवार के सभी 4 मोबाइल गुरुवार रात से ही बंद थे। पुलिस और साथ ही CID के मुताबिक शुरुआती जांच में गला घोटकर हत्या किए जाने का शक है। मां और बेटी के शव सीढ़ियों से पास मिले हैं, पिता का शव मिला है छत से लटका हुआ, और बेटे का शव बेड के नीचे से बरामद किया गया है। परिजनों के मुताबिक गणपति पिछले साल ही रंगपुर जिला स्कूल से रिटायर हुए थे और परिवार ने हाल ही में इस 3 मंजिला मकान में रहना शुरू किया था। शनिवार रात को परिवार के लोगों ने जब घर का दरवाजा बंद देखा, मोबाइल बंद मिले, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने ताला तोड़ा और अंदर जब वो घुसे तो चारों ही शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस और CID इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा है कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में लूट मचा रहे। विधानसभा के इलेक्शन से पहले वार प्रतिवार लगातार शुरू हो चुका है, जिस तरीके से चाहे आरक्षण

0: का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे, एक दूसरे पर निशाना लगातार साधा जा रहा है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की तरफ से परिवारवाद के नाम पर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए गए।
1: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
2: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: यूपी और राजस्थान के स्कूलों में एक्टिविस्ट और पत्रकारों के कैमरे बैन को लेकर मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और मांग ये की गई है कि इस सर्कुलर को रद्द कर दिया जाए। याचिका में कहा यह गया है कि राज्य सरकारों का ये आदेश संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि इन सर्कुलर्स में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चल क्या रहा है ये जानने का हक जनता को है। प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाने से भ्रष्टाचार और लापरवाही को बढ़ावा मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर जर्जर स्कूल भवनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। योगी ने दावा यह भी किया कि जर्जर भवन विपक्ष की सरकारों की देन है, हमने तो कायाकल्प किया है। इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मिड डे मील का मामला हो या फिर जर्जर भवन, जिससे कि बच्चों की जान पर आफत बनी रहती है, जिसके ऊपर अब बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से।
1: प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो।
0: आरक्षण पर जिस तरीके से तकरार तेज हुई है उत्तर प्रदेश में, उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में नजर आई तो अखिलेश यादव ने पलटवार करने में देरी नहीं की। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी जाति आरक्षण के पक्ष में खड़े हो गए हैं।
3: दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जाति आरक्षण हटाने की आवाज सियासी फिजाओं में गूंजने लगी। अखिलेश यादव ने जाति आरक्षण के खिलाफ उठी आवाजों का पुरजोर विरोध किया तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वर्ण छात्रों के साथ खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जाति आरक्षण के पक्ष में आवाज बुलंद की।
4: युवाओं का अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने,
5: किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं।
3: दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामला तूल तब पकड़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वर्ण छात्रों के मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और इस बारे में ऊपर बात करेंगे।
4: केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
3: ब्रजेश पाठक ने ये नहीं बताया कि किस केंद्रीय मंत्री से वो मुलाकात करके जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे को उठाएंगे। इधर बीजेपी ने स्वर छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा, सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चिराग ने कहा कि आरक्षण खैरात में मिली चीज नहीं है, इसके खात्मे पर चर्चा हो ही नहीं सकती। अगर किसी को दिक्कत है तो बात कर ले।
5: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है।
3: चिराग ने कहा कि समाज में जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत अभी भी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे उत्तराखंड में उस जगह का शुद्धिकरण किया गया जहां खड़गे ने रैली की थी।
5: आज भी भाई 21वीं सदी में भी ये भेदभाव हो रहा है ना। आदरणीय खड़गे साहब के साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में घटना घटी, उनके मंच से जाने के बाद जिस तरीके से मंच का शुद्धिकरण किया गया, ये आज भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो ये चिंता का विषय है।
3: मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने भी आरक्षण हटाने के मुद्दे पर बीजेपी से अलग स्टैंड लिया और इस मांग को संविधान के खिलाफ बता दिया।
6: सभी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का भी इसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है, सभी को न्याय देने वाली सरकार है।
3: भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक भेदभाव मिटाने और अवसरों में समानता देने के लिए सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। मोदी सरकार में इसमें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण भी जुड़ गया, लेकिन अब 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाति आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाया जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: लखनऊ में आरक्षण को लेकर सवर्ण नेताओं की शव यात्रा निकाली गई। सवर्ण समाज के लोग आज लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं और जाति आरक्षण के मुद्दे पर उनकी चुप्पी की वजह से उनकी शव यात्रा निकाली गई है। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सवर्ण नेता हैं उनके नाम की शव यात्रा निकालते हुए उन तमाम लोगों को आप देख सकते हैं नाराजगी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर इन तमाम लोगों का मानना यह है कि जो सवर्ण समाज को रिप्रेजेंट करने वाले नेता हैं वो कुछ भी नहीं कहते।
7: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। पुलिस बसों के साथ, भारी पुलिस फोर्स के साथ, पीएसी के जवान हैं, उनको रोका जा रहा है कि आगे न जाने पाए। और ये 10:90 से होते हुए ये भैंसा कुंड जानी थी, इनके हाथों में जो सांकेतिक शव यात्रा है वो सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर ये शुरू हो गया है।
0: आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सियासी विवाद चल ही रहा था कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष पर राष्ट्रगान का आरोप अपमान करने का आरोप लगाया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सतीश महाना का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा था और सतीश महाना वहां से चल दिए। बीजेपी कांग्रेस पर वंदे मातरम का आरोप लगा रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए प्रहार किया है और कहा है कि राष्ट्रगान का किस तरीके से अपमान किया गया ये देखिए। तो कांग्रेस ने सतीश माना का ये वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी तरफ से दावा ये किया गया है कि राष्ट्रगान यहां बज रहा था, बीच में ही सतीश माना राष्ट्रगान को बजते हुए छोड़कर यहां से चले गए।

0: तो कल राहुल गांधी का गूंज प्रोग्राम आपको याद होगा, जिसमें तमाम यंगस्टर्स को राहुल गांधी की तरफ से संबोधित किया गया था। छात्रों से बात की है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने, क्या कहा है यंगस्टर्स ने, सुनिए।
1: यहाँ पे आप ही सब्जेक्ट थे, आप ही विक्टिम थे, और एक ऐसा टॉपिक जो हजारों सालों से भारत में चला रहा है, पेट्रियार्की। मुझे नहीं लगता कि भारत की किसी नारी ने नहीं फेस की।
2: मेरी आवाज थी पेपर लीक पर, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर पेपर लीक पर, जो मैंने बोला उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और अभी हमारा फेयरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो अभी हम आंदोलन करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि वो आएंगे, सपोर्ट करेंगे उस आंदोलन को, तो आई एम हैप्पी। जो मेरा था मुद्दा उन्होंने लिया, उस पे बोला, सपोर्ट दिखाया, तो आई एम सेटिस्फाइड।
1: एक जज्बा होगा समाज को बदलने का कि आप यहाँ पे पहुंचे।
3: एक्चुअली मैम
1: टफ होता है ये।
3: एक्चुअली मैम स्टेज पे आने से पहले हमें बहुत नर्वस फील हो रहा था, और जब हम एक्चुअल में स्टेज में आए तो जो सर थे उन्होंने बहुत हमें कंफर्टेबल कर दिया था, और मुझे ऐसे नहीं लगा कि एक टाइम पे कि वो बहुत बड़े, ऐसे लगा कि जस्ट हम स्टूडेंट ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे से अपनी बात वहाँ पे रखना, क्योंकि मैं बहुत लड़कियों को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि बहुत लड़कियों का सपना है कि वो फेस टू फेस उनके प्रॉब्लम्स बताए, और मैंने भी वही किया है।
1: राहुल गांधी जब कनेक्ट कर रहे थे, आपको लगा कि मतलब एज अ लीडर वो समझ रहे हैं आपके इशू?
4: बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही
1: तेजस्वी, इनका नाम है, बहुत तेजस्वी भी हैं,
4: तो बिल्कुल, क्योंकि वो काफी अच्छे से सुन रहे थे और रिएक्ट भी कर रहे थे उस पर। तो जैसे आपने बोला कि शादी का प्रेशर होता है लड़कियों के लिए, बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि 18 साल 21 साल 21 साल के बाद तो फिर वो करना ही है, तो ऑफकोर्स मैंने भी फेस किया है, घर से शादी का प्रेशर था, बट मुझे पढ़ना था तो मैं पढ़ रही हूँ। मतलब राहुल गांधी से ये सब बातें कहने का एक ही मकसद था मेरा, क्योंकि मैं संसद में जाके मेरे सवाल नहीं बोल सकती, बट वो जो है वो अपनी सवाल बहुत ही फर्मली रखते हैं संसद में और पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उन तक मेरी बात पहुंचाई है, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां जो गांव से सिटी में आती है पढ़ाई के लिए, उनको बहुत सारी मुश्किलें सहनी पड़ती है।
1: जो राहुल गांधी बात कर रहे थे, तो क्या बात आपको उनकी सबसे ज्यादा पसंद आई या नापसंद, या क्या आपका टेक अवे है?
5: He is rather very friendly. You don't feel like you have to be nervous. You मतलब स्टेज तक जाने तक मैं बहुत नर्वस थी, बट उनको देखते ही वो सब चला गया। फिट लाइक आई वॉज विथ समन हु कुड कनेक्ट विथ मी, हु कुड अंडरस्टैंड वट माई प्रॉब्लम्स आर।
1: क्या समझ में आया राहुल गांधी से?
3: एक्चुअली वो वुमेन्स के राइट को लेके बहुत मतलब बहुत सीरियस है, और उनको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली उनको सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पता है, फिर भी वो हमारे फीडबैक्स ले रहे हैं कि और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और जो कुछ भी है वो हमसे सुन रहे हैं डायरेक्टली।
4: ही इज अ वेरी गुड लिसनर, मतलब वो बहुत अच्छे से सुनते हैं।
1: ही इज अ गुड लिसनर।
3: यस,
1: आपको भी लगा इज अ गुड लिसनर?
3: यस।
4: और मतलब जब हमारी बात सुनी जाती है ना, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम सच में डेमोक्रेसी में जी।
1: कोई सुन तो रहा है,
4: कोई सुन तो रहा है। अब पता नहीं कि ये कब सॉल्व होगा, इस पे क्या बातचीत होगी, ये सवाल उठाया जाएगा ये भी नहीं, पर इतने सारे लोगों के सामने जब कोई बात जाती है तो ऑफकोर्स लोग उससे रिलेट होते हैं और उसमें चर्चा होती है, और समाज में कुछ ना कुछ बदलने की एक झलक दिख जाती है हमें।
1: मैत्री, आप क्या बदलना चाहेंगे? सोच इन्होंने कहा,
5: आई फील जो राहुल जी सर ने जो इशू रेज किया कि वुमन जब आई थिंक बाबा साहब बोलते थे कि एक कंट्री का प्रोग्रेस इट इज कैलकुलेटेड बाय उनके वुमन का प्रोग्रेस, तो आई फील इट इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दैट वुमन आर बीइंग इम्पोर्टेंट एंड द एजुकेशन इज बीइंग प्रायोरिटाइज, द सेफ्टी इज बीइंग प्रायोरिटाइज।
0: गांधी ने गूंज कार्यक्रम को कल संबोधित किया था, और ये तमाम छात्राएं उस प्रोग्राम में थी, उसी के बारे में ये अपनी बातें जाहिर कर रही थी मौसमी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा, प्यार से परो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: The new BE6 Sportage.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही गलतिस्तान भी बनता।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

यूपी की लड़ाई राष्ट्रगीत गान पर आई। बीजेपी ने वंदे मातरम दिमागी नक्सली वाले पोस्टर से विपक्ष को घेरा, तो कांग्रेस ने बीजेपी के नेता पर सतीश महाना पर जनगण मन बीच में छोड़ने के आरोप लगाए। आरक्षण हटाने की मांग पर सुलगी सियासत, सवर्ण मोर्चे ने लखनऊ में निकाला मोर्चा। अखिलेश के बाद मायावती बोली, ऐसी मांग गलत, देशहित के खिलाफ। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले, राहुल को भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो। चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार किया, घेर कर लाठी डंडों से पीटा, नाबालिग को पकड़ा गया, मास्टरमाइंड फरार। और बांग्लादेश के रंगपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत। रिटायर्ड टीचर, पत्नी, बेटी और 12 साल के बेटे के शव मिले, गला घोटकर हत्या

पानी कह रहा है, कृपया करके आप लोग एक वाटर बैरिकेडिंग के अंदर ही जाके स्नान करें।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त में आसमानी आफत के बारे में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हाहाकार मच गया है। क्या मंडी, क्या कांगड़ा, पहाड़ों से गिर रहे मलबों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कहीं देहरादून में तमसा नदी के उफान के चलते टपकेश्वर महादेव मंदिर में नदी का पानी घुस चुका है। वहीं भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भी भरा हुआ है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से परेशानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी में गंगा का जलस्तर है काफी ऊंचा और हालात बाढ़ जैसे हैं, हालात बिगड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है और मंडी के चमड़ा नाला के पास पहाड़ से लैंडस्लाइड के चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ते को बंद करना पड़ा है। वहीं इससे पहले मंडी के कटोला में भारी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। उसमें कुछ ही सेकंड्स के भीतर बड़ी मात्रा में मलबा पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ नजर आया था। भूस्खलन का भयानक वीडियो और मलबे के गिरने की तस्वीरें आसपास के लोगों में दहशत भर गई थी। अच्छी बात ये रही थी कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था।
1: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
2: ओह माय गॉड,
1: ये हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटोला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं, कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे, जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे मोहाली के बारे में भी, क्योंकि यहां पर भी जयंती की राव नदी में अचानक से तेज पानी आने की वजह से पिकअप वैन बह गई थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी बड़ा सामान्य था। भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार करने की कोशिश उसने की और इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वहीं गाड़ी को निकालने की कोशिश में वो लगा रहा, लेकिन अचानक से पहाड़ों से तेज पानी आया नदी में और तेज बहाव होने की वजह से सब कुछ बहता चला गया। बाव इतना ज्यादा तेज था कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी हुई भैंस पानी में बह गई। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भयानक पानी में भैंस इस पिकअप गाड़ी में बह गई।
3: शीशा भी तोड़ दिया।
0: ड्राइवर का कहना यह कि जब उसने शुरुआत की थी तो पानी बिल्कुल सामान्य था और फ्लैश फ्लड कुछ इसी तरह से आती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मूसलाधार बारिश हुई है। शहर के कई हिस्से जलमग्न बताए जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरने से दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो तमसा नदी के उफान पर आने से मंदिर परिसर में पानी भर गया है। उत्तर भारत के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और मौसम की मार की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है।

0: उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, तूफान पर तमसा नदी, डूबा टपकेश्वर महादेव मंदिर, पहाड़ों से गिर रहा मलबा, खाई में समा रही सड़कें। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां तमसा नदी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर और इसकी चपेट में मंदिर परिसर आ गया है। हालात ऐसे हैं कि नदी का तेज बहाव साफ दिखाई दे रहा है। तमसा नदी के रौद्र रूप को देखते हुए श्रद्धालुओं में भी खौफ साफ नजर आ रहा है। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से लोगों को नदी के तट से दूर रहने की अपील भी की गई है। नदी ही नहीं, आसमान से बरस रही आफत ने भी देहरादून के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा, पेड़ की चपेट में दो गाड़ियां आ गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बारिश और नदी के उफान के साथ साथ दरक रहे पहाड़ों ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जहां लगातार हो रहे लैंडस्लाइड हादसे हो रहे हैं। ये तस्वीरें मसूरी देहरादून मार्ग की है। शनिवार की सुबह सड़क का एक हिस्सा दोबारा क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। कुछ देर के लिए सड़क पर आवाजाही पूरी तरह थम गई। लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए भारी और बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सड़क को पूरी तरह दो तरफा यातायात के लिए खोलने में करीब 8 से 10 दिन लग सकते हैं। अब रुख करते हैं उत्तर कश्मीर का, जहां मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कुपवाड़ा, बारामूला और हंदवाड़ा में तेज बारिश के साथ हवाओं ने भी जोर पकड़ा। लगातार बारिश के बाद नदियों, नालों और दूसरे जल स्रोतों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। उत्तर दक्षिण कश्मीर के शोपिया में मौसम ने किसानों और बागवानों को बड़ा झटका दिया है। तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बागवानों की मेहनत पर ओलों की मार पड़ी है और फसल को नुकसान हुआ है। जानी पहाड़ों पर मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। बारिश जहां पानी का संकट दूर करती है, वहीं पहाड़ों में यही बारिश अब रास्तों, नदियों और खेती तीनों के लिए चुनौती बनती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। संगम का पूरा मैदानी इलाका जलमग्न हो चुका है, घाट डूब रहे हैं, रास्तों पर पानी भरा हुआ है और अब नाव ही कई इलाकों में आवाजाही का एकमात्र सहारा बनी हुई है। सबसे बड़ी परेशानी है दारागंज शमशान घाट में, जहां पानी भरने के बाद सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं।
0: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया है। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेट कर पूजा करते नजर आए।
2: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
3: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव को संगम जा रहे हैं।
0: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
0: गंगा यमुना की रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
4: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
0: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर हैं। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में न जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना की जलस्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: उधर उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। यूपी के हापुड़ से लेकर बिहार के बेगूसराय तक नदियां उफान पर हैं और गांव से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ के चलते हजारों बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है।
5: उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह पानी पानी। हापुड़ से लेकर बेगूसराय तक नदियों का रौद्र रूप। आसमान से बरस रही बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। यूपी हो या बिहार, हर जगह नदियों के उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई गांवों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। लोगों के घर, मकान, हर जगह पानी भर चुका है। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और लोग उसी पानी के अंदर से अपनी बैलगाड़ी हो या मोटरसाइकिल निकालने को मजबूर है। जहां एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान है, वही प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम कविता मीणा मैदान में उतरी और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
6: अभी हमारे जो तहसील के अंतर्गत जो भी 8 जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गांव है, जहां पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है, तो इनके लिए जो शासन द्वारा जो राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में, और आगे भी अगर ऐसी अगर बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवा सकते हैं।
5: यूपी ही नहीं, बिहार में भी मानसूनी आफत के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के चलते बेगूसराय के कई गांव पानी में पूरी तरह डूबे नजर आ रहे हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
7: किसानों का बहुत ही बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो पशुपालक है उनके लिए भी काफी समस्या है, पशुपालक किसी तरह एन केन प्रकारेन भर कमर पानी हेल कर तैर कर ऊंचे स्थान से जाकर मवेशी की चारा का व्यवस्था करते हैं। और यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए तो किसानों के साथ साथ पशुपालकों के लिए काफी समस्या है।
5: क्या घर, क्या मकान और क्या सड़क, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, वहीं हजारों बीघा में लगी फसल पानी में डूब चुकी है। तो साफ है इस वक्त आसमान से बरस रही आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हापुड़ से देवेंद्र कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या बीजेपी की नई टीम के साथ पीएम मोदी ने बनाई चुनावी रणनीति? क्या नई टीम के बाद अब संसदीय बोर्ड पर बड़ा फैसला होगा? क्या 4.5 घंटे की बैठक में संगठन का अगला रोड मैप तय हुआ? नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय शनिवार को यहां जुटी पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम और सामने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था। इसके बाद पीएम मोदी की नई पदाधिकारियों के साथ ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ करीब 4.5 घंटे बिताए। इस दौरान चाय पर सभी से बातचीत की। कुछ पदाधिकारियों ने अपने विचार भी साझा किए। पीएम मोदी ने सभी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और पूरी टीम के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि संगठन की बैठकें नए विचार और नए नजरिए सामने लाती हैं और इनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों से उसका जुड़ाव बढ़ाना है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नई राष्ट्रीय टीम के साथ बैठक की। संगठन की रणनीति और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन हुआ। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। नई टीम के गठन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अब नजर बीजेपी के संसदीय बोर्ड के संभावित ऐलान और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन की अगली रणनीति पर होगी। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral.
1: कुदरत का कहर, डर का पहाड़, भर भरा कर गिरा मलबा, कहीं नाले में समाया मलबा तो कहीं सड़क पर गिरा भारी बोल्डर। मंडी जिले के कटौला तहसील के नागनाला में शनिवार सुबह पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ। अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भर भरा कर नीचे आ गिरा और मलबा नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। भूस्खलन होते देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि राहत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। उधर कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे 503 पर बाथू ब्रिज के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर सड़क पर आ गिरा, जिससे एक तरफ की 2 लेन पर यातायात प्रभावित हुआ। इसी दौरान बैजनाथ मंदिर से लौट रहे 5 श्रद्धालुओं की कार बोल्डर से बचने की कोशिश में पलट गई। गनीमत रही कि 5 लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एयरबैग खुल गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला। वहीं यातायात को दूसरी तरफ से डायवर्ट किया गया। स्थानीय लोगों ने संवेदनशील हिस्से पर मानसून के दौरान पहले से सुरक्षा इंतजाम की मांग की। उधर जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश ने मुश्किल बढ़ाई है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला और हंदवाड़ा में तेज बारिश और हवाओं के चलते अचानक नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं शोपियां के कई इलाकों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। सेब के बागानों समेत खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुई। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बारिश, लैंडस्लाइड और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में प्रशासन के सामने लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज तक ब्यूरो,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राष्ट्रगीत बनाम राष्ट्रगान तक का सियासी लड़ाई, बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद पर पोस्टर से किया वार, तो कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर सतीश महाना पर जनगणमन बीच में छोड़ने का आरोप लगाया। आरक्षण में बदलाव की मांग पर सुलगी सियासत, सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च, अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या, गिरिराज सिंह बोले राहुल को भारतीय संस्कृति के बारे में पता ही नहीं। दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई पर हैरान करने वाला वीडियो, चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार, घेर कर लाठी डंडों से पीटा नाबालिग को पकड़ा, मास्टरमाइंड फरार। और ऑपरेशन सिंदूर में तमाम पाकिस्तानी आतंकी अड्डे फिर से एक्टिव, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की पोल खुली।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: very warm welcome to all of you. Being amidst Gen Z on such a big cause, एक बार तालियों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. For coming here and choosing to be part of this. तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप. दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है. देखिए, ये आखिर ये शो हम क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा प्रदूषण की बात की है, लेकिन प्रदूषण का हल कौन बताएगा? क्या हम उस हल का उस हिस्सा बन सकते हैं? सवाल ये है कि क्यों भारत की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है? साल दर साल दिल्ली के वायु प्रदूषण का मसला टेलीविजन पर, अखबारों में, सुर्खियों में, विज्ञापनों में, हर जगह होता है. या तो पॉलिटिकल पार्टी अपना विज्ञापन देती है कि हमने ये बदल दिया, हमने वो बदल दिया, लेकिन हम सब मिलकर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हम, आपकी पीढ़ी और आपके बाद आने वाली पीढ़ी भी खुश होकर रह सके, खुली हवा में सांस ले सके. तो यही हमारी कोशिश है और इसी में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कैसे प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को हम अधूरा छोड़ देंगे अगर हम सब इसका हिस्सा नहीं बनते हैं. आखिर इस पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है?
1: हम हर बार इसके बारे में बात करते हैं जैसे कोई नंबर है, कोई टिक मार्क है, कोई वेदर का ऐप है जो ये आ गया है, बट इसका टेंजिबल इम्पैक्ट कितना है हमारी लाइफ पर? क्या आपको पता है कि हमारी और आपकी लाइफ में से 8 साल कट गए हैं? सिर्फ हमने सिर्फ ये करा दिल्ली में और आपकी और मेरी जिंदगी के 8 साल कट गए. That's how important the issue of pollution really is. 8 years are gone just from breathing. It's the highest such loss recorded in any major city on the planet. सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ एशिया की बात नहीं है, पूरे विश्व में इतना ज्यादा पोल्यूशन किसी और देश में नहीं है, किसी और सिटी में नहीं है. और हमने साल दर साल हम हर बार स्टोरीज करते हैं, हर बार हमारी रील्स वायरल होती हैं और जेन जी कहता है हाँ इस पर हमें काम करना चाहिए, पर हम हर बार आपस में भी न्यूज रूम में भी यही बातचीत कर रहे होते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है. हर साल वही इशू, हर साल वही मुद्दा, हर साल वही सवाल पॉलिटिशियन से, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? विच इज वाई वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू टूडे, विच इज वाई टूडे आज तक इन इंडिया टूडे टूगेदर we've sort of gotten our forces together to bring this one issue to you. आखिरकार ये भी याद रखिए आप लोग, हाँ ताली बजा सकते हैं. Pollution एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ Gen Z को मैटर नहीं करता है, जो सिर्फ मुझे मैटर नहीं करता है, जो सिर्फ आप अमीर हैं या गरीब हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपका डॉक्टर कितना अच्छा है वो भी उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. पॉल्यूशन आपकी जिंदगी को बुरी तरह से बिगाड़ रहा है और इसमें अब कोई दो राय नहीं है.
0: एक वक्त था जब हम बच्चों को पढ़ाते थे कि भाई 6 ऋतुएं होती हैं, हाँ. लेकिन अब उसमें जुड़ गया है दिल्ली में पॉल्यूशन ऋतु. तो तैयारी कर लीजिए, पहले से मास्क वास्क का इंतजाम करिए, घर में छिपके रहिए, हमेशा एयर प्योरीफायर चला कर रखिए. हमारी जिंदगी बदल गई है सिर्फ इस हवा की वजह से, तो इसको बदलने का वक्त आया कि हम क्या इस हवा को बदल सकते हैं.
1: सो हियर इज व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंटली फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स. दिस इज नॉट अ स्टूडियो कॉन्वर्सेशन, दिस इज नॉट समथिंग दैट्स अंजना एंड आई विल डू हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज अ वर्किंग प्रोसेस. सोल्यूशंस विल गेट पिच्ड फ्रॉम यू, दे विल गेट टेस्टेड इन द फील्ड बाय द गवर्नमेंट. द ज्यूरी

0: Minister will stand here in front of you to say, you know what, let's get this idea going. So, आपको करना क्या है? आपको बनाना है एक वीडियो, जो आप सबको मुझे पता है काफी अच्छे से आता है. आपको एक वीडियो बनाना है, आपको उस वीडियो में बताना है कि आपका सोल्यूशन क्या है. अगर आपका सोल्यूशन वर्क करता है तो हमारी जूरी उसे एक्सेप्ट करेगी, उसे टेस्ट करेगी और उसके बाद एक काफी अच्छा प्राइज मनी भी है. बता दें इनको अंजना.
1: हाँ, बता दीजिए. क्योंकि अच्छे अच्छों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे. इट्स अ ह्यूज अमाउंट.
0: द प्राइज मनी फॉर नॉट जस्ट वन आइडिया और टू आइडियाज बट ऑल आइडियाज दैट गेट एक्सेप्टेड बाय द ज्यूरी विल विन 50 लाख रुपीज.
1: हमने सोचा कि जब परेशानी इतनी बड़ी है तो उसमें आपको इंसेंटिव भी थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ताकि पूरी ताकत झोंके और ये इंश्योर करें कि हम कुछ ना कुछ दो तीन तो अच्छे सॉल्यूशंस निकालें जिससे लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो. हम सिर्फ उसकी शिकायत ना करें बल्कि कोई सॉल्यूशन भी पहुंचे. दिल्ली आपकी, सॉल्यूशन आपका. आपको बस ये QR कोड जो हम अंत में आज लॉन्च करेंगे, मुख्यमंत्री दिल्ली की आने वाली है हमारे साथ यहां पर स्टेज में, वो QR कोड लॉन्च करेंगे जिसको स्कैन करके आप अपना सॉल्यूशन, अपना पिच भेज सकते हैं.
0: So are you all excited?
2: Yes.
0: You've got a solution?
2: Yes.
1: You have solution warriors. Huh?
0: Yeah. You've got some time. But let me tell you how exactly this is going to work. Like I explained in the beginning as well, there is already an innovation challenge that is underway. दिल्ली सरकार ऑलरेडी ये फ्लोट कर चुकी है. इन्होंने दिल्ली से काफी सारे लोगों के सॉल्यूशंस मंगवाए. कुछ 200 से लगभग या 300 के लगभग सॉल्यूशंस उनके पास आए. उसमें से फिल्टर होके 22 ऑलरेडी आइडियाज फील्ड में प्लेस हो चुके हैं, मतलब टेस्टिंग फेज में पहुंच चुके हैं. तो आप सोच रहे होंगे आपका आइडिया कहां गया. आपका आइडिया है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री. द सॉल्यूशन यू सेंड, इफ दैट टिक्स, यू गेट टू क्रूज straight into that 22 list of ideas. And that will be taken to the grand jury and then they decide who wins or who does not. All right, so how to apply, where to send your video, we'll walk you through every bit of that as the show progresses. But now on the program, let me invite the man whose own government's report card on the issue has been written in headlines and who has chosen to stand here and answer all these questions. Please put your hands together for Delhi's Environment Minister, Mr. Majinder Singh Sirsa.
3: हेलो जी.
1: नमस्कार.
0: हेलो जी.
1: नमस्कार.
3: हमें बताते हैं, हम भी इस तरह के पहन रंग के पहन लेते हैं.
1: हमने सोचा कि आपको ऑड बना के रखना है.
3: धन्यवाद जी.
1: तो सिरसा साहब, सवालों की शुरुआत करते हैं क्योंकि ये हमने ये सोचा कि हमेशा पोल्यूशन को लेकर हम सबके अंदर एक निराशा है. हम चाहते हैं सोल्यूशन निकले. तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने दो तीन ऐसे कदम, क्योंकि अब आप लोग खुद ही आ रहे हैं इंटरव्यू देने, तो कुछ तो ऐसा किया होगा जिस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या किया है?
3: देखिए, पहले तो आपको ये सबको जानकारी है कि पोल्यूशन के तीन बड़े कारण हैं, व्हीकलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन जो डस्ट पोल्यूशन है, और तीसरा जो हमारे इतने लैंडफिल्स, लैंड साइट्स थे जिनके ऊपर इतने कूड़े के ढेरों के टनों टन कूड़ा पड़ा था और आप रोज देखते थे वो पोल्यूशन. तो दिल्ली का चैलेंज है, दिल्ली के अंदर लाखों लोग रोज आते हैं और लाखों लाखों लोग यहाँ से रोज जाते हैं. दिल्ली दुनिया का अकेला ऐसा शहर है, मैं कुछ आपको जानकारी देने से पहले बताना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी. दुनिया का दिल्ली अकेला ऐसा शहर है, पूरी दुनिया का, दुनिया की अकेली ऐसी राजधानी है जिसके साथ कितने मेट्रो सिटीज के साथ और सिटीज साथ जुड़ती जाती हैं जिनका कॉमन एयर शेड है, सबको कॉमन रहने वाला है. अकेला ऐसा शहर है जो 55 किलोमीटर के इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं. ये दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जहां जितना पूरे यूरोप के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता है लगभग उतना कूड़ा रोज दिल्ली यहां से हटाता है. 14 से 15 हजार मैट्रिक टन कूड़ा केवल पूरे दिन के अंदर दिल्ली का लोकल म्यूनिसिपल वेस्ट है. और इसके अलावा जो लेगेसी वेस्ट है जो हमसे पिछले हमें देके गए हैं, कूड़े के पहाड़ बनाकर देके गए हैं, वो 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज हम हटाते हैं. 50,000 मैट्रिक टन कूड़ा अंजना जी, ये इसके बराबर है कि पूरे यूरोप का कूड़ा दिल्ली में से निकाला जा रहा हो, इसके बराबर आप कल्पना करके देखिए, फिर भी आपको कूड़े का कोई ट्रक नहीं दिखाई देता। ये मैनेजमेंट हमने आके पिछले 1.5 साल में खड़ी की है। सबसे बड़ा कारण यही है,

0: हम जानते हैं 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से, मैं आपको बताना चाहता हूं 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से हम 70 एकड़ से ज्यादा जमीन रिक्लेम कर चुके हैं, 70 एकड़ का कूड़ा खत्म कर चुके हैं।
1: आपने जो बात बताया उस पर देखिए ये क्लैरिफाई करना इम्पोर्टेंट है कि चैलेंज बहुत बड़ा है दिल्ली के लिए, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, चैलेंज है
0: बहुत,
1: लेकिन हम आज सोल्यूशन की बात कर रहे हैं
0: बहुत बड़ा, उतना
1: और इस सोल्यूशन में आपको क्या लगता है कि किस तरह का पार्टिसिपेशन आप चाह रहे हैं लोगों से? हम ये कैंपेन जो कर रहे हैं इसमें हम जो लोगों से बोल रहे हैं कि वो आके अपनी एंट्रीज भेजें, आप सबसे पहले उनको क्या बताना चाहेंगे, कौन सी एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है?
0: तो देखिए सबसे बड़ा काम जो और सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत वो है इनोवेशन के ऊपर आज, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि जो 3.5 करोड़ लोग हैं ये कम होंगे, ये बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कों के ऊपर से ट्रैफिक कम होगी और बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कूड़ा म्यूनिसिपल वेस्ट हमारा कम होगा नहीं, और बढ़ने वाला है। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी साथ में निकाल कर लाने होंगे कि जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कुछ भी कर रहे हों तब भी साइंस और इनोवेशन हमारी हेल्प कर रही हो उसको डायरेक्टली उसको नीचे लाने के लिए। ये ड्रास्टिक स्टेप्स जो हैं वो इनोवेशन से आ सकते हैं, जो रोजाना के काम है वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप सुनिए, एवरेज एनुअल PM2.5 में -7.7% हो गया, -7% उसमें कमी आई है एनुअल साल का। उसी तरह एनुअल PM10 में 7.1% की कमी आई है। ये डेटा तो आपके पास रोज अभी निकाल के अभी निकल आएगा एक सेकंड में। एनुअल एवरेज AQI, अगर हम एवरेज AQI की बात करें पूरे साल का, तो उसमें 3.871 का कमी आई है, 3.87। ये पॉइंट से कम होने वाला, 1-1%, 2-2%, 3-3%, ऐसे ही कम होगा।
2: आज क्या बता रहा है आपका? गुड बता रहा है, बैड बता रहा है, क्या बता रहा है? जरा मैं भी अपना फोन जरा देखा जाए।
0: हाँ नहीं कोई बात नहीं,
2: मेरा मोबाइल आपका मोबाइल अलग
0: नहीं, मोबाइल नहीं है। देखिए ऐसा होता है, पहले आप समझ लीजिए, जो AQI है ना ये खाली रॉ नहीं आता कभी भी, ये देखिए रोज का आता है। अभी का एग्जैक्ट कितना है? 108।
2: हाँ।
0: ये कितने बजे का आ रहा है? 4:06 पे।
2: तो ऐसा होता है, पुअर है
1: ये भी, WHO का तो 50 होना चाहिए,
2: ये भी पुअर है,
1: ये 50 होना चाहिए। और ये थिक ऑफ मॉनसून है, इस समय तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए समय।
0: हाँ।
1: मैं आपसे यही कहना चाह रही थी,
0: मेरे पास रोज का आता है, मैंने ये नहीं कहा कि रोज अच्छा आता है,
2: मैंने बस क्रॉस चेक किया कि आपका हमारा सेम बता रहा है नहीं बता रहा।
0: साफ हवा भी कैसे आएगी? अब मैं अंजना जी ये भी लाइन आपको जरूर बताना चाहता हूँ। तो बेटा आजकल आपके पास AI का जमाना, बिना AI के भी गूगल में सबको अवेलेबल था, तो अभी तक साफ शहर कौन से हो पाए हैं? इंग्लैंड, क्या लंदन शहर अपनी हवा को साफ कर पाया है? चीन का बीजिंग अपने आप को साफ कर पाया है? आप पहले एक बार जाकर स्टडी करिएगा कि उनको कितने साल लगे। बीजिंग को 9 साल लगे हवा को साफ करने में, 9 साल। लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का, लेकिन हमें ना 9 लगेंगे ना 15 लगेंगे। मैं
1: आपको कितने लगेंगे आप एक बता दीजिए, इसी पर रील बनेगी,
0: बने बने
1: इसी पर रील बनेगी, बात
0: बिल्कुल बनाएंगे, हम खुद बनाकर चलाएंगे, हम वो रील को खुद बनाकर चलाएंगे।
2: तो टाइमलाइन
0: अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए पॉल्यूशन कैसे कम होगा परसेंटेज वाइज, 5%, 7%, 10% ऐसे होगा। शाम को हवा साफ हो जाएगी ऐसा असंभव है।
1: लेट्स टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस नाउ, लेट्स गो देयर प्लीज।
3: गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज वंशिका। सर आई वांटेड टू आस्क, लाइक यू हैव लॉन्च्ड अ कपल ऑफ पॉलिसीज अबाउट EV, क्लाउड सीडिंग एज वी टॉक्ड हियर टुडे। मेरे को ये पूछना था, जैसे क्लाउड सीडिंग एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, बट जैसे हम सबको आई थिंक पता है कि 3 गवर्नमेंट एजेंसीज ने बोला था कि यू नो क्लाउड सीडिंग इज नॉट सूटेबल फॉर दिल्ली उसके एनवायरनमेंट वगैरह के हिसाब से, फिर भी इतना बड़ा बजट, एज यू सेड 3 करोड़ रुपए उसको अलॉट किया गया, इतना बड़ा बजट। सो डू यू थिंक इट वॉज द राइट मूव एंड क्या मेजर्स हो रहे हैं?
0: तो देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा ये खाली दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग हो इसके लिए बजट नहीं है। हमने पैसा एक IIT कानपुर को दिया है, वो हमारे इस पैसे से स्टडी कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि दिल्ली में एक दिन बरसात करानी पड़ सकती है और कभी भी ना करानी पड़े, लेकिन सॉल्यूशन तो देश के पास होना ही चाहिए ना हर प्रॉब्लम का। तो वो दिल्ली सरकार का पैसा देश के एसेट्स में काम आए, तो दिल्ली की सरकार ने IIT, वो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, तो वो जितनी रिसर्च करेंगी, चाहे पैसा आपसे आए या किसी भी सरकार से जाकर रिसर्च करेंगी, तो ये कहना गलत होगा कि पैसा कहीं उसका मिसयूज हो गया या उसको कहीं और यूज हो सकता
2: है। ठीक है, 2-3 सवाल और इधर से लेते हैं।
3: क्या हम इंडस्ट्रीज को उतना लायबल ठहरा रहे हैं जैसे उन्हें जितना उन्हें ठहराना चाहिए? क्योंकि बीट नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्या हम उनको लायबल ठहरा रहे हैं? क्या हम स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं?
0: तो आपने बड़ा अच्छा एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है अंजना जी, आपके ध्यान में भी ला दूं, दिल्ली में जो इंडस्ट्री चल रही थी अनऑथराइज एरियाज में, ऐसी 12,000 इंडस्ट्रीज थी जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, हमारे डिपार्टमेंट भी नहीं पूछ रहे थे। क्यों नहीं पूछ रहे थे? वो कहते थे कि सर ये नॉन कन्फर्मिंग एरिया में है और सुप्रीम कोर्ट का कहना इसको बंद कर दो, तो सिंपली बंद करो, हम इसको चेक नहीं करेंगे पोल्यूशन है या नहीं है। तो हमने आकर एक कानून बनाकर उनको फोर्स किया, 12,000 इंडस्ट्री ऐसी, 12,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऐसा हमने इंस्पेक्शन की, जिनमें से 8,000 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका पोल्यूशन मापदंड ठीक किया जा सकता, उन्होंने ठीक किया, जिनमें से 1626 ऐसी हैं जिनका ठीक ही नहीं हो सकता था, उनको सील किया, और 560 या कुछ ऐसी थी जिनमें पानी भी साथ में गंदा था हवा के साथ साथ, वो 550 को भी सील किया।
2: किस इलाके में थी
0: ये? सारी आउटर दिल्ली में, जहां पे नॉन कन्फर्मिंग एरिया की इंडस्ट्रीज थी। और इसलिए बेटा हमने अब तक तकरीबन 2200 के आसपास ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके सील किया है, बंद किया है, और 12,000 इंडस्ट्री को हमने आइडेंटिफाई किया है और 8,000 के पोल्यूशन मापन को ठीक कराने का काम किया। ये एक मैराथन जॉब था जो हमने पिछले 1.25 साल में पूरा किया।
3: हम पोल्यूशन का सोल्यूशन दिल्ली के सेंटर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपने बोला कि एनसीआर एक कनेक्टेड एयर शेड है, और हम अगर रोटी भी हम खाते हैं तो उसके सेंटर से नहीं लेते, हम कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो हम एनसीआर पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम दिल्ली की पेरिफेरी पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसीज क्यों नहीं ला रहे हैं, और अगर ला रहे हैं तो उनका ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रहा? सर
0: बेटे ने सबसे अच्छी बात करी है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, और उन्होंने एग्जाम्पल भी इतना अच्छा दिया। इसके ऊपर लगातार हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो लगातार सभी स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते हैं, मैं उस सभी मीटिंग का हिस्सा होता हूं, और उस मीटिंग्स के अंदर ये पैरामीटर्स फॉर फिक्स किए गए, फ्रेमवर्क्स को फिक्स किया गया है, हमारा क्या फ्रेमवर्क रहने वाला है, हर स्टेट्स को क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या क्या टाइमलाइंस हैं, उनको कब तक अपना कूड़ा खत्म करना है, कब तक उनको मैनुअल जो है क्लीनिंग खत्म करनी है, कैसे उन्होंने मैकेनिकल, कब तक कौन सी चीज लेकर आनी है, किस तरह से अपने स्टेट के अंदर वो ईवी को चार्जिंग स्टेशन लेके आएंगे, कैसे ईवी गाड़ियों के लिए, तो ये हमारा फ्रेमवर्क बना, इस पर काम चल रहा है, और इसकी बड़ी मॉनिटरिंग भी होती है, और लगातार निरंतर केंद्र सरकार इसके ऊपर चर्चा करती है और लगातार इस पर बैठकें कराती है, और जब बैठक होती है उसके अंदर हम अपने सारे पीपीटीज लेके जाते हैं कि जो टारगेट्स दिए थे वो मीट हुए कि नहीं हुए। हाँ लेट होते हैं टारगेट, स्टेट्स के भी लेट होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी उनसे ली जाती है और उनको आगे से कहा जाता है इस डेट तक पूरा करके दे। तो ये फ्रेमवर्क बना हुआ है, इस पर काम चल रहा है, जैसे आपने कहा टाइम लगेगा, सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन सोल्यूशन की 5-5, 3-3, 2-2, 4-4, 10-10% करके ही हम उसको ठीक कर पाएंगे।
2: अब चलते चलते आखिरी में बता दीजिए कि हमारा मकसद क्या, हम चाहते हैं बच्चे आए, नए नए इनोवेशन के साथ लोग आए, वो जरा बता दीजिए, समझा दीजिए।
1: What are you looking forward to most from?
0: तो देखिए पहले तो मैं आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अंजना जी का भी और सोनल जी का भी, क्योंकि आपने एक हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर दिल्ली को पोल्यूशन का सोल्यूशन देने की कोशिश की है। जब तक हम इस तरह से हाथ मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इसका समाधान भी नहीं होगा। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सभी टीवी चैनल्स को, अखबारों को इस तरह से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस हम ला सके। तो पोल्यूशन के सोल्यूशन में अब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से भी आप एंट्री कर सकते हैं, ये आज के इस प्रोग्राम का कारण है। आप अपना सोल्यूशन लेके आए, अगर वो सोल्यूशन अप्रूव होता है तो अप्रूव हमने नहीं करना, उसके लिए भी IITs, NCLT ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एकजुट होकर, जिनका इन्होंने जजेस जिनको बनाया है, वो स्टडी करेंगे, उनमें से अगर कोई कामयाब होता है तो उसको इनाम भी देंगे और उस प्रोडक्ट को हम दिल्ली के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। यह जो बड़ा काम का बेड़ा उठाया है वो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में उठाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप हमारे पोल्यूशन के सोल्यूशन के लिए हमारे नौजवानों तक पहुंचे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपसे भी जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा जिसको दिल्ली में लाकर हम दिल्ली की हवा को और साफ कर पाएंगे।
1: ऑल राइट, ऑन दैट नोट, दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर सिरसा, प्लीज एवरीबॉडी,
2: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर। All right, so you heard the minister over there. Promises have been made, but it's now time to put them to test. Let's take this opportunity to introduce to you our esteemed jury. Let me start by bringing in, and please, huge round of applause, Manendra Agarwal, director for IIT Kanpur. He's a brilliant mathematician and also behind true innovation that happened.
2: और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो चिंता करने के लिए जाने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सोल्यूशन बताते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि चिंता तो हम सब कर सकते हैं पोल्यूशन पर, लेकिन हमने किया क्या, ऐसा ही कदम उठा रही हैं एक बेहद खास ज्यूरी मेंबर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, कलीपुरी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए वाइस चेयरपर्सन इंडिया टुडे ग्रुप की, जिन्होंने ये सोचा कि हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। हम खबरें बताते हैं, हम पोल्यूशन में जो परेशानियां लोगों को हो रही है वो सब बताते हैं, लेकिन सोल्यूशन का हिस्सा बनने को तैयार है या नहीं है?
4: बिल्कुल, ऑलवेज। मैं शुद्ध दिल्ली वाली हूँ, तो आई वांट टू मेक श्योर दैट दिस इज अ सिटी वी ऑल आर प्राउड ऑफ एंड दैट वी आर हैप्पी टू लिव इन, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन सिटी विद सो मच हिस्ट्री। द ओनली थिंग दैट लेट्स अस डाउन आई थिंक इज द एयर।
2: एब्सोल्युटली,
4: वी कैन फिक्स दैट, वी आर होम,
2: वी आर होम।
4: एब्सोल्युटली,
2: ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
1: All right, next let me call upon stage somebody who's truly entrenched in this entire system of bringing you a solution. Let me call upon now Naresh Priyadarshini. He's from the Delhi Pollution Control Committee. Huge round of applause, please. He's seen more pollution ideas die down than that actually works. So I'm very interested to know what is it that will make it tick for him, because he's the one at the end of the day who's advising the government as well. Are you excited about this challenge, sir?
5: Absolutely, absolutely. So first of all, this is a great opportunity, and I think a very positive engagement of a media group for a social cause. Yes, the ideas should be linked to the problem. I think that is very important.
1: All right, and next with us, somebody who understands the pain of pollution more than anybody else. Let me bring up on somebody who sees patients with pollution related problems every day in her clinic, and not just people like you and me who are trying to fight out, but little voices who cannot really understand the length to which the pollution is spoiling their health. Please call upon Dr. Neela Mohan, President for Indian Academy for Pediatrics. Ma'am, you see kids every day.
6: Yeah, that's true.
1: Parents ko bhi ye bahut advice deti hongi. एंड एक एडवाइस बहुत सुनी जाती है कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ, पोल्यूशन से बचना है तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ।
6: Well,
1: इस पूरे कैंपेन के बाद प्रोबेबली यू विल हैव अ डिफरेंट आंसर।
6: यस, आई विल से दैट देयर इज समबडी इंडिया टुडे, एंड आज तक जब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो शायद सोल्यूशन मिल जाएगा।
1: ऑल्सो जॉइनिंग अस इन अ लिटिल व्हाइल विल बी कपिल देव, एंड ही इज समबडी हु इज नॉट जस्ट अ नोन यू नो स्पोर्ट्समैन, समबडी वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ, बट समबडी हु एक्चुअली इज द ओनर ऑफ द KDSC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एज वेल, सो डीपली इन्वेस्टेड इन द मैटर। ही विल ऑल्सो बी जॉइनिंग अस इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल। विद दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड।
2: केपी, मेरा पहला सवाल आप ही से, माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस होल थिंग दैट यू थॉट वी शुड डू दिस, व्हाई?
4: आई थिंक दैट आई जस्ट गॉट टायर्ड ऑफ कवरिंग द न्यूज ऑन अ ईयरली बेसिस। वी वुड ऑलवेज स्टार्ट इन सितंबर अक्टूबर एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन, एंड आई थिंक वी मेड अ बिग चेंज टू से लुक, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू सिट देयर एंड कवर इट, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट being part of the solution, and that's why we've committed to finding a solution for this pollution problem in Delhi since January, and we've kept the attention and focus there, and I'm so glad that Delhi government has sort of cooperated with the push that we've given them, and they have been working on it since January as well, because pollution, you see it more in September, October, November, but actually it's a problem even in the summer. We've got so used to it, we accept pollution of 300, 400 is completely normal. If you look at the AQI of other beautiful cities in the world, you'll see AQI 3, 2, 0. Like, okay, those are numbers that we have never seen. So our ambition should be that we can hit, you know, at least double digits on a regular basis. That would be quite good. And maybe then single sometime in the future.
2: Abhi itni barish mein toh it's around 108. So like, a long way to go.
1: But let me bring in also Manindra Agarwal. Sir, you know, you have seen solutions being put forward in front of you for quite some time. What do you think they should be focusing on? Where do you think innovation lacks in becoming a reality?
7: Of course, the solution should work. It goes without saying. But more than that, or equally importantly, I would say, it needs to be a solution that works at scale and in a cost-effective way. If you miss any of these two, then you cannot implement the solution well. So that is the most important thing to keep in mind. Whatever solution one designs, I have seen so many solutions which look very good on paper, which look very good in lab level. Hmm. But the moment you take them outside to actually on the ground to deploy, they fail.
1: Right. So, if I can bring in, Nareshji as well. Nareshji, kitne challenges rahe pichle ek decade mein DPCC ke saamne? Humne saal bhar bahut stories kari, aapko bahut criticize kara, bahut sare sawal puche, bahut tough questions puche. Where do you get stuck? Why is it that the best minds in the country, or perhaps the world, which India is known for, we've not perhaps been able to crack that one thing that impacts all of us?
5: First correction I would like to say is that, yes, the biggest, I think, driving force which I see now, where DPCC and other similar entities within the ecosystem have been now delivering solutions, is the government mindset. You can't imagine the kind of hours or the kind of push, like, for example, the chairman DPCC or the minister, Mr. Sirsa himself, or the member secretary. They, even till it was 9 p.m. or 11 p.m. or whatever, they close things. Like, there is so much of drive to bring the solution to a reality. I think that has been a big change, which I've seen in the last 1 year. Yes, over the years, the kind of use of technology was limited, and the kind of analytics and all those things, everyone was making efforts, but somewhere, as Dr. Agarwal also mentioned, the implementability and finding the solution on the ground. We were always, I think initially the approach was measuring and reporting. Now we are moving to a solution phase. I think that change has happened.
1: Yes.
5: We are measuring, reporting, and that's why the kind of approach or the kind of solutions are now coming are real. They are not cosmetic.
2: Ma'am, because you interact with your children, you interact with their parents. What can you suggest to them? What can you suggest people? Like, everybody is checking the AQI and then they decide whether their children should go out to play or not. Ki bachcha khelne jaye, nahi jaye. Kya karein? As a doctor, aap kya batayenge?
6: Right. So, I think I totally agree. Abhi time aa gaya, agar aap mujhe ijazat denge, to ise jan andolan banane ke liye. Jan andolan ka matlab hai ki it's not only the government and the industry, or it has to be everybody. So the doctors are also important, where I have to talk about advocacy. Jaise aap sirf ek number nahi batana hai, number ke baad kya karna hai, to mujhe bhi parents ko kya karna hai batana hai. So we need certain general tips, aur jab tak wo parent ko ye nahi samajh aayega, it's not about me, that parent should become strong enough to go and ask school mein, RWA mein, community mein, they should go around. And jab tak real story hoti hai na, to wo real story makes a big impact. Like we've seen in Punjab, jaise wo jalate hain, to it is in one of the villages, there was a real story, somebody died, pollution related burning, and he or she could communicate to the village and the whole village stopped. So the Gurdwara people were involved. So I think such stories will make a difference.
2: And KP, from being a hard task master in our editorial meetings, to getting...
8: Don't tell the jury that, yeah, the jury will run away.
2: And like, from years and years, you've been covering this pollution, you've been asking tough questions to all of us, all the people who sit there, to these people who want to innovate now, what would you say? How would you judge them?
4: No, I would say please work very hard, and if you've got some good ideas, please use the QR code and send them to us. Let us restore Delhi's legendary Sardi, you know, where you sat in the dhoop and you peeled santre. You know, that's what we want to take Delhi back to.
1: A huge round of applause again for our esteemed panel and the jury, which will be finally deciding who gets to win that solution for pollution. Thank you so much.
2: Thank you.

राइट, सो यू अंडरस्टूड व्हाट द कैंपेन इज ऑल अबाउट, इन्हें जज कौन करेंगे, किस तरह से पूरा प्रोसेस होएगा. लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे द विन इन दिस कैंपेन इज दैट दिस गेट्स अडॉप्शन बाय द गवर्नमेंट, इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. एंड फॉर विच डोंट बिलीव अस, बिलीव द पर्सन हु विल बी कमिंग ऑन स्टेज नेक्स्ट टू ब्रिंग यू दैट प्रॉमिस. विद दैट लेट मी इन्वाइट ऑन स्टेज माई कॉलीग अंजना कश्यप एंड द दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता.

0: पोल्यूशन का सोल्यूशन इस महामुहिम में जिसको आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने उठाया है, अब हमारे साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जुड़ गई हैं और ये जेन जी जो यहाँ पर है वो भी चाहता है कि जल्दी से सोल्यूशन हो। लेकिन एक सवाल पूछने से मुख्यमंत्री जी मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। ये बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद ही आ रही है पोल्यूशन पे इंटरव्यू देने दिल्ली में, क्या ऐसा किया है उन्होंने कि कुछ कमाल इस बार होने वाला है, क्या बदलेगा?
1: इंटरव्यू तो मैंने पिछले साल भी दिया था और आपके स्टूडियो में ही दिया था, तब हमारी सरकार 6 महीने पुरानी थी, आज हमारी सरकार 1.5 साल पुरानी है और इस लगभग 1.5 साल के हमारे टेन्योर में हमने उस हर सॉल्यूशन पे काम किया, हर उस समाधान को हमने आगे ले जाया कि जिसके कारण से जो दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान मिले और विशेष रूप से पॉल्यूशन को। तो हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस, हमारा साइंटिफिक रोड मैप जिसे हमने अडॉप्ट किया वो मेरे कॉन्फिडेंस का कारण है और मैं समझती हूँ कि दिल्ली एक सही दिशा में और सही हाथों में चल रही है।
0: रेखा जी देखिए, अब एक एक करके हर बिंदु पर आते हैं। अब व्हीक्युलर पोल्यूशन मतलब 60%, उसमें भी जो बाइक्स हैं, दो पहिया गाड़ियां हैं उनसे भी 40% पोल्यूशन। ईवी पॉलिसी पर आप जोर दे रहे हैं कि ईवी पॉलिसी के जरिए, तो इसमें आपका प्लान क्या है? तीन चीजें इसमें जुड़ती हैं, एक तो ऑड इवन पहले होता था, पता चल रहा है कि 50% वर्क फ्रॉम होम आप मैंडेटरी कर देंगी सरकारी और प्राइवेट जगहों पर तो गाड़ियां कम होंगी, और तीसरा ये ईवी पॉलिसी ये क्या है और क्या वाकई आप दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल पेट्रोल डीजल कार या दोपहिया वाहन मुक्त करना चाहती हैं, तो कब तक?
1: देखिए आप दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए, ईवी पॉलिसी और दिल्ली को ईवी सिटी बनाना भारत की, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसमें हमने पूरी तरीके से जनता को इन्वॉल्व करके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में लगातार बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हुए और उसके बाद में हमने पब्लिक डोमेन में भी उस पॉलिसी को रखा, सबके सजेशंस लेते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिसी जिसमें कि हमने ना केवल सब्सिडी की बात की है बल्कि हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स दिए हैं, हमने ईवी इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उसके साथ साथ बैटरीज का रिसाइकिलिंग वहां तक की भी प्लानिंग किया। इस पूरी की पूरी पॉलिसी में हमने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, वो इसलिए कि इसके बाद जो नए व्हीकल कोई व्यक्ति खरीदे वो ईवी के लिए मोटिवेट हो, उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि आप ईवी खरीदे। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दिल्ली से पेट्रोल और डीजल के व्हीकल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली में चल रहे हैं, जिनकी अभी लाइफ है, जो पीयूसी के पूरे जो पैरामीटर है उसको फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप में वो अपनी लाइफ पूरी करेंगे और वो दिल्ली में चलेंगे। पर नया व्हीकल कोई खरीदे तो जरूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दिल्ली का नागरिक उस व्हीकल को खरीदे, उसमें ईवी को प्रेफर करे, सरकार उसके साथ है और हमारी ईवी पॉलिसी पूरा सपोर्ट करते हुए दिल्ली के हर नागरिक को एक एमिशन फ्री और क्लीन जो मोड ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ओर मूव करना चाहती है।
0: क्या ऑड इवन भी आप करेंगे और क्या ये 50% वर्क फ्रॉम होम हर दफ्तर में होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा?
1: अंजना जी, ऑड इवन से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितना फायदा मिला इससे पहले कि सरकार की ये नॉन सीरियसनेस थी जो कि ऐसे टेम्परेरी और टाइमिंग कुछ लेकर के आना कि भी ये ऑड इवन कर देंगे, ये खाली भ्रम था लोगों को ये दिखाना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, पर ये सॉल्यूशन नहीं था, कभी भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो क्यों लगातार पॉल्यूशन सालों तक बढ़ता रहता? कोई सॉलिड स्टेप जो उठाने चाहिए थे किसी भी सरकार को, वो स्टेप कभी नहीं लिए गए। वर्क फ्रॉम होम इसलिए थोड़ा इफेक्टिव कहा जा सकता है कि आप सड़कों पे थोड़ा तो लोगों को आने से रोकें, वर्क फ्रॉम होम होगा, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मूव करें, लोग उससे उसको इस्तेमाल करें। और सरकार ने, हमारी सरकार ने पूरी तरीके से इसे ये माना है कि ये पूरा साल भर चलाने वाला काम है। पॉल्यूशन जो है कोई एक सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, एक सीजन की आफत नहीं है कि इस सीजन में आया आफत है और चलिए 2 महीने निकले तो खत्म हुई जान बची, ऐसा नहीं है। साल भर जब सरकारें काम करेगी तभी ये पॉल्यूशन कम होगा, ये 100% हमारी सरकार ने करके दिखाया है। लगातार इस 1.5 साल में हमने उन सभी स्टेप्स को लिया जो आने वाले समय में धीरे धीरे पॉल्यूशन को भी कर्व करेंगे और 360 डिग्री यानी हर तरफ से हमने पॉल्यूशन को घेरा है, फिर चाहे वो डस्ट मिटिगेशन हो, फिर वो वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो, वो प्लांटेशन हो, वो ईवी पॉलिसी हो, हर तरह से हमने कोशिश किया, और वो विंटर एक्शन प्लान भी जब हम पूरी तरीके से ये गाइडलाइन पहले से ही नोटिफाई कर दी हमने कि भाई नवंबर से लेके जनवरी माह तक आपको इन इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि दिल्ली तैयार रहे, सोसाइटी तैयार रहे उन नियमों के अनुसार दिल्ली को चलाने के लिए, और पॉल्यूशन जो है सिर्फ सरकार नहीं लोग भी मिलकर के इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोजेंगे और मिलकर के दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करेंगे।
0: तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, इन जेंजी युवाओं को बताइए कि क्या मिशन है और हम क्या करना चाह रहे हैं इसके जरिए, कैसे इनोवेशन को हम आप प्रमोट करना चाह रहे हैं हम लोग, वो बताएं हमारे दर्शकों को।
1: देखिए, हम सब देश की राजधानी दिल्ली के नागरिक हैं, हर व्यक्ति अपने शहर से बड़ा प्यार करता है, और इसीलिए जब कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली की ऐसी ध्यान में आती है तो हमें तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है कि भाई हमारे शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन, मुझे लगता है कि एक ऐसी ड्राइव है जहाँ पे पूरी दिल्ली, पूरा देश इस पॉल्यूशन की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपने सुझाव दे सकता है, इस ड्राइव का हिस्सा बन सकता है, और हमारी सरकार ने लगातार पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देने के लिए काम किया। हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया, हमने ईवी पॉलिसी लेके आने का काम किया, हमने अभी बहुत बड़ा एक मास प्लांटेशन ड्राइव जो शुरू किया, पहली बार दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने का काम, 70 लाख डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग वर्ग, अलग अलग सोसाइटी और यंगस्टर्स ने, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपने लिए स्लॉट बुक कराया, पौधे लगाए, और खास करके दिल्ली का जो रिज एरिया है, पहली बार किसी सरकार ने आके उसे फॉरेस्ट नोटिफाई किया, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप सच में फॉरेस्ट को फॉरेस्ट के रूप में जानें और उसको अच्छे से डेवलप करें, तो ये भी काम करना।
0: कंस्ट्रक्शन का काम पर मैं ध्यान लाना, हमारे अनेकों हमारे रिपोर्टर्स गए स्टिंग ऑपरेशन, ब्लू शीट्स लगी होती है, पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वो कौन सी एनफोर्समेंट एजेंसी ये इंश्योर करेगी कि भाई ये ना हो, जब आप ग्रैप फोर लगा देते हैं उसके बाद भी काम चलता रहता है पीछे से।
1: ये सच में आदत थी लोगों की, पर आप लोगों ने अगर स्टिंग किया तो ये भी आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने एक्शन भी पूरा लिया, और उस एक्शन के पीछे हमने वो सारे लीकेजेस जिसके कारण से कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट उसका बेनिफिट लेती थी और अपना काम करती थी। मैं ये मानती हूँ कि जिसे अपने शहर की परवाह नहीं है, जो सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है, या जिसे मतलब अपने पड़ोसी की चिंता नहीं है, जो अपने लिए लगातार काम करता जा रहा है, उस पर चेक रखने का काम उतना ही आपका भी है जो एज ए चैनल, और उतना ही जनता का भी है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो गैप था इसे हमने खत्म किया है, हमने अपना डस्ट पोर्टल सेकंड शुरू किया है जिसमें 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पे हमने डिजिटल कैमराज लगाए हैं जो हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शुरू हुए हैं, जो AI एनेबल्ड हैं, और पूरी तरीके से अगर वहां पे डस्ट पैरामीटर पे वो वहां पे कुछ भी होता है, अगर अलार्म बजता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास भी आता है, उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ओनर के पास भी जाता है, और तुरंत एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती है और एक्शन लिया जाता है। तो ये पहली बार हुआ है कि AI ड्रिवन कैमरास के द्वारा सरकार ये डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही है, और पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन को हमने डिजिटल मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स के साथ जोड़ा है, इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था। तो ऐसे हर व्यक्ति जो उस समय कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा या कर रहा होगा वो पूरी तरीके से निगरानी में रहेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा।
0: सरकारी कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, कहीं मेट्रो का काम चल रहा है कहीं पर, अब आजकल तो दिल्ली में जब भी घर से निकलिए कुछ ना कुछ कहीं पर खुदाई हो जाती है, उसका क्या होगा, क्या उसको भी उस दौरान रोक पाएंगे?
1: बिल्कुल, हर नियम बराबर का सरकार पे भी लागू होता है, जनता पे भी लागू होता है। जैसे मैंने ईवी की बात कही, ईवी यदि हम लोगों को प्रपोज कर रहे हैं कि आप लीजिए, तो सरकार ने भी अपने लिए तय किया है कि हम जितने भी व्हीकल फ्यूचर में खरीदेंगे वो 100% ईवी ही खरीदेंगे, यहां तक कि हमारी जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स भी है उनको भी हमने ईवी खरीदने का ही
0: प्रेशर हो कि रेखा जी तो ईवी में चल रही है, पीछे उनके सिक्योरिटी वाले 10-15 गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल डीजल वाली।
1: देखिए, मैंने आपको कहा कि हम भविष्य में एक भी नई कार जो खरीदेंगे वो 100% ईवी होगी. तो पुरानी गाड़ियां जैसे हम लोगों की नहीं हटा रहे हैं तो इसलिए सरकार की भी चल रही है, और इसलिए नई गाड़ी जो भी खरीदेंगे वो ईवी खरीदेंगे. जैसे जनता का नियम वैसे हमारा नियम.
0: कृत्रिम बारिश की आपने बात की थी क्लाउड सीडिंग के जरिए. अब वो रोज होता था कि अब सिरसा से जी जा रहे हैं और अब तो विमान उड़ेगा और बारिश होगी और बादल कभी बरसे ही नहीं. क्या वजह रही? क्या इज इट अ फेल्ड प्रोजेक्ट, यानी एक ऐसा मिशन जो नहीं हो पाया, या उस मिशन पर अभी भी आप लोग कायम हैं? और कई विपक्ष ने भी, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि 3 करोड़ खर्च कर दिए, बेकार गया.
1: मैं ये मानती हूं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो फेलियर नहीं होता है, वो आपके लिए एक चीज सिखा के जाता है. आज दिल्ली शहर के लिए उसके पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, आज आप भी तो पॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं. यानी कि यहाँ बैठे हुए जितने यंगस्टर्स हैं जो भी सॉल्यूशन हमें बताते हैं और हमें लगता है कि सॉल्यूशन से सच में 2%, 10% कुछ भी पॉल्यूशन कम हो सकता है, तो हम तो उसे तैयार हैं अपनाने के लिए. ऐसे ही कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन, जब बहुत ही साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेथड है जिसको कि आप बाकी देशों में भी इसको किया गया है और लोगों ने आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से बहुत सारे सॉल्यूशन किए हैं. दिल्ली में भी हमने इसे ट्राई किया, तो मुझे लगता है कि ट्राई करना कोई गलती नहीं है. हमने पूरी अपनी उस मानसिकता के साथ कि पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देना है, हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया, और एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल भी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है.
0: चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कई बार ऐसा मन में आता है कि भाई कोई भी एफर्ट कर लो, छोटा होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, पर ऐसा कुछ इनोवेशन या कुछ भी आपके सामने अभी तक आया है जो कि अनूठा है, जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा हो?
1: बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने जो इनोवेशन चैलेंज किया था अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर, IITs में जाकर के, और बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपने स्टार्टअप्स दिखाए, अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाए कि इसके माध्यम से पॉल्यूशन पे काम किया जा सकता है, और उसमें से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट उठाए, उसे दिल्ली शहर में इम्प्लीमेंट किया, और मुझे लगता है कि हर एक प्रोजेक्ट अपनी वर्किंग का कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर छोड़ता है. तो हम लगातार उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, लगातार उस हर संभव प्रयास पे काम कर रहे हैं कि दिल्ली शहर की आबो हवा अच्छी हो, दिल्ली में रहने वाले लोगों का दिल खुश हो. इसके लिए हर उस सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है जो कि सरकार के सामने प्रेजेंट होता है, जो नए स्टार्टअप्स हमें दिखाई देते हैं. और इतना कह सकती हूँ कि ये दिल्ली शहर देश की राजधानी है. जब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारी इस दिल्ली शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम जिसमें केवल दिल्ली का हिस्सा नहीं है, दिल्ली NCR भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. हम दिल्ली के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम NCR के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम हर तरीके से इसके समाधान को खोज रहे हैं, और दिल्ली की जनता लगातार उसका प्रभाव देख रही है और भी देखेगी.
0: आपने दिल्ली की बात किया, आपने खुद ही कहा दिल्ली NCR, तो एक आखिरी सवाल मन में आ गया है जो कि बहुत जरूरी है शायद एड्रेस होना, क्योंकि पराली एक बड़ी वजह, और उसका जिस तरह से असर आता है वो हम सब भुगतते हैं. सांस लेना मुश्किल होता है, कई लोग इनहेलर्स पे चले गए हैं, कई लोगों की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल जाते हैं. किस किस से बात हो रही है आपकी आज सही सही बता दीजिए. भगवंत मान जी से आपने बात की है कि क्या करना है, आपने नायब सिंह सैनी साहब से बात की है क्या करना है, राजस्थान में आपने शर्मा जी से बात की है क्या करना है, इधर योगी जी से बात की है क्या करना है,
1: हर एक मुख्यमंत्री से बात की है. और ओपन बर्निंग का कोई भी मोड हो, पराली हो, बाकी चीजें हो, दिल्ली में हो, NCR में हो, बाकी राज्यों में हो, वो हर एक चीज जो हमें इफेक्ट कर रही है वो ठीक होनी चाहिए. उसके लिए हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हमने सबको इस समस्या के समाधान पे काम करने के लिए कहा है. नॉर्दर्न रीजन का जो मीटिंग पीछे हुआ था उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, हम सब ने मिलकर के एक कॉमन एजेंडा बनाया है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है जिस पे हर राज्य काम कर रहा है. और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी को एज इट इज़ हरियाणा ने अडॉप्ट किया है, तो हरियाणा भी अब ईवी पे जा रहा है, धीरे धीरे यूपी, राजस्थान, बाकी राज्य भी जाएंगे, पूरा देश इस ईवी पॉलिसी पे काम करेगा और हम सब अपनी आबोहवा बदल पाएंगे.
0: पंजाब का आपने नाम नहीं लिया, पराली पर क्या बात हुई है?
1: पंजाब की पराली भी खत्म होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे और जरूर जो उनके ऊपर मोहपाश है उसमें से निकल के इस सीरियस नोट पे आएंगे।
0: तो वो तो सैनी जी भी करने से डरते हैं क्योंकि सबको लगता है कि किसानों की नाराजगी कौन मोल ले ले।
1: बिल्कुल तो सैनी साहब तो नहीं है, बीजेपी के हरियाणा में बहुत सारे ऐसे प्लांट बने हैं जो क्लीन फ्यूल पे जनरेट कर रहे हैं पराली से, और लगातार हरियाणा में, यूपी में, इवन पंजाब में भी कुछ ऐसे प्लांट खुले हैं, और मुझे लगता है कि उन सब का असर दिल्ली पे होने वाला है। दिल्ली के लिए इतना कह सकती हूँ कि ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, तो हम दिए जलाते रहेंगे और लोगों को रोशन करते रहेंगे।
0: रेखा गुप्ता जी, आप काफी अच्छी शायरी करती हैं मुझे पता है, बीच बीच में आप पहले से, लेकिन राजनीति की सख्ती कई बार इंसान को अलग बना देती है। उम्मीद है कि ये जो कोशिश है पोल्यूशन का सोल्यूशन वो सफल होगा, और अब QR कोड जो है हमारा है उसको लॉन्च करेंगे हम लोग।
2: I request now to the jury also to join us on stage. Our esteemed jury, huge round of applause, please. So much talk, so much inspiration, and then all of it will start with this one QR code. And to unveil that, I'll request the Chief Minister to just be there. And there you go, Delhi, with bated breath. There you go.
0: Big round of applause.
2: That's the QR code. If you've got a solution, we're listening. All you have to do is just scan that QR code, send us your pitch, and our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that. With that, we're calling this entire campaign open.

0: अब बात करेंगे आरक्षण पर छिड़ी जंग की। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर अब तकरार तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में देखी तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में ही खड़े हो गए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जाति आरक्षण हटाने की आवाज सियासी फिजाओं में गूंजने लगी। अखिलेश यादव ने जाति आरक्षण के खिलाफ उठी आवाजों का पुरजोर विरोध किया तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वर्ण छात्रों के साथ खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जाति आरक्षण के पक्ष में आवाज बुलंद की।
2: युवाओं का अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने,
3: किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं।
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामला तूल तब पकड़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वर्ण छात्रों के मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और इस बारे में ऊपर बात करेंगे।
2: केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
1: ब्रजेश पाठक ने ये नहीं बताया कि किस केंद्रीय मंत्री से वो मुलाकात करके जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे को उठाएंगे। इधर बीजेपी ने स्वर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा, सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चिराग ने कहा कि आरक्षण खैरात में मिली चीज नहीं है, इसके खात्मे पर चर्चा हो ही नहीं सकती। अगर किसी को दिक्कत है तो बात कर ले।
3: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है।
1: चिराग ने कहा कि समाज में जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत अभी भी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे उत्तराखंड में उस जगह का शुद्धिकरण किया गया जहां खड़गे ने रैली की थी।
3: आज भी भाई 21वीं सदी में भी ये भेदभाव हो रहा है ना, आदरणीय खड़गे साहब के साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में घटना घटी, उनके मंच से जाने के बाद जिस तरीके से मंच का शुद्धिकरण किया गया, ये आज भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो ये चिंता का विषय है।
1: मोदी सरकार में मंत्री
0: रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर। मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
2: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही गलतिस्तान भी बनता।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है. आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है. आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है. अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया. इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है. तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्रावधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है. तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: राष्ट्र गीत बनाम राष्ट्रगान तक आई सियासी लड़ाई। बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद पर पोस्टर से किया है वार, तो कांग्रेस ने बीजेपी नेता सतीश महाना पर जनगण मन बीच में छोड़ने का आरोप लगाकर उन्हें घेरा। आरक्षण में बदलाव की मांग पर सुलगी सियासत। स्वर्ण मोर्चे ने लखनऊ में निकाला मार्च। अखिलेश यादव के बाद मायावती बोली, ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। पुणे में भी छात्रों की गूंज। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले, राहुल को भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से किया वार, घेर कर लाठी डंडों से पीटा। नाबालिग पकड़ा गया, मास्टरमाइंड अब भी फरार। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह पाकिस्तानी आतंकी अड्डे फिर से एक्टिव हुए। सामने आया भावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो। शहबाज और मुनीर की खुली है पोल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से लड़े ना लड़े, लेकिन चीन से सीख जरूर रहे। चीन की विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिकी प्रांत और इलाका घोषित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जानकारी से डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति नहीं, उनकी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी और बेवकूफी करार दे रहे, जिसे ट्रंप के कुछ भी असमर्थ होने के बाद अब उनके बतौलेबाजी या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ बोलेपन की वजह से और ज्यादा सिचुएशन गंभीर होती जा रही। आज रणभूमि में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस नए बयानों के बारे में और यही नए दावों के बारे में। लेकिन रणभूमि स्पेशल में आज की खबरें बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम वॉर फ्रंट के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी प्रेम की भी पोल खोलेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आपके लिए कौन सी खबरें खास है। सबसे पहली खबर हम आपको दिखाएंगे ट्रंप का वो सपना जिसमें उन्होंने ईरान के हॉर्मुज को अमेरिकी प्रांत बनाने का फिर से संकेत दिया है। रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर आपको बताएंगे ईरान की नई सामरिक और कूटनीतिक चाल की, जिसमें वो मक्का अलायंस में शामिल हो सकता है। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे रूस ने यूक्रेन पर फिर से भीषण हमले शुरू किए हैं। और रणभूमि स्पेशल की चौथी खबर आपको बताएंगे पाकिस्तान के भावलपुर में लेकर चलेंगे, वहां की कुछ ताजा तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे जैश का आतंकी ठिकाना, आतंकी मरकज एक बार फिर से तैयार हो गई, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कर दिया था। रणभूमि स्पेशल में आखिरी खबर आपको बताएंगे कि कैसे रुख करेंगे जैसलमेर का, जहां पर भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास किया है और वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर से अपनी ताकत को भी दिखाया है। रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे, जिनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे इन तमाम खबरों का विश्लेषण और बताएंगे कि आखिरकार किस खबर के क्या मायने निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बारे में। महायुद्ध में इन दोनों ही देशों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के बिना कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। इस तनातनी की वजह से ना तो कोई डील हो पा रही है और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल पा रहा है, वहां पर आवाजाही फिर से शुरू हो पा रही है। अब ट्रंप ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा सार्वजनिक किया। इधर ईरान इस नक्शे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन तेवरों के बाद, उनके बयानों के बाद, उसके तेवर भी तल्ख हो गए और उसने साफ कर दिया कि वो अमेरिका को इसके लिए नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

हॉर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया।

0: pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
1: ईरान बार बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे हॉर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
2: यार अमल न करदन मिजनिम मनाफे उन केशवर रो मिजनिम چرا برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده یعنی اول مذاکره می‌کنیم سعی می‌کنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم مسئله دوم زمان میذاره ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه اگر این کار اینا شروع کنن ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره نه نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس
1: ईरान के कमांडरों से लेकर राष्ट्रपति तक अमेरिका को हर रोज धमकी दे रहे हैं और किसी भी हमले की सूरत में नतीजा भुगतने की बात कह रहे हैं। अब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही के एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले एक साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
3: ये रिपोर्ट आपने देखी, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई बयान देते हैं उसके पीछे दो स्ट्रेटजीज होती हैं। पहला साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर बड़े बड़े बयान देना, और दूसरा मिलिट्री पावर को ऐसे दर्शाना कि अमेरिका कभी अटैक कर सकता। और शायद इसी वजह से जो एक बड़ी खबर आ रही है खाड़ी से, वो इसी खबर से, उसी स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि खाड़ी में जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स F-15 उड़ान भर रहे हैं, अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट जारी किया है जिसमें उड़ान भरते हुए लड़ाकू विमान F-15 भी तस्वीरें जारी की गई है। इस खबरों के बाद माना जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में फिर से युद्ध की आग सुलग सकती है और F-15 की उड़ान को अमेरिका का आक्रामक तेवर या फिर आप उसका कह सकते हैं अग्रेसिव पोस्चर के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में आपको मैंने बताया कि कैसे अमेरिका लगातार जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान देते हैं उसके साथ साथ अमेरिका कोशिश करता है कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दिखाकर सामने वाले दुश्मन को या ईरान को प्रेशराइज करे समझौते के लिए, अमेरिका से बातचीत करने के लिए। और देखिए, सिर्फ बदलाव सिर्फ F-15 के उड़ान भरने से नहीं हो रहा, खाड़ी देशों से एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज वॉशिंगटन तैनात हो चुका है। USS जॉर्ज वॉशिंगटन अब्राहम लिंकन यानी इससे पहले करीबन 250 दिन से ज्यादा तैनात USS एयरक्राफ्ट कैरियर USS लिंकन की जगह लेगा, उसे रिप्लेस करने आया और इसे ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी या फिर उसे रिव्यू करने के लिए स्ट्रेटजीज के तौर पर देखा जा रहा है जहां वो समंदर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियानों की देखरेख करने वाली यूएसएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है और बताया कि वॉशिंगटन जो है वो पहुंच चुका है और अब्राहम लिंकन को रिप्लेस कर चुका है। आपको बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पिछले 250 दिनों से वहां पर मिडिल ईस्ट में तैनात और जिस पर लगातार मारपिटाई या फिर उस पर सैनिकों के लड़ाई झगड़े और उसके कई आप कह सकते हैं उनकी खस्ता हालत को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी। और अब आपको बड़े वॉल पे लिए चलते और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अमेरिका का ये

0: एयरक्राफ्ट कैरियर यानी यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन आखिरकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों अब्राहम लिंकन के बाद इसी को यहां पर तैनात किया? सबसे पहले आपकी आपको इसकी कुछ खासियत है, कुछ आपको कैपेबिलिटीज बता देते हैं। सबसे पहले निमित्स क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, निमित्स क्लास यानी लगातार आप कैसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से आप सक्षम है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसकी सबसे खास बात यह भी कि लंबे ऑपरेशन के लिए जैसे अब्राहम लिंकन 250 दिन तक सी में बना रहा, वैसे ही ये भी लंबे दौर के लिए सी में या फिर समंदर में बना रह सकता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता शहर होता है जो लंबे समय तक अपने एयरक्राफ्ट या फिर आप कह सकते हैं अपने एयर अपने ऑपरेशंस को चला सकता है। 333 मीटर लंबा है और 78 मीटर चौड़ा इसे बताया जाता है। और ये इसलिए क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा चलता फिरता एक शहर है जो किसी एक टापू किसी एक बड़े युद्ध क्षेत्र का या युद्ध टापू के तौर पर आइलैंड का काम करता है। डेक पर खड़े हो सकते हैं 90 से ज्यादा फाइटर जेट जिसमें F-15 भी है, F-18 भी है और कहते हैं कि अमेरिका का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल है। और सी स्पैरो और रोलिंग एयरक्राफ्ट मिसाइल से लैस है, एयर फ्रेम मिसाइलों से लैस है। और ये इसलिए क्योंकि अभी अमेरिका ने सबसे अत्याधुनिक मिसाइलों पर इसको तैनात किया है और यही वजह है कि इसको यहाँ भेजा गया टॉर्पेडो और एयर ट्रैफिक या फिर आप उसको कह सकते हैं एयर ट्रैफिक को जाम करने के लिए। और अधिकतम रफ्तार इसकी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है, एक बार के ईंधन से 560,000 किलोमीटर की क्षमता है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक बार अगर ये समंदर में जाता है तो लंबे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के साथ जाता है। हालांकि देखिए यह भी बात सही है कि 1990 के दशक में जब इसको लाया गया था न्यूक्लियर पावर इसे किया गया और कई बड़े ऑपरेशंस में इसको तैनात किया गया समंदर में। और शायद इसी वजह से एक बार फिर से अब्राहम लिंकन को रिप्लेस कर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अब मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है ईरान से, जहां पर ईरान रक्षा सशक्त बल लॉजिस्टिक मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े दावे किए गए। ईरान ने पिछले एक साल में अपने रक्षा हथियारों का उत्पादन दुगना कर दिया। हालांकि ये बात इजराइल ने भी इससे पहले कही थी कि अभी भी ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कई गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगर ईरान के इसी दावे को सही माना जाए तो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि ट्रंप बार बार ये कहते आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन खुद ईरान के लॉजिस्टिक मंत्रालय या फिर उनके कई बड़े मंत्रालयों के साथ साथ इजराइल की मीडिया भी इस बात का दावा करती है कि ईरान के अभी भी कैपेबिलिटीज और उसके प्रोडक्शन कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ईरान के पास अब भी कई महत्वपूर्ण हथियार मौजूद हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताया, ईरान ने हाल ही में बने मक्का अलायंस का हिस्सा बन सकता है। देखिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी ईरान अपने आप को मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। और कहा जा रहा है मक्का अलायंस जिसमें हाल ही में सऊदी तुर्की और पाकिस्तान जुड़े थे, एक नया अलायंस बना था, उसके अंदर ईरान भी जुड़ सकता है। ईरानी सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि ईरान को मक्का समझौते तौर पर अमेरिका के लिए चुनौती होगी क्योंकि फिर अमेरिका पर निर्भरता लगातार मिडिल ईस्ट के देशों की खत्म होगी क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण देश वो है जिस पर ईरान ने हाल ही में सबसे ज्यादा अटैक किए गए थे यानी सऊदी। और देखिए एक और बड़ी खबर जिसमें पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिफ मुनीर 24 अगस्त को यानी माना जा रहा है कि कल ही लगातार तेहरान का दौरा कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर सोमवार को तेहरान का दौरा करेंगे और माना जा रहा है कि मक्का अलायंस को लेकर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। देखिए पाकिस्तान इस पूरे अलायंस के अंदर सबसे प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी बनना चाहता है और शायद इसी वजह से ना सिर्फ ईरान बल्कि सीरिया इजिप्ट जैसे देशों को भी इसमें शामिल करना चाहता है। और देखिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जनरल एके सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए। जनरल सिवाज, पाकिस्तान आखिरकार करना क्या चाहता है एक नया अलायंस, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सऊदी का इन्वॉल्वमेंट पहले से है, सऊदी इसमें एक आप कह सकते हैं ऑलरेडी इसमें साइन कर चुका है और अगर ईरान आ जाता है तो फिर कैसे इस अलायंस को आगे बढ़ाया जाएगा?
1: हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, जो मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था एक प्रकार से पाकिस्तान सऊदी और तुर्की के बीच में, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिफेंस पैक्ट है। इसके अंदर पाकिस्तान जो है उसके अंदर मिलिट्री पावर है, वो न्यूक्लियर हथियार से लैस है, उसके बाद सऊदी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो तुर्की है, उसके बाद इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, और अगर इसके साथ ईरान मिल जाता है तो इसकी ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है, इसमें
0: बिल्कुल
1: कोई शक नहीं। और इसके बाद सुनने में आया इजिप्ट भी को लाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ साथ कुवैत और बहरेन,
0: सर,
1: तो
0: सीरिया का
1: होगा
0: नाम भी
1: क्या?
0: आ रहा है, सीरिया के बारे में भी कहा
1: हाँ
0: जा रहा है कि सीरिया को
1: बिल्कुल,
0: भी इन्वॉल्व करना चाहता है तुर्की इसमें।
1: हाँ बिल्कुल, ये भी सच्चाई है कि सीरिया भी, तो आप देखें कि बदलता हुआ समीकरण है कि रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जाया जाएगा, जो डिपेंडेंस अमेरिका की तरफ थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा खाड़ी देश में, और ये जो रीजनल सिक्योरिटी एक अपरेटस बनेगा उसके ऊपर होगा, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये जो रीजनल जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन, बहरान, यहां पर मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, वो डिपेंडेंट थे सिक्योरिटी में, उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे, मगर जब से ये रीजनल सिक्योरिटी का अब अप्रेटिस बनता जा रहा है, इसके अंदर दूसरे देश शामिल होते जा रहे हैं, तो एक बदलता हुआ समीकरण है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए, समेत इसके अंदर जो तुर्की है वो नेटो का हिस्सा भी है, तो
0: जी
1: ये एक प्रकार से आपको कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए धक्का होगा, और ईरान इसके अंदर आ जाता है तो ये भी सच्चाई है कि ये जो आपस में एनिमिटी है, आपने बहुत अच्छा इशारा किया था कि जो राउंड वन हुआ था तो सबसे ज्यादा जो अटैक किए थे ईरान ने
0: बिल्कुल
1: वो सऊदी और यूएई पे किए थे, तो इससे क्या होगा कि रीजनल पीस आएगी, आपस में गठबंधन बढ़ेगा, और उसको हम
0: और
1: बार
0: शायद
1: बार
0: मुझे
1: यही
0: लगता है कि
1: कहें कि
0: सर
1: नेटो है।
0: आपका माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि शायद तुर्की इसमें बहुत बड़ा रोल अपना रहा है, और पाकिस्तान भी चाहता है कि वो भी अपने हिस्से का रोल इसमें अपनाए और अपनी डोमिनेंस इसमें दिखाए। आप बने रहिए सर हमारे साथ, क्योंकि आपका रुख करेंगे दोबारा। लेकिन अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की भी। 2022 में शुरुआत हुई थी इस युद्ध की, और सैन्य ठिकानों पर हमला करते करते अब ये युद्ध 2026 तक आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुका है। अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर एक दूसरे की कमर तोड़ने का है। यूक्रेन लगातार रूस की तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है, जबकि रूस ये धमकी दे रहा है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला देगा। इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला। पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा। ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान। आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है। दुख, यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरीज से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1,000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दरअसल इस वार पलटवार की लड़ाई में अब रूस तिलमिला गया है और रूसी सेना ने डोनेस्क और खारकोव इलाके में यूक्रेनी सेना के अस्थायी ठिकानों पर भीषण बमबारी की है, जिसकी तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई। रूस ने इसकी तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि जानकारी दी है कि उसने बमबारी में F-500 और Fab-1500 बमों का इस्तेमाल किया है और इससे भारी तबाही की तस्वीरें भी देखी जा सकती है। दरअसल अब रूस यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाहता है और रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अपडेट तो आपने देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान के भावलपुर का वो इलाका हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जहां पर आतंकी ठिकाने हुआ करते थे। भावलपुर का वही आतंकी कैंप है जिसे सक्रिय होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने उड़ा दिया था, लेकिन अब भावलपुर का जैश आतंकी कैंप दोबारा से रिवाइव कर लिया गया। तस्वीरें सामने आई है जिसमें पाकिस्तान ने फिर से उस आतंकी कैंप को सक्रिय कर उसे ठीक कर लिया गया। आप मानिए कि ये देश कैसा होगा जहां पर आतंकी ठिकानों को ठीक करने, उन पर पैसा खर्च करने की ज्यादा प्राथमिकता दिखाई जाती है। हमारे साथ जनरल सिवाज है। जनरल सिवाज, ये तस्वीरें वैसे तो चौंकाने वाली हैं, लेकिन ये कोई नया सरप्राइज नहीं है। पाकिस्तान ऐसा दशकों तक करता है कि आवाम भूखी मर रही है, लगातार खाने के लिए सामान नहीं है, बिजली महंगी है, चीजें नहीं है, लेकिन आतंकी कैंप को ठीक करने का और आतंकियों को पालने पोसने का काम पाकिस्तान में अब भी जारी है।
2: हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके अंदर जो 5-6 तारीख को जिस प्रकार से भारत की फौज ने हमला करके जो इनके ठिकाने थे आतंकवादी के और जो हेडक्वार्टर थे लश्कर ए तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का, वो हमले डिस्ट्रॉय कर दिए थे, वो भावलपुर, मुदेरका और मुजफ्फराबाद। मगर ये भी पता लग गया था कि 12 करोड़ के करीब जो पैसा दिया गया है भावलपुर को दोबारा एक प्रकार से बनाने के लिए, और वो हो गया है। अगर आप देखें एक आतंकवादी देश के अंदर ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि लश्करे तोबा और जैसे मोहम्मद दोनों एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है यूनाइटेड नेशन से। मगर आज पाकिस्तान की हालात क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के चार टुकड़े होने लाजमी है अगर सिविल
3: बिल्कुल
2: वार हो जाता है, और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और
3: सर,
2: पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो है,
3: सर
2: आज मुझे लगता है
3: कमाल की बात
2: आजादी की
3: जनरल
2: तरफ
3: सिवाज
2: जाते
3: यही है कि बार बार हमें इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, बार बार ही अपना अपनी अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल के आतंकी कैंपों की मरम्मत करके उन्हें ठीक करते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन आतंकी संगठनों का सरकार और वहां के हुक्मरानों के अंदर होगा, वहां पर लगातार कितने बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रहे होंगे। लेकिन अब अगली खबर भी भारतीय सेना के शौर्य की दिखाते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना का शौर्य किस तरीके का है। ये तस्वीरें हैं जैसलमेर की, जहां पर रेगिस्तान के ऊपर गर्जा भारत का युद्ध, युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे और चीता, युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार हो रही भारत की तैयारियों को अभी एक जायजा हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और आप देखिए हेलीकॉप्टर्स ने अपनी ताकत भी दिखाई, जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एविएशन कोर ने भारतीय सेना के ये युद्ध अभ्यास किया है। चले रणभूमि में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर। मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
2: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्रावधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: दुनिया के शतरंज पर ताकत और हैसियत ये तय करती है कि किसे सजा मिलेगी और किसे माफी मिल जाएगी, किसकी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसकी धमकियों की अनदेखी हो जाएगी, तो वहीं किसकी छोटी सी भूल का भी भयानक अंजाम होगा। पावर प्ले में आज होगी बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे अंदाज की भी, और साथ ही करेंगे चर्चा उनके अचानक उमड़े उत्तर कोरिया प्रेम की। धरती के नक्शे पर आपको दिखाएंगे कि चीन कौन सा नया रास्ता व्यापारिक गलियारा बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मिलवाएंगे आपको सत्ता के मंच पर हलचल मचाने वाले पावर प्लेयर से। साथ ही होगी बात भारत और जापान के नए रक्षाबंधन की, और साथ ही आप और हम मिलकर पढ़ेंगे सोने के वो सारे सिग्नल जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की नई घंटी बजा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा, कुछ तूफानी करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, कुछ ऐसा धमाकेदार जो उन्हें इतिहास में बड़ा मुकाम दिलवा दे, और यदि नहीं दिलवा पाए तो कम से कम नोबल का शांति पुरस्कार ही दिलवा दे। इसके लिए कभी वो अमेरिकी फौज की बंदूकें वेनेजुएला और ईरान की तरफ घुमाते हैं, तो कभी गाजा के लिए शांति का फॉर्मूला दुनिया को बेचते नजर आते हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चहेते उत्तर कोरिया प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो काम जो उन्होंने करीब 2018-19 के अंदर अधूरा छोड़ दिया था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद को खत्म करवाने की कोशिश। बात बात पर मिसाइल चलाने वाले किम जोंग उन के लिए भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास दोस्ती की बातें हैं, मुलाकात के इरादे हैं। क्या वाकई ये सब कुछ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल एक तमगे की चाहत में कर रहे हैं, या फिर ट्रंप का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? देखिए हमारी ये पहली स्टोरी, पावर स्टोरी।

0: So if you become the peacemaker, then I will assist you by being a pacemaker.
1: That's good. We can do big progress, I think, with North Korea. Absolutely.
2: When do you want to meet with him?
1: With who?
2: You said the North Korean leader wants to meet. How soon would you?
1: Yeah, we want to have a meeting. I'd like to have a meeting. I got along great with him. You know, you were there. We even had a press conference. He had his first press conference. Kim Jong-un had a press conference.
3: ये तस्वीर करीब एक साल पहले की है. साल 2025. व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से हुई. दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने जब ट्रंप की तारीफों के साथ उनकी और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग की संभावित मुलाकात का जिक्र किया. उत्तर कोरिया में ट्रंप टावर बनाने और वहां ट्रंप के गोल्फ खेलने की उम्मीद जताई तो उसे मजाकिया अंदाज की टिप्पणी माना गया. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तारीफ के पुल बांधे तो उसे बहुत गंभीर नहीं माना गया. मगर बीते कुछ दिनों के दौरान हुई घटनाओं ने ये दिखा दिया है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में कुछ ऐसा है जो अब बदल चुका है, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस दक्षिण कोरिया से नाराज हैं जिसकी हिफाजत के लिए करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं. ईरान के मोर्चे पर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए आगे न आने से ट्रंप नाराज हैं. इतना नाराज कि उन्होंने दोनों देशों के साझा युद्धाभ्यास पर भी कैंची चला दी है, उसे छोटा कर दिया है. वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भी कह रहे हैं कि ये वक्त है जब उनके देश को अपनी हिफाजत की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी. अब अमेरिकी भरोसे के सहारे नहीं रहा जा सकता. सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नामो निशान मिटाने के जंग छेड़े हुए हैं, वो उत्तर कोरिया का मामला आते ही चुप हो जाते हैं. आलम तो ये है कि ट्रंप उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग से मिलने की बात कई बार कह चुके हैं. 2 जून 2018 को सिंगापुर के कैपेला होटल में इतिहास में पहली बार कोई मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के किसी नेता से मिला. दोनों ने एक साझा बयान पर दस्तखत किए. राष्ट्रपति ट्रंप ने 29 सितंबर 2018 को कहा कि मुझे खूबसूरत खत लिखे, बेहतरीन खत, और हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम है. 30 जून 2019 को ट्रंप कोरियाई सरहद यानी DMZ पर पहुंचे और इतिहास में पहली बार उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बने. ट्रंप के पिछले और ताज़ा कार्यकाल में एक चीज 2018 की सिंगापुर मुलाकात के बाद से लगातार नजर आ रही है और वो है किम को लेकर ट्रंप की नरमी. तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों ठीक इसी वक्त ट्रंप उत्तर कोरिया से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं. दरअसल यूक्रेन और ईरान जैसे मोर्चे पर किसी तरह की कामयाबी हासिल नहीं होने के बीच ट्रंप को एक बड़ी विदेश नीति सफलता चाहिए. उत्तर कोरिया के साथ डील या शिखर सम्मेलन मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक ताकत का बूस्टर डोज दे सकता है. कोरियाई प्रायद्वीप को संघर्ष से शांति की ओर मोड़ने को लेकर दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच भी एक कवायद चल रही है. ऐसे में ट्रंप की एक कोशिश मौके पर चौका लगाते हुए श्रेय का सेहरा अपने सिर करना चाह रहे हूँ. उत्तर कोरिया के चीन और रूस के साथ बन रहे सैनिक साझेदारी के गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश भी ट्रंप की एक प्राथमिकता हो सकती है. साथ ही ईरान युद्ध के नतीजों को देखते हुए ट्रंप की कोशिश होगी कि समय रहते उत्तर कोरिया के साथ स्थिति को इस तरह साधा जाए ताकि इंटरनेशनल फजीहत का एक और नमूना न नजर आए. ट्रंप की मंशा भले ही वेनेजुएला से लेकर ईरान और उत्तर कोरिया तक अमेरिकी कोशिशों को शांति प्यास दिखाने की हो, लेकिन जमीन पर उठने वाले कदमों से तय होता है कि नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा. और अभी तक तो न ट्रंप का कोई फैसला शांति का फार्मूला दिखा पाया है और न ही युद्ध का संकट टाल पा रहा है. आज तक ब्यूरो
4: पावर प्ले में हम सियासत के रास्तों की बात करते हैं तो साथ ही साथ रास्तों की सियासत की चर्चा भी अहम हो जाती है, क्योंकि धरती के नक्शे पर कुछ ऐसा हो रहा है जहां से सियासत का अगला रास्ता भी तय होता है. तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मैप रूम में और आपको दिखाते हैं कि धरती पर मौसम के जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के सहारे मुनाफे का कौन सा कारोबार बनाने की कोशिश इन दिनों चीन कर रहा है. और देखिए मैप रूम के अंदर हम आपको जो चीज दिखाने जा रहे हैं वो आपको बताएगा कि यहां से आगे धरती पर कारोबार की जो सियासत है वो क्या करवट लेने जा रही है। क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये नक्शा देख रहे हैं, यहां पर आपको नजर आएंगी दो तस्वीरें, ये दो रास्ते। ये एक रास्ता जो आपको नजर आ रहा है, जो सुवेज कनाल से होता हुआ जाता है, शंघाई तक पहुंचता है, जहां से चीन का कारोबार चलता है। चीन का सबसे ज्यादा यानी करीब 80% कारोबार जो है वो इसी रास्ते से आता है, और यहीं पर भारत भी है जो कि हिंद प्रशांत महासागर के इलाके के अंदर एक बड़ी ताकत है। साथ ही यहां पर वो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का डिलेमा है, जिसे चीन के राष्ट्रपति भी मलक्का डिलेमा कह चुके हैं। लेकिन अब चीन की कोशिश है एक नया रास्ता बनाने की, जो इस रास्ते के मुकाबले लगभग आधा है, यानी वो उसे एक छोटा रूट देता है, शॉर्टकट देता है, और ये शॉर्टकट है ये नॉर्दर्न सी रूट जो आर्कटिक के रास्ते जा रहा है, जहां रूस के साथ मिलकर चीन की कोशिश है इस नए रास्ते को बनाने की, ताकि वो सुवेज कनाल यानी अदन की खाड़ी और सुवेज कनाल का ये रास्ता जो यहां से आ रहा है इसको टाल सके। साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से उसका भी बड़ा मात्रा में तेल आता है, उसके लिए भी एक अल्टरनेटिव रूट निकाला जा सके, और यही सारी कोशिश और कवायद चीन की चल रही है इस पूरे इलाके के अंदर। और सुवेज कनाल को लेकर जो सारा संकट है वो इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि इसी सुवेज कनाल के पास, इसी अदन की खाड़ी में हूथियों के हमले भी हो रहे हैं, और चीन का सारा कारोबार इसी के रास्ते यूरोप के बाजार तक पहुंचता है। ये सारी कोशिश यहां पर एक नया रास्ता बनाने की है, क्योंकि धरती पर तापमान बढ़ रहा है, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, और इस बर्फ के साथ साथ जो एक रिश्तों की बर्फ थी वो नए सिरे से जम रही है। भारत के ठीक बगल में यानी यहां म्यांमार के साथ में रूस अपना कारोबार भी बढ़ा रहा है, और साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर म्यांमार की ताकत बढ़ाने में एक अहम किरदार के तौर पर, एक अहम हिस्सेदार के तौर पर रूस उभरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही रिफाइनरी और एलएनजी की आपूर्ति को लेकर भी रूस और म्यांमार के बीच में इन दिनों चर्चा चल रही है। भारत के ठीक बगल में एक नई जो इबारत है उसे गढ़ने की कोशिश, एक नया पावर इक्वेशन बनाने की कोशिश, जहां चीन कर रहा है तो वहीं रूस भी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सारी कोशिश और कवायद है वो बांग्लादेश में अमेरिका के प्रभाव को कम करने, इस पूरे इलाके के अंदर, हिंद प्रशांत के इलाके में, बंगाल की खाड़ी के इलाके के अंदर अपनी ताकत की के जो मोहरे हैं उन्हें चलने की कोशिश में हर बड़ा देश, हर बड़ी ताकत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत से ही करीब अफगानिस्तान के अंदर भी एक बार फिर इतिहास करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो अफगानिस्तान जहां कभी सोवियत संघ ने अपनी फौजें भेजी थी, वहां की तालिबान निजाम के साथ में, वहां की तालिबान की सत्ता के साथ में रूस अपने संबंधों को ठीक कर रहा है। साथ ही भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र के अंदर भी अपना व्यापार कारोबार और जो अपनी जो हिस्सेदारी है या कह लीजिए कि अपनी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश रूस करता हुआ नजर आ रहा है। रणनीतिक क्षेत्र के अंदर भी भारत और रूस के बीच में सहभागिता बढ़ी है। लेकिन क्या यह केवल इसी इलाके में हो रहा है? जी नहीं, ये जरा नक्शा देखिए, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बीच में हाल के दिनों में कुछ अनोखा हुआ है। अनोखा इस लिहाज से क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले तो कनाडा के खिलाफ भारी टैरिफ लगाए थे, लेकिन हाल ही में उनका एक बार फिर हृदय परिवर्तन हो गया है, और ये हृदय परिवर्तन उनका हुआ है केवल कनाडा के साथ इसलिए नहीं कि वो कनाडा के साथ व्यापार कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि यहां भी तेल का कारोबार नजर आता है। और तेल का कारोबार कैसे नजर आता है, क्योंकि ये जो आप सीधी लकीर देख रहे हैं ये बेसिकली जो है कीस्टोन एक्सल पाइपलाइन है। ये करीब करीब 1931 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, और इस 1931 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के अंदर यहां पर कोशिश होगी जो अल्बर्टा है कनाडा का, वहां से लेकर अमेरिका के नेब्रास्का तक जो तेल का कारोबार है या जो तेल की सप्लाई है, करीब करीब 8 लाख बैरल प्रतिदिन का जो तेल का आपूर्ति है वो यहां से की जा सके, इसकी कोशिश हो रही है। ये जो पाइपलाइन थी इसे जो बाइडेन की सरकार ने पर्यावरण और रणनीतिक वजह या राजनीतिक वजहों से इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन एक बार फिर इसकी फाइल को निकाल लिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि रोजाना करीब 8 लाख कच्चे तेल के 8 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करने वाली इस पाइपलाइन को एक बार फिर रिवाइव किया जाए, उसका विस्तार किया जाए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धरती के नक्शे के ऊपर जो कुछ बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के जो मायने हैं वो व्यापार के भी हैं, कारोबार के भी हैं, सियासत के भी हैं, और सत्ता की इस रियासत के भी हैं। तो चलिए, नक्शों की इबारत समझने के बाद अब पावर प्ले में अब आपको लिए चलते हैं दुनिया के उन पावर प्लेयर से मिलवाने के लिए जिन्होंने इस सप्ताह अपने बयानों से या अपने कारनामों से सुर्खियां बटोरी। तो चलिए चलते हैं पावर प्लेयर से मुलाकात के लिए। तो देखिए, मेरे साथ आप जो चेहरे यहां पर देख रहे हैं ये पावर प्लेयर्स हैं इस हफ्ते के, और हम क्यों इन्हें पावर प्लेयर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं वो आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यहां जो सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं वो है भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की। सर्जियो गोर केवल भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी भी हैं, और साथ ही वो इन दिनों इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, लेह गए थे, लद्दाख के दौरे पर गए थे, और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया, जो कुछ वहां से हुआ, उसकी हलचल पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है, और खासतौर पर सरहद पार पाकिस्तान में तो जबरदस्त मिर्ची लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती से सर्जियो गोर ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग है। और उनके इस बयान के बाद में जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से सर्जियो गोर ने भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, महत्वपूर्ण अंग बताया, उसके बाद से पाकिस्तान जबरदस्त बौखला गया है। वो पाकिस्तान जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी नजदीकी दिखाते हुए नहीं थम रहा है। अगला चेहरा भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सियासत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग। और ली जे म्योंग से करीब एक साल पहले जब व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के लिए बड़ी अच्छे बातें कही थी, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रिश्तों के अंदर एक दरार डाल दी है, क्योंकि अब दक्षिण कोरिया से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया। वहीं ली जे म्योंग ये कह रहे हैं कि अब दक्षिण कोरिया को यह सोचना होगा कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर क्या निर्भर रह सकता है, या उसे आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाना होगा। और इसी बात को लेकर इन दिनों दरार नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, सैन्य अभ्यास होता है, उस पर कैंची चला दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद से दक्षिण कोरिया की सियासत में एक खलबली देखने को मिल रही है। और ली जे म्योंग ने कहा है कि अमेरिकी प्रभाव को हम कम करने की कोशिश करेंगे। और पावर प्लेयर में अगला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की चर्चा यहां पर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यूक्रेन पर पिछले दिनों उन्होंने जबरदस्त बमबारी की है, बल्कि इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पुतिन पिछले दिनों कुरिल द्वीप पहुंचे थे। वो कुरिल जो कि प्रशांत के महासागर के इलाके के अंदर है और जापान और रूस के रिश्तों में खटास का सबब रहा है, क्योंकि इस कुरिल द्वीप की पहली बार यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे और पुतिन के दौरे से जापान सख्त तौर पर नाराज है। कुरिल द्वीप पर अपना दावा करता है जापान, तो वहीं रूस भी अपना आधिपत्य जताता है, और इस मुद्दे को लेकर जापान और रूस के रिश्तों में एक तलखी रही है, और इसीलिए हम इस चेहरे की भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक और चेहरा है जो कि पश्चिम एशिया की सियासत से जुड़ा हुआ है, भारत का करीबी दोस्त भी है, क्योंकि यहां जो आप शख्स देख रहे हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं, और उनके एक फैसले ने खासी खलबली मचा रखी है, क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ में तमाम व्यापार और वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको यह खबर आम लग सकती है, लेकिन यह ईरान और यूएई के रिश्तों के लिहाज से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बहुत लंबे समय तक ईरान का कारोबार यूएई से होता था। दुबई के अंदर कई जो ईरानी कंपनियां थी उनके मुख्यालय मौजूद थे, उनका सारा व्यापार कारोबार वहां से होता था, और अब ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला का आरोप जताते हुए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कह दिया है कि ईरान के साथ किसी तरीके का व्यापार भी नहीं होगा, कारोबार भी नहीं होगा। और जो कुछ पश्चिम एशिया की घटनाक्रम में, पश्चिम एशिया की सियासत में पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसमें काफी महत्वपूर्ण माना जाता है यूएई के इस फैसले को, क्योंकि अब तेल के कारोबार में ओपेक के का जो कुनबा है उससे अलग होने का फैसला तो यूएई पहले ही कर चुका है, भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, भारत का एक महत्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक साझेदार है यूएई, और इसीलिए हम पावर प्लेयर्स की चर्चा करते हैं क्योंकि उनके फैसले, उनके बयान आगे तक जो सत्ता की राजनीति है उसका रुख और रवैया तय करते हैं। तो चलिए पावर प्ले में बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ, जहां सीधे तौर पर हम बात करते हैं भारत पर होने वाले असर की, वो घटनाएं जो भारत के लिए इंपैक्ट लाती हैं, भारत पर असर डालती हैं। यहां हम बात करेंगे भारत और जापान के रक्षा संबंधों की, क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है, और रक्षाबंधन के मद्देनजर भारत और जापान के इस रक्षाबंधन की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि भारत और जापान के नेताओं के बीच में रक्षाबंधन के एक नाते की चर्चा भी पिछले कुछ दिनों में हुई थी, क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची जब भारत आई थी तब उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन कहा था, और उनकी इस चर्चा के बाद उनके बीच में ये जो रिश्ता नया जोड़ा था और इसीलिए इंडिया इंपैक्ट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं भारत और जापान के रक्षाबंधन की, क्योंकि ये रक्षाबंधन कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। जुलाई में जापान की प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची भारत के दौरे पर आई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े स्नेह के साथ जापान के प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन कहा था। साथ ही इस दौरे के साथ साथ भारत और जापान के रक्षा संबंधों में भी एक नई करवट, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सानाई ताकाइची को जब अपनी छोटी बहन कहा तो वो केवल एक संबोधन नहीं था, बल्कि भारत और जापान के रिश्तों के अंदर 16वीं शिखर सम्मेलन के अंदर जो समझौतों की फेहरिस्त तैयार हुई है उसमें भी रक्षा पर खासा जोर था। और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि यह रक्षाबंधन भारत और जापान के रक्षा संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची के बाद भारत के दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री, किस तरीके से भारत और जापान मिलकर नए युद्धपोत तैयार करेंगे उसको लेकर चर्चा हुई, किस तरीके से डिफेंस एंटेना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई। भारत और जापान मिलकर न केवल युद्धपोत बनाएंगे बल्कि तकनीक साझा करेंगे, यानी जापान की टेक्नोलॉजी, भारत का जो निर्माण कौशल है वो एक साथ आएगा। और साथ ही पहली बार नजर आएंगे भारत और जापान के फाइटर जेट्स, यानी जो भारत आने वाले हैं जापान के फाइटर जेट्स उनके साथ एक साझा सैन्य अभ्यास किया जाएगा। सितंबर के महीने में यह सैन्य अभ्यास होगा और इसीलिए भारत के थिएटर कमांड के विकास में भी जापान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत के मेक इन इंडिया को ताकत का बूस्टर डोज जापान से मिलने जा रहा है। तो भारत के घरेलू मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ाने के लिए तो जापान मददगार हो ही रहा है, लेकिन भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत के इलाके के अंदर एक नया पावर बैलेंस बनाने जा रहे हैं, इसका भी सीधा असर पड़ेगा। और सीधे सीधे तौर पर यह चुनौती है चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व की। इस दायरे के अंदर दोस्ती का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जापान भारत के साथ में क्वाड का भी सहयोगी है और साथ ही फिलीपींस के साथ भी जापान भारत अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं, वही फिलीपींस जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल्स की सप्लाई भी की है। तो ये पूरा जो हिंद प्रशांत का इलाका है उसमें भारत और जापान की दोस्ती एक नया इंपैक्ट लेके आएगी, और इसीलिए हम भारत और जापान की दोस्ती की चर्चा एक नए रक्षाबंधन के संबंध के तौर पर भी कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नए सेगमेंट या अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है सिग्नल का सेगमेंट। और इस सिग्नल के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सोना क्या कह रहा है, क्योंकि सोने की भाषा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो काफी गहरे मायने रखता है। ये सोने की जो तस्वीर है ये हर किसी की आंखों में चमक लाती है, लेकिन सोने की कीमत के अंदर आ रही जो चमक है वो कई लोगों के होश पस्त कर रही है। और इसकी चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सोना एक गंभीर संकेत दे रहा है। सोने का भाव 10 ग्राम यानी एक तोला सोना करीब 1,60,000 रुपए से पार हो चुका है, और सोने का यह बढ़ता हुआ भाव जो है पिछले 3 साल के अंदर करीब करीब 138% की बढ़ोतरी दिखा चुका है। ये 138% की बढ़ोतरी जो है ये काफी मायने रखती है, क्योंकि ये विश्व अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण और गंभीर संकेत दे रही है। दूसरी तिमाही में बैंकों ने करीब 289 टन सोना खरीदा है, ये सेंट्रल बैंकों की खरीद है। दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंक जो है वो अब सोना खरीद रहे हैं, बेतहाशा सोने और चांदी की खरीद हो रही है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की के लिहाज से काफी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी तेजी से करवट ले रहा है। सबसे अधिक सोना पोलैंड और चीन ने खरीदा है, ध्यान रखिएगा चीन खरीद रहा है और साथ ही पोलैंड भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। और ये जो सोने के अंदर बड़ी तेजी से खरीद हो रही है, 3 साल के अंदर करीब 274 टन सोना भारत ने भी वापस बुलाया है, यानी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय जो वॉल्ट्स हैं, जो बैंक्स हैं जहां भारत का सोना सुरक्षित रखा गया था, भारत ने उसे अपने ही देश में अपनी ही तिजोरी में लाकर रखना सुरक्षित पाया, मुफीद पाया, और इसीलिए यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला है जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है। डॉलर पर से दुनिया के बैंकों का घटता हुआ भरोसा सोने पर उनके बढ़ते हुए भरोसे के साथ सीधे जोड़कर देखा जा सकता है, और यही कारण है कि दुनिया में तेजी से तमाम सेंट्रल बैंक, तमाम देश सोना खरीद रहे हैं। साथ ही हाल ही में कई बयान भी सामने आए जिसके अंदर युआन में जो पेमेंट का सिस्टम चीन लाने की कोशिश कर रहा है उसमें गारंटी के तौर पर वो अपने सोने के भंडार को रख रहा है, और यही वजह है कि चीन दुनिया में एक बड़े सोने के खरीदार के तौर पर उभरा है। साथ ही सोने का एक बड़ा खरीदार जो है वो बनकर उभरा है पोलैंड भी, जिसके ठीक बगल में यानी यूक्रेन में जंग चल रही है रूस के साथ। साथ ही रूस दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने बड़े पैमाने पर अपना सोना बेचा है। साथ ही अमेरिका पर जो $40 trillion का जो कर्ज है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि अमेरिका जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो दुनिया का एक बड़ा आर्थिक इंजन है, यदि वो इस कदर घाटे में जा रहा है तो वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका डिफॉल्ट कर जाए, अमेरिका कंगाल हो जाए और अमेरिका में यदि डॉलर का वर्चस्व, डॉलर का दबदबा यदि खत्म हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ा शॉकर होगा। इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज तक के शो पावर प्ले में आज आपने जो तमाम खबरें देखी उन पर प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा और अगले रविवार को हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक बार फिर पावर प्ले की वो तमाम स्टोरीज लेकर जहां हम सत्ता की इबारत के हर पहलू को जानने समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की, बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए।

0: राष्ट्रगीत बनाम राजगान तक आई सियासी लड़ाई, बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद पर पोस्टर से किया वार, तो कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर सतीश महाना पर राष्ट्रगान बीच में छोड़ने का आरोप लगाया। आरक्षण में बदलाव की मांग पर सुलगी सियासत, सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च, अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। पुणे में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की व्याख्या गलत, गिरिराज सिंह बोले राहुल को भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो, चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार, घेर कर लाठी डंडों से पीटा गया, नाबालिग को पकड़ा गया, मास्टरमाइंड फरार। और ऑपरेशन सिंदूर में तमाम पाकिस्तानी आतंकी अड्डे फिर से सक्रिय, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की भी पोल खुली।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। आरक्षण पर फिर सड़कों से सवाल उठे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब लखनऊ तक पहुंच गई है। आज लखनऊ में आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर मार्च किया गया। अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले यह मुद्दा गर्माने लगा है। प्रदर्शनकारी जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार पर महत्व देने और क्रीमी लेयर जैसे इन व्यवस्थाओं पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ आरक्षण समर्थकों का तर्क है कि सामाजिक पिछड़ापन केवल गरीबी का सवाल नहीं है, सदियों की असमानता और प्रतिनिधित्व की कमी को सिर्फ आर्थिक पैमाने से तोला नहीं जा सकता। अब इन तर्कों के बीच में यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत आसमान छू रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से गूटियां बिछा रहे हैं, लेकिन असली बहस यह है कि न्याय का पैमाना क्या हो, अवसर की बराबरी कैसे हो और बदलते भारत में सामाजिक न्याय की नीति का अगला अध्याय कैसा हो। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट।

0: आरक्षण ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये भारत के सामाजिक इतिहास का वो अध्याय है जिसमें वंचना भी है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी है और बराबरी का सपना भी। लेकिन अब सवाल सड़कों पर है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठी। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को महत्व देने और क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था की मांग उठाई। यूजीसी के इक्विटी नियमों को लेकर भी विरोध सामने आया और अब वही बहस लखनऊ तक पहुंच गई है।
1: 80 साल के संविधान ने हमको कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, और जो था वो तीन तीन के छीना जा रहा है। पहले किले छीने, घर छीने, रियासतें छीनी, धर्म छीना, शास्त्र छीना, और अब हमारे बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं।
2: तो अधिकार तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने ही दिया था, उनको 10 साल के लिए ही दिया था, 10 साल के लिए ही आरक्षण था। लेकिन आज 10 साल से 70-80 साल हो गया, अभी तक वो नहीं उठ पाए हैं, तो अब क्या उम्मीद है, क्या उठ पाएंगे?
3: अभी वो देश में फूट डालो राज करो का जो वो तरीका निकाल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हर समाज के लोग इससे जागृत हो चुके हैं, सवर्ण समाज उनका विरोध कर रहा है।
0: इससे एक दिन पहले आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की।
4: केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे, और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
0: लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 2-2 कह दिया कि इस पर बहस नहीं हो सकती।
5: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं।
0: केंद्र में मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि आरक्षण हटाने का विचार संविधान विरोधी है।
6: सभी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है, सभी को न्याय देने वाली सरकार है।
0: आरक्षण के समर्थकों की दलील है कि सदियों की सामाजिक असमानता को केवल आर्थिक पैमाने से नहीं मापा जा सकता। दूसरी तरफ आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि बदलते भारत में दशकों पुराने व्यवस्था की समीक्षा क्यों न हो। ये वो बिंदु है जो बहस के केंद्र में है, क्योंकि आरक्षण पर फैसला सिर्फ आज के प्रदर्शनकारियों का नहीं होगा।

0: हम दंगल की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले कुछ सवालों पर नजर भी डाल लेते हैं। सवाल नंबर एक, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से अब आरक्षण का मुद्दा गर्मा रहा है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये यूपी पहुंच गया है। सवाल नंबर दो, क्या आरक्षण को लेकर वोट बैंक के हिसाब से सियासत हो रही है। और सवाल नंबर तीन, आरक्षण मिलने के आधार में बदलाव की मांग ये कितनी जायज है। खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमिताभ सिन्हा जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विजय राठी जुड़े हैं, हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं, हमारे साथ करणी सेना के लीडर सूरजपाल सिंह अम्मू जी भी जुड़े हैं, और कुछ देर के बाद हमारे साथ प्रदर्शनकारी छात्र भी जुड़ेंगे। लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट देखा है, तो अब आप बताइए कि क्या आपकी सरकार आरक्षण की समीक्षा करने के लिए तैयार है। ब्रजेश पाठक तो कह रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी दलों की जो राय है वो बिल्कुल अलग दिख रही है। आप क्या तैयार हैं आरक्षण की समीक्षा के लिए?
1: राहुल जी नमस्ते। अभी अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, प्रोटेस्ट, तो मैं इसी प्रोटेस्ट से आपसे बात करना चाहता हूँ कि मेरा जो अभी नीचे इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप वैसे ही मेरा परिचय कराए। मैं यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के नाते और एक कानून के विद्यार्थी के नाते यहाँ आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष या विपक्ष में मुझे कुछ नहीं करना, मैं अंडरलाइन कर दूँ,
0: ठीक है।
1: हाँ, मैं एक देश के नागरिक के नाते जो उचित है, जो मेरी दृष्टि में और जो न्याय व्यवस्था की दृष्टि से उचित है, मैं उस पर थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। यदि मैं ही शुरू करना अभी भी, तो आप बताएं मैं शुरू।
0: हाँ हाँ बताएं कि न्याय व्यवस्था की दृष्टि में क्या सही है।
1: बहुत सुंदर, आपने आज बहुत संवेदनशील विषय उठाया है राजनीति, मैं आपके बधाई देता हूँ और आपके चैनल को बधाई देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे आमतौर पर मीडिया थोड़ा सा किनारे लिखकर लगती है। अभी तेलचट्टों का एक मसला आया था जिसमें बहुत ही ज्यादा विषय उठाए गए और आवश्यक था या अनावश्यक था, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। अभी तो ये विषय आया है, इस विषय पे एक मन में उद्वेलना चल रही है देश में, एक बहुतायत संख्या, एक बहुत बड़ी संख्या में छात्रों किया, और उसपे मैं परिप्रेक्ष्य में न्यायिक बता रहा हूँ। 2024 के अगस्त महीने में एक संविधान पीठ के जजमेंट ने 6:1 के रेशियो में संविधान ने एक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह में, उसमें उसने कहा था कि जो जो विषय है आरक्षण का, उसमें जो संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में एक दोबारा विचार की जरूरत थी, और उसको संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चर्चा भी की, विशद चर्चा की 7 सदस्यीय जज, और उस पे उन्होंने एक अपना जो अस्तित्व दिया वो ये दिया कि उसमें जो क्रीमी लेयर, यानी कि एक परिवार जिसमें कि परदादा से लेके आज बच्चा तक एक सिविल सर्विस में क्वालिफाई करने के बाद में IAS IPS या बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे वाले व्यक्ति का, यदि कोई बच्चा आज रिजर्वेशन पाता है तो किसके कॉस्ट पे पा रहा है? वो पा रहा है उस गरीब जो मुसहर ऐसे जो एकदम बहुत बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड जो शेड्यूल कास्ट है उनके बच्चों के कॉस्ट पे वो पा रहे हैं, तो उसके ऊपर में विचार की जरूरत है। लेकिन मैं इस पे उस जजमेंट की साधुवाद देने के साथ में आलोचना भी करता हूँ। उसमें ये जो व्यवस्था की जिम्मेवारी उसने स्टेट गवर्नमेंट्स पे डाली, मैं चाहता था कि ना हो, मैं वहां था, उठू, मैंने ये ऑब्जेक्शन भी अपना रेज किया, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है, इसमें राजनीतिक दल कोई हाथ नहीं डाल, इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट जैसे बहुत से ऐसे मसले आते हैं जिसमें कि वो खुद स्ट्रॉन्ग एक्शन और स्टैंड लेता है इन द लाइट ऑफ द
0: डन सर। आपकी बात आ गई है, ठीक है सर। थोड़ा पॉलिटिकल पार्टियों का भी पक्ष जान लेते हैं, प्रोफेसर विजय राठी,
1: पॉलिटिकल पे थोड़ा सा चर्चा करूंगा राजू जी, आधा मिनट। देखिए पॉलिटिक्स में जो लोग इसको खंजाना चाह रहे हैं, अभी मैंने आपके ही रिपोर्ट में देखा ये जो आपके मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, अरे उसके बाल बच्चे क्या या उनके रिश्तेदार क्या आज ओबीसी में कोटा लेंगे? कोटा यदि इनको दिया जाएगा तो अपराधी हैं, क्योंकि उनके पास तो अरबों की संपत्ति है। और मैं इसे ही चाहता हूं कि ऐसी एक बार एक पुनर्विचार हो, जो आज की व्यवस्था है राजीव जी, उस व्यवस्था में जब ये प्रजातंत्र है तो हर विषय पर
0: पुनर्विचार होना चाहिए। ठीक है सर, विजय राठी जी, अब आपका हम पक्ष जान लेते हैं। तब सड़कों पर छात्र हैं और प्रदर्शनकारी हैं, और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। ब्रजेश पाठक का बयान आया, फिर उसके बाद अखिलेश यादव भी, इस समीक्षा को षड्यंत्र क्यों बता रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि

0: समय के साथ समीक्षा आवश्यक है, और वो तो समीक्षा में समस्या क्या है?
1: नहीं नहीं देखिए राजीव जी, मैं एक चीज बता दूं आपसे। अभी मैं अखिलेश यादव जी का नाम, इन्होंने कहा कि पैसा है, ये है, सब कुछ इन्होंने चीजें बताई उसमें। अभी आप देखिए कि जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो गंगा जल से धुलवाया था इन लोगों ने उसको, वो सम्मान कहां से आएगा? जिस सामाजिक सम्मान की हम बात करते हैं, उसके बाद जब चुनाव चल रहा था तो इटावा में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, एक मंदिर को धुलवाया था इनके लोगों ने, मंदिर को धुलवाया था उनके निकलने के बाद। तो जिसकी हम बात करते हैं ना सामाजिक सम्मान की, वो तो स्थापित ही नहीं हो पाया अभी। और जो अभी आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन आप जानते हैं पहले किस पेज से शुरुआत हुई थी आंदोलन? सब जगह से शोर मचा, तो उसके बाद इन्होंने उसको चेंज करके किया रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन। और ये मोहन भागवत जी, के सुदर्शन जी, आरएसएस के मुखिया कई बार बोल चुके, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का मतलब जानते हैं क्या है? आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 57, एक एसटी का वाइस चांसलर है, एक एससी का वाइस चांसलर है, 5 ओबीसी के हैं, बाकी सारे जनरल हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ओबीसी और एससी मजदूर हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, पढ़ ही नहीं पाए, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से कमजोर है। वो हमारा जो एम था पूरा ही नहीं हो पाया। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो 30 यूनिवर्सिटी में 2 आपको एससी मिलेंगे, 4 आपको ओबीसी मिलेंगे, बाकी सारे जनरल मिलेंगे। तो क्या हम लोग योग्यता नहीं रखते क्या? क्या एससी समाज योग्यता नहीं रखता क्या बनने की, आगे बढ़ने की? लेकिन जरूरी होता आगे बढ़ने के लिए वो रिसोर्स, और रिसोर्स आते हैं कमाई से, और कमाई हम लोगों के पास है नहीं। मजदूर और होता क्या है, खेती करते हैं। और अगर किसी को थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए तो जब वो घर खाली करता गंगा जल से धुलवाया जाता, मंदिर से निकल जाए मंदिर को गंगा जल से धोया जाता। और आप कह रहे हम सक्षम हो गए हर तरीके से? नहीं, ये जो मानसिकता है इस मानसिकता को दूर करना पड़ेगा।
0: लेकिन जो सामने प्रदर्शनकारियों का तर्क है, मैं उसी तर्क को आपके पास रख रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर तो ठीक है, लेकिन अगर आरक्षण आप कह रहे हैं कि अभी तक अखिलेश यादव नहीं जो है वो उनका परिवार नहीं ऊपर उठ पाया है, तो क्या ये आरक्षण की भी एक तरीके से खामी नहीं है कि वो सफल नहीं है? दूसरे बिंदुओं पर अब आपको विचार करने की आवश्यकता है। आरक्षण सामाजिक रूप से ऊपर नहीं ला पा रहा है लोगों को तो
1: नहीं। एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात ये लोग दलील देते हैं कि जो आर्थिक रूप से लोग कमजोर है, तो 10% इन्होंने दे दिया। क्या कोई बोला? क्या कोई ओबीसी बोला? कोई एससी बोला? कोई नहीं बोला। लेकिन देने में, ये देने की बात नहीं कर रही, ये हटाने की बात कर। हमने किसी को देने पर मना नहीं किया, लेकिन ये कह रहे कि इन लोगों से छीन लीजिए। अरे आप लोग 95% क्यों इतना दिक्कत आ रहा है?
2: हम तो पढ़े लिखे भी हैं, समाज को बेहतर करना चाहिए, ये बदला रहे
0: सर। एक एक करके मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, सब सबके विचार सुन।
1: इतने इतने इतने उत्तेजित मत हो, थोड़ा पेशेंस रखो।
2: अरे तो अरे
1: हमारे तो यूनिवर्सिटी में
2: मर्यादा रखिए विजय राठी,
1: हमारे
2: मर्यादा रखिए,
1: हमारे पद को
2: लगाओ समाज की।
1: नॉट फाउंड सुटेबल, हम तो सुटेबल ही नहीं है नौकरी के लिए, ये लोग सुटेबल है। क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं भाई इनमें, बस इसीलिए मानसिकता है।
0: ये लोग कौन,
1: ये मानसिकता जो है ना, जब तक वो नहीं मिटेगी, बाबा साहब ने यही बोला था, जब तक वो मानसिकता नहीं निकलेगी जब तक ये चीज चलती रहेगी।
0: ठीक है,
1: आज भी मैं आपसे बता रहा हूँ, सर्वे करा लीजिए।
0: मल्लुक नगर जी ये लोग काम मिलेंगे। ठीक है, मल्लुक नागर जी से सुनते हैं, उनका उनका पक्ष क्या है इस पर, क्या वो समीक्षा के पक्षधर हैं या नहीं है? क्योंकि योग्यता की बात कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, कि योग्यता को आधार माना जाना चाहिए। मल्लुक नागर जी, उनको शायद ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। मल्लुक नागर जी, आपको आ रही है आवाज?
3: जी हेलो।
0: हाँ जी, हाँ
3: अभी आई, अभी आई।
0: जी जी
3: जी, हम इसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट कह, हाँ हम इसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि जब देश की संसद में अमित शाह जी ये कह चुके कि आरक्षण चाहे पिछड़ों का हो चाहे दलितों का हो, और यहां तक कह दिया था कि बाबा साहब भी आ जाएं वापस, तो वो भी नहीं सोच सकते कि इसे खत्म करें, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। टेलीविजन पे बहस करके और कुछ लोग भाजपा से जुड़े हुए दिखा के, या कोई व्यक्तिगत स्तर पर बयान दे दे, और जो कोई सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहे या भाजपा या एनडीए को कमजोर करना चाहे, तो ऐसा क्यों देश की संसद में अमित शाह जी के बयान को कौन बदलना चाहता है? आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, और बाबा साहब ने जो अपना संविधान लिखा है और उसमें व्यवस्था की है और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो कौन है इस देश में जो दलितों को उभरने नहीं देना चाहता? कौन है इस देश में जो पिछड़ों को उभरने नहीं देना चाहता? कौन है जो कुठाराघात करके पिछड़े और दलितों को कमजोर करना चाहता है? या कौन है जो आज की तारीख में झूठी अफवाह फैला करके जिस तरह 2024 के चुनाव में फैलाई थी, कौन है जो इस षड्यंत्र को रच के देश में एनडीए को कमजोर करना चाहता है? कौन है जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाना चाहता है?
0: मल्लू जी, आपको भी ये प्रोटेस्ट एक षड्यंत्र लग रहा है?
3: चिराग पासवान जी,
0: आपको भी ये षड्यंत्र लग रहा है?
3: नहीं, हमको ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है, उनका प्रोटेस्ट करना अधिकार है, उनको करना चाहिए, उनकी मांग को संज्ञान लेना चाहिए, क्या चाहते हैं सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उनसे तालमेल बैठाना चाहिए और उनसे एमिकेबली उनको समझना चाहिए या समझाना चाहिए या उनसे हमें समझना चाहिए।
0: तो पर मैं वही तो पूछ रहा हूं कि आप उनको समझाइए ना कि दलितों को वो ये कह रहे हैं कि एक योग्य व्यक्ति इससे पीछे छूट रहा है, जो ज्यादा प्रतिभावान है, जिसके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं वो पीछे छूट जाता है, उसको नहीं मिल पाती जगह, सीट्स बड़ी कम होती है, पहले इतना कॉम्पिटिशन है उसमें भी उनको जगह नहीं मिल पाती है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है, वो ये कह रहे हैं। आपका इस पर क्या पक्ष है?
3: उनके हिसाब से उनकी बात उनको ठीक लगती है और पहले झटके में देखने पे वो बात सही हमको भी लगती है, पर जिन लोगों को आज भी दवाई को पैसे नहीं है, छत नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, अगर काम ना मिले अगले टाइम का खाना कहां से खाएं, तो क्या पूरी जिंदगी भर वो कीड़े मकोड़ों की तरह दबे रहे? अगर बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की है कि उनका उत्थान हो, दलित ऊपर आए, एससी एसटी ऊपर आए, आदिवासी ऊपर आए, और राजीव जी आपको जानकारी भी नहीं होगी, जो ये लोग मुसलमानों की वकालत करते हैं, वहां दलित मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे करीब 600 किलोमीटर लंबाई में और 70-80 किलोमीटर आगे की तरफ, और पूरे जम्मू और कश्मीर में कि 29.4% आबादी जो गुजर मुसलमान या गुजर बकरवाल, और उनको अगर रिजर्वेशन का फायदा 370 के हटने के बाद मिला है तो उनसे फिर छीन लोगे 3 महीने में ही या 2 साल में ही फिर छीन लोगे?
0: मल्लुक नागर जी, मैं एक और सवाल आपके पास, एक और सवाल के बाद दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। मल्लुक नागर जी, वो कह रहे हैं कि ठीक है आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये जानना चाह रहे हैं कि कम से कम ये तो पता करिए ना कि किस किस को आरक्षण का लाभ मिल गया है, किन को अभी मिल रहा है और किन को नहीं मिला है, एक श्वेत पत्र भी वो कह रहे हैं कि जारी किया जाए।
3: ये आप किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात कर रहे हो या पिछड़ी और दलित जातियों की बात कर रहे हो? मेरा काउंटर प्रश्न है पहले, ताकि मैं जवाब उसी हिसाब से दे सकूं।
0: नहीं, ये उनकी मांग है, मैं सीधे से आपके सामने वही रख रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि कितनी जातियों को अब तक आरक्षण मिल गया है, उस जाति में कितने परसेंट लोगों को आरक्षण मिल गया है, हाँ कितनों को नहीं मिला है, वो भी मतलब पूर्णतः जिनको मिला ही नहीं वो भी तो चेक होना चाहिए।
3: राजीव जी, अगर आपके प्रश्न में कंफ्यूजन है या उनके प्रश्न में जो आपसे कहा कंफ्यूजन है, तो मैं बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूं, व्यक्तिगत अगर किसी को फायदा मिला है वो अलग विषय है, आप पूरी जाति की बात कर रहे हो पिछड़ों की या दलितों की बात कर रहे हो पिछड़ों की?
0: नहीं, मैं तो उनका ही प्रश्न कर रहा
3: था। आप पूरी जातियों की बात कर रहे हो पिछड़े और दलितों की?
2: मैं
3: वो क्वेश्चन अधूरा है।
0: आप इस सवाल को, चलो कोई बात नहीं, नजर मैं तो उनका ही प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियां जो जब एससी में जो कैटेगरी जिन जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, हाँ। उनके बारे में पता चलना चाहिए कि किस किस को आरक्षण का लाभ मिल गया, जातियों को कितनों को नहीं मिला है और कितने को अभी तक जो है नहीं मिला और कितने को अभी मिल रहा है।
3: तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आरक्षण का फायदा पिछड़ों को तमाम और दलितों को तमाम मिलना चाहिए और जिन जातियों को नहीं मिला है उनको भी मिलना चाहिए, फिर आरक्षण हटाने की बात कहां से आ गई? पिछड़ों की और दलितों की आरक्षण हटाने की बात कौन करेगा इस देश में? वो सामने आए और वो करे और वो फिर अगर प्रदर्शन कर सकता है तो दूसरे लोग प्रदर्शन पे निकल के फिर क्या होगा?
0: ठीक है सूरजपाल सिंह अम्बू जी, आपका आरक्षण ये जो आंदोलन हुआ उस पर आपकी राय क्या है?
4: मेरा राजीव सीधा सीधा कहना है कि तो आरक्षण हटाओ वाला विषय ही नहीं है। हाँ। आरक्षण रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आरक्षण में हाँ। सुधार की बात कर रहे हैं। सिन्हा साहब बैठे बहुत वरिष्ठ लोग हैं, जो वाजपेयी जी की सरकार में वार रूम के हेड हुआ करते थे, प्रवक्ता भाजपा के, वरिष्ठ मीडिया संभालते थे। मलूक भाई बोल रहे थे बकरवाल गुजरों की बात कर रहे थे, नागर साहब आप तो रिश्तेदार हो, खटानाओं की, अदानाओं की, भावनों की और तवरों की भी चिंता कर लो, उनमें भी गरीब है, गरीब ब्राह्मणों में भी है, गरीब राजपूत बनिया और जातियों में भी है। बड़े भैया आपको उनकी चिंता है, हम आरक्षण हटाने की बात कहां कर रहे हैं, हम तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं और जिनको चिंता है, अखिलेश यादव को चिंता है, मायावती को चिंता है, अरे इनको चिंता इस बात की है कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये लोग आरक्षण को बंद करने के नाम पर गरीबों का शोषण कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग में क्या गरीब नहीं है? अति गरीब जिनको आज तक लाभ नहीं मिला आरक्षण का, हम तो उनकी चिंता कर रहे हैं। हम गरीब जाटों की चिंता कर रहे हैं, हम गरीब बाल्मीक की चिंता कर रहे हैं, हम लोधी पासी और धोबी की चिंता कर रहे हैं, ना करें, उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला भैया। हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं,
0: ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत मिला तो है,
4: हम तो आपको सर 10%, अरे 10% के आपको पता है नियम और कानून क्या है? उसके अंदर सरलीकरण की मांग कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, सरलीकरण का विषय नहीं है
2: ये, फॉरवर्ड क्लास के लिए है
4: ईडब्ल्यूएस।
2: आप सुनिए,
4: आप मेरे को मत बताइएगा, मुझे मालूम है क्या, मुझे मालूम है अमिताभ भाई भाजपा के नाम पर यहाँ पर बैठ के दादागिरी मत करो, अब आपका सम्मान करते
0: हैं के तौर पर बैठेगा।
4: राजीव जी को बोल रहा था प्लीज,
0: सबको एक ही करके सुनेंगे ना सर, जो सेंसिटिव टॉपिक है उनका भी तर्क आने चाहिए। मैं आप सबके पास आऊंगा, सूरजपाल जी कर दीजिए, आप 30 सेकंड में कंप्लीट करिए।
4: जंतर मंतर पर, जंतर मंतर पर हम गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीब ब्राह्मण की, गरीब बनिए की आवाज उठा रहे हैं, गरीब गुजर गरीब यादव की आवाज उठा रहे हैं। गरीब है ना ओबीसी में, गरीब है ना बीसी में, गरीब है ना स्वर्ण समाज में, हमारे को क्यों अलग कर रहे हो भैया? हम अपने लिए नहीं मांग रहे, मलूक नागर को और सूरजपाल अम्बू को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो गरीब है, जो अति पिछड़ा गरीब है, उसकी अखिलेश यादव क्यों नहीं बात करते? गरीब मुसलमान है, अखिलेश यादव मायावती बोले कि गरीब मुसलमान को आरक्षण के पक्ष धरे कि नहीं, अरे सामान्य वर्ग के मुसलमान भी तो हैं, बताया है। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता
0: आपके पॉइंट है, मैं सबसे मलुक जी आपके पास भी आऊंगा, मैं विजय जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सतीश जी और इसके साथ साथ हमारे साथ विनीत जी भी उनके पास भी जाऊंगा, पर सतीश जी आप अपना पक्ष इसमें रख दीजिए कि वो समीक्षा की बात कर रहे हैं, आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे, ये भी एक क्लैरिटी। मैं मलुक जी आ रहा हूं, उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी वो सिर्फ समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो समीक्षा में क्या किसी तरह की कोई आपत्ति होनी चाहिए या उसमें कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है?
5: नहीं, 100% एक गहरी षड्यंत्र है। आरक्षण को कैसे खत्म करना, इसकी एक पहली पायदान है ये बाकायदा। देखिए, इस देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है उसका आधार किसी भी तरीके से आर्थिक कर दिया जाए। अब मैं आर्थिक आधार पर जो सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण मिल रहा है, जरा उसकी कड़वी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की आप जांच कीजिए सर, मुझे, मैं आपका सम्मान करता हूं, अपनी बात कहूंगा, अगर कहीं गलत होगा तो आप रोक दीजिए। मैं आपके सामने, आज तक के सामने बिल्कुल 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर भारत में जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 80% फर्जी लोग, फ्रॉड लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पिछली बार के शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री का भाई बाकायदा डिग्री कॉलेज में ईडब्ल्यूएस से आरक्षण बना। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जहां लिमिट है 8 लाख रुपए, जाकर के जो मेडिकल की पीजी कोर्स के कोर्स की आप जांच कराइए, वहां ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पाने वाले लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए में दे करके कहीं ना कहीं सीट ली है, ये कच्चा सच है। दूसरी बात देखिए, सुनिए राजीव जी, अभी बात होगी ना,
0: मैं क्रीमी लेयर पर भी बात रख लीजिएगा अपने,
5: सुनिए बिल्कुल क्यों नहीं, देखिए सुनिए आप एक बात,
4: क्रीमी लेयर पर आएंगे सतीश भाई, आएंगे
5: बिल्कुल। देखिए सर, अभी क्रीमी लेयर, क्या कोई दलित आदमी का, भारत का समाज इतना खुल गया है कि अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए तो क्या वो सामाजिक रूप से कमजोर नहीं होगा? एक बात, इस देश के राष्ट्रपति के साथ
4: तो क्या मायावती को, क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए? क्या सुनिए क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए सतीश भाई, क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए?
0: सुन लेते हैं, 30 सेकंड में आप कंप्लीट करेगा सतीश जी, 30 सेकंड
4: आरक्षण चाहिए।
0: सूरज जी मैं समय दूंगा आपके पास, सबको समय दूंगा ना, 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे।
5: इस देश का आदमी, नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ करके आरक्षण समीक्षा नहीं, आरक्षण खत्म करने तक की अगर आप बात करेंगे वहां तक बात करेंगे। एक बात, इस देश के राष्ट्रपति के साथ बॉडी टच होता है,
4: आरक्षण खत्म करने का कोई विषय नहीं है।
5: सुनिए
4: सतीश जी, मैं आपको हाजिर, सुनो देश को हाजिर नाजिर बन के करूँ, आरक्षण हटाने की बात ही नहीं है, हम आरक्षण में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण को हटाने की बात ही कौन कर रहा है?
5: मेरी बात सुननी चाहिए, इस देश के
4: मेरा कसूर है क्या? मेरा कसूर है क्या?
5: अगर मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूँ, मुझसे पूछा गया था कि तुम ठाकुर पैदा होगे या बढ़िया पैदा होगे या ब्राह्मण पैदा होगे, है ना, मुझसे पूछा गया था। आपने बढ़िया ठाकुर समाज में पैदा होने के लिए कोई परीक्षा दी है?
4: तो हमारी परीक्षा
5: का मौका मुझे नहीं दिया। सुनिए, ये एक सामाजिक भ्रांति है सर, एक छोटी सी बात कहता हूँ। देखिए, इस देश में अभी जो कांग्रेस के बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किस तरह का बिहेवियर किया गया,
4: आप क्रीमी लेयर को कब बोलिएगा कि आरक्षण छोड़े? क्रीमी लेयर को बोलिएगा आरक्षण छोड़े सर,
5: सुनिए
4: बोलिएगा ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को बोलिएगा, क्लास वन बाम से वालों को बोल, सतीश भाई बाम से वालों को बोलिएगा, बाम से वालों को बोलिएगा कि वो जहर ना बोए, वो गरीब बाल्मीक को देना, गरीब जाटों को देना जी आरक्षण।
5: आप मुझे बोल रहे
4: गरीब, गरीब जाटों को देना जी, गरीब जाटों को दो, सतीश भाई गरीब को दो आरक्षण, जो शेड्यूल कास्ट
5: से हो रहा है,
4: जो शेड्यूल कास्ट ना
5: नहीं अब सतीश बोलेगा
4: आरक्षण, गरीब को, गरीब जाटों को, गरीब बाल्मीक को, गरीब धोबी को, गरीब कुमार को, आप लोग खा रहे हैं,
0: एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं,
4: गरीब बाल्मीक का हक है, गरीब बाल्मीक का हक है,
5: सुनिए
4: गरीबों का हक खा रहे,
5: आरक्षण एक अधिकार है, हमने लिया,
4: राहुल गांधी और आप लोग मिलकर गरीबों का हक कर रहे हैं।
0: ठीक है सूरज जी, ठीक है सतीश जी, आप मेरा भी प्रश्न सुनिए, मेरा भी प्रश्न सुनिए, समीक्षा की बात पर क्रीमी लेयर पर आपकी राय आ गई है, आप तो ये मानते हैं कि वो मिलना चाहिए? नहीं,
5: गलत बात, देखिए
4: हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं,
5: एक गलत आदमी आपके सामने बोलना चाहता है,
4: हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं,
5: आप सुन भी नहीं रहे,
4: रिफॉर्म होना चाहिए नहीं,
0: सतीश जी, सतीश जी रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए नहीं, सिंपल से सवाल इस पर आपका हाँ या ना पर जवाब दे दीजिए,
5: इनकी आवाज कम
0: सूरज जी प्लीज, सूरज जी प्लीज,
5: आप सुनिए,
0: सिर्फ आप 20 सेकंड में कंप्लीट करिए,
5: मेरी बात सुनो, इस देश के दलितों ने आरक्षण नहीं मांगा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण नहीं मांगा था, कौन कहता कि हमने आरक्षण मांगा था, है ना,
4: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम सम्मान करते हैं, पर देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश नहीं, 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, काम
5: चौकवा
4: धमकी दे रहे हो क्या आप? धमकी दोगे? आप धमकी दोगे?
5: क्यों नहीं बोलने दोगे आप मुझे?
4: आप धमकी दोगे क्या?
5: नहीं बोलने दोगे? क्यों नहीं बोलने दोगे?
4: भूल गए क्या? तहजीब भूल रहे?
5: क्या बकवाते रखू?
4: यही आरक्षण का यही फायदा है,
5: आप भी
4: सुने
5: अम्मू जी मेरी बात,
4: गांधी साहब तक सुन रहे हैं आपको,
5: अम्मू जी मेरी बात
4: सुन रहे हैं,
5: मेरी बात को सुनिए,
4: तमीज से बात करो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, धमकी मत देना, धमकी मत देना, धमकी मत देना, धमकी मत देना
0: सर, हम लड़ेंगे,
4: जाओ आरक्षण, गरीबों का हक खाने वालों,
0: सतीश जी आप सूरज जी दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों सबकी आवाज आ रही है और जिस लहजे में जो बोल रहा है वो सब दर्शकों के बीच में जा रहे हैं, सर लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, लड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम तो चिंतन, हम तो चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हम तो चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मैं आप दोनों को माफी के लिए, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक में चाहता हूँ कि चर्चा होनी चाहिए, नहीं नहीं आप दोनों ऐसे लड़ेंगे ठीक नहीं, मैं विनीत जी को चर्चा का हिस्सा बनाते हैं, विनीत जी मैं अमलुक जी आपके पास भी आ रहा हूँ, विनीत जी की बात आ जाए उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है वो तो क्लियर है ही, वो तो क्लियर है, मतलब हमने बयान सुनी लिया है, क्लियर कह रहे हैं कि भाई अधिकार है, हक है और कोई खैरात नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई हमें अब शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, कि भाई कॉलेजेस में हमें जो सीट्स मिलनी चाहिए थी, हम इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स वाला उसको नहीं मिल पा रहा है, कम मार्क्स वाला उसको मिल जाते हैं, तो वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जिसको एक बार हक मिल गया उसको मिल गया, ठीक है उसको मिल जाए, लेकिन बाद में उसी फैमिली में आगे वही चीजें कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए ना?
6: राजीव भाई सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर ले हम लोग कि जो मौजूदा सरकार एनडीए की है और आरक्षण के प्रति कितनी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ये दो वाक्या से आपको समझ में आएगा। 2018 में जब एससी एसटी कानून को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया था, उस समय हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उन्होंने पहुंचा इसके बारे में पुनर्विचार याचिका दर्ज किया, उसके बाद से सरकार ने इसको फिर से उचित रूप में इंटैक्ट कर दिया। दूसरी बात याद कीजिए, 2018 में एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? इसी सरकार ने दिया था। और क्या राजीव भाई हम भूल जाते हैं कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के आरक्षण पे क्या विचार थे? ये जरूर याद रखिएगा। अब हम आते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने क्या कहा था। बिल्कुल सही कहा था, ये कोई भीख नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा संविधान की समीक्षा कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि तीन आधार बनाए गए थे आरक्षण के, एक शैक्षणिक, एक आपका इकोनॉमिक जिसको कि हम आर्थिक कहते हैं, और एक जो है सामाजिक, जिसमें सबसे प्रमुख है सामाजिक। ऐसा आपने कई बार देखा होगा।
0: लेकिन विनीत जी, वो ये पूछते हैं कि आरक्षण अपने मंसूबों में कितना कामयाब हुआ और क्या अब उसकी समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो हटाने की बात नहीं
6: भाई। हाँ राजीव भाई, 30 सेकंड में। देखिए समीक्षा शब्द जो है ना सही नहीं है, उसको और सुदृढ़ करने की बात है, क्योंकि हमें उनसे चेतने की बात है जो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार कर रही थी कि ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रही थी, टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में क्या कर रही थी, 77 मुस्लिम कम्युनिटीज को ओबीसी में लाने की बात कर रही थी। देखिए जो लोग कहते हैं इस बात को लेकर, ये बात नहीं समझते हैं कि आज के समय में भी ऐसे सामाजिक विद्वेष है जहां पे किसी व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, किसी व्यक्ति के हाथ से छुआ पानी नहीं पिया जाता है। अंबेडकर जी कहते हैं क्या ऐसे समाज से देश की उन्नति होगी? नहीं होगी। तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि जो बाकी का जो 50% है उसमें आपको फाइट मारना है, और बाकी के जो 50% है उसमें उन लोगों के लिए है जो कि अभी भी सामाजिक, मैंने कहा कि प्रमुख तो वही है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लेकिन कोई ये कहेगा कि सरकार चाहती है कि खत्म कर देने के लिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा एक इनसेंसिबल और इनसेंसिटिव बयान कुछ नहीं हो सकता है।
0: ठीक है अमिताभ जी, अब आपने तमाम पैनलिस्ट की बातें सुन ली। मैं सतीश जी आ रहा हूं आपके पास, सर एक एक करके सबके पास चलूंगा ना।
7: सर राजीव जी एक छोटी सी, मेरी बात सुनी नहीं गई, मुझे मुझके
0: बोलने का मौका दे, 20 सेकंड में कर दिए अमिताभ जी, उनको सुनिए।
2: शुरू हो जाएंगे
7: जी। देखिए संविधान का 340 पढ़ो, 341 पढ़ो और 342 पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, उसमें कहीं भी दलित पिछड़ों के जो शैक्षिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, उसमें आर्थिक नहीं है। ओबीसी के अंदर आर्थिक बाकायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डाला गया है। आज भारत में कहीं ना कहीं एक चाल चली जा रही है, सरकारें इसको टच नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं
4: इस क्या बात हुई, क्या बात हुई राजीव, मुझे भी टाइम दीजिएगा।
0: ठीक है सतीश जी बोल रहे, मैं एक ही करके, मैं सूरज जी आऊंगा आपके पास, लेकिन अमिताभ
4: दीजिएगा, मैं आ रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए।
0: चलिए बोल दीजिए, बोलिए,
2: कौन बोलेगा?
0: लड़ना नहीं, लेकिन सिर्फ मैं चाहता हूँ तर्कों पर अपनी बात रखिए, फैक्ट्स पर अपनी बात, लड़ाई
2: में ना। मैं मुझे कहीं जाना है, अब इतना क्लाप मैं नहीं सुनने वाला, मैं इतना ही करके जा रहा हूँ। मेरा कहना है कि देखिए पुनर्विचार की बात यदि नहीं हो तो संविधान को ही ठंडे बस्ते में डाल दो, क्योंकि
7: आप जाति छोड़ो ना। अरे सिन्हा साहब, जिस दिन जाति छोड़ करके बैठोगे ना, तब आरक्षण खत्म करने की बात।
2: थोड़ा तो शिष्टाचार समझो राजीव,
0: अरे सतीश जी अब आप भी तो टोक रहे हैं,
7: गले में डाल करके बात कर रहे हो,
0: टोक रहे हैं
2: खत्म करने की। एकदम सतीश जी, ये विश्लेषक क्या है, ये तो गुंडागर्दी करता है यार। नहीं नहीं एकदम इसको मीट करिए, मेरा ये कहना है कि देखिए ये संविधान संविधान संशोधन जो है वो संविधान संशोधन यदि है तो वो क्यों है? पुनर्विचार ही तो होता है संविधान, और वैसे ही जैसे इन्होंने कहा अभी बहुत ज्ञान उगला कि उसमें आर्थिक आधार नहीं है, तो ये भी संविधान की बात कहें कि वो सिर्फ 10 साल के लिए था, उसके बाद उसको बढ़ाया गया, आज भी वो स्थायी नहीं है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है समय अनुसार। मेरा इतना ही कहना है कि जो क्रीमी लेयर है, जो वास्तव में जो आरक्षण दिया गया वो ऐसे गरीबों के लिए है, ऐसे सामाजिक पिछड़ों के लिए है जिन्होंने अभी समाज के अभी तक के भारत के विकास का लाभ नहीं लिया है, तो उसके लिए जो क्रीमी लेयर है यानी कि जिसने सारा लाभ सारा मलाई खा लिया है, वैसे लोगों को वंचित हटा दिया जाए। और दूसरा जो आपने ईडब्ल्यूएस की बात की, ईडब्ल्यूएस के में भी अभी यही जो सज्जन है ये बोल रहे थे कि इसमें सारी जाली है। अरे आप यदि थोड़ा सा ये स्क्रीन से बाहर निकल के और जाइए, जाके एक आरटीआई लगाइए, और यदि किसी को पता चले आपने निकाल लिया कि उसने गलत किया है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस होता है। नहीं ऐसे हवा में नेशनल चैनल पर बात नहीं करनी चाहिए, गलत है। और मैं अब लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा राजीव जी, ये बहुत संवेदनशील मसला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को दोबारा पहल करनी चाहिए। मैं एक लॉयर के नाते अब सुप्रीम कोर्ट में एक दोबारा अर्जी लगाऊंगा अभी, कल ही सोमवार को, और मैं ये चाहता हूं कि इस पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने जो भी चीज की है उसमें राज्यों के ऊपर में न छोड़े, क्योंकि इससे जो सही में जो लोग डिप्राइव्ड हैं उन लोगों को भी लाभ मिले, ईडब्ल्यूएस में हो या जो गरीब वास्तव में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है कोई अधिकार, उनके लिए पुनर्विचार होके उनके लिए भी एक आरक्षित हो सही व्यवस्था, ताकि उनका भी परिवार आगे बढ़े। प्रजातंत्र कोई ले आके ले जाए और हाँ। कोई जो ताकतवर बन गया वो सबों को फिर पिछड़ा बोले कि नहीं आरक्षण हटेगा नहीं, और जब स्टेटस को रहेगा, ये देखिए स्टेटस को की वजह से सारी दिक्कतें हैं। मैं कहता हूँ कि यथास्थिति हटाइए और जो भी स्थितियां हैं उस पर पुनर्विचार करके उस पर दोबारा करिए, संविधान भी ये अधिकार देता है पुनर्विचार करने का।
0: ठीक है मल्लुक नागर जी, पहले तो अमिताभ जी ने जो टीमी लेयर वाली बात कही थी उस पर आपकी आपकी क्या राय है कि जिसको एक बार मिल गया है तो क्या उसके बाद उसके आगे वाली पीढ़ी को ये मिलना चाहिए, जिसको एक बार मिल गया वो छोड़ मतलब आगे उसको क्या छोड़ नहीं देना चाहिए, और आपकी सरकार है आप कहते हैं कि हर तबके को जो है न्याय मिल रहा है तो फिर सामान्य वर्ग आज सड़कों पर क्यों है?
6: राजीव जी
0: हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले
3: मल्लुक नागर जी इसमें बिल्कुल इनको रोको जरा कौन पे नहीं, इसमें हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं गरीब कमजोर मजलूम चाहे किसी भी जाति का है उनको आरक्षण मिले इसके हम पक्षधर हैं। वो आरक्षण पहले दिया भी है ये भी सच है, आगे भी अगर कुछ देना चाहे तो इस पे पूरी देश में पूरी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन जो पिछड़ों का आरक्षण है जो दलितों का आरक्षण है वो टच ना करा जाए, अलग से अगर देना की बात आए इस पे पूरे देश स्तर पे बातचीत होनी चाहिए इसके हम पक्षधर हैं। और हमारे सूरज पाली ने बड़ी अच्छी बात कही रिश्तेदार, क्योंकि अभी बीच में नहीं वकील साहब आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बीच में नहीं, अगर ये अपने सूरजपाल जी हमारे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं और हमारे गुजरों के ठाकुरों के गोत्र मिलते हैं जाटों के भी यादवों के भी, ये सच है पहले एक थे और रिश्तेदार हैं, इनमें भी अगर इनको ऐसा लगता है और अगर ये चाहिए इनको जो ये मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या आपके नेशनल टेलीविजन पे आज ये घोषणा करेंगे कि पिछड़ों में दलितों में जाटों में गुजरों में यादवों में पालों में सैनी में कश्यप में लोहार में सब में शादियां करनी स्टार्ट करेंगे? ये पूछ लो जरा
0: सूरजपाल जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं विजय आपके पास आ रहा हूं।
4: ऐसा है मलुक भाई ऐसा जहां तक रिश्तेदारी की बात है, देखो कौन कौन कहां शादी करते हैं, कहीं तुम्हारी हमारे में कहीं हमारी तुम्हारे में, ये चलती आ रही है चलती रहेंगी। परंतु मेरी एक सिंपल सी बात है सर, 131 सांसद है आरक्षित सांसद है राजीव भाई संसद के अंदर और 1168 एमएलए हैं पूरे देश भर में अनुसूचित जाति के, वो ये तय कर लें कि हमको अब गरीब दलित को गरीब रिजर्वेशन वाले व्यक्ति को जो दलित है महापिछड़ा है उसको सीट दे देंगे, ये कह दे राहुल गांधी, ये कह दे भाजपा के लोग, ये कह दे अखिलेश यादव और मायावती, ये कहे ना ये जो अति पिछड़े दलित है जिनकी चिंता करते हैं लोग उनको टिकट दे दो ना। अरे एक का अगर रामविलास पासवान जी सांसद थे तो उनका पुत्र सांसद है, उनके भाई सांसद हैं, वो मंत्री हैं, उनके पिता मंत्री थे, विधायक एक घर में से चार चार बनते आ रहे हैं, गरीब को दे दो ना, उनको बने दो, एक घर में आईएएस है एक घर में आईपीएस है उस घर में चार चार आईएएस आईपीएस हैं, दे दो ना गरीब बाल्मीकि को और गरीब जाटव को और गरीब लोधी पासी को।
0: आपने सबका जिक्र किया ना, सार पार्टी का तो सार हर किसी की उंगली उठी हुई है, हर कोई बोलना चाह रहा है। ठीक है सर मैं इसका एक एक करके जवाब ले रहा हूँ, पहले विजय जी आप बोल दीजिए फिर मल्लुक जी आपसे भी रिएक्शन ले लूंगा, सतीश जी सबके पास हूँ, विनीत जी आपके पास भी, विजय जी नहीं पहले विजय
1: सतीश भाई अभी आपने देखा जब हम बोल रहे थे मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ सतीश जी दलित समाज से आते हैं तो आशुतोष जी की भाषा आप देख रहे थे कैसे उनको बोल रहे कि इस गुंडे को चुप कराओ कितना उत्तेजित हो रहे थे। जब तक ये मानसिकता नहीं निकलेगी ना तब तक रिजर्वेशन चलता रहेगा। और ये जो मलुक नागर जी हैं मुजी हैं ये सारे तो एक ही पाले में, ये तो उसी पार्टी के साथ है जो आरक्षण को लूटने का काम कर रही है। क्या बोला था इन्होंने अब की बार 400 पार, ये संविधान के पीछे है क्योंकि करना ही है इन लोगों को करना ही है। हम बाबा साहब के पास
4: के फेवर में काम करा झूठ साहब आप हमारे भाई आरक्षण के लिए फेवर में बात करिए, अगर कोई अपनी आपकी बात सुनेगा सोशल मीडिया पे तो ये कहेगा कि आरक्षण के साथ आरक्षण के खिलाफ बात करिए, अरे हम तो आरक्षण के फेवर में बोले तो क्या बोल रहे हो
0: विजय जी मल्लुक नागर जी तो आपके साथ ही है मतलब आज तो
4: आरक्षण लूटने वाली पार्टी के साथ
3: कश्मीर के गुजर बकरवालों को बकरी और भेड़ की तरह रखा उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया? कांग्रेस से पूछो, अपनी साथी पार्टी से।
1: अमित जी ने बोला है देश बाबा साहब का नहीं है।
0: विजय जी हम राजनीतिक टीका टिप्पणी से आज बचेंगे क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि देखिए हर वर्ग की बात आनी चाहिए। जो इस समय जो वर्ग इस समय सड़कों पर है, मैं उनका ही एक बार फिर से प्रश्न आपके पास लेकर आऊं कि आरक्षण के रूप में एक जस्टिस मिला हुआ है, लेकिन उस जस्टिस के साथ साथ इनजस्टिस एक तबके के लिए नहीं होना चाहिए ना?
1: नहीं, अमू जी ने बोला ये देश बाबा साहब का नहीं है, आप रिकॉर्डिंग निकलवाओ उनकी। इन्होंने कहा ये देश बाबा साहब का नहीं है।
0: 140 करोड़ उनका ही नहीं, उन्होंने कहा 140 करोड़ देशवासियों का
4: नहीं है। नहीं है, बाबा भीमराव अंबेडकर का देश नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश है।
0: विजय जी मेरे पर्टिकुलर सवाल का वो कह रहे हैं कि आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, जस्टिस है एक तबके के लिए। नहीं सूरज जी, फिर राउंड करें प्लीज। मैं डिबेट डिरेल नहीं करेंगे ना, इधर उधर की बात नहीं करनी है। विजय जी सीधा बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई एक तबका उसको लग रहा है कि ये हमारे साथ इनजस्टिस है, उसको भी तो आपको संतुष्ट करना है ना। आपके पीडीएम में आप पी से पंडित भी तो आ गए हैं।
1: अच्छा एक बार बताइए, इनजस्टिस ये होता है क्या? लोगों को हटा दीजिए। अरे आप कहिए ना हमें दीजिए और आपको चाहिए ले लीजिए, जो आपको चाहिए मांगे सरकार से, ये मांगोगे इनको हटाइए, ये तो रिजर्वेशन है। अरे फिर वही कैसी बात कर रहे हो आप? रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन का पहला पेज देखिए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन
4: है। राजीव आपके पास
0: ठीक है, सूरज
1: को बेकार है
0: ये सारी समय में बस
4: कर आपको मालूम नहीं है।
1: हिंदुस्तान देख रहे हैं आपको, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।
0: अम्मू
7: जी मैं कोई अगर मेरे बातों से आपको हानि पहुंचो उसके लिए माफी। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने कहा कि कहीं ना कहीं आईएएस का बेटा आईएएस नहीं होना चाहिए, एमपी का बेटा एमपी नहीं होना चाहिए। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, आपका काम है लड़ाई लड़ना। आपकी कौन सी पीढ़ी ने भाई लड़ाई लड़ी थी जरा पता ना, और आप क्षत्रिय बने बैठे। आप आरक्षण की बात तो कर रहे हैं, जज का बेटा जज नहीं होगा।
4: बाप
7: भाई, अरे आप कौन सी पीढ़ी ने लड़ी बताओ?
4: सुन लो
7: अरे कौन सी पीढ़ी लड़ी भाई? अरे आप बताओ ना,
4: सुनो
7: आप छतिया बने बैठे, आपका काम है लड़ना।
0: हाँ सवाल हो गया ना, उसके बाद आगे पॉइंट रखिए, हम सवाल का जवाब दे देंगे। सतीश जी उसी टाइम जवाब लेंगे आप, तो फिर वो बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है सतीश, सूरज जी बोलिए फिर आप।
7: क्यों नहीं सवाल पूछेंगे?
4: ऐसा है सतीश भाई, मैं सुन लीजिएगा, मैं महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और रामचंद्र मेरे पिता फौज में थे, आर्मी में थे। सुन लीजिए, सुनो भैया, अरे सुनो ना।
7: लेकिन आज आप क्षत्रिय बने बैठे हैं ना, आपने कौन सी लड़ाई लड़ी भाई?
4: समाजवादी है ना? अरे सुनो भैया,
0: तीसरी अब आप सवाल पे सुन तो
4: मैं क्षत्रिय हूँ बोल रहे हो भी। मैं क्षत्रिय हूँ, सुनो।
7: अरे क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय होने की परीक्षा दी है क्या? लड़ाई कब लड़ी तुमने?
4: अरे सुनो,
7: अरे सतीश आज तो कोई क्षत्रिय वाला काम नहीं कर रहा।
4: क्यों मेरे को उकसा रहे हो यार? क्यों मुझे उकसा रहे हो सतीश? मेरा आपका झगड़ा नहीं है, आरक्षण का विषय गंभीर विषय है।
7: कोई नहीं,
4: चुप रहिए,
7: कोई झगड़ा नहीं है
4: सर। रुको यार
7: जी,
4: रुको सर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल है, क्या सामान्य वर्ग के मुसलमान के लिए आरक्षण क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि नहीं चाहते? प्रवक्ता बता दें, क्या गरीब दलित को आरक्षण मिलना चाहिए? जाटव को, बाल्मीकि को, धोबी को, पासी को? अरे तुम चुप रहो यार, तुम चुप रहो, ठेकेदार मत बनो सतीश, इनको बोल रहे हो।
0: समाजवादी जी जवाब दे दीजिए, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मल्लुक जी आ रहा हूं आपके पास।
4: क्या आरक्षण
0: हो गया सवाल आप क्या हो गया? विजय जी मैं सिर्फ 30 सेकंड है मेरे पास। विजय जी जवाब दीजिए,
1: मैं पहले आ रहा हूं आपके पास। मैं पहले एक काम कर दूं, जो आरक्षण को लूटने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो हमारे आरएलडी वाले लगे हुए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ
4: जोड़ो। जवाब
1: दो, आप आरक्षण के पक्ष में उनके उनके साथ मिलकर के, और ये कहना आप आरक्षण के तो पक्ष में है, ये बात
4: सामान्य वर्ग का गरीब मुसलमान
6: राजीव भाई, पहले तो राजनीतिक विश्लेषक जी को
0: समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत गंभीर एक बहुत और सेंसिटिव ये इशू है, इस पर सड़कों पर तो प्रोटेस्ट हो रहा है, अब राजनीतिक दलों का रुख इस पर क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: बी.आर. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
1: बीजेपी भाग जा पाकिस्तान।
2: अखिलेश यादव के पीटीए में पी मतलब को लेकर अब घमासान मच गया है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीटीए में पी माने पाकिस्तान कह दिया है।
0: अब देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
2: योगी आदित्यनाथ ने पीटीए के पी को पाकिस्तान कहा तो अखिलेश यादव ने बीजेपी का भी नया मतलब बता दिया।
1: अगर मैं यूं कहूं, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान।
2: दरअसल अखिलेश यादव अपनी राजनीति को पीडीए की राजनीति कहते हैं। समाजवादी पार्टी से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहती थी, लेकिन समय समय पर अखिलेश यादव पीडीए के हर अक्षर का अलग अर्थ बताते रहे हैं। कभी पी से पंडित तो कभी पी से पिछड़ा, इसी बात को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पीडीए पर निशाना साधा।
0: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं, पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं।
2: दरअसल कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का दिन था, अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी थी। इस बात को सीएम योगी ने हिंदू मान सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कल्याण सिंह और हिंदुओं से द्वेष रखती है। इसी के जवाब में अखिलेश ने बीजेपी की नई परिभाषा गढ़ दी।
1: कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान।
2: यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।

0: आरक्षण ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये भारत के सामाजिक इतिहास का वो अध्याय है जिसमें वंचना भी है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी है और बराबरी का सपना भी। लेकिन अब सवाल सड़कों पर है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठी। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को महत्व देने और क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था की मांग उठाई। यूजीसी के इक्विटी नियमों को लेकर भी विरोध सामने आया और अब वही बहस लखनऊ तक पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की।
1: केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
0: लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दो टू कह दिया कि इस पर बहस नहीं हो सकती। केंद्र में मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि आरक्षण हटाने का विचार संविधान विरोधी है।
2: सभी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का भी इसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है, सभी को न्याय देने वाली सरकार है।
0: आरक्षण के समर्थकों की दलील है कि सदियों की सामाजिक असमानता को केवल आर्थिक पैमाने से नहीं मापा जा सकता। दूसरी तरफ आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि बदलते भारत में दशकों पुरानी व्यवस्था की समीक्षा क्यों न हो। ये वो बिंदु है जो बहस के केंद्र में है, क्योंकि आरक्षण पर फैसला सिर्फ आज के प्रदर्शनकारियों का नहीं होगा, इसका असर उस युवा पर भी पड़ेगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस छात्र पर भी जो अवसर की तलाश में है और उस समाज पर भी जो बराबरी चाहता है। आज तक ब्यूरो।
3: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्रावधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राष्ट्रगीत बनाम राष्ट्रगान तक आई सियासी लड़ाई, बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद पर पोस्टर से किया बात, तो कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर सतीश महाना पर राष्ट्रगान को बीच में छोड़ने का आरोप लगाकर घेरा। आरक्षण में बदलाव की मांग पर सुलगी सियासत, संवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च, लखनऊ अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत, देशहित के खिलाफ। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा महिलाओं की गलत व्याख्या, गिरिराज सिंह बोले राहुल को भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं है। दिल्ली में पुलिस बालों की पिटाई का हैरान करने वाला वीडियो, चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार, घेर कर लाठी डंडों से पीटा, नाबालिग को पकड़ा गया, मास्टरमाइंड फरार। और ऑपरेशन सिंदूर में तमाम पाकिस्तानी आतंकी अड्डे फिर से एक्टिव, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर के पोल खुले।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और इस राउंड टेबल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में एक बहस 15 अगस्त के बाद से छिड़ी, और वो है प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कहे गए दो शब्दों पर, दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने दरअसल ये कहा कि आज देश में नक्सलवाद को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन जो दिमागी नक्सल है, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो आज भी देश में मौजूद है। इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं। अगर विरोध की आवाज को इस देश की सरकार दिमागी नक्सल कहती है, तो हम है दिमागी नक्सल। दो नेता पी चिदम्बरम, अरविंद केजरीवाल ऑन रिकॉर्ड आए और कहा हम दिमागी नक्सल हैं। तो विपक्ष इसे इस तरह से देख रहा है कि डिसेंट की आवाज, विरोध की आवाज को दबाती है सरकार, और जो भी विरोध करता है या आवाज बुलंद करता है सरकार के खिलाफ, उसको वो दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, ऐसे शब्दों से घेरते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो देश में स्थायी और विकास की राह पर चल रही सरकार को और देश को पीछे खींचना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, दो तरह की टीम तो बनी गई है, तीन तीन की, प्रदीप भंडारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं उनके साथ अंशु जोशी होंगी प्रदीप भंडारी के साथ, जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में, और रोहित कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इधर अभय दुबे जी के साथ हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि नेता लेफ्ट है, और जैसे पता चला वो आ रहे हैं, तो हमने सोचा है कि यहाँ पर थोड़े हेलमेट्स और थोड़े नी कैप्स ये सब मंगा लिया जाए, ताकि यहाँ पर अगर डिशुम डिशुम होता है तो उसकी नौबत को रोका जाए। और बहुत दिनों के बाद अनीश गवांडे हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि शरद पवार गुट के एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी की भी आजकल मोदी जी से कई मुलाकातें होती हैं, उस पर भी चर्चा होती है, कुछ इनसाइड स्टोरी भी बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, दिमागी नक्सल क्या वाकई इस पर विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब हुआ है, या सरकार ने सही जगह पर निशाना साधा? देखिए ये रिपोर्ट।
2: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
3: कि वो शब्द बाढ़ है जिस पर राजनीति का घमासान छिड़ा हुआ है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवादी हिंसा को विचारधारा का कवच पहनाने वालों पर प्रहार किया था, लेकिन देश के विपक्ष ने इसे विरोध की आवाज दबाने की कोशिश का प्रयास बताकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताते हुए सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा था, दिमागी नक्सल बीजेपी के अर्बन नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोपों का नया संस्करण है। आखिर अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था? ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों को निशाना बनाकर इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उसी तरह के अपशब्दों का नया संस्करण है। सिर्फ चिदम्बरम ही नहीं, बल्कि विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की।
4: मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं, और मुझे इस बात का गर्व है।
3: दिमागी नक्सल एक गंभीर शब्द है और विपक्ष ने अगर इसे विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कहा है तो इस पर हंगामा लंबे समय तक चलना तय है। पक्ष विपक्ष के वार पलटवार में ये बात भी सही है कि मोदी सरकार से पहले यूपीए सरकार को भी नक्सलवादी हिंसा को विचारधारा के स्तर पर समर्थन देने वालों से जूझना पड़ा था। ऐसे में सवाल सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का नहीं, सवाल ये है कि क्या वाकई कोई ऐसी विचारधारा है जो नक्सलवाद जैसी हिंसा को समर्थन देती है। क्या हिंसा को विचारधारा का कवच पहनाने वाले पढ़े लिखे लोग हमारे विश्वविद्यालयों में, अन्य संस्थानों में और समाज के महत्वपूर्ण जगहों पर कुंडली बार कर बैठे हैं? क्या विचारधारा के नाम पर हिंसक गतिविधियों को समर्थन देने वालों से देश को सावधान रहना होगा? क्या देश पर दिमागी नक्सली का खतरा गंभीर है या पेपर लीक जैसे देश के बड़े मुद्दों के बीच दिमागी नक्सल का नया हंगामा खड़ा किया गया है? आज तक ब्यूरो।
1: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, आप ही के साथ शुरू करते हैं। अब पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं हाँ मैं हूँ दिमागी नक्सल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हाँ मैं हूँ दिमागी नक्सल। विरोध की आवाज को क्या आप लोग दबाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द देते हैं ताकि उनका एक कैटेगरी बना दिया जाए?
5: अंजना जी, विरोध करने का अधिकार सबको लोकतंत्र में है। पंजाब में जैसे लाठियां चली है, सरकार उसमें विश्वास नहीं रखती, पर विरोध के नाम पर अगर कहेंगे कि संसद उखाड़ फेंक देंगे, ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। ये 2018 का लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रोना विल्सन ने लिखा था, जिसमें वो ये कह रही थी भीमा कोरेगांव में कि राजीव गांधी को जिस तरीके से असैसिनेट किया था वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असैसिनेट करने का प्लॉट ये कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स ने किया था। ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अगर आप हम पे विश्वास नहीं रखती तो ये यूपीए सरकार के समय की मैं न्यूज रिपोर्ट लेके आया हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये कह रही थी यूपीए सरकार के उस वक्त के होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, जो कहते थे कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन गुरिल्ला आर्मी, यूपीए सेड दिस। अब उस वक्त यूपीए के अंदर सरकार में थे विनायक सेन, जिसको कन्विक्ट हुए थे सेडिशन के अंदर। ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अरुंधति रॉय ये कहती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, और कांग्रेस ने कभी भी इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया सीनियर लीडरशिप ने। यह है दिमागी नक्सल विचारधारा। और चिदम्बरम जी तो कहेंगे ही कि वो दिमागी नक्सल विचारधारा के व्यक्ति।

क्योंकि उनके समय में नक्सलवाद इस देश से खत्म नहीं हुआ। अब जब हिडमा जैसा नक्सली आतंकी जिसको इस देश की फोर्सेस मारती है, अगर वहां पे राहुल गांधी के वीडियो के अंदर ऐसे वीडियोस आएंगे जो कहेंगे हिडमा अमर रहे, तो ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अगर एक आतंकवादी को मारा जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज मारेगी, उसको कहा जाएगा कि जुडिशियल किलिंग है, या हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को कहा जाएगा हाफिज सईद जी, तो बिल्कुल ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। दिमागी नक्सल विचार का मतलब विरोध नहीं, दिमागी नक्सल विचारधारा का

0: जाएगा हाफिज सईद जी, तो बिल्कुल ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। दिमागी नक्सल विचार का मतलब विरोध नहीं, दिमागी नक्सल विचारधारा का मतलब जो भारत की संप्रभुता अखंडता में विश्वास नहीं रखता, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर आतंकवादियों को बैक करता है और जो अराजकता की बात करता है, ना कि लोकतंत्र की। यह है, और ये हम ही नहीं कह रहे, यूपीए भी कहा करती थी, परंतु अब यूपीए के पीछे दिमागी नक्सल विचार के लोग आ गए हैं तो कठपुतली बन चुके हैं, इसलिए सच्चाई नहीं बोलेंगे।
1: कई सारे ऐसे बुद्धिजीवियों को आपकी सरकार ने वाकई गिरफ्तार किया था, किया था कि नहीं विवेक जी? आप तो कई लोगों के उनमें से समर्थन करते थे, आएंगे, आप भी यही कहते थे कि ये जो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, तो फिर क्या अंतर हो गया?
2: प्रधानमंत्री जी, दिमाग पर जोर देकर गिनते हो गलतियां हमारी, दिल पर हाथ रखकर बताओ कितना कसूर है तुम्हारा। मैं तो आज सौभाग्य है मेरा कि आज तक के स्टूडियो में बैठा हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2018 से एक वर्ड क्वाइन किया, अर्बन नक्सल, जो सरकार से असहमति व्यक्त करता था, जो सरकार को रास्ता दिखाता था, कहता था प्रधानमंत्री जी गलत रास्ते पर मत जाइए, ये देश बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने सबको अर्बन नक्सल पेंट करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ? फिर इंडिया टुडे समूह ने एक आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा साहब पूछा तो जाए प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से जा जाते हैं वहां कहते हैं कि अर्बन नक्सल अर्बन नक्सल। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने एक आरटीआई फाइल की और उसमें प्रश्न पूछे, हु आर अर्बन नक्सल्स, इन विच एरिया दे आर एक्टिव, और कहां कहां वो पाए जाते हैं, और वो अर्बन नक्सल का स्वरूप क्या है, ऐसे कम से कम 10 प्रश्न पूछे। सरकार ने जवाब क्या दिया है जानते हैं आप? सरकार ने जवाब दिया कि साहब ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, सरकार ऐसे किसी शब्द में ऐसी किसी परिभाषा में विश्वास नहीं रखती। मुखोटा देखिए इन लोगों का प्रधानमंत्री जी, जो दिमाग से दिवालिया हो जाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चंदा चुराते हैं, जो छात्रों पर पैलेट गन चलाते हैं, वो दिमागी नक्सल कहलाते हैं प्रधानमंत्री जी। जो पेपर लीक करवाते हैं, जो बलात्कारियों को बचाते हैं, जो संजय मुखिया को बचाते हैं, जिनके सत्ता की सरपरस्ती में 94,000 स्कूल बंद हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर पिटवाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो किसानों के खिलाफ काले क्रूर तीन तीन कानून लाते हैं, जो जमीन छीनने के अध्यादेश लेकर आते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो चीन भारत की भूमि में घुस जाए, भारत माँ की भूभागी अस्मिता को खंड खंड करने का मानस रखे, और आप जब उसको क्लीन चिट करना कोई आया है ना घुसा है, तो ऐसी सत्ता को अर्बन नक्सल कहते हैं प्रधानमंत्री जी। इस देश के नागरिकों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। क्या अगर देश के नागरिक आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कि गिरफ्तार कीजिए उस संजीव मुखिया को जो नीट के पेपर घोटाले में शामिल है, तो क्लीन चिट दे देती है आपकी सीबीआई, और जिनका जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, वो सारे भीमा कोरे गांव के लोगों को छोड़ते वक्त क्या कहा अदालत ने बताइए ना, कि जो डिजिटल साक्ष्य आपने दिए हैं वो बहुत कमजोर स्तर के हैं, इसका अर्थ है कि षड्यंत्र पूर्वक फंसाते हैं आप।
1: अच्छा, इंटेलेक्चुअल नक्सल में और दिमागी नक्सल में क्या अंतर?
2: अंजना जी, ये तो प्रधानमंत्री जी
1: आप लोग यूपीए के इंटेलेक्चुअल नक्सल
2: नहीं
1: और इनके कभी अर्बन हो जाते हैं, कभी दिमागी हो जाते हैं, क्या है
2: ये? तो अब तो
1: एक ही वैरायटी के सामान है क्या?
2: इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सरकार के पास है, वो बता दे क्या परिभाषा आपने, तो इंडिया टुडे
1: आप मुझे बताइए ना फर्क।
2: इंडिया टुडे ने पूछा तो कहा कोई है
3: जवाब,
2: इनकी सरकार ने तो साफ इनकार कर दिया, आपने आरटीआई में
1: जवाब
2: पूछा था।
3: पहले देखिए,
1: छोटा सा जवाब,
3: छोटा सा, मैं तो तथ्यों से ही बात करता हूँ। ये आरती जी है, आरती कंकर, इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और नक्सलियों ने मृत्यु करी थी, उसके बाद जाकर जब पी चिदम्बरम ने अपने आप को दिमागी नक्सल कहा, तो ऐसे तमाम विक्टिम्स जो नक्सल टेरर के बाहर आके बोले कि हम आहत हैं कि इतने सालों बाद हमारी जिंदगी के अंदर जो है खुशहाली आई है और हमारे जो पति नहीं रहे, हमारी मां नहीं रही, ये सब नक्सल टेरर पे इसका पी चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है। ये देश का मूड दिमागी नक्सल पे जो कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा है। और अगर कांग्रेस को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आज कांग्रेस सार्वजनिक रूप से बोले कि जब यूपीए ने कहा था कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन गुरिल्ला आर्मी, तो यूपीए झूठ बोल रही थी क्या? क्या विनायक सिंह कन्विक्ट नहीं हुए थे क्या सेडिशन के, जो यूपीए के अंदर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थे? और ये कौन सी विचार है अभय जी, जब अंडमान के अंदर भारत अपनी स्ट्रेटेजिक भूमि को आगे ले जाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट को आगे ले जाते हैं, आप 6-6 आर्टिकल लिख देते हैं जिससे फायदा सिर्फ चीन का होता है? ये कौन सी ऐसी विचार है अभय जी, जिसमें हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को जी कहा जाता है? ऐसा कौन सा विचार है अभय जी, जिसमें भारत का तिरंगा जब जम्मू कश्मीर में लहराता है, आपके समय पाकिस्तान का झंडा लहराता,
0: आता, ये कौन सा विचार है जो डिसेंट के नाम पर आप एनआरकी की बात करते हैं और इंडियन यूनियन में विश्वास नहीं रखते, यही विचार है दिमागी नक्सल का।

0: आपका दिल भी जानता है, हम भी जानते हैं और देश का हर देशभक्त व्यक्ति जानता है कि हमने सही जगह बोला है।
1: देखिए इन्होंने तो एक प्रमाण दे दिया कि कांग्रेस की सरकार के समय कन्विक्शन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जाति की जनगणना कराइए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आगे लाना है, तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बिहार की रैली में? कहते हैं ये अर्बन नक्सली हैं जो जाति की जनगणना कराना चाहते हैं, ये बोलते पाप मत कीजिए प्रधानमंत्री जी।
2: आगे
1: सुनिए ना, अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब भी हम न्याय की बात करेंगे राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को आप अर्बन नक्सल कहेंगे, प्रतिपक्ष के नेताओं को अर्बन नक्सल कहेंगे, तो कराइए ना, चलाइए मुकदमा, चलिए साहस से
0: चली रहे
1: चलाइए मुकदमा,
0: चली रहे
1: चुनौती देते हैं। तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया भंडारी जी, जो हमारे फौलादी कहिएगा राहुल गांधी जी बीते दिनों भी पैलेट गन चलाने को लेकर धरने पर बैठे हैं, हिम्मत हो तो करिए गिरफ्तार।
0: झारखंड में
2: विनायक सेन जी से लेकर अन्य लोगों को, विनायक सेन से लेकर जिसको जिसको गिरफ्तार किया, आप लोगों ने भी अपोज किया था यूपीए के दौरान भी,
3: देखिए,
2: और ये भी कह रहे हैं दिमागी नक्सल। देखिए कहां खड़े हैं आप?
3: देखिए पहली चीज ये जो मर्जी कहे, चिदम्बरम जी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड लाइनिंग गृह मंत्री रहे थे, जिन्होंने एक गन की पॉलिसी को फॉलो करके नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी। लेफ्ट के लोग, हम लोग और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उन्हें समझाता था उस वक्त, यू हैव टू टॉक टू पीपल। एलएलबी की पढ़ाई अगर आप इस मुल्क में करते हैं, 5 साल का कोर्स होता है और 3 साल की एक और एलएलबी होती है, उसमें सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, उसे पढ़ाया जाता है दैट एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज अ कॉज बिहाइंड इट, और उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो चिदम्बरम जी को हम लोग बोला करते थे, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं सर नक्सलाइट बनने के, गन आप जरूर उठाइए जो हमारे सेना के लोगों को मान रहा है, लेकिन उस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी एड्रेस करिए और दोनों को साथ साथ चलाइए। यही जॉइंट स्ट्रेटजी पंजाब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाई गई थी, उल्फा को सॉल्व किया गया था, एलटीटी को सॉल्व किया गया था, नागा लिबरेशन फ्रंट में प्रधानमंत्री मोदी ने डील साइन करी है इवन दो दे वर सेपरेटिस्ट। सो द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो बोथ द पॉलिसीज पैरेलल।
2: दिमागी नक्सल बचे हैं क्या?
3: दिमागी नक्सल कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं मेरे
2: है, बिल्कुल
3: जब से जंतर मंतर पे बच्चे उतरे हैं, युवा उतरे हैं, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं। एवरी वॉइस ऑफ डिसेंट, आपने पहले कॉकरोच शब्द किसी ने कहा माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब बच्चे उतरे एक पार्टी बन गई और प्राइम मिनिस्टर को राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे, हमारे यहां पे इस्तीफे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन बच्चों ने उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, सब स्टूडेंट्स थे, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। The Prime Minister feels now.
0: ये कौन है?
3: The Prime Minister feels now. I don't know. You can tell me. I can't see.
0: ये कौन है? अरुंधति रॉय ने कहा कि जम्मू कश्मीर was never an integral part of India. क्या इससे सहमत है?
3: Absolutely not.
0: तो क्या ये विचार दिमागी नक्सल विचार नहीं है?
3: She is an author. She is entitled to speak.
0: Prove हो गया.
3: इसमें कुछ भी दिमागी नक्सल नहीं है. Every anchor, every journalist,
0: this is not right to free opinion. This is not right to free opinion.
3: Every writer has a right to think the way he likes.
0: This is anti-national, sir.
3: Anjana might speak against me and my party, but she has a right.
0: Anjana Ankashyap will never say that Jammu Kashmir was never part of India. No, she will no person from any political ideology will say.
3: Freedom of press.
0: This is not freedom of press, sir. No, this is not
2: freedom of press.
4: Professor Joshi.
2: Professor Joshi.
5: फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही है कि आप प्रभाकरण को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा भारत की धरती पर रह करके, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते
1: हैं, कीजिएगा जिन्ना को
5: जवाब दीजिए ना हमको,
1: जिन्ना को
5: अरे जिन्ना आपके मित्र होंगे, जिन्ना की चिंता आपको हो रही होगी, इसका जवाब दीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी के पिता थे, और उनके हत्यारे को श्रद्धांजलि दीजिए।
2: बारी बारी बार बोल ले, जल्दी कंप्लीट
5: पॉइंट क्या, चिंता कीजिएगा। मेरा पॉइंट ये है कि प्रभाकरण जो एलटीटीई के सुप्रीमो थे, जिन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या की,
1: सैफुल्ला फारूक,
5: अरे सुनिए ना, सैफुल्ला पर बाद में जाइएगा, पहले आइए श्रीलंका पर, अरे हमारी सुनिए पहले,
1: और हम दिमागी
5: नक्सल, आप खुद दिमागी नक्सल
2: फिर शुरू हो गए।
5: सुनिए
2: तमिलनाडु रोहित, रोहित जी, रोहित जी, किसी भी मेरे बुलाए हुए मेहमान का अपमान मत कीजिए,
5: अपमान नहीं कीजिए। हाँ, दिमागी नक्सल भी एक शब्द है।
2: अच्छा,
5: और इसको जनता की बोल
2: टॉपिक पे रहिए, टॉपिक टॉपिक
5: दोनों लोग लड़िए काम से, नहीं लड़ पाइए,
2: पॉइंट है, सुनिए तो पॉइंट है, अच्छा गुरु जी, गुरु जी जल्दी जल्दी पॉइंट
5: पर बात कीजिए,
2: जल्दी बोलिए।
5: श्रीमान राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा में, उनके पूज्य पिताजी स्वर्गवासी श्रीमान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी दुखद हत्या सरगना प्रभाकरण ने की
3: जी।
5: विजय जी जो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने गौ वध के लड़ाई को लड़ने के लिए कि गौ की कताई हो सुप्रीम कोर्ट आ गए, वो आदरणीय विजय जी ने प्रभाकरण जी को श्रद्धांजलि दे दी और उनकी सरकार में दुगो मंत्री का पद लेने के लिए राहुल गांधी जी लपलपा करके उनके पीछे खड़े हैं। इससे बड़ा दिमागी नक्सलिज्म का प्रमाण क्या हो सकता है?
4: नक्सलिज्म का
5: क्या है? अरे
4: नक्सलिज्म,
5: अरे जिसने
4: नक्सलिज्म की परिभाषा
5: मालूम है, अरे आपको मालूम है, बिहार की धरती से आप नक्सलिज्म आप क्या जानिए? आपने तो बंगाल में लाल झंडा उठा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और देश में गरीबों के जमीनों को कब्जा करने का काम किया है, क्या बात की?
2: अनिश, अनिश आपका काउंटर पॉइंट इस पर एक बार अनिश जी बोलो। अनिश, अनिश, अनिश, अनिश, अनिश,
1: हम नरेंद्र मोदी ने जो पैलेट गन चलाया और
0: किसी ने चलाया पैलेट गन,
1: हम तो राजीव जी के हत्यारों के पास उनकी बिटिया प्रियंका गांधी गई, प्रियंका गांधी जी ने जाकर हम उसको तुम्हारे ऐसे लोग कि बच्चों पर गन चलाए और माफी घर पर गुंडे भी जुआ, हम वैसे लोग नहीं।
2: अभय जी आप अपनी दोस्तों की आवाज दबा रहे हैं आज, अनिश जी बोलिए,
1: अनिश जी आप नहीं बोल रहे,
2: अनिश जी, अनिश
1: जी, आप नहीं तय कर,
2: अभय जी, अभय जी गुरु जी का क्या नाम
6: है? आप भी नहीं, दुर्भाग्य की बात यही है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था। वो प्रधानमंत्री जी है, वो हम सबके प्रधानमंत्री है, उस पद को वो शब्द शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया है। आज बहुत कैजुअली फेंके जाते हैं ये शब्द, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े क्या। देवेंद्र फडणवीस जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल होगा उसे अर्बन नक्सल कहलाया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जंतर मंतर में कोई भी बैठा हुआ है उसको अराजकता फैलाने वाला कहलाया। बाकी चीजों में एंटी नेशनल किसी को भी बुलाया जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जब वर्नन गोंसाल्विस की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी पुणे में, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस किताब ये पढ़ रहे हैं इसीलिए ये अर्बन नक्सल।
5: yes,
6: ये रोना विल्सन का आप लेटर दिखा रहे हो, वो एविडेंस प्लांट किए गए थे, ऐसी रिपोर्ट भी बाहर आ रही है।
5: फेक न्यूज़,
6: आप मुझे कहते हैं
2: अगर
6: बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो सकते,
5: आप लोग तो बॉम्ब
6: सरकार में बैठे हुए कोई नहीं हो सकते। आज देश का युवा
2: कौन है? शर्जील इमाम अगर चिकन नेक को काटने की बात करते हैं आप उसको देश विरोधी मानते हैं?
6: अगर शर्जील इमाम चिकन नेक को काटने की बातचीत करता है तो कार्रवाई अदालत में होनी चाहिए, ना ही
2: मैं,
6: ना
2: ही वो, ठीक है,
5: एक सवाल इमरान मसूद साहब, एक सेकंड भंडारी जी,
6: कर्नल विजय कर्नल सोफिया कुरैशी को
5: पार्लियामेंट एंड कांग्रेस पार्टी, लेट मी स्पीक, सुनिए अनिश साहब, सीजेपी का दिमाग लगाते लगाते देश का दिमाग अपने ना ठीक कीजिएगा, सुनिए,
4: हो गया देश का दिमाग,
5: अरे भाई कहाँ दिमाग ठीक होगा, राहुल गांधी का दिमाग ठीक होगा, सुनिए, अरे आइए श्रीवास्तव जी मत घबराइए,
2: जो आप लोग से नहीं हुआ वो बच्चों ने किया है, ये भी सोच लीजिए जरा,
5: बच्चों को गलत है जिन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन को नानी याद दिला दी, सुनिए मुद्दे पर आइए, आदरणीय दुबे जी
2: जल्दी फिर मुझे जोशी जी को
5: मुद्दे पर आइए, इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं सहारनपुर से, वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें पराजित किया, उन्होंने क्या कहा कि देश के प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को बोती बोती कटवा देंगे। जनता ने भी जवाब दिया और देश की पुलिस ने भी उस समय जवाब दिया जो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं थी, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, ये दिमागी नक्सलिज्म नहीं है तो क्या है?
2: ठीक है
5: तो
2: प्रोफेसर
5: नरेंद्र मोदी जी को कटवाने वाले नेता के पक्ष में आप खड़े हैं, ये देश का लोकतंत्र है, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधान के आधार है? अरे तुम्हें क्यों नहीं जाएंगे सांसद
2: हैं,
5: वो भी है जो खालिस्तान के पक्ष में खड़ा है,
2: अरे तो सवाल पूछिएगा तो जवाब भी तो सुनिएगा ना, सिंह जी इधर इधर रुकिए, इमरान मसूद पर आपका जवाब क्या था? मैं सुन नहीं पाई, चिल्लाना नहीं, एक सेकंड,
5: बोलिए ना, अपने
2: बोलने कहाँ
5: दे रहे हैं, गलत बोल रहे हो
2: आप, बोलने कहाँ, चलिए चलिए बोलिए,
5: बोलिए
2: मैं फैक्चुअली कुछ बातें रखना चाहती हूँ. जो हम अर्बन नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं उसको जब हम कंसेप्चुअली देखते हैं तो सीपीआई माओइस्ट के जब आप रिसर्च पेपर्स को देखते हैं, उनके स्ट्रेटेजी पेपर्स को देखते हैं, उनमें सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया है, जिसमें कि एनजीओज, इंटेलेक्चुअल्स, अकेडमिशियंस को शामिल करके जो अर्बन एरियाज हैं उनमें बच्चों को कैसे, यूथ ब्रिगेड को कैसे शामिल करके नक्सलाइट मूवमेंट को अर्बन एरियाज में कैसे प्रमोट किया जाए, ये उनके स्ट्रेटेजी पेपर्स में लिखा हुआ था. यहां से अर्बन नक्सलिज्म टर्म आई है पॉपुलर कनोटेशंस में, जो मोदी जी के ऊपर ये बात की जा रही थी कि वो कहां से ये शब्द लेके आए. जो दिमागी नक्सलवाद है ये तो बंदूक वाला जो नक्सलवाद है उससे भी ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें यूथ ब्रिगेड के दिमाग को जमीन की तरह इस्तेमाल करके यहीं से लव जिहाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से आतंकवाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से इस बात का प्रयास किया जा रहा है, विशेषकर गर्ल्स एट द
7: बीच में नहीं लेटर लेटर
2: एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा दिया जाए, लव जिहाद की अगर प्रयोग जाती है एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, भारत में पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है. दिस इज द इंटेंट. भारत 370
5: एक हिंदू लड़की
2: को हटाने का विरोध करते हैं.
7: अच्छा अनिश को बोलने दीजिए एक बार.
2: सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछते हैं दिमागी नक्सलाइट, भारतीय सेना पे सवाल उठाते हैं दिमागी नक्सलाइट, बोल दीजिए भारत को खंड खंड तोड़ने के लिए कहां करते हैं.
5: बोलने देना दिमागी नक्सलाइट.
1: अभी आप पे अगर उपलब्ध है
2: फंडेड पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैडम, जिसमें अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल
5: मैडम, यू आर मिक्सिंग द इशू.
2: You
5: are mixing the issue.
7: Let her complete.
2: ये जो दिमागी नक्सलवाद है ये बंदूक का खेल है ही नहीं. देश को तोड़ने के लिए किस तरह से लव जिहाद, पिंजड़ा तोड़, आप सरकारी संस्थाओं के प्रति यूथ में से अविश्वास पूरा एक बना के ले आइए, विश्वास खत्म कर दीजिए, देश की जो संस्कृति है कल्चर है.
6: नहीं मैम, आप उन्होंने नहीं ले सकती या
5: नहीं मैम
2: आपको फंडिंग मिलती है, यहाँ से दिमागी नक्सलवाद का आपका पूरा खेल चल
6: रहा
7: है.
6: बहुत सिंपल सवाल पूछना है, विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री है उनकी फंडिंग कहां से आती है, क्योंकि वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहते हैं.
5: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद
7: रोहित जी,
6: अगर कोई दिमागी
7: पार्टी को भी जवाब देने दीजिए, समाप्त ही दीजिएगा
6: जी. अगर कोई दिमागी नक्सल है तो कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी या कोई नागरिक किसी को दिमागी नक्सल नहीं कह सकता.
7: नहीं, बट उनका एक्यूजेशन कुछ और है. अनिश देखिए उनके सवाल का जवाब दीजिए. एक सेकंड. उनका ये एक्यूजेशन है, एक सेकंड, उनका आरोप ये है कि एक पूरा इंटेलेक्चुअल गुट है जो जानबूझकर सरकार, सरकारी तंत्र या फिर जितनी exactly. भी संस्थाएं हैं उन पर से विश्वास हटाना चाहता है जनता का.
6: जी, उस गुट में कौन-कौन शामिल है, उस गुट में कौन-कौन शामिल है, उसका निर्णय विवेक अग्निहोत्री करेगा. जो कहता है कि रामचंद्र गुहा भी अर्बन नक्सल
7: है, केतकर भी, आप उनको रेलेवेंट बना रहे हैं.
1: मैं जवाब देता हूं
7: क्यों कोट कर रहे हैं.
6: ऐसी टर्म आने, अगर आप ऐसी टर्म को छोड़कर वहां पे रख देने वाले हो तो कोई भी फेंकने लगता है. वी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट.
7: अगर इसका इस्तेमाल सबके खिलाफ होने लगे और आम लोग बोलने लगे, वो कह रहे हैं कि फिर उनका अलग थलग करने
1: वाला है. इन्हें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, जो देश के देश की यूनिटी इंटेग्रिटी में विश्वास नहीं रखता, माओइस्ट को बार के सपोर्ट करता है, वो एक दिमागी नक्सल है. सुनिए, सीपीआई का मैनिफेस्टो कहता है कि भारत के न्यूक्स को वो डिसमेंटल करेंगे. अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई पेट्रियट कभी भी भारत के न्यूक्स को डिसमेंटल करने की बात कर सकता है? नहीं कर सकता. ये दिमागी नक्सल. और ये मैं ही नहीं कह रहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीपीआईएम को कि बी पेट्रियट्स फर्स्ट, रेज इश्यूज ऑफ आर कंट्री. ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा है कि इनकी पेट्रियोटिज्म पे सवाल है. मैं सिंपल फंडामेंटल कहूंगा, कोई देशभक्त कभी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को हाफिज सईद जी कह सकता है? कोई देशभक्त बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन कह सकता है? कोई देशभक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ बोल सकता है? कोई देशभक्त कभी नहीं? आप क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का फ्लैग होना चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए? और ये लॉजिक क्या है? आतंकवादी आतंकवादी होता है.
7: जी अपने विवेक से थोड़ा जवाब देंगे, ये न्यूक डिसमेंटलिंग पर क्या है कहना आपका?
3: पहली चीज आप सुन तो लीजिए ना, ये सरकार डिस्कशंस नहीं चाहती है. दे डोंट वांट डिसेंट, आप मोटिवेट कर नहीं पाए, युवा आपके खिलाफ उतरे, पढ़ाई महंगी, नौकरियां है नहीं, आपके पास उत्तर नहीं था, आप डर गए, फिर आप कह रहे हैं साहब सुनिए,
7: युवाओं
3: भारत की लड़की, भारत की एक लड़की निर्णय लेगी उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे रिलेशनशिप रखनी है, किससे शादी करनी है, आप कौन होते हैं लव जिहाद और मॉरल पुलिसिंग करने वाले, शी कैन मैरी इंटरकास्ट, शी कैन मैरी
7: इंटरकास्ट, बीजेपी के कई नेताओं ने शादी की है, इंटर
3: रिलीजन शादी कर सकती है
0: न्यूक्स, भारत का कोई भी देशभक्त कभी भारत के न्यूक्स को खत्म करने की बात करेगा सिर्फ दिमागी नक्सल करेगा जो वीक इंडिया की बात करते हैं,
7: रोहित जी, अब वो एक बार बोले फिर आपका जवाब
8: दूंगा, हम कमजोर आदमी हैं, बोलने दीजिए, सब लोग बोलने ही नहीं,
3: अरे आप सब शक्तिमान है,
8: नहीं नहीं
3: बोलिए,
8: ये बहुत गंभीर बात है
3: जी,
8: राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार लगी हुई है नेपोटिज्म का जो एक बीज है उसको बड़ा बरगद का पेड़ बनाने के लिए, रेहान वाड्रा जी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यह भी एक दिमागी नक्सलिज्म है इस देश के नौजवान और विद्यार्थियों के लिए। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, जरा आपको जवाब देना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी है जिन्होंने भगवान राम मंदिर का पूरा विरोध किया आपकी पार्टी के साथ मिलकर, इन दोनों लोगों के साथ, उसके प्रधान महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने बहन भूमिका सिंह जी जो जातव समाज से आती है उसका कितना अपमान किया, क्या यह दिमागी नक्सलिज्म नहीं है, मूर्ख बनाते हैं भारत की जनता को, देश की जनता इस बात को बखूबी महसूस कर गई है कि केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विवेक श्रीवास्तव जी के पार्टी विपक्ष में बैठा हुआ है और वहां बहनों को घास खा करके जीना पड़ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने मुवली का मार पिटवाया विद्यार्थियों को और राहुल गांधी जी चले गए प्रयागराज की पवित्र धरा पर गूंज कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, वहां उनके मुंह में मुरब्बा आ गया या दही जम गया।
7: सम्राट जी पर भी बोल दीजिए,
8: अरे सम्राट चौधरी जी तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार को बचा लिया। अरे सुनिए विवेक बाबू, कमजोर आदमी बोल रहा है सूत पुत्र, सुनिए ध्यान से, श्रीमान सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार को बचा लिया। यूरोप में बैठकर डबल जियोपार्डी का लाभ लेने की मंशा से तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार को शाहबुद्दीन साहब के नीतियों पर चलते हुए उनके बेटे की सहयोग से सिवान से लेकर पटना तक और किशनगंज तक जलवाने का कार्यक्रम बना लिया था छात्रों के हिंसात्मक आंदोलन में।
7: बच्चे निकले ना तो तुरंत नौकरी भी निकल गई, लिस्ट निकल गई कुछ लोगों में,
8: और सुनिए
7: देखिए सब दबाव में
3: अभी ये
7: बताएंगे किस राज्य में बचे हैं ये, नहीं ये सरकार बना रहे हैं,
3: अरे हम ही बनवाएंगे सरकार,
7: बच्चे कितने
3: अरे 70 साल से इस देश को आइडियोलॉजिकली लेफ्ट ने चलाया है, आपने किताबों में क्या पढ़ा हमने लिखवाया है और आगे चलेगा,
8: आप देखिए इस चीज को जनता जान गई है, कुछ नहीं किया, नथिंग नथिंग,
3: That is their internal problem.
1: उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि दिमागी नक्सली कौन है, कौन इतने हिंसात्मक लहजे से, कौन भाषा की मर्यादा को लांघकर अभद्रता कर रहा है,
9: ये देखा है, ये देखिए से बोलना,
1: इसके लक्षण आपको ऐसे दिखाई देते हैं,
9: ये लक्षण देश के लोगों
1: दिखाई दे रहे
9: हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी जनता को ये
1: अभी कुछ परिभाषा मेरी बहन ने दी दिमागी नक्सली की,
3: अर्बन नक्सल की, दिनों
1: दिमागी नक्सल तो अर्बन
9: नक्सल रिसर्च पेपर्स
1: बहुत सारी
9: आया था विवेक,
1: क्या प्रधानमंत्री जी
9: आप आपको सब पता है तो फिर बताइए,
1: भगवान के देवद्रव्य की
7: प्रोफेसर प्रोफेसर जानते होंगे,
9: बताइए ना
1: अंजना जी, मैं चुप रहूं
9: बता दीजिए ना,
1: तो मैं नहीं
7: बोलता प्रोफेसर, सॉरी प्लीज,
1: प्रधानमंत्री जी जो इस सनातन धर्म में इस पूरी सृष्टि का सबसे घृणित पाप भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों ने किया है, देवद्रव्य की चोरी, भगवान मंदिर राम मंदिर के चोरी, क्या वो दिमागी नक्सली मन में आता है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या मेरे छात्र जो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी पेपर लीक ना हो हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने आ रहे दिल्ली के दरवाजे पर, उनको पैलेट गन से आंखें फोड़ती प्रधानमंत्री जी, उनको कील और कांटे लगाकर मारा। क्या ये नक्सलिज्म की अर्बन नक्सल परिभाषा में आता है प्रधानमंत्री जी की? ये देश को बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी
10: दिमागी नक्सल
1: हाथरस में बलात्कार की शिकार बिटिया को रात के अंधियार में
10: बात कर रहे हैं,
1: आपकी सत्ता ने पेट्रोल डालकर जला दिया प्रधानमंत्री जी,
10: वो अर्बन नक्सल
1: की परिभाषा
10: को बैक करने वाली पार्टी,
1: इन किसानों के खिलाफ एक एनआरआई शरद मराठे के कहने पर तीन क्रूर काले कानून ला उनकी आमदनी पर हमला करने के लिए, करनाल से लेकर दिल्ली तक मार कर सर फोड़ दिया प्रधानमंत्री जी, 700 किसानों की शहादत हुई, क्या वो अर्बन नक्सल में आता है कि नहीं आता है प्रधानमंत्री जी, बताइए प्रधानमंत्री जी, आपको इस बात का जवाब देना होगा कि ओलंपियन बेटियां जब न्याय मांगने आई तो घसीट घसीट के मारा आपने उनको,
10: ऑलरेडी कोर्ट में फैसला हो गया,
1: अर्बन नक्सल इस देश को बताइए, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हजारों करोड़ रुपए लूटकर विजय मान लिया, आपके मेहुल भाई, आपके नीरव भाई, आपके सब भाग गए प्रधानमंत्री जी, ये अर्बन नक्सल में आता है,
10: मैं एक एक्सपेरिमेंट कर देता हूं, ये अर्बन नक्सल का
1: आपने दिमागी नक्सल वर्ड कॉइन किया, आप दिमागी नक्सल पर
10: दोनों उसको और एनलार्ज कर दिया क्योंकि आपके और ऑप्शंस आ गए,
1: उद्योग नियोजित रूप से बर्बाद कर दिया,
10: चीन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी हमारी है,
1: स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स
10: चीन से ज्यादा बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है,
1: आप बताइए और अर्बन नक्सल में आता है कि नहीं, आपकी सरकार ने आतंकवादियों को टिकट दिए,
10: अरे भैया घर घर के अंदर घुस के मारने का काम ऑपरेशन सिंदूर नाम ने किया है, अमेरिका जवाब
7: जवाब
1: बिहार का मुख्यमंत्री AK-47 चलाता है,
10: अरे भैया कोई नहीं चली ऑलरेडी कोर्ट में बोल दिया,
5: एक्सपेरिमेंट
10: आपके
5: आतंकवादी जी
1: कितने दिन की सत्ता बची,
10: सुनो अरे सत्ता आएगी जाएगी, देश आगे जाना चाहिए और देश के खिलाफ इंटेलेक्चुअल बात करने वाला व्यक्ति दिमागी नक्सल है, अरुंधति रॉय को क्या
7: दिया, जवाब जवाब
10: ऐसा नहीं है, वो दिमागी नक्सल, मैं छोटा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, शर्जील इमाम ने कहा चिकन नेक भारत से हटना चाहिए, मैं कहता हूँ दिमागी नक्सल एंटी नेशनल, आप कहते हैं वो
1: बिल्कुल, अरे चीन घुस गया अरुणाचल प्रदेश में, कौन
10: बुलवा लीजिए, ये बुलवा लीजिए,
1: अरुणाचल प्रदेश में घुसा
10: एंटी नेशनल है वो,
1: बताइए
10: इनको दिखाओ क्या शर्जील इमाम एंटी नेशनल दिमागी नक्सल है, ये देखिए दिमागी नक्सल एंटी नेशनल है, दिमागी नक्सल एंटी नेशनल मीडिया, अभी शर्जील इमाम का वीडियो फेक नहीं है,
7: अच्छा बारी बारी से प्लीज एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चिल्ला चिल्ली का इसको अड्डा मत बनाइए, राउंड टेबल इसलिए नहीं किया गया है कि हम लोग ठीक है क्योंकि कोई आवाज नहीं सुन पाता है, बारी बारी से जो हम लोग हमेशा करते हैं वैसे बात कीजिए प्लीज, ठीक है,
3: चाहे उमर खालिद हो चाहे शर्जील इमाम हो, मैटर सब जुडिस है, अगर वो गलत है हमारे देश की जुडिशियरी पे हमारा विश्वास है, उनको दंड दीजिए, ट्रायल बाय मीडिया मत करिए आप, कि मुसलमान लड़कियां तो ट्रायल बाय मीडिया करेंगे आप उनको, हाँ दे ना,
10: सो हु डजंट मैटर पब्लिक रिकॉर्ड, व्हाई हैज द पनिशमेंट नॉट बीन गिवन,
7: ठीक है, लेकिन
10: बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वी आर नॉट अ तालिबानी स्टेट,
7: तो यंगर जनरेशन से एक सेकंड आप तो यंगर जनरेशन से है,
10: प्रदीप जी सही कह रहे हैं,
7: एक सेकंड,
3: छह साल से बेल नहीं मिली उमर खालिद
10: क्योंकि उसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है,
3: उसको पनिश करो ना, पनिश करो ना उसको,
5: जब तक कोर्ट दीजिएगा, आप कोर्ट को डायरेक्शन दीजिएगा,
3: चार्जशीट तक
5: डायरेक्ट करेंगे, लेवल कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट को डायरेक्शन देंगे,
3: चार्जशीट ना
5: आपको अधिकार मांगेंगे
1: भाई, प्रोसिक्यूशन
7: मैं निकल जाती हूँ अनीश, आपसे एक सवाल है, चूंकि आप यंगर जनरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन क्या बोला वो अलग बात है, लेकिन क्या सरकार को अपोज करते करते इस तरह की बातें अगर जो लाइन को क्रॉस करती हैं, जो देश के खिलाफ है, उसका खुलकर विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्रो हो एंटी हो?
6: मैं सिर्फ दो चीजें कहूंगा, 25 मई 2013 इस दिन कांग्रेस की सरकार के बहुत सारे एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए छत्तीसगढ़ में मारे गए थे, लोगों ने जान दिया इस देश के लिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस. आज कोई भी कह रहा है कि कोई भी नेता, कोई भी देशवासी एंटी नेशनल है, उसको नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट बांटने का कोई अधिकार है, नहीं है. आज ये दुर्भाग्य की बात यही है कि आज नौजवान देख रहा है कि आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो और वो कॉकरोच का इंसल्ट लेके आप पर हंस रहा है, अर्बन नक्सल का इंसल्ट लेकर आप पर हंस रहा है.
10: मेरी बात
6: और वही प्रॉब्लम है
10: अनीश.
6: मैं आपको दूसरी चीज कहूंगा
7: अनीश, एक और सवाल है मेरा. शरद जी ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी?
6: शरद जी ने तभी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उस पर अलग अलग राय थी.
7: हाँ, अलग राय थी. वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल को नहीं चाहते थे.
6: बिल्कुल
7: है ना.
6: और तो उसके बाद हम वापस एक साथ.
7: लेकिन आप क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर राजी होगी कि आप उनकी विदेशी मूल को मुद्दा बनाए? नहीं होगी ना.
6: नहीं अंजना जी, राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं.
7: समय और परिस्थिति,
6: राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद.
10: जवाब देता हूँ
6: आप मतभेद.
7: एक सेकंड इस पर आते हैं. एक सेकंड इस पर मैं जवाब आप तीनों से लूंगी. मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं. क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद मतलब एक शत्रुता की पॉलिटिक्स होने लगी जिसकी वजह से आप उधर से भी वैसा ही एक वेनमस बैकलैश देख रहे हैं? इससे कोई इनकार नहीं हो सकता. लेकिन क्या विरोध की आवाज मतलब जो हमारे खिलाफ उसके लिए माईवे और हाईवे वाली आप नीति पे चले? सीधा सवाल है.
10: मैम ये इकलौते प्रधानमंत्री जिसको हर दिन अगर इतने विरोधी जो है सब सीमा लेखा क्रॉस करके गालियां तक बकते, कम लोग एफआईआर नहीं करते, इमरजेंसी कांग्रेस करते हैं.
1: किसानों को मारा,
10: बटला हाउस के अंदर जब आतंकवादियों को मारा गया था, पिछले समय जब टॉलरेंस की बात होती थी तो कहते आंसू बहाए गए, अब हम आतंकवादियों को मारते हैं और ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं. बिल्कुल इनने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप चलेगी, उसके बावजूद एनएसी विरोध कर रही थी चिदंबरम का कि मत मारो नक्सलियों को, ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है. और एनएसी के उसी ईयर में 2013 में विनायक सेन कन्विक्ट हुए थे सेडिशन में नक्सलियों की मदद करने के लिए. ये सब चाहिए तो सच नहीं बोलेंगे क्या? देश की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा हमारा राइट है, हम घर के अंदर घुसते पाकिस्तान को मारते, पहले नहीं मारते थे, पहले आतंकवादी जाकिर नायक जैसे लोगों को जस्टिफाई करते थे.
7: अब अभय जी दो दो लाइन का कमेंट सब्जा. अभय जी जल्दी से इस पर जवाब. और इस पर दिग्विजय जी ने बकायदा आर्टिकल लिखा कि गलत कर रहे हैं गृह मंत्री जी. उस समय की बात कर रही हूँ मैं जो उन्होंने क्या ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया था पी चिदम्बरम.
1: अंजना जी हमने कभी भी पूर्व नक्सलियों के नाम पर रैंप वॉक नहीं कराया महिलाओं का, जो ये आज की
5: बात
7: चलिए हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं. लेकिन ये मुद्दा कितना गर्म है आप देखते
5: हैं.
7: इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही. हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, आप तय कीजिए क्योंकि अब तो लाइव प्रोग्राम भी क्या
5: है.
7: देश होने की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज.

0: बड़ी खबर आपको देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नया बवाल खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगा दिया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए यह साफ कर दिया कि अमेरिका को तो इसके नतीजे भुगतने होंगे।
1: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
1: ईरान बार-बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे होर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
3: यार अमल न करदन मिज़नीम منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
1: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں. اب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف अली अब्दुल्लाही के एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले एक साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
0: अब लोग छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: बिजली का बिल
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: इतना माही वे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: In association with
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
4: पैसे ज्यादा कभी थे नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की भूख इतनी थी नहीं। न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था, फिर कुछ दुकानों में सफाई करता था, फिर दुकान में सेल्समैन बना। कॉलेज के सालों में एक बेटिंग शॉप में कैशियर था।
5: पर क्या इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेस्ट मैच, बहुत लंबी सोच चाहिए, बहुत ही लंबी अवधि में ही पैसा बनता है।
4: मुझे दुनिया में हर चीज चैलेंज करने में बहुत मजा आता है, राइट?
5: कॉफी कैन इन्वेस्टिंग,
4: हाँ जी।
5: इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे आपकी क्या मंशा थी?
4: इंडिया छोटा सा मार्केट है, दुनिया का 3%, सो मुझे लगा यार विदेश में निवेश तो सोचना चाहिए। एआई का प्रहार शुरू हो चुका है,
5: तो क्या मिडिल क्लास गरीबी की ओर जा रहा है, भारतीय मिडिल क्लास?
4: इस प्रकार का टेक्नोलॉजी घातक है दुनिया भर के मिडिल क्लास के लिए।
6: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
7: बी.आर. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
8: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आरक्षण पर सियासी घमासान, क्या आरक्षण सुधार के नाम पर इसे खत्म करने की साजिश हो रही है? आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है और इसे पीडीएस समाज के खिलाफ बड़ी साजिश बताया। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिखा कि आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कभी आरक्षण की समीक्षा, कभी सुधार, कभी क्रीमी लेयर, तो कभी आरक्षण छोड़ने की सलाह के जरिए आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को लेकर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कराने का भरोसा दिया।
3: जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे।
2: उधर दिल्ली के जंतर मंत्र पर जाति आधारित आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी।
4: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है।
2: यानी एक तरफ अखिलेश यादव आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे खत्म करने की किसी भी संभावना को खारिज कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी। क्या शहर क्या गांव, हर जगह पानी पानी। हापुड़ से लेकर बेगूसराय तक नदियों का रौद्र रूप। आसमान से बरस रही बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। यूपी हो या बिहार, हर जगह नदियों के उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई गांवों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। लोगों के घर मकान हर जगह पानी भर चुका है। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और लोग उसी पानी के अंदर से अपनी बैलगाड़ी हो या मोटरसाइकिल निकालने को मजबूर है। जहाँ एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान है, वहीं प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम कविता मीणा मैदान में उतरी और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
1: अभी हमारे जो तहसील के अंतर्गत जो आठ जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गांव है, जहां पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है, तो इनके लिए जो शासन द्वारा जो राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में, और आगे भी अगर ऐसी अगर बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवा सकते हैं।
0: यूपी ही नहीं, बिहार में भी मानसूनी आफत के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के चलते बेगूसराय के कई गांव पानी में पूरी तरह डूबे नजर आ रहे हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: किसानों का बहुत ही बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो पशुपालक है उनके लिए भी काफी समस्या है। पशुपालक किसी तरह एन के प्रकार भर कमर पानी हेल कर तैर कर ऊंचे स्थान से जाकर मवेशी की चारा का व्यवस्था करते हैं, और यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए तो किसानों के साथ साथ पशुपालकों के लिए काफी समस्या है।
0: क्या घर, क्या मकान और क्या सड़क, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, वहीं हजारों बीघा में लगी फसल पानी में डूब चुकी है। तो साफ है, इस वक्त आसमान से बरस रही आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हापुड़ से देवेंद्र कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रगीत बनाम राष्ट्रगान तक आई सियासी लड़ाई। बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद पर पोस्टर से किया वार, तो कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर सतीश महाना पर राष्ट्रगान को बीच में छोड़ने का लगाया आरोप और घेरा। आरक्षण में बदलाव की मांग पर सुलगी सियासत। सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च। अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, काम महिलाओं की गलत व्याख्या। गिरिराज सिंह बोले राहुल को भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो। चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर मिर्च पाउडर से वार, घेर कर लाठी डंडों से पीटा, नाबालिग पकड़ा गया, मास्टरमाइंड फरार। और ऑपरेशन सिंदूर में तबाह पाकिस्तानी आतंकी अंडे फिर से एक्टिव, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की पोल खुली। हम सबसे पहले बात आज आरक्षण पर छिड़ी जंग की करेंगे। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गई है। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी, तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते देर भी नहीं की। और सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बीजेपी के भी सहयोगी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी, और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर ये शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया, तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है, और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सियासी विवाद चल ही रहा था कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष पर राष्ट्रगान का अपमान का आरोप लगा और कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सतीश महाना का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा था और सतीश महाना चल दिए। हालांकि अब सतीश महाना की सफाई है और उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रगान दूसरी जगह चल रहा था और वहां पर वो मौजूद नहीं थे।
1: उन्नाव में गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम चल रहा था, सामने यूपी के विधानसभा स्पीकर सतीश महाना खड़े थे, अचानक वो कार्यक्रम छोड़कर चल पड़े। इस वीडियो को कांग्रेस ने जारी किया और आरोप लगाया कि सतीश महाना राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर चलते बने। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी नेता और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड नहीं रुक पाए, राष्ट्रगान होता रहा और वे उसके पूरा होने से पहले ही चलते बने। ये हमारे राष्ट्रगान का अपमान है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
5: चलते हुए राष्ट्रगान को छोड़ के जाना, इससे बड़ा देशद्रोह का और कोई काम नहीं हो सकता। जो काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने किया है, उनका ये सारा काम देशद्रोह की श्रेणी में आता है।
1: अब सतीश महाना का ये वीडियो यूपी की सियासत को सुलगाए हुए है। समाजवादी पार्टी भी सतीश महाना पर आक्रामक है और माफी की मांग कर रही है।
6: विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ये कृत्य अक्षम्य है, लेकिन दिन भर पूरी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को टारगेट करेगी। हम इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष कब आके माफी मांगेंगे कि राष्ट्रगान का ये अपमान कब तक करते रहेंगे।
1: बीजेपी हाल ही में वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस को घेर रही थी, लेकिन बीजेपी के विधायक और यूपी विधानसभा स्पीकर के इस वीडियो ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब आज यूपी में पोस्टर वार की। यूपी बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर के साथ लिखा गया है, जुबान पर देशभक्ति और दिमागी नक्सली। पोस्टर में दिखा गया है कि एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ठगबंधन जंक्शन। पोस्टर में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी है। सामने वंदे भारत ट्रेन खड़ी है और पोस्टर में सोनिया गांधी राहुल का हाथ पकड़ कर कह रही है कि बेटा डरो मत, ये वंदे भारत ट्रेन है न कि वंदे मातरम गीत। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के हाथ में एक तख्ती है जिस पर लिखा है टिकट 2027 में हारते। अब इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा, वंदे मातरम को लेकर भी निशाना साधा और साथ ही यह बताने की कोशिश की कि 27 में गठबंधन की हार तय है। और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला बोला है। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव परिवार के आगे सोच नहीं पाते हैं, परिवार के नाम पर यूपी में लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: और अब बात राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम के। कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों के गूंज कार्यक्रम किया। वहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया और अब राहुल के बयान पर हंगामा बरपा है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
9: एक माइंडसेट है

0: कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
0: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
2: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल ने पटना के कोतवाली थाने में आवेदन देकर आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट पर कथित तौर पर आपत्तिजनक और विवादित पोस्ट किए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने आवेदन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दानिश इकबाल के मुताबिक वो पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में अपने सहयोगियों के साथ मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में जुटे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने आरजेडी के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट देखा जो कि आपत्तिजनक था।
4: सुबह राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट होता है, उस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली दिलवाने का काम कर रही। उस वीडियो में जो राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज से पोस्ट हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुलेआम सरेआम गाली दिया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है, गाली दिलवा रही है। बिहार में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग करना, अब्यूज लैंग्वेज का प्रयोग करना पूरी तरह से दंडनीय है।
3: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
3: दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में पुलिस की टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए और आरोप है कि भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से

0: हमला किया और इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
2: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
3: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
2: कितने लोग थे?
3: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब आपको तेलंगाना की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने दूसरे को थप्पड़ मारा और इसके बाद माहौल बिगड़ गया और फिर जमकर मारपीट हुई।
4: तेलंगाना के वारंगल में भयानक मारपीट हो रही है। एक आदमी को कुछ लोग कायदे से पीट रहे हैं। इसमें एक वर्दी पहने हुए शख्स है जो एक जमीन पर पड़े आदमी को पीट रहा है। तस्वीरें वारंगल के उर्सू गट्टा इलाके की हैं। ये आदमी जो बनियान में है, ये बटालियन कांस्टेबल है। यहाँ एक बार में इसने हंगामा किया, जिसके बाद बार वाले ने पुलिस को फोन किया। बीट कांस्टेबल संतोष रेड्डी यहाँ पहुँचे। संतोष रेड्डी इस कांस्टेबल को समझा रहे हैं। अचानक संतोष ने कांस्टेबल को एक तमाचा जड़ दिया। जवाब में बटालियन कांस्टेबल ने भी बीट कांस्टेबल संतोष को तमाचा मार दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो आपके सामने है। संतोष रेड्डी ने इसे डंडे से पीटना शुरू किया। 2 लोग डंडा लेकर और आ गए। उन्होंने भी इस कांस्टेबल की पिटाई शुरू कर दी। देखिए कैसे इसे पीटा जा रहा है। इतना पीटा गया कि यह जमीन पर गिर गया। फिर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग इसे तब भी पीट रहे थे। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यानी पुलिस से पुलिस भिड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि ये बगैर वर्दी में जो लोग थे, इन्होंने कांस्टेबल को क्यों पीटा और अब इस पिटाई का परिणाम क्या होगा? क्या दोनों कांस्टेबल पर कार्रवाई होगी? फिलहाल तो पुलिस वर्सेस पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हैं। अब्दुल बशीर, वारंगल, आज तक।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगा दिया। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को तो इसके नतीजे भुगतने होंगे।
5: हॉर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में हॉर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
6: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
5: Iran बार-बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे हॉर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
7: अगर अमल ना करदन मिजनिम منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه.
5: ترامپ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ ان کی سینہ نے ایران کے ہتھیاروں کے بھنڈار کو ختم کر دیا ہے، لیکن حملوں کی تصویریں صاف بتاتی ہیں कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
0: द भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट पर 300 रन बना दिए हैं। रविवार का खेल समाप्त होने तक ध्रुव जुरेल 7 और सारांश जैन 4 रन पर नाबाद रहे।

0: देवदत्त पड़िक्कल।
1: फिर शतक जमा दिया देवदत्त पड़िक्कल ने। पहली पारी में 300 रन बनाए टीम इंडिया ने। राहुल नाकाम, हाफ सेंचुरी जमा गए कप्तान। कोलंबो में शुरू हुए दूसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की सलामी साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चली और 18 रन बनाकर केएल राहुल पेवेलियन लौट गए। फिर जब यशस्वी जायसवाल हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे, फर्नांडो ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। अब टीम इंडिया को जरूरत थी एक लंबी साझेदारी की। ये जिम्मेदारी निभाई देवदत्त पड़िक्कल और कप्तान शुभमन गिल ने। दोनों के बीच हुई 120 रनों की साझेदारी ने पहली पारी में बड़ा स्कोर करने के मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया। फर्नांडो के निशाने पर इस बार गिल थे, उन्होंने 50 रन की पारी खेली। फिर पंत भी आए और चोटिल होकर जल्द ही वापस लौट गए। लेकिन देवदत्त इस मुकाबले में भी डटे रहे, रन बनाते रहे। तकनीक, तेवर और धैर्य ने उन्हें एक बार फिर शतक के उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने का सपना हर बल्लेबाज देखता है। उन्होंने 117 रन की पारी खेली। नुआंथा की टर्न लेती इस शानदार गेंद ने उनकी पारी का अंत कर दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने पारी संभाली। वो बदकिस्मत रहे कि पहले दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले उन्हें 43 रन बनाकर लौटना पड़ा। आज तक ब्यूरो।
2: खबरों का सिलसिला जारी है, रुकने छोड़े इस ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: बिजली का बिल पेड
2: तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
3: इत्ता माही वे।
4: मुल्तानी खोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खोका कॉफ सिरप।
5: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: क्लिनिक पे दैट इज द मोस्ट कॉमन यू नो सिम्टम, डॉक्टर बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं इस मौसम में, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, द स्किन गेट्स ग्रीजी बिकॉज ऑफ विच एक्नेफॉर्म इरप्शंस स्टार्ट, बार बार फेस वॉश नहीं करना है, दैट विल वॉश अवे ऑल द नेचुरल मॉइस्चर अदरवाइज।
4: कौन से स्किन को किस टाइप के प्रोडक्ट किस तरीके से चूज करना चाहिए?
3: विटामिन सी फॉर एन एक्नी प्रोन स्किन is not a good idea.
4: Hair treatments भी लोग बहुत करवाते हैं जिसकी वजह से hair बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, आपके हिसाब से इन treatments का क्या असर होता है बालों में?
3: We cannot be so strict, हम नहीं बोल सकते कि आप ये मत करना, ये तो obviously, but then you'll have to take care.
4: How to choose the serum according to your skin type.
5: बी.आर. अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
6: अगर अंबेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही दलितिस्तान भी बनता।

0: चुनाव की मांग पर सुलगी सियासत। सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च। अखिलेश के बाद मायावती बोली, ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साफ। परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, कल से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर, दोबारा तैयार। सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की पोल खुली। और पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर, मंडी में लैंडस्लाइड से मंडी पठानकोट हाईवे पर थम गया ट्रैफिक। प्रयागराज में गंगा के उफान से शहर का बुरा हाल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।

0: है, पानी गहरा है, कृपया करके आप लोग एक वाटर बैरिकेडिंग के अंदर ही जाके स्नान करें।
1: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। क्या पहाड़, क्या मैदान, देश के अलग अलग शहरों में मौसम की जबरदस्त मार पड़ रही है। कहीं जोरदार बरसात से बाढ़ के हालात हैं, कहीं लगातार पहाड़ दरकने से लोग खौफ ज्यादा हैं। सबसे पहले बात हम प्रयागराज की करते हैं, जहां पर गंगा में उफान है। दो दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है और शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ये पानी पहुंच गया। और इसी जल भराव को लेकर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जल भराव को लेकर उनकी जमकर क्लास भी ली।
2: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
3: यहाँ पहले सड़के थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
4: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक, बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव संगम जा रहे हैं।
2: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
5: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
2: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
5: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
2: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
6: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
2: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: जो हाल प्रयागराज का है वैसा ही हाल यूपी के उन शहरों का भी है जो नदियों के किनारे हैं। हापुड़, फर्रुखाबाद और महोबा का भी यही हाल है। शहरों के सिर्फ नाम बदले हैं, हालात एक जैसे हैं।

0: उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी। क्या शहर क्या गांव, हर जगह पानी पानी। यूपी के शहरों में नदियां दिखा रही हैं रौद्र रूप। आसमान से बरस रही बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। हर जगह नदियों के उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए फर्रुखाबाद की तस्वीरें। देखिए, जहां मैदान था वहां तालाब है, जहां सड़कें थी वहां सैलाब है। सड़कों पर कई फीट तक इसी तरह पानी भरा हुआ है और इसी पानी के बीच से लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। खेत खलिहान तो ताल तलैया बन गए हैं। स्कूलों में भारी जलजमाव है, गंगा में उफान है। देखिए गंगा की लहरें इस कदर उफनाई कि ये घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। अब लोग बाढ़ से परेशान हैं।
1: जो काबे इतना जे काबे के
2: घर में पानी घुस गया।
1: घर में काबे बहुत तो चारों की दिग होती है, पानी भरा है।
2: नहीं, लगभग गांव के कितने मकानों में घर में पानी घुस गया होगा?
1: गिनती तो करी नहीं, मान लो मकान कम से कम 20-25 तक बूढ़े हैं।
2: 20-25 बूढ़ गए।
3: निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, नवैया होना चाहिए।
2: नवैया होना चाहिए। तो आपके जानवर ऊंचे पे भी बंधे हैं?
3: जानवर सर ऊंचे पे।
2: घरों में पानी तो नहीं पहुंचा?
3: घर में नहीं पानी है,
2: लेकिन बाहर निकलने के लिए
3: तकलीफ है सर। जब घास ले जा रहे हैं, पानी में घुस के जाएंगे।
2: पानी में घुस के जाएंगे।
0: ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई गांवों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। लोगों के घर मकान हर जगह पानी भर चुका है। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और लोग उसी पानी के अंदर से अपनी बैलगाड़ी हो या मोटरसाइकिल निकालने को मजबूर है। जहां एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, वहीं प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम कविता मीणा मैदान में उतरी और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
4: अभी हमारे तहसील के अंतर्गत जो भी 8 जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गांव है, जहां पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है, तो इनके लिए जो शासन द्वारा राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में, और आगे भी अगर ऐसी अगर बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवा सकते हैं।
0: अब महोबा की तस्वीरें देखिए। इस स्कूल में दरिया बह रहा है और इसी पानी में ये बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं।
5: कई वर्षों से जो है ये समस्या चली आ रही है। कल जो है रात में हमारी बाउंड्री वॉल गिर गई, पूरे कमरों में पानी भर गया, चावल रजिस्टर सब भीग गए। हमने कई बार जो ABA साहब को अवगत कराया, ABA साहब स्वयं आए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। चंद लगा सर, मरते मरते बचे।
6: बच्चे बाथरूम कहाँ जाते हैं आपके?
5: बाथरूम भी जर्जर है सर।
6: वहाँ पर पानी भरा है आपका बाथरूम में?
5: पानी भरा
0: है। इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की तकलीफ सुनिए।

0: बैठते हैं।
1: यूपी ही नहीं बिहार में भी मानसूनी आफत के चलते कई जिलों में बाढ़ से हालात हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से बेगूसराय के कई गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: किसानों का बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो पशुपालक है उनके लिए भी काफी समस्या है। पशुपालक किसी तरह एन केन प्रकारेण भर कमर पानी हेल कर तैर कर ऊंचे स्थान से जाकर मवेशी की चारा का व्यवस्था करते हैं और यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए तो किसानों के साथ साथ पशुपालकों के लिए काफी समस्या है।
1: क्या घर, क्या मकान और क्या सड़क, हर जगह सिर्फ पानी पानी ही नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, वहीं हजारों बीघा में लगी फसल पानी में डूब चुकी है। तो साफ है कि इस वक्त आसमान से बरस रही आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: मैदानी इलाकों का हाल आपने देख लिया, अब आपको पहाड़ी राज्यों की स्थिति दिखाते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई और मंडी के चमड़ा नाला के पास में पहाड़ से लैंडस्लाइड के चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। और इससे पहले मंडी के कटौला में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ ही सेकंड में बड़ी मात्रा में मलबा पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। भूस्खलन की तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।
4: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
4: यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटौला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं, कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे, जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।
3: उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्से जलमग्न हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरने से दो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो तमसा नदी के उफान पर आने से मंदिर परिसर में पानी भर गया है। उत्तर भारत के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और मौसम की मार की तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा है।

0: उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, उफान पर तमसा नदी, डूबा टपकेश्वर महादेव मंदिर, पहाड़ों से गिर रहा मलबा, खाई में समा रही सड़कें। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की हैं, जहां तमसा नदी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर है और इसकी चपेट में मंदिर परिसर आ गया है। हालात ऐसे हैं कि नदी का तेज बहाव साफ दिखाई दे रहा है। तमसा नदी के रौद्र रूप को देखते हुए श्रद्धालुओं में भी खौफ साफ नजर आ रहा है। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से लोगों को नदी के तट से दूर रहने की अपील भी की गई है। नदी ही नहीं, आसमान से बरस रही आफत ने भी देहरादून के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में दो गाड़ियां आ गईं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बारिश और नदी के उफान के साथ साथ दरक रहे पहाड़ों ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हादसे हो रहे हैं, ये तस्वीरें मसूरी देहरादून मार्ग की हैं। शनिवार की सुबह सड़क का एक हिस्सा दोबारा क्षतिग्रस्त होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कुछ देर के लिए सड़क पर आवाजाही पूरी तरह थम गई। लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए भारी और बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सड़क को पूरी तरह दो तरफा यातायात के लिए खोलने में करीब 8 से 10 दिन लग सकते हैं। अब रुख करते हैं उत्तर कश्मीर का, जहां मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कुपवाड़ा, बारामूला और हंदवाड़ा में तेज बारिश के साथ हवाओं ने भी जोर पकड़ा। लगातार बारिश के बाद नदियों, नालों और दूसरे जल स्रोतों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। उत्तर दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मौसम ने किसानों और बागवानों को बड़ा झटका दिया है। तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बागवानों की मेहनत पर ओलों की मार पड़ी है और फसल को नुकसान हुआ है। यानी पहाड़ पर मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। बारिश जहां पानी का संकट दूर करती है, वहीं पहाड़ों में यही बारिश अब रास्तों, नदियों और खेती तीनों के लिए चुनौती बनती जा रही है। अब आपको ओडिशा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी बादलों ने तबाही मचा दी है। देखिए, जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ पानी नजर आता है। इस पानी के बीच में लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बरसात ने मुश्किलें तो बढ़ाई ही हैं, लेकिन लगातार हो रही लैंडस्लाइड जान पर खतरा बन रही है। आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्रावधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है।

0: आरक्षण ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भारत के सामाजिक इतिहास का वो अध्याय है जिसमें वंचना भी है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी है और बराबरी का सपना भी। लेकिन अब सवाल सड़कों पर है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठी। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को महत्व देने और क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था की मांग उठाई। यूजीसी के इक्विटी नियमों को लेकर भी विरोध सामने आया और अब वही बहस लखनऊ तक पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की।
1: केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और दो दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में दो दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
0: लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दो टू कह दिया कि इस पर बहस नहीं हो सकती। केंद्र में मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि आरक्षण हटाने का विचार संविधान विरोधी है।
2: सभी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है, सभी को न्याय देने वाली सरकार है।
0: आरक्षण के समर्थकों की दलील है कि सदियों की सामाजिक असमानता को केवल आर्थिक पैमाने से नहीं मापा जा सकता। दूसरी तरफ आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि बदलते भारत में दशकों पुराने व्यवस्था की समीक्षा क्यों न हो। ये वो बिंदु है जो बहस के केंद्र में है, क्योंकि आरक्षण पर फैसला सिर्फ आज के प्रदर्शनकारियों का नहीं होगा, इसका असर उस युवा पर भी पड़ेगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस छात्र पर भी जो अवसर की तलाश में है और उस समाज पर भी जो बराबरी चाहता है। आज तक ब्यूरो।
3: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 की 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे गए तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही है तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।

आरक्षण में बदलाव की मांग पर सुलगी सियासत, सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च। अखिलेश के बाद मायावती बोली, ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, कल से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर, दोबारा तैयार, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की पोल खुले। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर, मंडी में लैंडस्लाइड से मंडी पठानकोट हाईवे पर थमा ट्रैफिक, प्रयागराज में गंगा में उफान, शहर का बुरा हाल।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढौंडियाल और पूजा शर्मा, हम पांच साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले आईआईटी में एक संबोधन में कह दिया
1: जी
0: कि मैं बाग बाग बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानू।
1: जी
0: युवाओं के बीच बैठे थे वो।
1: जी
0: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और
1: देखो,
0: जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखेंगे?
1: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी वे जानते हैं, और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात यह है कि एक ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग हैं, अनेक महापुरुष संत हैं, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएं कि हम 1 साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
2: हमारा मेरी दृष्टि में तो आप जैन जी,
3: जी
2: आप जैन जी
1: 1996 में हम आए हैं, और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो हम 1 साल
2: चेंज कर देते हैं उसको।
1: ऐसा यदि हो जाए,
2: हो गया हो गया,
1: बहुत धन्यवाद।
0: ये दोनों दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई वो साजिश न बोले।
1: जी जी जी, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी नहीं। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी।
2: नहीं, श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
3: बाबा बागेश्वर, ये जो जैन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को मनवाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है?
1: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फुहड़ता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी मां बहन को गाली ना दे। ये इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, एक आज तक के इस टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेष रूप से जैन जी सड़कों पर ही ना आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
0: कुछ मन में है आपके, कैसे होगा ये?
1: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना सा ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा मेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
3: बाबा, आप टीवी देखते हैं?
1: बिल्कुल देखते हैं,
3: न्यूज़ में, आज तक देखते होंगे, तो आज तक आपने सारे प्रदर्शन देखे होंगे, दिल्ली का प्रदर्शन ठीक था?
1: हमने फिर कहा कि देखो, देश भर में प्रदर्शन आज से चल रहा है, कोई ना कोई प्रदर्शन चल रहा है, ठीक था ये कह पाना पूरा सही नहीं होगा। प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन में देश के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए।
3: झारखंड का प्रदर्शन, पटना,
1: बहुत
3: सारे हो रहे हैं,
1: मतलब लगातार चल रहे हैं।
0: मतलब आपको तरीके पर आपत्ति है कि भाषा अच्छी, हिंसा ना हो, ये सारी चीजें,
1: सिस्टम पर, सिस्टम बदलना है, हाँ। सिस्टम बिगाड़ना नहीं।
0: अच्छा, एक हमारी एंकर जो है वो जेन जी ही है
1: जी।
0: वो सालों से नहीं चुकी बल्कि बीचों बीच है, मध्य में है जेन जी।
4: मैं ये पूछना चाहूंगी, प्रदर्शन का जिक्र हो रहा है कि प्रदर्शन में कट टू कट जेन जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उनके जो कोटेशंस भी हमने देखे, बहुत क्यूटली अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे थे, आप उस भाषा को समझते हैं? जैसे जेन जी क्लैप ऐसे करता है, एग्री करता है, तो ये भाषा आप समझते हैं?
0: एक बार जरा
1: इतनी इतनी भर ही समझते हैं,
0: क्या क्या समझ रहे हैं?
1: बहुत ज्यादा समझ नहीं आती, अभी 2-3 दिन से ही इस पर हम समझ पा रहे हैं, ये चुटकी हमें समझ आती है,
0: ये चुटकी नहीं है,
4: ये हार्ट है,
0: हार्ट है।
1: अच्छा, वो भी विदेशी, कोरियन,
0: सब पता है,
2: सब पता है, बस
4: जेन जी ही है।
2: कोरियन हार्ट बोल दिया आपने, आपको सब पता है,
1: बस इतना ही
2: पता है, और कुछ
1: बहुत ज्यादा
4: वही कट टू कट जैसे होते हैं ना उनके जवाब, डिल्यूजनल। आजकल जेन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है
1: आपने अपने
4: है।
1: शब्द है, मोए मोए है,
4: हाँ,
1: हाँ, है, हाँ, हाँ, और ये भी है, और ये भी है
0: ये क्या
4: ये एक तरीके से प्यार
3: जितानी की रील्स
1: ना ना हमने ये दो दिन में अभी सीखा है जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का
3: इंटरव्यूज में ही सीखा
1: आप लोगों की संगत का असर पड़ा
3: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना बाबा बागेश्वर
1: हमने इंटरव्यू में ही और पत्रकार आपके ही भाई बहन थे वो हमें सिखा रहे हैं
3: तो रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है इसको आप किस तरीके से देखते हैं कहां तक सही मानते हैं क्या ये आज का नजरिया है और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है
1: वर्तमान के पहले भारत में एक एडिक्शन था एडिक्ट थे लोग ड्रग एडिक्ट अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहते राष्ट्र प्रेमी एडिक्ट
0: महाराज जी आपके भी रील वायरल
1: कथा एडिक्ट हम भी बनाते रील बनाना बुरा नहीं उसी सोशल मीडिया पर सुविचार हैं संदेश हैं टेक्नोलॉजी है जानकारियां हैं बड़े बड़े विचारकों के संवाद हैं लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे उस कचड़े से संस्कारों पर कुप्रभाव पड़ रहा हमें एक बात समझनी होगी इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से एफबी कहां से हैंडल हो रही अमेरिका से यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से एक्स कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में अमेरिका के हाथ में हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता व्यापारिक दबाव मानसिक आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा
5: आप,
1: तो
5: आप,
1: कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाए
5: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेंजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं

0: पूर्ण रूप से इस बात से सहमत है। निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहे, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो। आंदोलन होना बुरा नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं, पर हमने आपको गाली थोड़ी बकी
1: जी। अरे कॉकरोचेस को लेकर आपका क्या थॉट है, क्या विचार?
0: पार्टी और राजनेताओं पे हम बयान नहीं देते
2: बाबा जी। आपने क्योंकि टैक्स का जिक्र किया, मैं छोटा सा एक सवाल बीच में, आप टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पेयर हैं?
0: हाँ हम तो हैं, आरटीआई लगाओ।
2: नहीं नहीं, लेकिन देखिए ना,
0: बुरा ना मानना, हम ऐसे ही बोलते हैं जी।
2: ये कॉकरोच
0: जी,
2: आप वो अभी पूरी तरह से पॉलिटिकल है नहीं?
1: मैं पूरा पॉलिटिकल नहीं, क्योंकि कॉकरोच एक टर्म जो कि न्यायाधीश के मुख से निकला, उसके बाद सब लोगों ने कहा कि हम कॉकरोच है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने
0: जी जी,
1: तो सब लोगों का अपने आप को कॉकरोच कहकर सड़कों पर आ जाना,
0: ये ट्रेंडिंग का एजेंडा है।
1: अच्छा एजेंडे के तहत
0: चीजें आती रहती हैं, स्थायी नहीं रहती, अनेक नए नाम आते हैं जाते हैं। हम इतना कहना चाहेंगे, देखो हम पार्टियों पर बयान नहीं देते, सबकी अपनी अपनी भावना, किसी ने कॉकरोच पार्टी बनाई, किसी को यदि दिल मन लगे तो वो डायनासोर पार्टी बना ली, और किसी को दिक्कत हो तो हिट बना ली, किसी को और दिक्कत हो मॉर्टिन पार्टी बना ली।
1: सोशल मीडिया पर तो
0: हमें नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान की आजादी, स्वतंत्रता है, तो अपनी अपनी बात रख सकते, अलग अलग नामों से अपने आप को संबोधित करा सकते। अब हम कैसे कहते हैं मेरे पागलू, कई लोगों को भला भी लगता, कई लोगों को बुरा भी लगता, अपनी अपनी अभिव्यक्ति किया, पर हम पार्टियों पर बहुत बयान नहीं देते।
2: ये बहुत सारे वीडियोस उसके बाद से वायरल होने लगे हैं, जब जेन जी का जो आंदोलन हुआ है, और मैं जेन जी हूं करके बहुत सारे लोग धमकियां देते हैं। लद्दाख का वो वीडियो जिसमें सेना का काफिला निकलना है, जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसमें एक लड़की खड़ी होती है, और
0: अभी हमने कुछ देर पहले वो न्यूज देखी, वो सही नहीं। आप देश से, हमारे यहाँ देश सेना के प्रति नफरत रखने वाला व्यक्ति देशद्रोही कहलाता है। हम लोग हमारे देश के जवान वेतन के लिए देश की आर्मी को ज्वाइन नहीं करते, वतन के लिए ज्वाइन करते, वतन के लिए ज्वाइन करते, पैसों के लिए थोड़ी करते। पैसे तो यहाँ ज्यादा मिल सकते, दिल्ली में, मुंबई में, न्यूज में, कथा में, अन्य रस्तों से पैसे, वो वेतन के लिए नौकरी ज्वाइन नहीं करते, वतन के लिए नौकरी ज्वाइन करते, और आप उनको ऐसी अभद्रता से बातें करेंगे? वो देशद्रोही है जो सेना को अभद्रता से बातें करें, तिरंगा पर अभद्रता से बातें करें। देश के सम्मानीय व्यक्ति कोई भी हो, हम अभद्रता चुने ही क्यों? एक बात हम इस टेबल पे कहना चाह रहे, बुरा ना मानना, और मानो भी तो हमें कौन सा आपके घर दोबारा आना है, वो आप ही जाएंगे तो आप करोगे क्या?
3: नहीं नहीं, आपको बार बार आना है
0: जी।
2: नहीं, क्या देशद्रोही वो लोग हैं बाबा बागेश्वर जो वंदे मातरम,
4: पहले अपनी बात तो कर लें जिससे बुरा मान सकते हैं।
0: हम इतना कहना चाह रहे, घटते संस्कार बढ़ते अपराध का परिणाम, घटते संस्कार बढ़ते अपराध का कारण है। संस्कार घट रहे हैं, लोग स्मार्ट हो रहे हैं, पर भावनाहीन।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये तो वाकई संस्कार जब घटेंगे तो
0: अपराध बढ़ेंगे, स्वाभाविक।
2: क्यों घट रहे हैं? पर
0: अपराध घटने के पीछे चार पांच कारणों में से दो मुख्य कारण। पहला कारण है हमारी शिक्षा नीति, मैं काले की पद्धति, इस देश की शिक्षा नीति, क्योंकि हमारे देश की ताकत युवा। देश को आजाद किसने कराया? युवाओं ने, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बूढ़े थोड़ी गए इन लोगों ने, बहुत अद्भुत, सब थे उसमें, पर मुख्य रूप से युवाओं की भूमिका। देश की रक्षा 28% लगभग जिम्मेदारी देश की सिक्योरिटी में किसकी? यूथ की। सेना में 28% लगभग यूथ में रहे, यूथ ही रहता है, तो इस जिम्मेदारी, देश की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास? युवा के पास। और देश का फ्यूचर कौन है? युवा। पर हम यदि शिक्षा नीति मैकाली पद्धति को हटाकर गुरुकुलम पद्धति करें, अकबर महान है ये ना पढ़ाकर रघुबर महान है ये पढ़ाया जाए।
2: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है, या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है?
0: दोनों ही जरूरी है, बोथ जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक है, दिनों रात दोनों आवश्यक है। तो हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है और शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है।
2: क्योंकि आपने देशद्रोही होने का जिक्र किया, कौन लोग देशद्रोही? जो राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर रहे हैं, वंदे मातरम खास तौर पे कह रहे हैं कि दो ही स्टैंजा होने चाहिए, उतने ही बजें या उतने ही गाएं, वो लोग कौन है?
0: बहन, हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांट सकते कि देशद्रोही कौन है। अपने मत की बात कह सकते, इस देश में हमारे

0: हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। संसद सर्वोपरि है, इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया ने उस वंदे मातरम के बिल को पास किया। प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य हो गया कि उस कानून का पालन करें और उसका सम्मान रखें, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, व्यक्ति हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, जवान हो, किसान हो, सबकी जिम्मेवारी हो गई, हमारी भर जिम्मेवारी सबकी हो गई। तो उसमें यदि कोई वंदे मातरम का फिर भी विरोध कर रहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसका मतलब वो संविधान विरोधी है। देशद्रोही तो नहीं कह सकते, पर संविधान विरोधी है। ये तय, आप जब संविधान का नारा देते, संविधान की बात मानते, तो संविधान कहता है कि यदि कोई संसद में बिल पारित हो जाए तो वो लागू
1: कार्रवाई होनी चाहिए।
2: वंदे मातरम का क्योंकि जिक्र हो रहा है, तो लगातार बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो देश से बढ़कर पार्टी को मानती है, आपकी क्या इस पर राय है, क्या क्या लगता है?
0: हम राजनीति और पार्टियों पे बोलते नहीं है, पर एक लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं। पार्टियों को नहीं, देश के लोगों को, जो हमें सुनते हैं। देखो, हमारी बातों से कई लोगों को ये लगेगा बाबा ये है, बाबा वो है, पार्टी समर्थक विरोधी, हाओ बाबा एक पार्टी का दो पर, बल्कि सूर्य चंद्रमा सबका है।
3: आप पर आरोप भी लगे थे बाबा कि आप किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित हैं, आरोप तो बहन आपने कैसे हैंडल करते हैं इतना क्रिटिसिज्म?
0: हम कुछ नहीं करते हैं, आरोप को हम इस दृष्टि से देखते हैं कि आरोप इस देश में सब पर लगाना सरल। अब आप पे भी आरोप है कि आपकी सीट को आपने चुरा लिया,
4: उनके सवाल का जवाब रह गया, आप एक लाइन
2: उनके लिए पार्टी है।
0: हम ये इस पे तो जवाब नहीं देंगे, इस पे जवाब हम देना चाह रहे हैं पूरी पार्टियों के दलों को। वर्तमान में दल कम दलदल ज्यादा हो गया। ये बात कह के आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा, हमारा मंतव्य ये है इस बात के कहने का कि दलदल का अर्थ यह है कि आप दल के हितकारी कार्यों को करते रहो, कहते रहो, अपनी बात रखते रहो, लेकिन देश नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, उसके खिलाफ बिल्कुल मत जाओ। दूसरी बात, संसद में लड़ो, पर जब देश की बात आए तो एकजुट हो जाओ, अपनी पार्टी के भले के चक्कर में देश का नुकसान ना करो, चाहे वो कोई भी पार्टी।
4: आप पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहा हूँ,
0: हाँ।
4: और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब,
0: अब अभी रथ यात्रा भी करने वाले
4: इसी के लिए कहाँ जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए ना, वहां पर यूपी में इलेक्शन है, वहां पर हर एक अभी का जो एजेंडा चल रहा है उसमें सब ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण की बीजेपी से नाराज है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, कि बीएसपी के साथ जाएंगे, ये सब चल रहा है। तो आप जो करते हैं वो क्या पॉलिटिकल पार्टियां उस पर पानी डाल देती हैं?
0: उनके ही, ये हमें लगता है कि उनके ही गड्ढे खोदे हुए गए हैं, उसको भरने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना हो, राष्ट्रवाद हो, कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें।
4: पर हिंदू राष्ट्र,
0: हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू, हाँ, मुसलमान मुक्त होता तो भाई आपकी तरफ ही सबकी नजर जा रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वैचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते। और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले, ये हिंदू राष्ट्र। और हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए।
5: लेकिन आप एकजुट होने की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन उसी समय में एक जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था भी है हमारे देश में, उस पर आपकी क्या राय है?
0: उस पर क्या कह सकते हैं कि संविधान है, लॉ है, और वो चल रहा है, तो संविधान और आरक्षण
5: अनुचित, आप क्या समझते हैं?
0: अनुचित तो ऐसा कुछ खास नहीं, बस इतना कह सकते हैं कि वास्तविक जो परेशान है उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए।
3: जातिगत जनगणना होनी चाहिए आपके हिसाब से?
0: नहीं, जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, अमीर और गरीबों की जनगणना होनी चाहिए।
3: ये कभी मुखर तौर पर आपने अपनी किसी सभा में या
0: कई बार हमने बोला है, पर हमारी बात को समझा नहीं देश ने, 10 साल बाद देश समझेगा, ये तय। हमारी एक ही चूक है कि हम टाइम के पहले बोल रहे हैं।
3: बाबा जी अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पहन रही
0: हैं। हमारी बहुत बहनें हैं,
3: बहुत सारी बहनें जहां जहां जा रहे हैं वहां पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है, बन चुका है।
0: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगे तो आप
1: बहने
3: लेके आए नहीं, हम बांध देते
1: हैं। बहने तो आपकी बहुत है
0: जी,
1: गर्लफ्रेंड
0: ये तो राम राम राम। आपको लगता है कि हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट पा रहे
1: हैं? शादी करेंगे कि नहीं बाबा?
0: हाँ घरवाली लाएंगे,
1: तो गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं।
0: ना ना भैया, हमारे यहाँ संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर।
1: आजकल आप जेंजी हैं ये तय हो गया, एक साल से
0: बड़े और हर जेंजी से बड़े,
1: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह बंधन
0: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। जानना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
1: शादी तो करेंगे ना?
0: शादी आपको क्या लगता है हम लड़ुआ मरे?
1: कब कर रहे
4: हैं? वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते हैं,
2: रहते हैं।
0: बहुत जल्दी होगा। अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है 2027 के दिसंबर में, फर्स्ट फेज में उसको चालू हमें करना है 2027 में। और हर वर्ष बेटियों का विवाह है वो संकल्प। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम। 80 बच्चे मजदूरों के, जिनकी माता पिता मजदूर हैं, उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते, हाँ ठीक ठाक।
4: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
0: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
4: अच्छा महाराज जी, क्योंकि अभी जेंजी का वापस उसने जिक्र किया, एक सवाल रह गया था। कंगना रनौत ने उस समय गटर जेनरेशन कह दिया
0: जी,
4: स्वामी रामदेव ने इस पर अपनी टिप्पणी दी, आपकी क्या निजी राय है?
0: राजनेता
4: नहीं, राजनेता क्या, वो तो एक्ट्रेस है।
0: हाँ वो लेकिन सांसद है।
4: अच्छा ठीक है, अभी सांसद है लेकिन सांसद से ज्यादा समय तक एक्ट्रेस रही।
0: नहीं नहीं, अब राजनेता।
4: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे?
0: स्वामी जी तो हमारे आदर्श हैं
4: महाराज जी।
0: तो आप महात्मा को लड़वाना चाहते हैं?
5: आपके आदर्श मतलब क्या, आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या आप भी उस दिशा
0: में? आप क्या चाहते हैं? महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे, देने वाले दाता ना। देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित, हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है, उन सबको आप सुनेंगे, हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए और हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा? हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ पर परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो, धन कमाना बुरा नहीं है पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैलाकर कमाना महा बुरा है। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे, हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो। और बिल्कुल होना चाहिए, हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती कि सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है।
4: धर्म का धंधा हो रहा है, अगर हम चंदे
0: कुछ लोग
4: की बात
0: कर भी रहे,
4: चढ़ावा मामले की बात करें अयोध्या,
0: वो तो बहुत, एक हनुमान भक्त होने के नाते, राम भक्त होने के नाते हम इतना कह सकते हैं कि रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था, उसकी लंका लग गई थी। SIT देश के कानून पर हमें भरोसा है, निश्चित है दंड, जिन्होंने अपराध किया उन्हें दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान भी उनको छोड़ेगा।
1: वो कौन लोग हैं और धर्म का
0: धंधा कैसे, नहीं वो तो जांच में बाहर आए,
1: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं, धर्म का धंधा क्या होता है?
0: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर, झूठ छल कपट के नाम पर, दिखावा भय दिखा करके, धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहें कि आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहां 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहिए।
3: महाराज जी जब आपको
0: इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
3: जब आपको चंदा चोरी के बारे में पता चला, कितना आश्चर्य या कितना दुख आपको हुआ कि भगवान के दर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और जो लोग उसमें थे वो काफी हद तक मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए थे, और उनको मतलब चिन्हित कर पाना भी काफी देर बाद संभव हो सका, तो ये कितना आपको मानसिक रूप से पीड़ा हुई?
0: प्रत्येक राम भक्त को जो पीड़ा हुई वही पीड़ा हमको। भगवान के सहारे जीने वाले हम लोग हैं, भगवान पर निष्ठा रखने वाले लोग हैं, हनुमान जी की सेवा टूटी फूटी जो बन जाती वो करते हैं, और कई लोगों ने अपने माताओं के गहने बेचकर, पत्नी के गहने बेचकर सामग्री को अर्पित किया, चरणों में समर्पित किया राम जी के चरणों में। जब ये घटना हुई तो ये बड़ी हृदय विदारक घटना थी, और सबसे विचित्र बात ये थी कि इस घटना के बाद भी कई लोग चुप रहे, तो दुख बहुत लगा, और हमने उस पर बयान भी दिया, अपनी बात रख सकते हैं वो रखें, अब हम देश का कानून तो है नहीं, पर सरकार ने कानून ने बहुत अच्छा कार्य किया, वो नाम बाहर आए, SIT की जांच गठित हुई, SIT ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके जो जिन्होंने किया उन्हें तो दंड मिला ही, जिन्होंने नहीं भी किया उन्हें भी अपराध बोध लगा,
3: बड़े लोगों को बचाया गया उसमें।
0: पूर्ण रूप से सही कह पाना सही नहीं हो सकता, पर कुछ हो भी सकता, ये भी
3: इससे कैसे बचा जा सकता था, ये कुछ होता ही ना इस तरह की घटना, इसके लिए आप क्या सोचते हैं?
0: इसके लिए सिस्टम के सुधार, हम सिस्टम में एक बात ये याद रखें, अब आप हमको न्यूज का हेड बना दो, हमारी न्यूज चलेगी हिंदू राष्ट्र, हमारी न्यूज
3: चलेगी,
0: अब इसीलिए तो कह रहे हैं आप हमको न्यूज का हेड बनाओगे तो हमारी न्यूजों का तरीका ही अलग होगा,
4: मतलब सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट को वो जिम्मेदारी देनी चाहिए,
0: सबके अपने अपने रास्ते हैं, अब आप हमको बैठा दो कि अब आप जाओ जरा एडिटिंग देखो, हम एडिटिंग में जो है आपके प्रश्न को सबसे लास्ट में कर देंगे, आपके प्रश्न को सबसे पहले
3: ये शादी वाले प्रश्न।
5: लेकिन बाबा जी उसमें आरोप ये लगा कि सरकार की भी नाकामी रही है, आपको लगता है कि इसमें सरकार नाकाम रही या फिर प्रबंधन की देरी हुई?
0: सरकार से जो देरी हुई वो चूक थी, जो कार्य आज करना चाहिए वो 10 दिन बाद मत करिए, आज ही कर दीजिए, क्योंकि गंगा में पानी जब बहुत बह जाता ना तो लौट के थोड़ी आता है,
4: ओवर कॉन्फिडेंस था कि कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, ये आरोप ही गलत लग रहे हैं,
0: ऐसा लोगों को लग रहा था, शायद सरकार को ये उस वक्त लग रहा था कि ये प्रोपोगंडा है, प्रायोजित है, या फिर सरकार इस विषय से बचना चाहती थी, पर बाद में जगी, पर जगी ये बेहतर है और बेहतर तरीके से जगी, उसके लिए हम वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं।
4: अच्छा, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाली बात आपने कही, तो योगी जी चूंकि एक
0: साधु है
4: इस वजह से वो ज्यादा न्याय की तरफ ध्यान देंगे वहां पर इस मामले में,
0: उन्होंने दिया भी, हम जो एक न्यूज बीच में देख रहे थे, हम शायद बाहर थे, तो वो जब अयोध्या रामलला दर्शन करने गए तो वो बहुत लोगों को मिले तक नहीं, ऐसी कुछ न्यूज चल रही थी उसमें चंपत राय जी को भी वो उस वक्त उन्होंने।
3: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
0: नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज पढ़ते
3: हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
0: चलाते हैं
3: और फिर
0: जी उसमें आपको क्या लगता है
3: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
0: एक्स हैंडल करते हैं,
3: एक्स हैंडल,
0: और इंस्टाग्राम करते हैं,
4: Instagram. खुद से करते हैं तो, आपका भी समय जाता है ऐसे रील
0: चालीस मिनट तो जाता है,
3: 40 मिनट
0: 30 मिनट 40 मिनट न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या किसने क्या क्या बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत माइक बताइए बाबा ये क्या, अब माइक लगाने वाले आप ही लोग होते हो, अब एक ले बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था बोल नहीं पा
1: बाबा, मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुग्ध हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको देखता रहूंगा,
0: जी जी आप बहुत सज्जन,
1: आप बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं
0: जी,
1: लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, कोई शानदार आपने कुर्ता पहना है, कौन डिजाइन करता है?
0: हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
1: अच्छा,
0: लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं,
1: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है?
0: कितने
1: खुश हो रहे हैं?
0: हमारे खुद के कहां, उनका हृदय बड़ा आह्लादित होता कि गुरु जी ने पहन लिया,
1: तो आपका
0: हम तो चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एकाध श्रद्धा दिखाओ आपको आपके आपको भी मन में आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता पहने कोई महात्मा पहने,
4: सही तो कोट देंगे ना, वो तो कोट देंगे,
0: कोट ना दें, कोट कहाँ करेंगे?
1: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको।
0: हार मिल गया, हम ले भी लेंगे, और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कैमरे पे, हम बोले कि अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े पत्रकार हमने देखे।
1: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
0: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो, हम पहन लेंगे।
1: टी शर्ट पहनेंगे?
0: अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, वो ना पहनेंगे।
1: टी शर्ट के साथ जीन्स भी देंगे?
0: ना ना, हम वो ना पहनेंगे पहले ही।
5: लेकिन क्यों पहने? अच्छा तो है जीन्स पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ?
0: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए। सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में। डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है। उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं भैया। आप क्या चाहते हो
3: महाराज जी? हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा, कई आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया, जो गंदे कपड़े थे। कैसे इस पर अंकुश और लगाम लगे कि हम आस्था को भी चोट ना पहुंचाए?
0: यात्रा बंद करवाने की बात
3: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उस
0: ठीक
3: पर,
0: करने की
3: उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए।
0: सजगता और सद्बुद्धि है, उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंकें, कचरे को कूड़ेदान में ही डालें, और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे, आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़िया भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में, गंगा के किनारे, रास्ते पर, सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
4: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर, मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए।
2: महाराज जी, जितने जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है, कुछ, लेकिन जेन जी, कुछ युवा हैं, जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेन जी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी
0: बात। हर रास्ते, हर हल, हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं, संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का, जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए।
4: अच्छा, एक और समस्या का समाधान हो गया है, वो है नक्सलवाद।
0: जी,
4: नक्सल मुक्त भारत,
0: मुक्त हो गया भारत।
4: पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिमागी नक्सल से रहना है सावधान। उसके बाद एक कतार लग गई है नेताओं की, जो कह रहे हैं कि हम भी हैं दिमागी नक्सल। क्या होता है दिमागी नक्सल?
0: हमको तो इस बारे में पता नहीं, प्रधानमंत्री जी ही इसका विश्लेषण और व्याख्या कर पाएंगे। इतना हम कह सकते हैं कि दो प्रकार की परिस्थितियों से चीजें होती हैं, एक वाहिक परिस्थिति, एक आंतरिक परिस्थिति। तो बाहर जो समस्या होती है, कई बार बाहर की ठीक हो जाती है, अंदर की ठीक नहीं होती है। तो अंदर की समस्या ही बाहर प्रकट होती है, तो अंदर की समस्या को ठीक भी किया जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो कहता है कि हमारे पेट में छिपकली चल रही, अब ये संभव नहीं, अब वो चल रही है, अब वो चिल्लाता है, रोता है, ये गई ये गई ये गई, तो बड़ा परेशान, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब उसको समझाया जा रहा है, भाई ऐसा संभव नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कि छिपकली, तो पूछा कैसे, क्या हुआ, बोले हम सो रहे थे, मुंह खुला था, छिपकली घुस गई। ये कोई लॉजिक है भाई? लेकिन वो कह रहा है, अब कह रहा है, तो फिर उसको ठीक कैसे किया जाए? तो उसको फिर एक इंजेक्शन लगाया गया झूठ मूठ का पानी का।
4: अच्छा।
0: उसको बोतल चढ़ाई गई ग्लूकोज की, फिर एक मरी हुई छिपकली खुजवाई गई, फिर एक सनसी लाई गई, फिर उसके मुंह में जो है डाल रखी गई और फिर निकाल। उस दिन से वो ठीक है।
4: छिपकली कहां से लाते हैं आइडिया?
0: और हमने उससे जो है 5,000 रुपया भी ले लिया, वो संतुष्ट भी हो गया। बाद में बता भी दिया
1: कि ऐसा से क्यों।
0: सब प्रोपोगंडा था।
4: किसी डॉक्टर को बता दीजिएगा ये कि वो भी अच्छा, पानी का इंजेक्शन आजकल आप लगे और 5,000
2: आजकल आप पर्ची निकालना छोड़ दिए हैं।
0: ना ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी।
4: अच्छा, कथाओं में होता है, बाकी जगह नहीं करते।
0: कथाओं में भी होता सब लेकिन व्यस्तता अन्य जगह ज्यादा बढ़ गई। कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा।
4: हाँ।
0: और पदयात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी है उसमें तो लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं।
4: हाँ।
0: ये कह सकते
4: महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप्ड वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती है जिस पर हम काम कर सकते हैं?
0: भारत में सब कुछ बस प्रस्तुतीकरण का खेल है। हमारी प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन ठीक नहीं। वो अपने पहाड़ खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। भारत की स्वच्छता पर काम होना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर, कोनों में और दिमागों में।
4: दिमाग की पहले फिर
2: दिमागों की सफाई कथा के साथ होगी।
0: नहीं नहीं,
2: बाकी सफाई सरकार को करनी है।
0: नहीं नहीं नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं।
4: है।
0: स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी। इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार है और विचार सदविचार बुरे विचारों को ठीक करते, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
5: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है? मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
0: ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं। हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
2: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा आपको इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी, सबने पता किया एक एक करके कि हम कौन सी,
0: आप कौन है,
1: जेन जी
0: आप यदि जेन जी हैं तो हम अल्फा बीटा हैं।
1: नहीं नहीं, श्वेता और हम जेन जी हैं, मैं बता दूं।
0: आप यदि अपने
2: हम लोग 25 से एक साल ऊपर कभी नहीं होंगे।
1: कभी नहीं, कभी नहीं।
0: तो फिर हमको अल्फा बीटा ही घोषित करना पड़ेगा अपने आप को।
2: उम्र तो दिमाग में होती है ना।
0: अल्फा बीटा के बाद कौन सी आई?
2: बीटा के बाद
5: बीटा,
2: अभी तो बीटा चल रहा
4: है,
0: अल्फा
4: महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए? कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और अब आप बाबा बागेश्वर बन गए?
0: हम बचपन से ही उल्टे थे।
4: उल्टे थे क्या उल्टे काम किए आपने?
0: हमने कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन। बचपन से ही हमको किसी ने बाबा बनाया नहीं। हम बने बनाए ही थे। हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था। हमारे ग्रैंड फादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी। एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे वो। उनके चरणों में रहे, हनुमान जी की सेवा बचपन से ही। हमारे पिताजी, माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी, परदादा। तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रहे हैं। तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं। तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है। तो दादाजी ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली। तो हम बचपन से ही धार्मिक धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था। फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया। तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं समानते।
2: पर लेकिन आपकी बातों के साथ, मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन
4: आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
6: यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए हैं। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
7: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है, ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, यह गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
8: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिये अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर ये शुरू हो गया है।
7: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
9: आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
7: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
10: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
7: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
10: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
7: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
7: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
11: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
7: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
11: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
7: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
12: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
7: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
7: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
6: दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस बलों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
7: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
13: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
14: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
13: कितने लोग थे?
14: वो तीन चार पांच लोग होते हैं, तीन चार पुलिस वाले थे। यहाँ पे तावड़ तो लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
7: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में तीन पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
6: अब आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दो पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने दूसरे को थप्पड़ मारा, इसके बाद माहौल बिगड़ गया और जमकर मारपीट हुई।
7: तेलंगाना के वारंगल में भयानक मारपीट हो रही है। एक आदमी को कुछ लोग कायदे से पीट रहे हैं। इसमें एक वर्दी पहने हुए शख्स है जो एक जमीन पर पड़े आदमी को पीट रहा है। तस्वीरें वारंगल के उर्सुगट्टा इलाके की हैं। ये आदमी जो बनियान में है, ये बटालियन कांस्टेबल है। यहाँ एक बार में इसने हंगामा किया, जिसके बाद बार वाले ने पुलिस को फोन किया। बीट कांस्टेबल संतोष रेड्डी यहाँ पहुँचे। संतोष रेड्डी इस कांस्टेबल को समझा रहे हैं। अचानक संतोष ने कांस्टेबल को एक तमाचा जड़ दिया। जवाब में बटालियन कांस्टेबल ने भी बीट कांस्टेबल संतोष को तमाचा मार दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो आपके सामने है। संतोष रेड्डी ने इसे डंडे से पीटना शुरू किया। दो लोग डंडा लेकर और आ गए, उन्होंने भी इस कांस्टेबल की पिटाई शुरू कर दी। देखिए कैसे इसे पीटा जा रहा है। इतना पीटा गया कि यह जमीन पर गिर गया। फिर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग इसे तब भी पीट रहे थे। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यानी पुलिस से पुलिस भिड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि ये बगैर वर्दी में जो लोग थे, इन्होंने कांस्टेबल को क्यों पीटा और अब इस पिटाई का परिणाम क्या होगा? क्या दोनों कांस्टेबल पर कार्रवाई होगी? फिलहाल तो पुलिस वर्सेस पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हैं। अब्दुल बशीर, वारंगल आज तक।
6: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आगे आगे,
16: अरे उधर
2: उधर गिर। करेक्ट करेक्ट,
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: इतना माही वे।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आगे आगे
1: उधर
0: उधर किधर
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Oh no, बहुत बोर लग रहा है.
2: Take a date, not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
2: Lion Date Nut Bites.
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
7: In association with
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. सेरा सैनिटरीवेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा.
9: आगे आगे, करेक्ट
10: करेक्ट. मिल गया.
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आरक्षण में बदलाव की मांग पर सुलगी सियासत, सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च। अखिलेश के बाद मायावती बोली, ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, कल से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर, दोबारा तैयार, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की पोल खुली। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर, मंडी में लैंडस्लाइड से, मंडी पठानकोट हाईवे पर थमा ट्रैफिक, प्रयागराज में गंगा में उफान, शहर का बुरा हाल।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और इस राउंड टेबल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में एक बहस 15 अगस्त के बाद से छिड़ी, और वो है प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कहे गए दो शब्दों पर, दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने दरअसल ये कहा कि आज देश में नक्सलवाद को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन जो दिमागी नक्सल है, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो आज भी देश में मौजूद है। इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं। अगर विरोध की आवाज को इस देश की सरकार दिमागी नक्सल कहती है, तो हम है दिमागी नक्सल। दो नेता पी चिदम्बरम, अरविंद केजरीवाल, ऑन रिकॉर्ड आए और कहा हम दिमागी नक्सल हैं। तो विपक्ष इसे इस तरह से देख रहा है कि डिसेंट की आवाज, विरोध की आवाज को दबाती है सरकार, और जो भी विरोध करता है या आवाज बुलंद करता है सरकार के खिलाफ, उसको वो दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, ऐसे शब्दों से घेरते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो देश में स्थायी और विकास की राह पर चल रही सरकार को और देश को पीछे खींचना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, दो तरह की टीम तो बनी गई है, तीन तीन की। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं उनके साथ अंशु जोशी होंगी प्रदीप भंडारी के साथ, जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में, और रोहित कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इधर अभय दुबे जी के साथ हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि नेता लेफ्ट हैं, और जैसे पता चला वो आ रहे हैं, तो हमने सोचा है कि यहाँ पर थोड़े हेलमेट्स और थोड़े नी कैप्स ये सब मंगा लिया जाए, ताकि यहाँ पर अगर डिशुम डिशुम होता है तो उसकी नौबत को रोका जाए। और बहुत दिनों के बाद अनीश गवांडे हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि शरद पवार गुट के एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी की भी आजकल मोदी जी से कई मुलाकातें होती हैं, उस पर भी चर्चा होती है, कुछ इनसाइड स्टोरी भी बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, दिमागी नक्सल, क्या वाकई इस पर विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब हुआ है, या सरकार ने सही जगह पर निशाना साधा? देखिए ये रिपोर्ट।
2: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
3: कि वो शब्द बाढ़ है जिस पर राजनीति का घमासान छिड़ा हुआ है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवादी हिंसा को विचारधारा का कवच पहनाने वालों पर प्रहार किया था, लेकिन देश के विपक्ष ने इसे विरोध की आवाज दबाने की कोशिश का प्रयास बताकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताते हुए सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा था, दिमागी नक्सल बीजेपी के अर्बन नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोपों का नया संस्करण है। आखिर अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था? ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों को निशाना बनाकर इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उसी तरह के अपशब्दों का नया संस्करण है। सिर्फ चिदम्बरम ही नहीं, बल्कि विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की।
4: मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है।
3: दिमागी नक्सल एक गंभीर शब्द है, और विपक्ष ने अगर इसे विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कहा है तो इस पर हंगामा लंबे समय तक चलना तय है। पक्ष विपक्ष के वार पलटवार में ये बात भी सही है कि मोदी सरकार से पहले यूपीए सरकार को भी नक्सलवादी हिंसा को विचारधारा के स्तर पर समर्थन देने वालों से जूझना पड़ा था। ऐसे में सवाल सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का नहीं, सवाल ये है कि क्या वाकई कोई ऐसी विचारधारा है जो नक्सलवाद जैसी हिंसा को समर्थन देती है। क्या हिंसा को विचारधारा का कवच पहनाने वाले पढ़े लिखे लोग हमारे विश्वविद्यालयों में, अन्य संस्थानों में और समाज के महत्वपूर्ण जगहों पर कुंडली बार कर बैठे हैं? क्या विचारधारा के नाम पर हिंसक गतिविधियों को समर्थन देने वालों से देश को सावधान रहना होगा? क्या देश पर दिमागी नक्सली का खतरा गंभीर है या पेपर लीक जैसे देश के बड़े मुद्दों के बीच दिमागी नक्सल का नया हंगामा खड़ा किया गया है? आज तक ब्यूरो।
1: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, आप ही के साथ शुरू करते हैं। अब पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं हाँ मैं हूँ दिमागी नक्सल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हाँ मैं हूँ दिमागी नक्सल, विरोध की आवाज को क्या आप लोग दबाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द देते हैं ताकि उनका एक कैटेगरी बना दिया जाए?
5: अंजना जी, विरोध करने का अधिकार सबको लोकतंत्र में है। पंजाब में जैसे लाठियां चली ये सरकार उसमें विश्वास नहीं रखती, पर विरोध के नाम पर अगर कहेंगे कि संसद उखाड़ फेंक देंगे, ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। ये 2018 का लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रोना विल्सन ने लिखा था, जिसमें वो ये कह रही थी भीमा कोरेगांव में कि राजीव गांधी को जिस तरीके से असैसिनेट किया था वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असैसिनेट करने का प्लॉट ये कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स ने किया था। ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अगर आप हम पे विश्वास नहीं रखती तो ये यूपीए सरकार के समय की मैं न्यूज रिपोर्ट लेके आया हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये कह रही थी यूपीए सरकार के उस वक्त के होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, जो कहते थे कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन गुरिल्ला आर्मी, यूपीए सेड दिस। अब उस वक्त यूपीए के अंदर सरकार में थे विनायक सेन, जिसको कन्विक्ट हुए थे सेडिशन के अंदर। ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अरुंधति रॉय ये कहती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, और कांग्रेस ने कभी भी इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया सीनियर लीडरशिप ने। ये है दिमागी नक्सल विचारधारा। और चिदम्बरम जी तो कहेंगे ही कि वो दिमागी नक्सल विचारधारा के व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके समय में नक्सलवाद इस देश से खत्म नहीं हुआ। अब जब हिडमा जैसा नक्सली आतंकी जिसको इस देश की फोर्सेज मारती है, अगर वहां पे राहुल गांधी के वीडियो के अंदर ऐसे वीडियोज आएंगे जो कहेंगे हिडमा अमर रहे, तो ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अगर एक आतंकवादी को मारा जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज मारेगी, उसको कहा जाएगा कि जुडिशियल किलिंग है, या हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को कहा जाएगा हाफिज सईद जी, तो बिल्कुल ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। दिमागी नक्सल विचार का मतलब विरोध नहीं, दिमागी नक्सल विचारधारा का मतलब जो भारत की संप्रभुता अखंडता में विश्वास नहीं रखता, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर आतंकवादियों को बैक करता है और जो अराजकता की बात करता है, ना कि लोकतंत्र की। यह है, और ये हम ही नहीं कह रहे, यूपीए भी कहा करती थी, परंतु अब यूपीए के पीछे दिमागी नक्सल विचार के लोग आ गए हैं तो कठपुतली बन चुके हैं, इसलिए सच्चाई नहीं बनेगी।
1: कई सारे ऐसे बुद्धिजीवियों को आपकी सरकार ने वाकई गिरफ्तार किया था कि नहीं? विवेक जी, आप तो कई लोगों के उनमें से समर्थन करते थे, आएंगे, आप भी यही कहते थे कि ये जो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, तो फिर क्या अंतर हो गया?
6: प्रधानमंत्री जी, दिमाग पर जोर देकर गिनते हो गलतियां हमारी, दिल पर हाथ रखकर बताओ कितना कसूर है तुम्हारा। मैं तो आज सौभाग्य है मेरा कि आज तक के स्टूडियो में बैठा हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2018 से एक वर्ड क्वाइन किया, अर्बन नक्सल, जो सरकार से असहमति व्यक्त करता था, जो सरकार को रास्ता दिखाता था, कहता था प्रधानमंत्री जी गलत रास्ते पर मत जाइए, ये देश बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने सबको अर्बन नक्सल पेंट करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ? फिर इंडिया टुडे समूह ने एक आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा साहब पूछा तो जाए प्रधानमंत्री से, देश के गृहमंत्री से जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि अर्बन नक्सल। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने एक आरटीआई फाइल की और उसमें प्रश्न पूछे, हु आर अर्बन नक्सल्स, इन विच एरिया दे आर एक्टिव, और कहां कहां वो पाए जाते हैं, और वो अर्बन नक्सल का स्वरूप क्या है, ऐसे कम से कम 10 प्रश्न पूछे। सरकार ने जवाब क्या दिया है जानते हैं आप? सरकार ने जवाब दिया कि साहब ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, सरकार ऐसे किसी शब्द में, ऐसी किसी परिभाषा में विश्वास नहीं रखती। मुखोटा देखिए इन लोगों का प्रधानमंत्री जी, जो दिमाग से दिवालिया हो जाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चंदा चुराते हैं, जो छात्रों पर पैलेट गन चलाते हैं, वो दिमागी नक्सल कहलाते हैं प्रधानमंत्री जी, जो पेपर लीक करवाते हैं, जो बलात्कारियों को बचाते हैं, जो संजय मुखिया को बचाते हैं, जिनके सत्ता की सरपरस्ती में 94,000 स्कूल बंद हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर पिटवाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो किसानों के खिलाफ काले क्रूर तीन तीन कानून लाते हैं, जो जमीन छीनने के अध्यादेश लेकर आते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो चीन भारत की भूमि में घुस जाए, भारत माँ की भूभागी अस्मिता को खंड खंड करने का मानस रखे, और आप जब उसको क्लीन चिट करना कोई आया है ना घुसा है, तो ऐसी सत्ता को अर्बन नक्सल कहते हैं प्रधानमंत्री जी। इस देश के नागरिकों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। क्या अगर देश के नागरिक आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कि गिरफ्तार कीजिए उस संजीव मुखिया को जो नीट के पेपर घोटाले में शामिल है, तो क्लीन चिट दे देती आप।

0: डिजिटल साक्ष्य आपने दिए हैं वो बहुत कमजोर स्तर के हैं, इसका अर्थ है कि षड्यंत्र पूर्वक फंसाते हैं।
1: अच्छा, इंटेलेक्चुअल नक्सल में और दिमागी नक्सल में क्या अंतर है?
0: अंजना जी, ये तो प्रधानमंत्री जी
1: बताएंगे। यूपीए के इंटेलेक्चुअल नक्सल
0: नहीं
1: और इनके कभी अर्बन हो जाते हैं, कभी दिमागी हो जाते हैं, क्या
0: देखिए ये तो
1: अब तो एक ही वैरायटी के सामान है क्या?
0: इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सरकार के पास है, वो बता दे क्या परिभाषा आपने तो इंडिया टुडे,
1: आप मुझे बताइए ना फर्क।
0: इंडिया टुडे ने पूछा तो कहा कोई
2: नहीं जवाब,
0: इनकी सरकार ने तो साफ इनकार कर दिया, आपने आरटीआई में
1: जवाब
0: पूछा था।
2: पहले देखिए
1: छोटा सा जवाब,
2: छोटा सा, मैं तो तथ्यों से ही बात करता हूँ। ये आरती जी है, आरती कंकर, इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और नक्सलियों ने मृत्यु करी थी, उसके बाद जाकर जब पी चिदम्बरम ने अपने आप को दिमागी नक्सल कहा तो ऐसे तमाम विक्टिम्स जो नक्सल टेरर के बाहर आके बोले कि हम आहत हैं कि इतने सालों बाद हमारी जिंदगी के अंदर जो है खुशहाली आई और हमारे जो पति नहीं रहे, हमारी मां नहीं रही, ये सब नक्सल टेरर पे इसका पी चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है। ये देश का मूड दिमागी नक्सल पे जो कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा है। और अगर कांग्रेस को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आज कांग्रेस सार्वजनिक रूप से बोले कि जब यूपीए ने कहा था कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन गुरिल्ला आर्मी तो यूपीए झूठ बोल रही थी। क्या क्या विनायक सेन कन्विक्ट नहीं हुए थे क्या सेडिशन के, जो यूपीए के अंदर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थे? और ये कौन सी विचार है अभय जी, जब अंडमान के अंदर भारत अपनी स्ट्रेटेजिक भूमि को आगे ले जाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट को आगे ले जाते हैं, आप 6-6 आर्टिकल लिख देते हैं जिससे फायदा सिर्फ चीन का होता है। ये कौन सी ऐसी विचार है अभय जी जिसमें हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को जी कहा जाता है? ऐसा कौन सा विचार है अभय जी जिसमें भारत का तिरंगा जब जम्मू कश्मीर में लहराता है आपके समय पाकिस्तान का झंडा लहराता, ये कौन सा विचार है जो डिसेंट के नाम पर आप एनआरकी की बात करते हैं और इंडियन यूनियन में विश्वास नहीं रखते? यही विचार है दिमागी नक्सल का। आपका दिल भी जानता है, हम भी जानते हैं और देश का हर देशभक्त व्यक्ति जानता है कि हमने सही जगह बोला है।
0: देखिए, इन्होंने तो एक प्रमाण दे दिया कि कांग्रेस की सरकार के समय कन्विक्शन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जाति की जनगणना कराइए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आगे लाना है, तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बिहार की रैली में? कहते हैं ये अर्बन नक्सली हैं जो जाति की जनगणना कराना चाहते हैं, ये बोलते पाप मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। सुनिए ना, अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब भी हम न्याय की बात करेंगे राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को आप अर्बन नक्सल कहेंगे, प्रतिपक्ष के नेताओं को अर्बन नक्सल कहेंगे, तो कराइए ना, चलाइए मुकदमा, चलिए साहस है,
2: चल ही रहे हैं,
0: चलाइए मुकदमा,
2: चल ही रहे हैं,
0: चुनौती देते हैं। तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया भंडारी जी, जो हमारे फौलादी कहिएगा राहुल गांधी जी बीते दिनों भी पैलेट गन चलाने को लेकर धरने पर बैठे हैं, हिम्मत हो तो करिए गिरफ्तार।
2: झारखंड में
1: विनायक सेन जी से लेकर अन्य लोगों को, विनायक सेन से लेकर जिसको जिसको गिरफ्तार किया, आप लोगों ने भी अपोज किया था यूपीए के दौरान भी,
3: देखिए,
1: और ये भी कह रहे हैं दिमागी नक्सल।
3: देखिए
1: कहां खड़े आप?
3: देखिए पहली चीज, जो मर्जी कहे, चिदम्बरम जी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड लाइनिंग गृह मंत्री रहे थे, जिन्होंने एक गन की पॉलिसी को फॉलो करके नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी। लेफ्ट के लोग, हम लोग और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उन्हें समझाता था उस वक्त, यू हैव टू टॉक टू पीपल। एलएलबी की पढ़ाई अगर आप इस मुल्क में करते हैं, 5 साल का कोर्स होता है और 3 साल की एक और एलएलबी होती है, उसमें सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, उसमें पढ़ाया जाता है दैट एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज अ कॉज बिहाइंड इट, और उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो चिदम्बरम जी को हम लोग बोला करते थे, सोशियो इकोनॉमिक रीजन होते हैं सर नक्सलाइट बनने के, गन आप जरूर उठाइए जो हमारे सेना के लोगों को मान रहा है, लेकिन उस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी एड्रेस करिए और दोनों को साथ साथ चलाइए। यही जॉइंट स्ट्रेटजी पंजाब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाई गई थी, उल्फा को सॉल्व किया गया था, एलटीटी को सॉल्व किया गया था, नागा लिबरेशन फ्रंट में प्रधानमंत्री मोदी ने डील साइन करी है, इवन दो देवर सेपरेटिस्ट, सो द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो बोथ द पॉलिसीज पैरेलल।
1: दिमागी नक्सल बचे हैं क्या?
3: दिमागी नक्सल कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं मेरे,
1: बिल्कुल नहीं।
3: जब से जंतर मंतर पे बच्चे उतरे हैं, युवा उतरे हैं, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं। एवरी वॉइस ऑफ डिसेंट, आपने पहले कॉकरोच शब्द किसी ने कहा, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब बच्चे उतरे एक पार्टी बन गई और प्राइम मिनिस्टर को राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे, हमारे यहां पे इस्तीफे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन बच्चों ने, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, सब स्टूडेंट्स थे, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। The Prime Minister feels now.
2: ये कौन है?
3: The Prime Minister feels now.
2: ये कौन है?
3: You can tell me. I can't see from
2: here. ये कौन है? अरुंधति रॉय ने कहा कि जम्मू कश्मीर was never an integral part of India. क्या आप इससे सहमत हैं?
3: Absolutely not.
2: तो क्या ये विचार दिमागी नक्सल विचार नहीं है?
3: She is an author. She is entitled to speak.
2: Prove हो गया.
3: इसमें कुछ भी दिमागी नक्सल नहीं है. Every anchor, every journalist, every author,
2: this is not right to free opinion.
3: Every writer has a right to think the way he writes.

0: multinationals, sir.
1: Anjana Jammu might Kashmir speak was, against me
0: no,
1: and my party.
0: Anjana Om Kashyap will never say that Jammu Kashmir was never part of India. No, she will no person from any political ideology will say.
2: Freedom of press.
0: This is not freedom of press, sir.
3: Professor Joshi. Professor Joshi.
4: फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आप प्रभाकरण को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा भारत की धरती पर रह करके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते
5: हैं जिन्ना को कीजिएगा
4: आपके मित्र होंगे जिन्ना की चिंता आपको होगी इसका जवाब दीजिए स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी के पिता थे और उनके ऐसे ऐसे को लोग जो
3: जल्दी कंप्लीट कीजिएगा
4: मेरा पॉइंट ये है कि प्रभाकरण जो एलटीटीई के सुप्रीमो थे जिन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या की
5: सैफुल्ला फारूक
4: सुनिए ना सैफुल्ला पर बाद में जाइएगा पहले आइए श्रीलंका पर अरे हमारी सुनिए पहले
5: और हम दिमागी नक्सल
4: आप खुद दिमागी नक्सल
3: फिर शुरू हो गए हम फिर नहीं रोहित जी किसी भी मेरे बुलाए हुए मेहमान का अपमान मत कीजिए
4: अपमान नहीं सम्मान है दिमागी नक्सल भी एक शब्द है
3: अच्छा
4: और इसको जनता के बोल
3: टॉपिक पे रहिए टॉपिक
4: रुकिए ना दोनों लोग लड़िए काम से नहीं लड़ पाइए
3: बोले कोई पॉइंट है सुनिए तो पॉइंट
4: हम नहीं लड़ सकते मुद्दे पर
5: भाजपा वालों से
3: अच्छा गुरुजी जल्दी पॉइंट
4: पर बात कीजिए
3: जल्दी बोलिए
4: श्रीमान राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा में उनके पूज्य पिताजी स्वर्गवासी श्रीमान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे उनकी दुखद हत्या सरगना प्रभाकरण ने की विजय जी जो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गौ वध के लड़ाई को लड़ने के लिए कि गौ की कटाई हो सुप्रीम कोर्ट आ गए वो आदरणीय विजय जी ने प्रभाकरण जी को श्रद्धांजलि दे दी और उनकी सरकार में दूगो मंत्री का पद लेने के लिए राहुल गांधी जी लपलपा करके उनके पीछे खड़े हैं इससे बड़ा दिमागी नक्सलिज्म का प्रमाण क्या हो सकता है
2: नक्सलिज्म का असर
4: क्या है
2: अरे नक्सलिज्म
4: अरे जिसने
2: नक्सलिज्म की परिभाषा
4: मालूम अरे आपको मालूम है बिहार की धरती से आप नक्सलिज्म आप क्या जानिए आपने तो बंगाल में लाल झंडा उठा बिहार में उत्तर प्रदेश में और देश में गरीबों के जमीनों को कब्जा करने का काम किया है क्या बात की
3: अनिश अनिश आपका काउंटर पॉइंट एक बार अनिश जी बोलिए अनिश
4: नक्सलिज्म की परिभाषा
5: एक सेकंड बस हम नरेंद्र मोदी ने जो पैलेट गन चलाया और
4: किसी ने चलाया पैलेट गन
5: हम तो राजीव जी के हत्यारों के पास उनकी बिटिया प्रियंका गांधी गई प्रियंका गांधी जी ने जाकर उनसे उनका
4: सवाल
5: हम उसको
4: ऐसे
5: लोग कि बच्चों पर गन चलाए और माफी
4: मांगते हैं
5: ऐसे लोग नहीं
3: अभय जी आप अपनी दोस्तों की आवाज दबा रहे हैं आज अनिश बोलिए
5: अनिश
6: दुर्भाग्य की बात यही है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था वो प्रधानमंत्री जी है वो हम सबके प्रधानमंत्री है उस पद को वो शब्द शोभा नहीं देता क्यों क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया है आज बहुत कैजुअली फेंके जाते हैं ये शब्द अर्बन नक्सल एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गए देवेंद्र फडणवीस जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल होगा उसे अर्बन नक्सल कहलाया धर्मेंद्र प्रधान जी ने जंतर मंतर में कोई भी बैठा हुआ है उसको अराजकता फैलाने वाला कहलाया बाकी चीजों में एंटी नेशनल किसी को भी बुलाया जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं जब वर्नन गोंसाल्विस की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी पुणे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस किताब ये पढ़ रहे हैं इसीलिए ये अर्बन नक्सल
4: yes,
6: ये रोना विल्सन का आप लेटर दिखा रहे हो वो एविडेंस प्लांट किए गए थे ऐसी रिपोर्ट भी बाहर आ रही है
4: फेक न्यूज़
6: आप मुझे कहते हैं अगर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो सकते
4: आप लोग तो बॉम्ब
6: सरकार में बैठे हुए कोई नहीं हो सकते देखिए आज देश का
3: शर्जिल इमाम अगर चिकन नेक को काटने की बात करते हैं आप उसको देश विरोधी मानते हैं?
6: अगर शर्जिल इमाम चिकन नेक को काटने की बातचीत करता है तो कार्रवाई अदालत में होनी चाहिए ना
4: सीजेपी का दिमाग लगाते लगाते देश का दिमाग अपने ना ठीक कीजिएगा। सुनिए
2: हो गया देश का,
4: अरे भाई कहाँ दिमाग ठीक होगा, राहुल गांधी का दिमाग ठीक होगा। सुनिए, अरे आइए ना श्रीवास्तव जी, मत घबराइए,
3: आप लोग से नहीं हुआ वो बच्चों ने किया है, ये भी सोच लीजिए।
4: जिन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन को नानी याद दिलाई, मुद्दे पर आइए आदरणीय दुबे जी,
3: जल्दी फिर मुझे जोशी जी को
4: मुद्दे पर आइए। इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं सहारनपुर से। वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें पराजित किया, उन्होंने क्या कहा कि देश के प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को बोती बोती कटवा देंगे। जनता ने भी जवाब दिया और देश की पुलिस ने भी उस समय जवाब दिया जो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं थी, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। ये दिमागी नक्सलिज्म नहीं है तो क्या है?
3: ठीक है प्रोफेसर
4: नरेंद्र मोदी जी को कटवाने वाले नेता के पक्ष में आप खड़े हैं? ये देश का लोकतंत्र है क्या? ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधान के आधार है? अरे दुबे जी क्यों नहीं जाएंगे सांसद
3: हैं?
4: तो वो भी है जो खालिस्तान के पक्ष में खड़ा है।
3: अरे सवाल पूछिएगा तो जवाब भी तो सुनिएगा ना सिंह जी। इधर इधर इमरान मसूद पर आपका जवाब क्या था? मैं सुन नहीं पाई, चिल्लाना नहीं, एक सेकंड
1: बोलिए ना, अपने टर्न
4: नहीं, गलत बोल रहे हो
1: आप, बोलने कहाँ दे रहे हैं?
3: बोलिए प्रोफेसर,
4: बोलिए।
1: मैं फैक्चुअली कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जो हम अर्बन नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं उसको जब हम कंसेप्चुअली देखते हैं तो सीपीआई माओइस्ट के जब आप रिसर्च पेपर्स को देखते हैं, उनके स्ट्रेटेजी पेपर्स को देखते हैं, उनमें सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया है, जिसमें कि एनजीओज, इंटेलेक्चुअल्स, अकेडमिशियंस को शामिल करके जो अर्बन एरियाज हैं उनमें बच्चों को कैसे, यूथ ब्रिगेड को कैसे शामिल करके नक्सलाइट मूवमेंट को अर्बन एरियाज में कैसे प्रमोट किया जाए, ये उनके स्ट्रेटेजी पेपर्स में लिखा हुआ था। यहां से अर्बन नक्सलिज्म टर्म आई है पॉपुलर कनोटेशंस में, जो मोदी जी के ऊपर ये बात की जा रही थी कि वो कहां से ये शब्द लेके आए। जो दिमागी नक्सलवाद है ये तो बंदूक वाला जो नक्सलवाद है उससे भी ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें यूथ ब्रिगेड के दिमाग को जमीन की तरह इस्तेमाल करके यहीं से लव जिहाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से आतंकवाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से इस बात का प्रयास किया जा रहा है, विशेषकर गर्ल्स
3: बीच में
1: हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा दिया जाए लव जिहाद की अगर प्रयोग जाती है, एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, भारत में पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। भारत
2: 370 हिंदू लड़की
1: को हटाने का विरोध करते हैं।
3: अच्छा अनिश को बोलने दीजिए एक बार।
1: सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछते हैं दिमागी नक्सलाइट, भारतीय सेना पे सवाल उठाते हैं दिमागी नक्सलाइट, भारत को खंड खंड तोड़ने के लिए काम करते हैं।
4: बोलने देना दिमागी नक्सलाइट
2: अभी आप पे अगर उपलब्ध है
1: पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल
2: जुड़े हैं,
1: इसमें
2: फंडिंग है।
1: लेटर कंप्लीट ये जो दिमागी नक्सलवाद है ये बंदूक का खेल है ही नहीं। हाँ। देश को तोड़ने के लिए किस तरह से लव जिहाद, पिंजड़ा तोड़, आप सरकारी संस्थाओं के प्रति यूथ में से अविश्वास पूरा एक बना के ले आइए, विश्वास खत्म कर दीजिए, देश की जो संस्कृति है कल्चर है
6: नहीं मैम, आप उन्होंने नहीं ले सकती है, नहीं
2: नहीं
6: नहीं
1: नहीं
2: नहीं
1: नहीं
2: नहीं
1: नहीं
6: नहीं नहीं
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आपको फंडिंग मिलती है, यहाँ से दिमागी नक्सलवाद का आपका पूरा खेल चल
6: रहा
3: है। बारी बारी चिल्ला चिल्ली
6: बहुत सिंपल सवाल पूछना है, विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री है उनकी फंडिंग कहां से आती है? क्योंकि वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहते हैं,
4: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जाता वहन के बारे में।
3: रोहित जी
6: अगर कोई दिमागी
3: नक्सल, पार्टी को भी जवाब देने दीजिए, सब आप ही दीजिए।
6: अगर कोई दिमागी नक्सल है तो कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई नागरिक किसी को दिमागी नक्सल नहीं कह सकता।
3: नहीं, बट उनका एक्यूजेशन कुछ और है। अनिश देखिए उनके सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकंड, एक सेकंड। उनका ये एक्यूजेशन है, एक सेकंड, उनका आरोप ये है कि एक एक हाँ एक पूरा इंटेलेक्चुअल गुट है जो जानबूझकर सरकार, सरकारी तंत्र या फिर जितनी exactly. भी संस्थाएं हैं उन पर से विश्वास हटाना चाहता है जनता का।
6: जी, उस गुट में कौन शामिल है, उस गुट में कौन कौन शामिल है, उसका निर्णय विवेक अग्निहोत्री करेगा, जो कहता है कि रामचंद्र गुहा भी अर्बन नक्सल
3: है, कुमार केतकर भी अर्बन। आप उनको रेलेवेंट बना रहे हैं।
0: मैं जवाब देता हूं,
3: क्यों कोट कर रहे हैं
6: ऐसी टर्म को, अगर आप ऐसी टर्म को छोड़कर वहां पे रख देने वाले हो तो कोई भी फेंकने लगता है। वी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट।
3: अगर इसका इस्तेमाल सबके खिलाफ होने लगे और आम लोग बोलने लगे, वो कह रहे हैं कि फिर उनका अलग थलग
0: करने का। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, जो देश के देश की यूनिटी इंटेग्रिटी में विश्वास नहीं रखता, माओइस्ट को के सपोर्ट करता है, वो एक दिमागी नक्सल है। सुनिए, सीपीआई का मैनिफेस्टो कहता है कि भारत के न्यूक्स को वो डिसमेंटल करेंगे। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई पेट्रियट कभी भी भारत के न्यूक्स को डिसमेंटल करने की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। ये दिमागी नक्सल, और ये मैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीपीआईएम को कि बी पेट्रियट्स फर्स्ट, रेज इश्यूज ऑफ आर कंट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा है कि इनकी पेट्रियोटिज्म पे सवाल है। मैं सिंपल फंडामेंटल कहूंगा, कोई देशभक्त कभी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को हाफिज सईद जी कह सकता है? कोई देशभक्त बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन कह सकता है? कोई देशभक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ बोल सकता है? कोई देशभक्त कभी नक्सली? आप क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का फ्लैग होना चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए?
3: विवेक जी, अपने विवेक से थोड़ा जवाब देंगे, ये न्यूक् डिसमेंटलिंग पर क्या है कहना आपका?
7: पहली चीज आप सुन तो लीजिए ना, ये सरकार डिस्कशंस को, ये सरकार डिस्कशंस नहीं चाहती, ये सरकार डिस्कशंस नहीं चाहती है। दे डोंट वांट डिसेंट। आप मोटिवेट कर नहीं पाए, युवा आपके खिलाफ उतरे, पढ़ाई महंगी, नौकरियां है नहीं, आपके पास उत्तर नहीं था, आप डर गए, फिर आप कह रहे हैं साहब सुनिए, एक भारत की लड़की, भारत की एक लड़की निर्णय लेगी उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे रिलेशनशिप रखनी है, किससे शादी करनी है। आप कौन होते हैं लव जिहाद और मॉरल पुलिसिंग करने वाले? शी कैन मैरी इंटरकास्ट, शी कैन मैरी
3: इंटरकास्ट। बीजेपी के कई नेताओं ने शादी की है,
7: शादी कर सकती है।
0: न्यूक्स, भारत का कोई भी देशभक्त कभी भारत के न्यूक्स को खत्म करने की बात करेगा, सिर्फ दिमागी नक्सल करेगा जो वीक इंडिया की बात करता है।
3: रोहित जी, अब एक बार बोले फिर आपका जवाब दूंगा।
4: हम कमजोर आदमी हैं, बोलने दीजिए, सब लोग बोलने ही नहीं दे
7: रहे। आप सब शक्तिमान हैं।
4: नहीं नहीं,
7: बोलिए।
4: बहुत गंभीर बात है
7: जी।
4: राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार लगी हुई है नेपोटिज्म का जो एक बीज है उसको बड़ा बरगद का पेड़ बनाने के लिए, रेहान वाड्रा जी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यह भी एक दिमागी नक्सलिज्म है इस देश के नौजवान और विद्यार्थियों के लिए। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, जरा आपको जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जिन्होंने भगवान राम मंदिर का पूरा विरोध किया आपकी पार्टी के साथ मिलकर, इन दोनों लोगों के साथ, उसके प्रधान महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने बहन भूमिका सिंह जी जो जातव समाज से आती है उसका कितना अपमान किया, क्या यह दिमागी नक्सलिज्म नहीं है? मूर्ख बनाते हैं भारत की जनता को। देश की जनता इस बात को बखूबी महसूस कर गई है कि केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विवेक श्रीवास्तव जी के पार्टी विपक्ष में बैठा हुआ है और वहां बहनों को घास खा करके जीना पड़ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने मुवली का मार पिटवाया विद्यार्थियों को और राहुल गांधी जी चले गए प्रयागराज की पवित्र धरा पर गूंज कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, वहां उनके मुंह में मुरब्बा आ गया या दही जम गया।
3: सम्राट जी पर भी बोल दीजिए।
4: अरे सम्राट चौधरी जी तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार को बचा लिया। अरे सुनिए विवेक बाबू, कमजोर आदमी बोल रहा है सूत पुत्र, सुनिए ध्यान से। श्रीमान सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार को बचा लिया। यूरोप में बैठकर डबल जियोपार्डी का लाभ लेने की मंशा से तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार को शाहबुद्दीन साहब के नीतियों पर चलते हुए उनके बेटे की सहयोग से सिवान से लेकर पटना तक और किशनगंज तक जलवाने का कार्यक्रम बना लिया था छात्रों के हिंसात्मक आंदोलन में।
3: बच्चे निकले ना तो तुरंत नौकरी भी निकल गई, लिस्ट निकल गई कुछ लोगों में।
4: और सुनिए,
3: देखिए सब दबाव में है,
4: अपनी सरकार की स्कूल और कॉलेज में इनकी आवाज को दबा रहे हैं,
7: अपनी सरकार इनकी और वामपंथियों के समर्थन से बचे हमारी लड़ाई के हाल में छोड़ दो, बना रहे हैं सरकार 2029 तेलंगाना में बनेगी सरकार।
3: जवाब कब दीजिए? अभी ये बताएंगे किस राज्य में बचे हैं ये। नहीं ये सरकार बना रहे हैं।
7: अरे हम ही बनवाएंगे सरकार।
3: बच्चे कितने
7: अरे 70 साल से इस देश को आइडियोलॉजिकली लेफ्ट ने चलाया है। आपने किताबों में क्या पढ़ा, हमने लिखवाया है और आगे चलेगा।
8: आप देखिए जनता जान गई है, कुछ नहीं किया, नथिंग नथिंग।
7: That is their internal problem.
9: उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि दिमागी नक्सली कौन है, कौन इतनी हिंसात्मक लहजे से, कौन भाषा की मर्यादा को लांघकर अभद्रता कर रहा है।
1: ये दिमागी नक्सलिज्म है, शांति से बोलना,
9: इसके लक्षण आपको ऐसे दिखाई देते हैं, ये लक्षण देश के लोगों दिखाई दे रहे
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जनता को ये
9: अभी कुछ परिभाषा मेरी बहन ने दी दिमागी नक्सली की,
8: अर्बन नक्सल की, जिन्होंने
9: दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल
1: रिसर्च पेपर्स
9: बहुत सारी दी। विवेक क्या तो प्रधानमंत्री जी आप
1: आपको सब पता है तो फिर बताइए,
9: भगवान के देवद्रव्य की
3: प्रोफेसर प्रोफेसर जानते होंगे,
1: बताइए ना
9: अंजना जी। मैं चुप रहूं अगर आप चाहें
3: ना?
9: तो मैं नहीं
3: बोलता हूं प्रोफेसर, सॉरी प्लीज।
9: प्रधानमंत्री जी जो इस सनातन धर्म में इस पूरी सृष्टि का सबसे घृणित पाप भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों ने किया है, देवद्रव्य की चोरी, भगवान मंदिर राम मंदिर के चोरी, क्या वो दिमागी नक्सली मन में आता है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या मेरे छात्र जो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी पेपर लीक ना हो हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने आ रहे दिल्ली के दरवाजे पर, उनको पैलेट गन से आंखें फोड़ दी प्रधानमंत्री जी, उनको कील और कांटे लगाकर मारा, क्या ये नक्सलिज्म की अर्बन नक्सल परिभाषा में आता है प्रधानमंत्री जी की? ये देश को बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी
8: दिमागी नक्सल
9: हाथरस में बलात्कार की शिकार बिटिया को रात के अंधियार में
8: बात कर रहे हैं,
9: आपकी सत्ता ने पेट्रोल डालकर जला दिया प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल की परिभाषा में आता है? इन किसानों के खिलाफ एक एनआरआई शरद मराठे के कहने पर तीन क्रूर काले कानून ला उनकी आमदनी पर हमला करने के लिए करनाल से लेकर दिल्ली तक मार कर सर फोड़ दिया प्रधानमंत्री जी, 700 किसानों की शहादत हुई, क्या वो अर्बन नक्सल में आता है कि नहीं आता है प्रधानमंत्री जी बताइए? प्रधानमंत्री जी आपको इस बात का जवाब देना होगा कि ओलंपियन बेटियां जब न्याय मांगने आई तो घसीट घसीट के मारा आपने उनको,
8: ऑलरेडी कोर्ट में फैसला हो गया।
9: अर्बन नक्सल इस देश को बताइए, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हजारों करोड़ रुपए लूटकर विजय मान लिया, आपके मेहुल भाई, आपके सब भाग गए प्रधानमंत्री जी, ये अर्बन नक्सल में आता है?
8: मैं एक एक्सपेरिमेंट कर देता हूं, ये अर्बन नक्सल का
9: आपने और दिमागी नक्सल वर्ड कॉइन किया, आप दिमागी नक्सल पर
8: दोनों उसको और एनलार्ज कर दिया क्योंकि आपके और ऑप्शंस आ गए,
9: उद्योग नियोजित रूप से बर्बाद कर दिया।
8: अरे भैया चीन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी हमारी है,
9: स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स
8: चीन से ज्यादा बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है,
9: आप बताइए और अर्बन नक्सल में आता है कि नहीं? आपकी सरकार ने आतंकवादियों को टिकट दिए,
8: अरे भैया घर घर के अंदर घुस के मारने का काम ऑपरेशन सिंदूर नाम ने किया है, अमेरिका का जवाब
9: बिहार का मुख्यमंत्री AK-47 चलाता है।
8: अरे भैया कोई नहीं चली, ऑलरेडी कोर्ट में बोल दिया,
9: झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री,
8: एक्सपेरिमेंट आपके गले पर कर दूंगा, पता चल
3: जाएगा।
8: एक 30 सेकंड आतंकवादी जी
9: 30 सेकंड में कितने दिन की सत्ता बची?
8: सुनो, अरे सत्ता आएगी जाएगी, देश आगे जाना चाहिए और देश के खिलाफ इंटेलेक्चुअल बात करने वाला व्यक्ति दिमागी नक्सल है। अरुंधति रॉय
3: ऐसा
8: नहीं है, वो दिमागी नक्सल। मैं छोटा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, शर्जील इमाम ने कहा चिकन नेक भारत से हटना चाहिए, मैं कहता हूँ दिमागी नक्सल एंटी नेशनल, आप कहते हैं वो
9: है बिल्कुल।
8: अरे
9: चीन घुस गया
8: इनको दिखाओ क्या शर्जील इमाम एंटी नेशनल दिमागी नक्सल है? ये देख दिमागी नक्सल एंटी नेशनल है, दिमागी नक्सल एंटी नेशनल। अभी शर्जील इमाम का वीडियो फेक नहीं है,
3: अच्छा बारी बारी से प्लीज एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड चिल्ला चिल्ली का इसको अड्डा मत बनाइए। राउंड टेबल इसलिए नहीं किया गया है कि हम लोग चीखे, क्योंकि कोई आवाज नहीं सुन पाता है। बारी बारी से जो हम लोग हमेशा करते हैं वैसे बात कीजिए प्लीज, ठीक है।
7: चाहे उमर खालिद हो चाहे शर्जील इमाम हो, मैटर सब जुडिस है। अगर वो गलत है, हमारे देश की जुडिशियरी पे हमारा विश्वास है, उनको दंड दीजिए। ट्रायल बाय मीडिया मत करिए आप, कि मुसलमान लड़कियां तो ट्रायल बाय मीडिया करेंगे आप उनको। हाँ दे ना,
10: सो हु डजंट मैटर पब्लिक रिकॉर्ड व्हाई हैज द पनिशमेंट नॉट बीन गिवन।
3: ठीक है, लेकिन
10: बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वी आर नॉट अ तालिबानी स्टेट।
3: तो यंगर जनरेशन से एक सेकंड आप तो यंगर जनरेशन से हैं।
10: प्रदीप जी सही कह रहे हैं,
3: एक सेकंड,
7: छह साल से बेल नहीं मिली उमर खालिद,
10: क्योंकि उसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है।
7: उसको पनिश करो ना, पनिश करो ना उसको, जब तक
10: कंडीशन दीजिएगा, आप उसको डायरेक्शन दीजिएगा,
7: चार्जशीट तक
10: डायरेक्ट करेंगे, लेवल कोर्ट ऑफ इंडिया
7: का चार्जशीट,
10: आप कोर्ट को डायरेक्शन देंगे,
7: चार्जशीट ना
10: आपको अधिकारी को डायरेक्शन देंगे, कोर्ट मांगेगा, आप ही मांगेंगे, ठीक है, मांगेंगे न्यायपालिका को डायरेक्ट करने का अधिकार आपको, इस जरा चार्जशीट मांगे न्यायपालिका, मांग करना बंद कीजिए,
9: सबका थोड़ा पढ़ाइए भाई, प्रोसिक्यूशन कमजोर होता है,
3: यंगर जनरेशन से भी बिलोंग करते हैं प्लीज। अरे बाप रे, मैं ही निकल जाती हूँ, आप लोग लड़ लीजिए आपस में, मैं निकल जाती हूँ। अनीश आपसे एक सवाल है, चूंकि आप यंगर जनरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन क्या बोला वो अलग बात है, लेकिन क्या सरकार को अपोज करते करते इस तरह की बातें अगर जो लाइन को क्रॉस करती हैं, जो देश के खिलाफ है, उसका खुलकर विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्रो हो एंटी हो।
6: मैं सिर्फ दो चीजें कहूंगा, 25 मई 2013 इस दिन कांग्रेस की सरकार के बहुत सारे एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए छत्तीसगढ़ में मारे गए थे। लोगों ने जान दिया इस देश के लिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। आज कोई भी कह रहा है कि कोई भी नेता, कोई भी देशवासी एंटी नेशनल है, उसको नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट बांटने का कोई अधिकार है, नहीं है। आज ये दुर्भाग्य की बात यही है कि आज नौजवान देख रहा है कि आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो और वो कॉकरोच का इंसल्ट लेके आप पर हंस रहा है, अर्बन नक्सल का इंसल्ट लेकर आप पर हंस रहा है,
10: मेरी बात
6: और वही प्रॉब्लम है।
10: अनीश
6: मैं आपको दूसरी चीज कहूंगा,
3: अनीश एक और सवाल है मेरा, शरद जी ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी?
6: शरद जी ने तभी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उस पर अलग अलग राय थी।
3: हाँ, अलग राय थी, वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल को नहीं चाहते थे,
6: बिल्कुल
3: है ना,
6: और तो उसके बाद हम वापस एक साथ।
3: लेकिन आप क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर राजी होगी कि आप उनकी विदेशी मूल को मुद्दा बनाए? नहीं होगी ना।
6: नहीं अंजना जी, राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं।
3: समय और परिस्थिति,
6: राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद।
10: जवाब देता हूँ,
6: आप मतभेद,
3: एक सेकंड इस पर आते हैं, एक सेकंड इस पर मैं जवाब आप तीनों से लूंगी। मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद मतलब एक शत्रुता की पॉलिटिक्स होने लगी, जिसकी वजह से आप उधर से भी वैसा ही एक वेनमस बैकलैश देख रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन क्या विरोध की आवाज, मतलब जो हमारे खिलाफ, उसके लिए माईवे और हाईवे वाली आप नीति पे चले? सीधा सवाल है
10: मैम। ये इकलौते प्रधानमंत्री जिसको हर दिन अगर इतने विरोधी जो है सब सीमा लेखा क्रॉस करके गालियां तक बकते, कम लोग एफआईआर नहीं करते,
9: इमरजेंसी कांग्रेस करते
10: हैं,
9: किसानों को मारा,
10: बटला हाउस के अंदर जब आतंकवादियों को मारा गया था, पिछले समय जब टॉलरेंस की बात होती थी तो कहते आंसू बहाए गए, अब हम आतंकवादियों को मारते हैं और ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल इनने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप चलेगी, उसके बावजूद एनएसी विरोध कर रही थी चिदंबरम का कि मत मारो नक्सलियों को, ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है। और एनएसी के उसी ईयर में 2013 में विनायक सेन कन्विक्ट हुए थे सेडिशन में नक्सलियों की मदद करने के लिए, ये सब चाहिए तो सच नहीं बोलेंगे क्या? देश की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा हमारा राइट है, हम घर के अंदर घुसते पाकिस्तान को मारते, पहले नहीं मारते थे, पहले आतंकवादी जाकिर नायक जैसे लोगों को जस्टिफाई करते थे।
3: अब अभय जी दो दो लाइन का कमेंट, सबसे अभय जी जल्दी से इस पर जवाब। और इस पर दिग्विजय जी ने बाकायदा आर्टिकल लिखा कि गलत कर रहे हैं गृह मंत्री जी, उस समय की बात कर रही हूँ मैं जो उन्होंने क्या ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया था पीछे दमरम।
9: अंजना जी हमने कभी भी पूर्व नक्सलियों के नाम पर रैंप वॉक नहीं कराया महिलाओं का, जो ये आज की
10: बात है। प्रियंका जी
3: चलिए हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन ये मुद्दा कितना गर्म है आप देख रहे हैं। इसी के साथ हम इतना ही हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, आप तय कीजिए क्योंकि अब तो लाइव प्रोग्राम भी क्या है।
10: महिला
3: देश बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।

0: यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए है। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है, और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसपा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस बलों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
7: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
8: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
7: कितने लोग थे?
8: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखाते जहां पर 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने दूसरे को थप्पड़ मारा, इसके बाद माहौल बिगड़ गया और जमकर मारपीट हुई।
1: तेलंगाना के वारंगल में भयानक मारपीट हो रही है। एक आदमी को कुछ लोग कायदे से पीट रहे हैं। इसमें एक वर्दी पहने हुए शख्स है जो एक जमीन पर पड़े आदमी को पीट रहा है। तस्वीरें वारंगल के उर्सुगट्टा इलाके की हैं। ये आदमी जो बनियान में है, ये बटालियन कांस्टेबल है। यहाँ एक बार में इसने हंगामा किया, जिसके बाद बार वाले ने पुलिस को फोन किया। बीट कांस्टेबल संतोष रेड्डी यहाँ पहुँचे। संतोष रेड्डी इस कांस्टेबल को समझा रहे हैं। अचानक संतोष ने कांस्टेबल को एक तमाचा जड़ दिया। जवाब में बटालियन कांस्टेबल ने भी बीट कांस्टेबल संतोष को तमाचा मार दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो आपके सामने है। संतोष रेड्डी ने इसे डंडे से पीटना शुरू किया। 2 लोग डंडा लेकर और आ गए। उन्होंने भी इस कांस्टेबल की पिटाई शुरू कर दी। देखिए कैसे इसे पीटा जा रहा है। इतना पीटा गया कि यह जमीन पर गिर गया। फिर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग इसे तब भी पीट रहे थे। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यानी पुलिस से पुलिस भिड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि ये बगैर वर्दी में जो लोग थे, इन्होंने कांस्टेबल को क्यों पीटा और अब इस पिटाई का परिणाम क्या होगा? क्या दोनों कांस्टेबल पर कार्रवाई होगी? फिलहाल तो पुलिस वर्सेस पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हैं। अब्दुल बशीर, वारंगल, आज तक।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: एक दो, एक श्राम।

आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद। मायावती बोली, ऐसी मांग गलत, देशहित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साफ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में 2 दिवसीय महामंथन, कल से 2 दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर दोबारा तैयार, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की खुली पोल। और पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर, मंडी में लैंडस्लाइड से मंडी पठानकोट हाईवे पर थमा ट्रैफिक, तो प्रयागराज में गंगा में उफान से शहर का बुरा हाल।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के कई राज्यों में मॉनसून अभी पूरी तरह सक्रिय है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। उत्तर प्रदेश में बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई राज्य सैलाब की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बेतहाशा बारिश के कारण परिस्थिति कई जिलों में चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यानी मॉनसून का है साफ ऐलान, अभी थोड़ा सावधान।
1: बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई, कहीं तेज धार में गाड़ियां बह गईं, कहीं पहाड़ दरक गए और कहीं देखते ही देखते घर, सड़क और जिंदगी सब पानी और मलबे में समा गए। आज देखिए बाढ़ और बारिश की तबाही की 10 ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर कुदरत के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पंजाब के मोहाली में जयंती नदी अचानक उफान पर आ गई। तेज बहाव में भैंस से लदी पिकअप ट्रक बह गई। ड्राइवर ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक में बंधी भैंस की रस्सी बंधी रह गई। पानी के बहाव में ट्रक भी बहा और भैंस भी। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदियां उफनने लगी और रास्ते पानी में डूब गए। इसी दौरान तेज बहाव में एक महिला बहने लगी।
2: हालांकि लोगों ने जान जोखिम में डालकर उसको बचा लिया।

बिजनौर में गंगा और दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ा तो पानी ने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर पानी की रफ्तार के आगे ठहर नहीं पाया, पेड़ भी पानी के आगे जड़ से उखड़ गए। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ से तेज बहाव ने एक युवक को उसकी बाइक समेत बहा दिया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली, वरना ये तस्वीर हादसे में बदल सकती थी। ओडिशा के भद्रक में 5 दिन से लापता युवक आखिरकार मिला, लेकिन जमीन पर नहीं, एक पेड़ से चिपका हुआ। उसने बाढ़ के पानी से बचने के लिए पाम ट्री का सहारा लिया और 5 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। हिमाचल के सोलन में बारिश और भूस्खलन ने नेशनल हाईवे 5 को निशाना बनाया। सड़क का हिस्सा अचानक धंस गया और फिर जो तस्वीर सामने आई उसने सबको डरा दिया। एक कैंटर सड़क से नीचे लटक गया। मंडी के नागनाला में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट कर नीचे आ गिरा। मलबा सीधे नाले में समा गया। भूस्खलन इतना भयानक था कि आसपास के 3 घरों को एहतियातन खाली करवाना पड़ा।

0: मसूरी में भारी बारिश के बीच भूस्खलन में एक बहुमंजिला इमारत देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा तो 3 लोग नदी के बीच फंस गए। सेना और SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पश्चिम बंगाल के कालिमपोंग में बिंदु इलाके में सड़क पर चल रहे लोगों के सामने अचानक पूरा पहाड़ टूट पड़ा। भूस्खलन इतना तेज था कि एक बाइक सवार बाल बाल बचा। कुछ सेकंड की देरी और ये तस्वीर मातम में बदल सकती थी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, बारिश के उस कहर की कहानी है जहां इंसान की ताकत कुदरत के आगे छोटी पड़ गई।
1: मॉनसून की सबसे बड़ी मार इस बार असम पर पड़ी है, लेकिन अब भी असम के कई इलाके बारिश की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कुछ बाकी राज्यों में मॉनसून की बारिश चुनौती बनी हुई है। देश के कई मैदानी इलाकों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, जो इस बात का संकेत है कि मॉनसून की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली।

0: बारिश ने आधे हिंदुस्तान के कई हिस्सों में आफत का रूप ले लिया है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है, घरों में पानी घुसा है, गांव का संपर्क टूटा है और कई जगह लोगों की जिंदगी नावों के सहारे चल रही है। मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा, ओडिशा और झारखंड तक बाढ़ और बारिश ने तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। चारों तरफ पानी ही पानी, हर तरफ सैलाब बह रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। 19 अगस्त की रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है, दो दिन में विकराल रूप ले लिया। लगातार बारिश से शहर की गलियां और मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा तो पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुसने लगा। कई घरों में पानी भर गया और लोग अपने ही घरों में फंस गए।
1: साफ सफाई नालों में अभी हुई नहीं है,
2: कई घरों में
1: कई घरों में पानी भी आ गया है। साफ सफाई हुई होती तो पानी निकल जाता।
3: नुकसान भी काफी हुआ।
1: हाँ, नुकसान घर के अंदर अंदर पानी भरा ही हुआ है।
4: हम लोग परेशान हैं, अभी भी पानी भरा ही हुआ है। मतलब इतना हर बार तो आता था घुटने तक, इस बार तो कमर तक पानी भरा, घर का सारा सामान नुकसान हो गया।
5: पानी इतना तेज आया कि उसके बाद फिर जब अंदर भरने लगा तो फिर समझ में आया कि भाई पानी बहुत ज्यादा है। हमारा बिस्तर सब जो सब कुछ इसी में वो भी भीग गया।
0: मुसीबत में फंसे लोगों के लिए SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, लेकिन रीवा के तराई इलाके में मुश्किल अभी भी कायम है। बांधों के गेट खोले जाने के बाद तमस नदी उफान पर है। 309 गांव प्रभावित है, 20 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है, करीब 6000 घर बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन ने 16 राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन अगर यूं ही बारिश होती रही तो ये शिविर भी शायद कम पड़ जाए। चारों तरफ उफनता पानी, डूबे हुए घाट और नर्मदा का रौद्र रूप। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां लगातार बारिश और बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी ने हालात बिगाड़ दिए। बरगी डैम के 13 गेटों से करीब 4000 क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है, जिससे गौरी घाट और आसपास के सभी इलाके जलमग्न हो गए हैं। घाट की दुकानें पूरी तरह से पानी की चपेट में।
6: ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि ऐसे नर्मदा मैया का विकराल रूप धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ता है। तो ये नदी का, नर्मदा मैया का विकराल रूप मैंने फर्स्ट टाइम देखा।
0: प्रशासन ने फिलहाल पानी को देखते हुए नावों पर

0: बिगड़ते जा रहे हैं। पन्ना होमगार्ड प्रांगण में जल भराव के चलते मंदिर तक पानी में डूब गया है। वहीं झोर के हनुमान मंदिर में भी पानी भर गया है। उफनते नाले को पार करते वक्त एक दंपत्ति बह गए। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से बहते पानी से दूर रहने की अपील की है। ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी सतना के दावों की पोल खोल रही हैं। करीब 12 घंटे की झमाझम बारिश ने शहर की व्यवस्था को पूरी तरह बेपटरी कर दिया। निचले इलाकों से लेकर मुख्य सड़कों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में पानी घुस गया है।
1: सबसे ज्यादा दुकानदारों का नुकसान होता है, उसके बाद जो आसपास मंदाकिनी नदी के आसपास जो घर बनाए हुए हैं उन लोगों का नुकसान हो जाता है। अच्छी बात यह है कि दिन में बारिश आई है तो लोग अपना सामान निकाल लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा जिनके यहाँ, जैसे कुछ लोग एसी दुकानदार लोग कुछ एसी लगाए रखे हैं तो उनका एसी का नुकसान हो जाएगा। इस तरह का ही नुकसान,
2: पानी अगर और बढ़ता है तो और मुसीबत आ जाएगी। अभी तक तो एक घर लोगों घर में जो निचले इलाके में तो डूब गए हैं, लेकिन बाकी का बाजार अभी खुला हुआ है। अब ये तो उनकी जिम्मेदारी पहले थी कि होटल वाले उनको खाली करा लेना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो देखिए प्रशासन देखिए,
3: पानी दोनों तरफ से भर गया और आधी दुकानें इधर की ढलान वाली डूब चुकी है।
0: सबसे ज्यादा परेशानी प्रेम नगर रेलवे अंडरब्रिज की है, जहां भारी जलभराव के चलते यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। आम लोगों से लेकर स्कूली बच्चों तक को पानी के बीच रास्ता पार करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश, सड़क पर सैलाब और पानी में डूबी कार को निकालने के लिए बच्चों ने संभाला मोर्चा। ये तस्वीरें पंचकुला के एमडीसी इलाके की हैं। लगातार बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक कार लगभग पूरी तरह डूब गई। कार को निकालने के लिए स्थानीय बच्चे पानी के बीच उतर गए और धक्का देकर कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें ओडिशा के बालासोर की हैं, जहां बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कंसाबांस नदी का जलस्तर बढ़ने से सोरो इलाके के 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। कई सड़कें पानी में डूबी हैं और लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं। शुक्रवार को एक युवक बाढ़ के तेज बहाव में बाइक समेत बहने लगा। युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे और ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बालासोर में लगातार बारिश के होने से बाढ़ की स्थिति बन गई है और 20 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। जमशेदपुर में झमाझम बारिश और ओडिशा के डैम के दो फाटक खोले जाने के बाद सुवर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, पर इसका सबसे ज्यादा असर नदी किनारे बसे निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। बागबेड़ा की नया बस्ती इलाके में 500 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है।
4: नीचे बस्ती में आपको
5: 30-40 हो गई,
4: 50 घर से ऊपर, 50 घर से ऊपर में पानी घुस चुका है।
6: अभी क्या पानी बढ़ रहा है या
4: नहीं? अभी भी बढ़ ही रहा है,
7: कम नहीं
4: हो रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। कम होने का मतलब संभावना अभी तक तो नहीं हुआ है।
8: हम बोले पानी नहीं आएगा, एक बैग आया है पानी, कितना सामान लोग निकालेगा?
6: अभी क्या पोजिशन है, पानी बढ़ रहा है?
8: अभी पानी बढ़ रहा है,
6: पानी बढ़ रहा है।
0: पानी बढ़ने के बाद लोगों ने घरों का जरूरी सामान समेटना शुरू कर दिया और सुरक्षित जगहों की ओर निकलने लगे। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को स्कूलों में शिफ्ट किया है। प्रशासन लगातार लाउडस्पीकर से लोगों को निचले इलाकों के घर खाली करने की अपील कर रहा है। साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि रात में जलस्तर और बढ़ सकता है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है, जहां लगातार बारिश के बाद रेल पार इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अचानक बढ़े जलस्तर से कई इलाके जलमग्न हो गए। 200 से ज्यादा घर प्रभावित हैं और कई परिवार पानी में फंस गए। हालात बिगड़ने पर सिविल डिफेंस और QRT की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन

0: पूरी रात चलता रहा और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यही नहीं, पानी अचानक बढ़ने से कई परिवारों को घर छोड़कर छतों पर शरण लेनी पड़ी है। दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर और काली मंदिर में प्रभावित परिवारों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीमें पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है।
1: पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा खतरा भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड का बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भूस्खलन के कारण सड़कें बंद होने और पहाड़ों से गिरते मलबे के कारण बेहद सतर्क रहने की चेतावनी जारी की जा रही है। कमोवेश यही स्थिति अब भी जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बनी हुई है।

0: बागेश्वर जनपद में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात मुश्किल हो गए, खासकर कपकोट क्षेत्र में, जहां भारी भूस्खलन के बाद मलबा और बोल्डर गिरने से 9 प्रमुख रास्ते बंद हो चुके हैं और कई सड़कें तबाह हो गई। सड़कें बंद होने के कारण लगभग 2 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया और पिंडर घाटी के निवासी कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं।
1: लगातार बारिश का दौर जारी है। सबसे ज्यादा बारिश कपकोट के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही है, जहां लगातार बारिश से सरयू नदी आप देख रहे हैं उफान पर है। उफान के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है।
0: सरयू और गोमती के संगम की तस्वीरें भयानक स्थिति बना रही है। सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर लोकल प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के कारण कई भयावह मंजर सामने आ रहे हैं। देखिए कैसे देखते ही देखते एक पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़ा। देर रात लैंडस्लाइड का खतरा महसूस होते ही परिवार के लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद मकान भरभराकर मलबे में तब्दील हो गया। मकान और दुकान में रखा घरेलू और दूसरा सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया।
2: ये आज बारिश का बहुत बारिश आई तो हमने तो बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाई है, और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए और हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं।
0: लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। देहरादून मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। सड़क ढहने के बाद रास्ते में एक ट्रक फंस गया, जिसके कारण मार्ग बेहद संकरा हो गया। सड़क पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। शासन प्रशासन ने मुस्तैदी से काम करना शुरू किया और यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते से जाने की सलाह दी, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आइए आपको जम्मू कश्मीर की तरफ लिए चलते हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के कारण अब भी कई क्षेत्रों में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। हाल ही में 14 जगहों से बादल फटने के कारण हालात बिगड़ने की खबरें सामने आई। ये तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां बादल फटने से स्थानीय लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आसपास जंगल और जमीन दोनों पर बुरा असर साफ देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के मन में अब भी डर है कि मौसम की मार अगली बार और भारी न पड़ जाए। पहले बाढ़ से परेशान राजौरी क्षेत्र के लोगों ने क्लाउड बर्स्ट और भूस्खलन के दौरान मुश्किलों का सामना किया और अब नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण खतरा लगातार फिर से बढ़ रहा है। राजौरी का लगभग पूरा क्षेत्र ही भारी बारिश के कारण प्रभावित है, जिससे इस क्षेत्र में जगह जगह मुश्किलें बढ़ रही हैं। भारी बारिश, आंधी और बादल फटने जैसी घटनाओं से जम्मू कश्मीर के शोपियां क्षेत्र के शदाब करेवा, बद्राहामा और पहली पोरा जैसे कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिहायशी बस्तियों में पानी और मलबा तो भरा है ही, इस भारी बारिश के कारण सेब के बागों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों से पानी शहरों की ओर बढ़ रहा है, जिससे मकानों और दुकानों में भी पानी घुस रहा है। बरसाती नाले सैलाब की शक्ल ले चुके हैं। हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं का सामना कर रहा है। अगस्त के खत्म होते होते भी हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। ये तस्वीरें सोलन के वाकना घाट की है, जहां भयंकर भूस्खलन हुआ और सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। नदी नालों का जलस्तर भी लगातार खतरे की चेतावनी दे रहा है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अचानक बारिश के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कांगड़ा जिले में भारी बारिश के बाद प्रागपुर इलाके में नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर आ गया, जिससे प्रागपुर के पास हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाढ़ के पानी के बीच एक कार चालक ने वाहन को निकालने की कोशिश की, लेकिन कार बीच सड़क में ही पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, हालांकि तेज बहाव में कार बह गई और पानी के साथ नीचे की ओर चली गई। मानसून के दौरान कांगड़ा जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और यातायात प्रभावित हुआ है।
3: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और इलाकों का हाल आप देखते रहिए आज तक।

0: बिजली का बिल
1: तो वह मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: इतना माही वे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
4: Lion Date Nut Bites.
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च, अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता करेगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, कल से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर दोबारा तैयार, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की खुली पोल। और चंडीगढ़ बस स्टैंड के पास संदिग्ध आईईडी बरामद, पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया, मामले में एफआईआर भी दर्ज।

0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून की बारिश इन दिनों आफत बनकर बरस रही है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे प्रदेश के कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ और जल भराव के हालात बन गए हैं। 13 जिलों में 173 गांवों के 84,000 से अधिक लोग इस समय बुरी तरह प्रभावित हैं। मौसम विभाग आने वाले दिनों में 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अनुमान जता रहा है, यानी हालात अभी और विकराल रूप ले सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर है, शहर शहर पानी में डूबा हुआ है। कई जिलों में हालात ऐसे हैं कि घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है।
2: इस वक्त जो है गंगा यमुना का जो प्रवाह है वो देखते बन रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ थमेगा, असली बाढ़ अभी आनी बाकी है। विशेषज्ञ बताते हैं अगला हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है।
1: कहीं सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं गांवों में घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। कई इलाकों में लोगों की जिंदगी छतों तक सिमट गई है। चारों तरफ पानी ही पानी है और हर तरफ मदद की आस लगाए लोग नजर आ रहे हैं।
3: बहुत समस्या है सर, जिन रोड्स पे अभी तक गाड़ियां चल रही थी अभी वहां पे नाव चल रही है, बहुत ही दिक्कत आ रही है। पानी का स्तर बहुत बड़ा हुआ है।
2: आपके गाँव में बाढ़ कब आई थी?
4: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक।
2: 97 में आई थी।
4: हाँ।
5: जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए, घर में पानी चढ़ा हुआ है।
1: कई रास्ते बंद हो चुके हैं, आवाजाही थम गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी। शहर की सड़कें डूबी हैं, घाट जलमग्न हैं और घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है।
2: आप समझ लीजिए, हम इस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
1: जिस रास्ते पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां अब नावें चल रही हैं। संगम नगरी में बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है।
6: दिक्कतें बहुत हो रही हैं भैया, आने जाने में लोग इधर से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग यहां से वापस चले जा रहे हैं।
7: अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये आज सीढ़ियों के पास तक पहुंच गया, जिससे आने जाने में काफी दिक्कत हो रहा है। और ऐसा ही अगर बढ़ता रहा तो हमें लगा 2 दिनों बाद रास्ता पूरे तरीके से बंद हो जाएगा।
1: प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास हालात और भी भयानक हैं। निचले इलाकों में बसे गांव पानी में समा चुके हैं। कहीं घरों के सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं, तो कहीं पेड़ों के ऊपरी हिस्से ही नजर आ रहे हैं। बिजली के खंभे भी पानी में आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। चारों तरफ सैलाब का ऐसा शिकंजा है कि लोगों के सामने घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
2: सामने पहले दिखाई तस्वीर, जो छत पे लोग खड़े हैं वो इंतजार में हैं कि कब हमें मदद पहुंचेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही प्रशासन की जो बोट है वो पहुंचती है राशन बांटने के लिए, ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों से निकल कर ये लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिससे इनकी मदद हो पाए, इनको मदद मिल पाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो SDRF है, NDRF है, जल पुलिस है, तमाम लोग देवदूत बने हुए हैं।
8: एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, आप लोग हमको इशारा करके हमारे बोट में आ सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं।
1: प्रयागराज शहर में भी बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। अरैल घाट पूरी तरह पानी में समा चुका है। जहां महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु आते थे वहां अब कमर तक पानी है। बड़े हनुमान जी मंदिर के आसपास की सड़कों पर नाव चल रही है, घुटनों तक पानी पहुंच चुका है।
2: प्रयागराज में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां बाइक स्कूटी ई रिक्शे चलते थे, वहां अब नाव चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम क्षेत्र में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के पास है। हमें अगर आप देखेंगे जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, तो घुटने तक जो है पानी यहां पहुंच चुका है। और आप यकीन माने, ये कोई घाट नहीं है, ये नीचे हमारे ठीक सड़क है। और ये पानी जो है वो उधर से आ रहा है। और वहां जो जेटी लगा दी गई है, वो नदी की वजह से नहीं लगाई गई है, वो इस वजह से लगाई गई है जैसे कि उसके आगे पानी और ज्यादा गहरा है, यानी कि नदी जो है वो काफी आगे है।
1: बांदा में बारिश आफत बन गई है, नदियां उफान पर है और अब बरसाती नदी चंद्रावल ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पैलानी तहसील के करीब 3 दर्जन गांव बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने से गांवों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित है।
9: चंद्रावल नदी में पानी का प्रवाह जो है इस समय ओवरफ्लो है, रट्टा डूबे हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने नाव की व्यवस्था करा रखी है। वहाँ दो होमगार्ड सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ रख छोड़े हैं, जिससे कि ज्यादा नाव में लोग ना बैठे, सावधानी पूर्वक ही उनका आवागमन कराया जाए।
1: बिजनौर की तस्वीर देखिए, गंगा का रौद्र रूप अब गांवों और शहरों तक पहुंच चुका है। हरिद्वार से छोड़ा गया 1,80,000 क्यूसेक पानी बिजनौर पहुंचा तो गंगा खतरे के निशान के पार चली गई। और इसके साथ ही गंगा किनारे बसे इलाकों में तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। सबसे ज्यादा मार बिजनौर और चांदपुर इलाके में है। ठाकुरद्वारा से मेरठ जाने वाले स्टेट हाईवे पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि सड़क और खेत में फर्क करना मुश्किल है। घरों के अंदर पानी है, अस्पताल में पानी है, पुलिस चौकी तक पानी में डूब गई है।
10: पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से जनपद बिजनौर की नदियों में भी जलस्तर का लेवल जो है वो थोड़ा बड़ा है। कुल मिला के अब तक 11 गांव में जल भराव की और जलस्तर बढ़ने की जो है शिकायत आई है। हम लोगों ने दोनों तहसीलों में लगभग 300 राशन किटों का वितरण भी माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार वहां जलस्तर कम होने पर वहां पर छिड़काव का कार्य, दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने का काम और डोर टू डोर अभियान चला के कोई बीमार है, बुखार से पीड़ित है, ऐसे पेशेंट्स को चिन्हित करने का कार्य जो है वो कर रही हैं। फ्लड पीएसी जनपद में तैनात है, आवश्यकता पड़ने पर वहां डिप्लॉय करी जाती है। साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता है। अभी स्थिति कंट्रोल में है।
1: घर में रखा राशन, सामान, जरूरत की चीजें सब पानी में बर्बाद हो रहा है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। रावली, कुंदनपुर और बाकरपुर जैसे गांवों में भी हालात बेहद खराब है। मालन नदी का पानी गांव में 2 से 3 फीट तक भर गया है। प्रशासन के मुताबिक जिले के 11 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्नाव में गंगा का बढ़ता जलस्तर आफत बन गया है। तस्वीरें देखिए, शुक्लागंज जैसे कई मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कई लोगों ने घरों पर ताला लगाया और सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। वहीं सुरक्षा के चलते कई इलाकों में बिजली सप्लाई तक बंद कर दी गई है।
11: इस वक्त मैं मौजूद हूं उन्नाव के चंपापुरवा इलाके में और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे, ये इलाके में जहां रोड होती थी वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोग जो पहले बाइक और कारों से यहां पर आते जाते थे, अब फिलहाल उनको आने जाने के लिए इन नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई लोग अपना घर यहां से बंद करके दूसरे इलाकों में चले गए हैं ताकि जब पानी का जलस्तर यहां से नीचे हो तो उसके बाद वापस यहां पर शिफ्ट होने पाए। यहां पर आप देखेंगे तो फिलहाल बिजली भी काट दी गई है। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पूरे इलाके में जो है वो पानी भरा जा चुका है। इस तरीके की स्थिति यहां पर जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि नरोरा बैंक से पानी का डिस्चार्ज यहां पे किया गया था 114 मीटर, जो कि एक डेंजर लेवल बताया जाता है गंगा के लिए। फिलहाल उस लेवल पर गंगा नदी यहां पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि पानी का जलस्तर जब और बढ़ेगा तो किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी लोगों को और किस तरीके के जो तैयारियां हैं वो प्रशासन द्वारा की जाती हैं।
1: बाढ़ में सबसे ज्यादा मुश्किल बुजुर्गों और बीमार लोगों के सामने है। दवा लेने जाना हो या डॉक्टर तक पहुंचना हो, नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ के पानी के साथ गंदगी और जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी मंडरा रहा है। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब चिंता बढ़ाने लगा है। वरुणा नदी का पानी भी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। गंगा खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे बह रही है, यानी जलस्तर लगातार बढ़ा तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं।
12: बाढ़ की स्थिति देखी गई है, लगभग 67 मीटर वाटर का लेवल चल रहा है और 70 मीटर के आसपास जो है यहाँ पर बाढ़ आती है, तो कभी भी ये लेवल जिस गति से बढ़ रहा है तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कल से एक बाढ़ राहत शिविर आरंभ हो गया है, वहाँ पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ राहत केंद्र पूर्व में बनते रहे उसके लिए हम लोगों ने होमवर्क कर लिया है।
1: प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, 64 बाढ़ राहत शिविर और 21 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर बढ़ते ही प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी गंगा का बढ़ता पानी प्रशासन के लिए भी बड़ा अलर्ट है और वाराणसी में अब हर नजर जलस्तर पर टिकी है। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इसका सीधा असर कई गांवों पर पड़ा है। करीब 12,000 की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है।
13: अब पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, अब ज्यादा हो जाएगा।
14: बाढ़ बहुत है यहाँ पर, अभी तक कोई प्रशासन देखने नहीं आया।
15: कब से पानी आया है?
14: आज 15 दिन हो गए पानी आए हुए, और किसी तरह हम सब लोग तख्ते पर रखकर खाना पानी बना रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत जानवरों को हो रही है। जानवरों को इधर उधर से कहीं से चारा लाते थे, वो भी दिक्कत।
1: गांव पानी से घिरे हैं, खेत डूबे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है पशुओं के चारे की। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ चौकियां अलर्ट पर है, नाव, मोटरबोट, PAC और NDRF की टीमें तैनात है।
0: इस मॉनसून सीजन में इंतजार एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उठ गया। कहीं इतनी बारिश कि लोगों को पानी के रुकने का इंतजार, कहीं इतनी कम बारिश कि लोगों को और पानी बरसने का इंतजार। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का जो अनुमान जारी किया है उसके अनुसार मॉनसून अपनी चाल अब बदल रहा है। इसके कारण राज्यों में बारिश की असमानता बनी रह सकती है।

0: वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार सितंबर में मॉनसून देश से विदा ले लेगा, लेकिन उससे पहले अगले दो हफ्तों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश बनी रह सकती है। इन इलाकों में बाकी देशों की तुलना में बारिश ज्यादा होने का अनुमान है। कुछ जगहों पर तेज और सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है, यानी जहां बारिश अभी भी तेज और अधिक हो रही है वहां बारिश जारी रह सकती है, लेकिन अलग अलग मौसम सिस्टम बनने के आधार पर बारिश की गति बदलती रहेगी। मौसम के लंबे समय के मॉडल में 5 से 10 सितंबर के आसपास बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इस समय के बाद देश के बड़े हिस्से में बारिश कम हो सकती है। कई राज्यों में बारिश के बीच का अंतर बढ़ सकता है और मॉनसून की गतिविधि कमजोर हो सकती है। हालांकि मॉनसून की बारिश ने जून के बाद जुलाई में जो तेजी पकड़ी थी वो अब अगस्त सितंबर में ढीली पड़ती जा रही है। मॉनसून पर अल नीनो भारी पड़ रहा है और वो सुपर एक्टिव होकर सूखे की आशंका को मजबूत कर रहा है। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक इस साल बनने वाला अल नीनो पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय में सबसे शक्तिशाली अल नीनो हो सकता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा ऊपर जाने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो ये आधुनिक रिकॉर्ड में अब तक का सबसे ताकतवर अल नीनो होगा। क्लाइमेट मॉडल्स के मुताबिक नवंबर के आसपास प्रशांत महासागर की सतह का तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दरअसल अल नीनो सिर्फ समुद्र को गर्म नहीं करता, ये पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण कई देशों में अत्यधिक गर्मी पड़ सकती है, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है, कहीं असामान्य बारिश और बाढ़ हो सकती है, खेती और खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है, वैश्विक औसत तापमान और बढ़ सकता है। लेकिन चिंता भारत के लिए बड़ी है। भारत में अल नीनो पहले से ही मॉनसून को कमजोर कर रहा है। अगर अल नीनो लंबे समय तक मजबूत रहता है तो इसका असर खेती पर पड़ेगा। अल नीनो मजबूत होने पर भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर या असमान हो सकता है, यानी बारिश सामान्य से कम ही नहीं बल्कि कई इलाकों में बेहद असमान भी हो सकती है, यानी कहीं कम बारिश कहीं अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, जैसे कि होना शुरू भी हो चुकी है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाले इलाकों में गिनती किए जाने वाले मेघालय में इस बार मॉनसून का बिल्कुल अलग चेहरा देखने को मिल रहा है। चेरापुंजी और मासिनराम जैसे इलाके जहां बारिश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहे हैं, वहां इस बार बादल उम्मीद के मुताबिक बरस नहीं रहे। नतीजा ये है कि मॉनसून के अपने चरम पर होने के बावजूद मेघालय में अब तक हुई बारिश में 57% की कमी दर्ज की गई है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। देश के कई अन्य राज्य भी हैं जहां बारिश सामान्य से कम दर्ज की जा रही है। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में औसत से भी काफी कम बारिश देखी गई है, जिसका असर खेती पर पड़ सकता है। कुछ अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि बारिश पूरे देश में एक साथ ना होकर अलग अलग राज्यों में असमान है, लिहाजा बारिश की कमी अंत तक बनी रह सकती है।
1: मौसम की चुनौतियां केवल भारत में नहीं है बल्कि दुनिया के कई देशों में मौसम की टेढ़ी चाल ने मौसम वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। इटली में उफनती नदी और लैंडस्लाइड के खतरे के बीच कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, तो ब्राजील उरुग्वे बॉर्डर पर भारी बारिश के बाद नदियां उफन रही हैं जिससे लोगों को घर तक छोड़ना पड़ रहा है। पेरू से न्यूयॉर्क तक बारिश और लैंडस्लाइड ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है।

बारिश ने सिर्फ भारत में ही प्रश्न खड़े नहीं किए बल्कि दुनिया के कई देशों में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। इटली के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। इस तस्वीर में दिख रहा है कि तेज बहाव जिसके कारण नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। बाढ़ के बीच राहत और बचाव के लिए इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां तैनात हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि प्रशासन को एहतियात के तौर पर करीब 250 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। सबसे बड़ी चिंता थी पहाड़ी इलाके में भूस्खलन का खतरा और दूसरी तरफ नीचे की ओर बढ़ता पानी। हालात को देखते हुए भारी मशीनरी को भी मौके पर उतारा गया। लेकिन यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। ब्राजील और उरुग्वे की सीमा पर बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं और कई इलाकों में लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा है। ब्राजील के जैगुआराओ में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद करीब 40 परिवारों को घर खाली करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों के लिए जिम में अस्थायी शेल्टर बनाया जहां बाढ़ की वजह से पलायन के लिए मजबूर लोगों को रखा गया। ब्राजील के साथ लगते उरुग्वे के रियो ब्रांको में भी पानी सड़कों और कारोबारी इलाकों तक पहुंच गया। कई दुकानें बंद करनी पड़ी और यातायात पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन बाढ़ का पानी शहर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक एक इलाके में पानी इतना बढ़ा कि करीब 90% क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। यानी एक तरफ सड़कें पानी में, दूसरी तरफ कारोबार ठप और तीसरी तरफ लोगों के सामने सुरक्षित ठिकाने की तलाश। लेकिन खतरा सिर्फ बाढ़ के पानी का नहीं था, मौसम विभाग और प्रशासन को तेज हवाओं की भी चिंता थी। सिविल डिफेंस के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही थी और इसके 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने की आशंका थी। पेरू में बारिश के साथ पहाड़ भी आफत बन गए हैं। भूस्खलन के बाद तटीय हाईवे पर ट्रक और यात्री फंस गए। पहाड़ से आया मलबा सड़क पर फैल गया और यातायात की रफ्तार थम गई। लंबे वक्त तक सड़क पर फंसे लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कब रास्ता खुलेगा और कब वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे।

0: बारिश का असर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक पहुंचा। भारी बारिश के बाद न्यूयॉर्क के सबवे सिस्टम में पानी रिसता दिखाई दिया। इन तस्वीरों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये सुपर पावर अमेरिका की तस्वीरें हैं। दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक न्यूयॉर्क का देखिए एक बारिश ने कैसा हाल कर दिया। शहर के अंडरग्राउंड ट्रैफिक सिस्टम पर भी बारिश का बुरा असर पड़ा।
1: हमारी इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

क्या बीजेपी की नई टीम के साथ पीएम मोदी ने बनाई चुनावी रणनीति? क्या नई टीम के बाद अब संसदीय बोर्ड पर बड़ा फैसला होगा? क्या 4.5 घंटे की बैठक में संगठन का अगला रोड मैप तय हुआ? नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय शनिवार को यहां जुटी पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम और सामने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था। इसके बाद पीएम मोदी की नए पदाधिकारियों के साथ ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ करीब 4.5 घंटे बिताए। इस दौरान चाय पर सभी से बातचीत की। कुछ पदाधिकारियों ने अपने विचार भी साझा किए। पीएम मोदी ने सभी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और पूरी टीम के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि संगठन की बैठकें नए विचार और नए नजरिए सामने लाती हैं और इनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों से उसका जुड़ाव बढ़ाना है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नई राष्ट्रीय टीम के साथ बैठक की। संगठन की रणनीति और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन हुआ। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। नई टीम के गठन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अब नजर बीजेपी के संसदीय बोर्ड के संभावित ऐलान और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन की अगली रणनीति पर होगी। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
1: बीजेपी भाग जा पाकिस्तान।
2: अखिलेश यादव के पीटीए में पी मतलब को लेकर अब घमासान मच गया है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीटीए में पी माने पाकिस्तान कह दिया है।
0: अब देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
2: योगी आदित्यनाथ ने पीटीए के पी को पाकिस्तान कहा तो अखिलेश यादव ने बीजेपी का भी नया मतलब बता दिया।
1: अगर मैं यूं कहूं, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान।
2: दरअसल अखिलेश यादव अपनी राजनीति को पीटीए की राजनीति कहते हैं। समाजवादी पार्टी से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहती थी, लेकिन समय समय पर अखिलेश यादव पीटीए के हर अक्षर का अलग अर्थ बताते रहे हैं। कभी पी से पंडित तो कभी पी से पिछड़ा, इसी बात को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पीटीए पर निशाना साधा।
0: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं, पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं।
2: दरअसल कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का दिन था, अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी थी। इस बात को सीएम योगी ने हिंदू मान सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कल्याण सिंह और हिंदुओं से द्वेष रखती है। किसी के जवाब में अखिलेश ने बीजेपी की नई परिभाषा गढ़ दी।
1: कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान।
2: यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार, 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है, यह जो विभाजन करने की, बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।

0: मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च। अखिलेश के बाद मायावती बोली, ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता करेगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, कल से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर दोबारा तैयार, सामने आया बहावलपुर के टेरर कैंप का वीडियो, शहबाज मुनीर की खुली पोल। और चंडीगढ़ बस स्टैंड के पास संदिग्ध आईईडी बरामद, पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया, मामले में एफआईआर भी दर्ज।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की एक कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, एक औरत 36 साल जिसकी उम्र, मुलजिम के कटघरे में व्हील चेयर पर, अचानक वो कोर्ट के सामने कहना शुरू करती है, कहती है पिछले कुछ वक्त से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं घर में अगर बैठकर टीवी देख रही हूं, टीवी पर कोई शो चल रहा है, तो वो टीवी अचानक मुझसे बात कर रहा है और वो मुझे अजीब अजीब बातें कह रहा है। जब मैं फ्रिज खोलती पानी का बोतल निकालने या कुछ और सामान निकालने, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज के अंदर से जहरीली गैस बाहर आ रही है जो मुझे धीरे धीरे मार रही है। कई बार मेरे कानों में आवाज आती कि तुम सेकंड फ्लोर पर जाओ, छत पर जाओ, वहां से जंप मार दो, कूद जाओ। कई बार कानों में आवाज आती कि तुम अपने तीनों बच्चों को मार दो, उन तीनों को मारोगी तो तुम्हारे लिए रास्ता आसान होगा, तुम्हारे लिए मौत का रास्ता भी आसान होगा और फिर तुम सारी परेशानियों से दूर हो जाओगी। अब एक औरत एक कोर्ट के अंदर खड़ी होकर ऐसी बातें करे तो उसे आप क्या कहेंगे? ये वो मुकदमा है जो इस वक्त अमेरिकी मीडिया में सुर्खियों में है और ये कहानी है लिंडसे वैलेंसी क्लिफल की। लिंडसे 10 साल पहले तक न्यूयॉर्क में रहा करती थी, कुछ वक्त पहले ही वो मैसाचुसेट्स पहुंची अपने पति और तीन बच्चों के साथ। सबसे बड़ा बेटा 5 साल का, दूसरा बेटा 3 साल का, 8 महीने की बल्कि बेटी, सिर्फ 8 महीने की। पूरा परिवार खुश, सब कुछ ठीक ठाक 5 साल पहले तक। जब 5 साल पहले लिंडसे ने पहले बेटे को जन्म दिया तो डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी, वजन गिरने लगा, चिड़चिड़ी हो गई, बात बात पर झगड़ती, डिप्रेशन का शिकार हो गई। फिर कुछ वक्त बीता, धीरे धीरे वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। इसके 2 साल के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन 2 साल के बाद फिर उसने दूसरे बेटे को जन्म दिया। जब दूसरे बेटे को जन्म दिया तो उसके बाद फिर वही बीमारी शुरू, वही चिड़चिड़ापन, वही डिप्रेशन, वही लड़ाई झगड़ा। डॉक्टरों को दिखाया गया, डॉक्टरों ने कहा कि अक्सर प्रेगनेंसी के बाद ये होता है, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें नॉर्मल है। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, 2-3 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद लगा कि वाकई ठीक है। फिर उसने तीसरी बेटी को जन्म दिया और तीसरी बेटी को जन्म देने के बाद फिर उसकी हालत वैसी होने लगी, वही चिड़चिड़ापन, सारी चीजें जो पहले 2 बच्चों की। अब तक उसके जो हस्बैंड था उसे भी लगा कि ये 2 डिलीवरी के बाद ऐसा हुआ, शायद यही वजह है, डॉक्टरों ने कहा है नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो फिर उसके साथ वही सब कुछ होने लगा। लेकिन फर्क यह था कि पहले 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे कि डिलीवरी के बाद जो वो 2-3 महीने के अंदर ठीक हो जाती थी, इस वक्त ये पीरियड इस बार लंबा हो गया और उसकी तबीयत नहीं सुधरी। डॉक्टरों को दिखाया गया, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन, तमाम तरह की दवाएं, वो कमजोर होती गई, वजन गिरता गया, चिड़चिड़ी होती गई। फिर अचानक उसने बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी। कई बार वो अपने हस्बैंड से लड़ जाती, कहती कि तुम मुझे और मेरे बच्चों को मार रहे हो, ये मार डालोगे। कई बार कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सेकंड फ्लोर से ले जाकर धक्का दे दोगे। मेरे बच्चों का गला घोंट दोगे। फिर वो उसे समझाता, फिर बच्चों का केयर भी करती, बहुत ख्याल रखती। जरा सी तबीयत खराब हो तो वो परेशान हो जाती, दवाएं मंगाती, अपने हाथों से देती, उनको लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती। खाना पीना दवाएं किसी और पर नहीं डालती, सब कुछ खुद से करती। मतलब वो एक अच्छी माँ थी। फिर अचानक होता यह है कि 24 जनवरी 2023, उस दिन जो लिंडसे का हस्बैंड है पैट्रिक, लिंडसे उससे कहती है कि आज मुझे एक खास रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन कर रहा है, तो आप वहां से ले आओ। इत्तेफाक से इससे पहले उसने जब भी खाना मंगाया तो घर के करीब किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया, लेकिन इस बार उसने जहां से फरमाइश की थी वो रेस्टोरेंट उसके घर से बहुत दूर। पर हस्बैंड को लगा चलो बीवी ने ख्वाहिश जताई है, पूरी कर देते हैं, तो वो चला गया। वहां से आने जाने में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगता। 1.5 घंटे बाद हस्बैंड घर लौटता है। घर लौटता है तो घर में अजीब सा सन्नाटा, क्योंकि 3 बच्चे, 5 साल, 3 साल, 8 महीने, शोर, ये सब होता रहता था, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। तभी वो घर के अंदर जब दाखिल होने लगा तो घर के बाहर कॉरिडोर में खुले में अचानक उसकी नजर पड़ी और उसकी चीखें निकल गईं। बाहर लिंडसे जमीन पर गिरी हुई थी, खून से लथपथ। वो देखा, बदहवास उसकी तरफ भागा, रोने लगा, उसे उठाया, हेल्प हेल्प बुलाया, आसपास के लोग आए, वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने लगा। तब तक लिंडसे धीरे से उससे बोलती है कि हमारे तीनों बच्चे जो हैं इस वक्त बेसमेंट में हैं, तुम बेसमेंट में जाओ। वो घबरा जाता है कि बच्चे बेसमेंट में क्या कर रहे हैं। तब तक एम्बुलेंस आ चुकी, लोग भी आ चुके। लिंडसे को एम्बुलेंस में डाला गया, खून हद से ज्यादा बह चुका था। इधर बदहवास पैट्रिक लिंडसे का हस्बैंड अब दौड़ता हुआ बेसमेंट में पहुंचता है। जब बेसमेंट में पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसके तीनों बच्चे बिल्कुल बेहोशी के आलम में पड़े हुए, और तीसरी जो बेटी थी 8 महीने की, उसके गले में एक बेल्ट था। उसने ध्यान से देखा, हर एक को जाकर उठाया, झिंझोड़ा, गले लगाने की कोशिश की, पर देखा किसी में कोई जान नहीं, कोई सांस नहीं चल रही है। तब तक और भी लोग वहां पहुंच गए। जिस तरीके से वो भागा बेसमेंट में, वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चों को देखा, तीनों बच्चों में से किसी की जान नहीं थी। फिर उन्हें इस उम्मीद में कि शायद जिंदा हो, उन बच्चों को भी उठाया गया, एम्बुलेंस में डाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने देखा और तीनों बच्चों को मुर्दा करार दिया। इधर लिंडसे की हालत सीरियस थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट, कुछ बता भी नहीं सकती, कुछ पूछताछ भी नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे लिंडसे की हालत नॉर्मल हुई। फिर उससे पूछा गया, लिंडसे ने जो कहानी सुनाई उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लिंडसे ने कहा, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मेरे कान में एक आवाज आई। उसने कहा कि जैसे ही मैंने तुम्हें खाना लेने के लिए भेजा, अब मैं घर पे अकेली, तीनों बच्चे अकेले,

उसके लिए मेडिसिन भी सर्च किया था। उसने कहा लेकिन तभी खेलते खेलते अचानक मेरे कानों में आवाज आई कि तीनों बच्चों को लेकर बेसमेंट में जाओ। बोले मैं बेसमेंट में चली गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अपने इशारों पर नचा रहा है। बेसमेंट में गई तो फिर कान में आवाज आया कि ये जो बेल्ट है जिम वाला, इसको उठाकर एक एक कर इस बेल्ट से अपने बच्चों का गला घोंट दो। उसने कहा मैंने बेल्ट उठाया पहले अपने सबसे बड़े बेटे 5 साल के, उसके गले में डाला, जोर से कसा, तब तक पकड़े रही जब तक वो गिर नहीं गया। फिर उसी बेल्ट को निकाला, दूसरे बच्चे के गले में डाला, फिर वो भी उसी तरीके से गिर पड़ा। फिर मैंने तीसरी बार अपनी बच्ची के गले में डाला और जोर से फंदा कसा, थोड़ी देर में वो भी शांत हो गई। फिर आवाज आई अब तुम सेकंड फ्लोर पर जाओ। मैं सेकंड फ्लोर पर गई, सेकंड फ्लोर के पास उसने कहा विंडो के पास जाओ। मैं विंडो के पास गई, उसके मेरे कानों में आवाज आई विंडो से कूद जाओ, मैं कूद गई। इसके बाद मुझे पता नहीं। अब लिंडसे ही इकरार कर रही है कि उसने अपने तीनों बच्चों के गले में बेल्ट का फंदा बनाकर डाला, कसा और तीनों को अपने हाथों से मारा, और फिर वो खुद भी मरने के लिए ऊपर से नीचे कूद गई लेकिन बच गई। हॉस्पिटल में लिंडसे का इलाज चला लेकिन वो पैरालाइज हो गई जो चोट आई थी, अब वो व्हील चेयर पर है। अब चूंकि उसने ये कबूल किया कि तीनों बच्चों को मारा है तो ये मामला है क्रिमिनल केस और तीन तीन बच्चों के मर्डर का केस, तो इसीलिए इसके बाद पुलिस ने लिंडसे को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद अब लिंडसे की दिमागी हालत की जांच की गई और फिर उसकी कहानी सुनी गई। तब वही एक दिन वो कोर्ट में खड़ी होकर कह रही थी कि मैं जब टीवी देखती थी तो मुझे लगता था टीवी मुझसे बात कर रहा है डायरेक्ट, और वो मुझे बता रहा है तुम्हें ऐसे मारना है, तुम्हें ऐसे मरना है। कई बार फ्रिज की तरफ से मुझे जहरीली गैस बाहर मेरी तरफ मेरे बच्चों की तरफ आते हुए दिखाई देती, कई बार लगता मेरा पति मेरे बच्चे और मुझे मार देगा। ये सारी चीज़ें मेरे कानों में मुझे परेशान करती थी लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो कोर्ट में फूट फूट कर रोने भी लगी। जब दूसरी तरफ के वकील ने उन बच्चों की मौत का जिक्र किया तो वो चीखी भी कि मेरे बच्चों के बारे में ऐसा मत बोलो। फिर तमाम तरह के गवाह पेश हुए, जो घर में मेड थे काम करने वाले, उन लोगों ने बताया कि नहीं लिंडसे एक बेहतरीन माँ थी, अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। लिंडसे के हस्बैंड ने भी कोर्ट में अपनी वाइफ को सपोर्ट किया और कहा कि मैंने उससे अच्छी मदर नहीं देखी, वो अपने बच्चों को नहीं मार सकती। लेकिन लिंडसे खुद इकरार कर रही है, और लिंडसे वो पहले ही थी जिसने अपने हस्बैंड के कान में कहा, खुद घायल जब थी उस हालत में भी, कि तीनों बच्चे बेसमेंट में हैं जाओ। तो सवाल ये था कि लिंडसे ने ऐसा क्यों किया। तो पहली चीज आई कि लिंडसे को एक दिमागी बीमारी थी, जो एक वहम था जो उसे लगता था कि उसके कानों में ये आवाज आती है। तो एक्सपर्ट्स भी कोर्ट में पहुंचे। एक आया कि बेबी ब्लूज, एक ये वो बीमारी होती है जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के बाद ऐसी एक दो चीजें होती हैं, उसमें से पहला स्टेज होता है कि बेबी ब्लूज। डिलीवरी के बाद बेबी ब्लूज नाम की वो चीज़ है, एक बीमारी ही समझ लीजिए, जिसमें लगभग 90% औरतें चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं, अकेलापन महसूस करती हैं, कई बार डिप्रेशन में हो जाती हैं, कई बार बच्चों की चिंता उनको सताने लगती है। लेकिन ये 10-15 दिन या कई बार 2.5 महीने 3 महीने के अंदर अंदर तो बिल्कुल फिर नॉर्मल हो जाता है। एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये सिर्फ और सिर्फ उन माओं को होता है जो अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव या फिर ज़्यादा लेकर उनको चिंता करती हैं कि बच्चे पैदा हो गए, पता नहीं उनका क्या होगा, ठीक होंगे नहीं होंगे। तो एक ये भी होता है। एक साइकोसिस भी उन औरतों में जो भी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जिनकी होती है तो उनके अंदर एक, इसे एक आम शब्दों में कहे तो जैसे दिमागी हालत का ठीक ना होना, पागलपन टाइप। तो जब सारे साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया लिंडसे को, क्योंकि मामला यहाँ पर कानून में फंस गया था कि क्या वो एक सिर्फ तीन बच्चों की कातिल माँ है या फिर ये कत्ल उसने किसी बीमारी की वजह से किया। अब मैसाचुसेट्स का जो कानून है उसमें ये है कि अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और चाहे उसने कितना संगीन जुर्म किया हो तो उसे आप जेल नहीं भेज सकते। अपने यहाँ भी है कि अगर कोई क्राइम करता है और यह साबित हो जाए कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है,

0: तो उसे जेल में नहीं रखा जाता, उसे मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया जाता है। तो सेम यही यहाँ मैसाचुसेट्स में भी कानून है। लेकिन अगर ये साबित कर दे, अब यहाँ पे हुआ ये कि जो लिंडसे के वकील हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर यही रख दी दलील कि हमारी मुवक्किल यानी लिंडसे ने जो अपने तीनों बच्चों को मारा वो इसकी वजह ये थी कि वो पोस्टमार्टम साइकोसिस या फिर जो बेबी ब्लूज इन सारी चीज़ों की और वहम की शिकार थी, और जो कुछ उसने किया उसे किसी ने कहा कानों में आकर, उसे सुनाई देता था अब ये वहम है या जो भी है, तो होशो हवास में उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे तीन मर्डर के इल्जाम में सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब जब ये वकील ने कोर्ट में रखा तो वहां का एक और भी कानून है मैसाचुसेट्स का, वो ये है कि अगर जो आरोपी है जो मुलजिम है उसके वकील ने अगर ये कह दिया तो अब सामने वाले वकील की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये साबित करे कि वो दिमागी मरीज नहीं है। अब गेंद उनके पाले में नहीं है, उनका है जो सरकार की तरफ से वकील है कि वो अब साबित करें। अगर वो साबित कर देते हैं कि नहीं ये दिमागी मरीज नहीं है बल्कि ये ढाल बना रही है, तो फिर उसे जेल जाना होगा। तो अब ये ट्रायल शुरू हुआ अभी इसी अगस्त के महीने में। जो डिफेंस के लॉयर हैं उन्होंने ये कहा कि ये दिमागी मरीज होना एक बहाना है, उन्होंने कही इसके तर्क दिए, सबूत दिए। उन्होंने कहा जिस दिन ये तीनों बच्चों का कत्ल हुआ उस दिन से पहले कभी भी लिंडसे ने अपने हस्बैंड को इतनी दूर रेस्टोरेंट में खाना लेने नहीं भेजा था, पास का ही उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था वहीं से आता था। तो सवाल यह है कि उसी दिन क्यों चुना इतनी दूर, उसकी वजह यह थी ताकि वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उतनी देर तक बाहर रहे और उतनी देर में उसे अपने तीनों बच्चों को मारने का मौका मिल जाए। तो ये साजिश थी न कि दिमागी वहम। दूसरा कि जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन उस सुबह उसकी माँ उन तीन में से जो बीच वाला 3 साल का बच्चा था बेटा था उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उससे जुड़े हुए शायद कोल्ड और कुछ वो नेट पर मेडिसिन सर्च कर रही थी, तो इससे भी पता चलता है कि वो होशो हवास में है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि उसी दिन जिस दिन ये क्राइम हुआ ट्रिपल मर्डर हुआ उस दिन वो बर्फ के गोले बनाकर उन बच्चों के साथ खेल रही थी वैसे ही जैसे कोई होशो हवास में एक माँ अपने बच्चों के साथ खेलती है। तो ये सारी दलीलें गलत है और ये सिर्फ एक बचने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ लिंडसे के वकील कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, जब दो बच्चे पैदा हुए थे तब भी अगले 3 महीने तक लिंडसे की यही हालत थी और उसकी चिड़चिड़ापन और उसे ये लगना कि उसका हस्बैंड ही उसे मार देगा, बच्चों को मार देगा। तो ये सारी और वो प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग 13 प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग मेडिसिन जो उसे दिए जाते थे इन सबको भी रखा कोर्ट के सामने। खुद हस्बैंड ने लिंडसे की ये गवाही दी कि हाँ ये पहले भी ऐसा था और उसने कई बार तो मुझ पर शक किया कि मैं अपने बच्चों को मार दूंगा उसे मार दूंगा। तो ये दोनों तरफ से गवाही चल रही है। अब मैसाचुसेट्स की अदालत में ये है कि अगर इस 3 कत्ल के लिए लिंडसे को कसूरवार और जिम्मेदार ठहरा दिया गया और डिफेंस के लॉयर ने यह साबित कर दिया सरकारी वकील ने कि ये जहनी तौर पर बीमार नहीं है ना इन बीमारियों का शिकार है, तो फिर यहां पर सीधे सीधे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको जेल में रहना होगा, वो भी बिना पेरोल के, यानी एक बार भी आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। अब ये साबित करना सरकारी वकील का काम है। लिंडसे ने कोर्ट में कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, लेकिन इसके साथ ही फिर वो ये कहानी सुनाती है कि मेरे कानों में आवाज आती है कि पता नहीं मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, पता नहीं मैं अपने बच्चों को ठीक से रख पाऊंगी कि नहीं, बच्चों को मार दो फिर खुद भी मर जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए जीना आसान होगा। तो अब ये मुकदमा अदालत में है, दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। लिंडसे की तरफ से साफ साफ है कि ये एक होशो हवास में किया गया कत्ल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ का कहना है कि ये होशो हवास में किया गया और इसलिए जो 3rd degree 3 मर्डर के जो चार्जेस हैं वो लिंडसे पर लगाए जाएं। शायद अगले महीने तक इसका फैसला आ जाएगा और कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिकी मीडिया की पूरी नज़र। उसकी वजह यह है कि एक डिफरेंट केस है, डिफरेंट इस मायने में है कि यहाँ 1, 2 नहीं 3 मर्डर की बात है और यहाँ एक माँ के हाथों हुए 3 बच्चों के कत्ल की बात है। तो उसमें क्या होता है ये शायद आने वाले महीने भर के अंदर जो फैसला होगा वो सामने आएगा। तो इस फैसले पर हमारी भी नज़र होगी, जब भी इस पर अपडेट आएगा आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन ये पहला केस नहीं है, न सिर्फ अमेरिका बल्कि अपने देश में भी और भी दुनिया में ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें इसी दिमागी हालत और होशोहवास में नहीं। इंडिया की कई कहानी मैंने आपको सुना रखी है कि हमें ऐसा इशारा मिला, हमें कहा गया और हमारे हाथ से ये क्राइम हो गया। अब जो दिमाग में है उसको कागज पर जज के सामने उतारना और साबित करना ये थोड़ा टफ काम है, और यही इस वक्त सरकारी वकील के सामने चुनौती है कि वो कैसे इस केस को आगे ले जाए और कैसे साबित करे कि लिंड्स असल में जानबूझकर अपने बच्चों को मारा, न कि कोई दिमागी फितूर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।

0: यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए है। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर ये शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: की मांग पर सुलगी सियासत, समण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च, अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत, देश हित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, कल से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आए ईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार। और दिल्ली की आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के दो विधायक समेत सात घायल। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। क्या पहाड़ क्या मैदान, देश के अलग अलग शहरों में मौसम की जबरदस्त मार पड़ी है, कहीं जोरदार बरसात से बाढ़ के हालात हैं, कहीं लगातार पहाड़ दरकने से लोग खौफजदा हैं। सबसे पहले बात प्रयागराज की, जहां पर गंगा में उफान है, दो दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ और गंगा का जल बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है, और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जल भराव को लेकर उनकी जमकर क्लास भी ली गई।
1: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी, गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा, श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
2: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
3: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव संगम जा रहे हैं।
1: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
1: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
4: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
1: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
5: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
1: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जो हाल प्रयागराज का है वैसा ही हाल यूपी के उन शहरों का भी है जो नदियों के किनारे हैं। हापुड़, फरुखाबाद और महोबा का भी यही हाल है। शहरों के सिर्फ नाम बदले हैं और हालात एक जैसे हैं।

0: उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी। क्या शहर क्या गांव, हर जगह पानी पानी। यूपी के शहरों में नदियां दिखा रही हैं रौद्र रूप। आसमान से बरस रही बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। हर जगह नदियों के उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए फर्रुखाबाद की तस्वीरें। देखिए, जहां मैदान था वहां तालाब है, जहां सड़कें थी वहां सैलाब है। सड़कों पर कई फीट तक इसी तरह पानी भरा हुआ है और इसी पानी के बीच से लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। खेत खलिहान तो ताल तलैया बन गए हैं। स्कूलों में भारी जलजमाव है, गंगा में उफान है। देखिए गंगा की लहरें इस कदर उफनाई कि ये घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। अब लोग बाढ़ से परेशान हैं।
1: जो काबे इतना जे काबे के
2: घर में पानी घुस गया।
1: घर में काबे बहुत तो चारों गिद्दी को तो पानी भरा है।
2: नहीं, लगभग गांव के कितने मकानों में घर में पानी घुस गया होगा?
1: गिनती तो करी नहीं, मान लो मकान कम से कम 20-25 तक बूढ़े।
2: 20-25 बूढ़ गए।
3: निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। नवैया होना चाहिए।
2: तो आपके जानवर ऊंचे पे अभी बंधे हैं?
3: जानवर सर ऊंचे पे।
2: घरों में पानी तो नहीं पहुंचा?
3: घर में नहीं पानी,
2: लेकिन बाहर निकलने के लिए
3: तकलीफ है सर। जब घास ले जा रहे हम पानी में घुस के जाएंगे।
0: ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई गांवों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। लोगों के घर मकान हर जगह पानी भर चुका है। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और लोग उसी पानी के अंदर से अपनी बैलगाड़ी हो या मोटरसाइकिल निकालने को मजबूर है। जहां एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, वहीं प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम कविता मीणा मैदान में उतरी और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
4: अभी हमारे तहसील के अंतर्गत जो भी 8 जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गांव है, जहां पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है, तो इनके लिए जो शासन द्वारा राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में, और आगे भी अगर ऐसी अगर बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवा दी जाएंगी।
0: अब महोबा की तस्वीरें देखिए। इस स्कूल में दरिया बह रहा है और इसी पानी में ये बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं।
5: कई वर्षों से जो है ये समस्या चली आ रही है। कल जो है रात में हमारी बाउंड्री वाल गिर गई, पूरे कमरों में पानी भर गया, चावल रजिस्टर सब भीग गए। हमने कई बार जो ABA साहब को अवगत कराया, ABA साहब स्वयं आए, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। चंद लगा सर, मरते मरते बचे।
6: बच्चे बाथरूम कहाँ जाते हैं आपके?
5: बाथरूम भी गिर जाते सर।
6: वहाँ पर पानी भरा है आपका बाथरूम में?
5: पानी भरा
0: है। इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की तकलीफ सुनिए।

0: बैठते हैं।
1: यूपी ही नहीं बिहार में भी मानसूनी आफत के चलते कई जिलों में बाढ़ से हालात हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से बेगूसराय के कई गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: किसानों का बहुत ही बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो पशुपालक है उनके लिए भी काफी समस्या है। पशुपालक किसी तरह एन केन प्रकारेण भर कमर पानी हेल कर तैर कर ऊंचे स्थान से जाकर मवेशी की चारा का व्यवस्था करते हैं और यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए तो किसानों के साथ साथ पशुपालकों के लिए काफी समस्या है।
1: क्या घर, क्या मकान और क्या सड़क, हर जगह सिर्फ पानी पानी ही नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, वहीं हजारों बीघा में लगी फसल पानी में डूब चुकी है। तो साफ है कि इस वक्त आसमान से बरस रही आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है और इसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ ही सेकंड में बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ से मलबा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है। भूस्खलन की तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
4: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
4: यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटौला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं, कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे, जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां सड़क कट जाने से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।
3: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्से जलमग्न हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो तमसा नदी के उफान पर आने से मंदिर परिसर में पानी भर गया है। उत्तर भारत के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और मौसम की मार की तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा है।

0: उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। उफान पर तमसा नदी, डूबा टपकेश्वर महादेव मंदिर, पहाड़ों से गिर रहा मलबा, खाई में समा रही सड़कें। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की हैं, जहां तमसा नदी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर है और इसकी चपेट में मंदिर परिसर आ गया है। हालात ऐसे हैं कि नदी का तेज बहाव साफ दिखाई दे रहा है। तमसा नदी के रौद्र रूप को देखते हुए श्रद्धालुओं में भी खौफ साफ नजर आ रहा है। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से लोगों को नदी के तट से दूर रहने की अपील भी की गई है। नदी ही नहीं, आसमान से बरस रही आफत ने भी देहरादून के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में दो गाड़ियां आ गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बारिश और नदी के उफान के साथ साथ दरक रहे पहाड़ों ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हादसे हो रहे हैं। ये तस्वीरें मसूरी देहरादून मार्ग की हैं। शनिवार की सुबह सड़क का एक हिस्सा दोबारा क्षतिग्रस्त होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कुछ देर के लिए सड़क पर आवाजाही पूरी तरह थम गई। लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए भारी और बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सड़क को पूरी तरह दोतरफा यातायात के लिए खोलने में करीब 8 से 10 दिन लग सकते हैं। अब रुख करते हैं उत्तर कश्मीर का, जहां मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कुपवाड़ा, बारामूला और हंदवाड़ा में तेज बारिश के साथ हवाओं ने भी जोर पकड़ा। लगातार बारिश के बाद नदियों, नालों और दूसरे जल स्रोतों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। उत्तर दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मौसम ने किसानों और बागवानों को बड़ा झटका दिया है। तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बागवानों की मेहनत पर ओलों की मार पड़ी है और फसल को नुकसान हुआ है। यानी पहाड़ पर मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। बारिश जहां पानी का संकट दूर करती है, वहीं पहाड़ों में यही बारिश अब रास्तों, नदियों और खेती तीनों के लिए चुनौती बनती जा रही है। अब आपको उड़ीसा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी बादलों ने तबाही मचा दी है। देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी नजर आता है। इस पानी के बीच में लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बरसात ने मुश्किलें तो बढ़ाई ही हैं, लेकिन लगातार हो रही लैंडस्लाइड जान पर खतरा बन रही है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: और बड़ी खबर इस समय चंडीगढ़ से आपको देते हैं। चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने चंडीगढ़ में बस स्टैंड के करीब से IED और भारी मात्रा में हथियार को बरामद किया है। पुलिस ने बब्बर खान से जुड़े हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार भी किया। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, चंडीगढ़ बस स्टैंड के पास ही ये विस्फोटक या IED बरामद किया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए जो अभी बब्बर खालसा गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सभी ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी, ISI के इशारे पर हमले की साजिश का अभी आरोप है। लेकिन चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश, हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही, किसकी प्लानिंग थी, इन तीनों ही का क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड, क्या क्या जानकारी इनके बारे में है?
1: देखिए, सेंट्रल एजेंसियों के इनपुट पर ये चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ के 43 सेक्टर के बस स्टैंड से आईडी और भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों पंजाब के रहने वाले हैं, जिसमें लवप्रीत सिंह तरन तारण पंजाब का रहने वाला है, जसनप्रीत सिंह ये भी तरन तारण पंजाब का रहने वाला है, जबकि एक जो तीसरा शख्स है प्रभजीत सिंह ये अमृतसर पंजाब का रहने वाला है। तीनों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ये विदेश में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी सतनाम सिंह उर्फ सत्ते से संपर्क में थे और चंडीगढ़ में कोई बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन एजेंसियों को इस बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसमें सतनाम सिंह और सत्ते की बात करें राजीव, तो ये NIA का वांटेड है। 5 लाख का इनाम इस पर रखा हुआ है और ये लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों के साथ मिलकर पंजाब में आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाता है। राजीव,
0: ये बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपके पास लौटते हैं। लेकिन चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, IED उसके बारे में भी पता चला है, 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे अब पूछताछ भी चल रही है। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां ITO रेड लाइट के पास में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 विधायक समेत 7 लोग घायल हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके में ITO रेड लाइट के पास में हादसा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किराड़े के विधायक अनिल झा सड़क हादसे में घायल हुए हैं, तो वहीं कर्नाटक के एक विधायक अभय पटेल भी इस हादसे में घायल हुए हैं। दिल्ली में ये सड़क हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अरविंद, इस हादसे के बारे में जानकारी दें कि ये कैसे हादसा हुआ है और जो घायल है लोग उनकी हालत कैसी है?
1: देखिए, 9:30 बजे के आसपास ये ITO के पास से पास ये हादसा हुआ है राजीव, जिसमें जो एक स्विफ्ट कार थी वो तेज रफ्तार से जा रही थी और उसमें कुछ लोग भी सवार थे, एक फैमिली सवार थी, और जो कार है वो अपना बैलेंस खोती है और उसके बाद डिवाइडर को तोड़कर दूसरी तरफ जाती है, जहां से एक इनोवा कार आ रही थी और इनोवा कार से टकराती है। कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो इनोवा कार थी उसमें किराड़ी विधानसभा जो दिल्ली है वहां के जो विधायक हैं अनिल झा वो बैठे हुए थे, और साथ ही साथ उनकी गाड़ी में कर्नाटक के विधायक जो अभय पटेल थे वो सवार थे। सभी को मामूली चोट आई है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर इलाज जारी है।
0: बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के भलसपा डेरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस बलों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
2: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
3: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
4: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
3: कितने लोग थे?
4: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, इस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
2: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखाते जहां पर 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने दूसरे को थप्पड़ मारा, इसके बाद माहौल बिगड़ गया और जमकर मारपीट हुई।
5: तेलंगाना के वारंगल में भयानक मारपीट हो रही है। एक आदमी को कुछ लोग कायदे से पीट रहे हैं। इसमें एक वर्दी पहने हुए शख्स है जो एक जमीन पर पड़े आदमी को पीट रहा है। तस्वीरें वारंगल के उर्सू घट्टा इलाके की हैं। ये आदमी जो बनियान में है, ये बटालियन कांस्टेबल है। यहाँ एक बार में इसने हंगामा किया, जिसके बाद बार वाले ने पुलिस को फोन किया। बीट कांस्टेबल संतोष रेड्डी यहाँ पहुँचे। संतोष रेड्डी इस कांस्टेबल को समझा रहे हैं। अचानक संतोष ने कांस्टेबल को एक तमाचा जड़ दिया। जवाब में बटालियन कांस्टेबल ने भी बीट कांस्टेबल संतोष को तमाचा मार दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो आपके सामने है। संतोष रेड्डी ने इसे डंडे से पीटना शुरू किया। 2 लोग डंडा लेकर और आ गए, उन्होंने भी इस कांस्टेबल की पिटाई शुरू कर दी। देखिए कैसे इसे पीटा जा रहा है। इतना पीटा गया कि यह जमीन पर गिर गया, फिर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग इसे तब भी पीट रहे थे। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यानी पुलिस से पुलिस भिड़ गई। लेकिन सवाल ये है कि ये बगैर वर्दी में जो लोग थे, इन्होंने कांस्टेबल को क्यों पीटा और अब इस पिटाई का परिणाम क्या होगा? क्या दोनों कांस्टेबल पर कार्रवाई होगी? फिलहाल तो पुलिस वर्सेस पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हैं। अब्दुल बशीर, वारंगल, आज तक।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आरक्षण में बदलाव की मांग पर सुलगी सियासत। सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च। अखिलेश के बाद मायावती बोली, ऐसी मांग गलत, देशहित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ। परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, आज से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश नाकाम। बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद। बब्बर खालसा से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट। कर्नाटक और दिल्ली के दो विधायक समेत सात लोग घायल।
1: देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और इस राउंड टेबल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में एक बहस 15 अगस्त के बाद से छिड़ी और वो है प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कहे गए दो शब्दों पर, दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने दरअसल ये कहा कि आज देश में नक्सलवाद को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन जो दिमागी नक्सल है, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो आज भी देश में मौजूद है। इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं। अगर विरोध की आवाज को इस देश की सरकार दिमागी नक्सल कहती है तो हम है दिमागी नक्सल। दो नेता पी चिदम्बरम, अरविंद केजरीवाल ऑन रिकॉर्ड आए और कहा हम दिमागी नक्सल हैं। तो विपक्ष इसे इस तरह से देख रहा है कि डिसेंट की आवाज, विरोध की आवाज को दबाती है सरकार, और जो भी विरोध करता है या आवाज बुलंद करता है सरकार के खिलाफ, उसको वो दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, ऐसे शब्दों से घेरते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो देश में स्थायी और विकास की राह पर चल रही सरकार को और देश को पीछे खींचना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए सभी मेहमान जो हमारे साथ हो गए हैं, दो तरह की टीम तो बनी गई है, तीन तीन की। प्रदीप भंडारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं उनके साथ अंशु जोशी होंगी प्रदीप भंडारी के साथ, जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में, और रोहित कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इधर अभय दुबे जी के साथ हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि नेता लेफ्ट है, और जैसे पता चला वो आ रहे हैं तो हमने सोचा है कि यहाँ पर थोड़े हेलमेट्स और थोड़े नी कैप्स ये सब मंगा लिया जाए, ताकि यहाँ पर अगर डिशुम डिशुम होता है तो उसकी नौबत को रोका जाए। और बहुत दिनों के बाद अनीश गवांडे हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि शरद पवार गुट के एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी की भी आजकल मोदी जी से कई मुलाकातें होती हैं, उस पर भी चर्चा होती है, कुछ इनसाइड स्टोरी भी बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, दिमागी नक्सल क्या वाकई इस पर विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब हुआ है या सरकार ने सही जगह पर निशाना साधा? देखिए ये रिपोर्ट।
2: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
3: ये वो शब्द बाढ़ है जिस पर राजनीति का घमासान छिड़ा हुआ है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवादी हिंसा को विचारधारा का कवच पहनाने वालों पर प्रहार किया था, लेकिन देश के विपक्ष ने इसे विरोध की आवाज दबाने की कोशिश का प्रयास बताकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताते हुए सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा था, दिमागी नक्सल बीजेपी के अर्बन नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोपों का नया संस्करण है। आखिर अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था? ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों को निशाना बनाकर इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उसी तरह के अपशब्दों का नया संस्करण है। सिर्फ चिदम्बरम ही नहीं, बल्कि विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की।
4: मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल, आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है।
3: दिमागी नक्सल एक गंभीर शब्द है और विपक्ष ने अगर इसे विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कहा है तो इस पर हंगामा लंबे समय तक चलना तय है। पक्ष विपक्ष के वार पलटवार में ये बात भी सही है कि मोदी सरकार से पहले यूपीए सरकार को भी नक्सलवादी हिंसा को विचारधारा के स्तर पर समर्थन देने वालों से जूझना पड़ा था। ऐसे में सवाल सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का नहीं, सवाल ये है कि क्या वाकई कोई ऐसी विचारधारा है जो नक्सलवाद जैसी हिंसा को समर्थन देती है? क्या हिंसा को विचारधारा का कवच पहनाने वाले पढ़े लिखे लोग हमारे विश्वविद्यालयों में, अन्य संस्थानों में और समाज के महत्वपूर्ण जगहों पर कुंडली बार कर बैठे हैं? क्या विचारधारा के नाम पर हिंसक गतिविधियों को समर्थन देने वालों से देश को सावधान रहना होगा? क्या देश पर दिमागी नक्सली का खतरा गंभीर है या पेपर लीक जैसे देश के बड़े मुद्दों के बीच दिमागी नक्सल का नया हंगामा खड़ा किया गया है? आज तक ब्यूरो।
1: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, प्रदीप भंडारी जी आप ही के साथ शुरू करते हैं। अब पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं हाँ मैं हूँ दिमागी नक्सल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हाँ मैं हूँ दिमागी नक्सल, विरोध की आवाज को क्या आप लोग दबाना चाहते हैं इसीलिए ऐसे शब्द देते हैं ताकि उनका एक कैटेगरी बना दिया जाए?
5: अंजना जी, विरोध करने का अधिकार सबको लोकतंत्र में है। पंजाब में जैसे लाठियां चली ये सरकार उसमें विश्वास नहीं रखती, पर विरोध के नाम पर अगर कहेंगे कि संसद उखाड़ फेंक देंगे ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। ये 2018 का लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रोना विल्सन ने लिखा था, जिसमें वो ये कह रही थी भीमा कोरेगांव में कि राजीव गांधी को जिस तरीके से असैसिनेट किया था वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असैसिनेट करने का प्लॉट ये कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स ने किया था, ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अगर आप हम पे विश्वास नहीं रखती तो ये यूपीए सरकार के समय की मैं न्यूज रिपोर्ट लेके आया हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये कह रही थी यूपीए सरकार के उस वक्त के होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, जो कहते थे कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन गुरिल्ला आर्मी, यूपीए सेड दिस। अब उस वक्त यूपीए के अंदर सरकार में थे विनायक सेन, जिसको कन्विक्ट हुए थे सेडिशन के अंदर, ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अरुंधति रॉय ये कहती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं और कांग्रेस ने कभी भी इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया सीनियर लीडरशिप ने, ये है दिमागी नक्सल विचारधारा। और चिदम्बरम जी तो कहेंगे ही कि वो दिमागी नक्सल विचारधारा के व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके समय में नक्सलवाद इस देश से खत्म नहीं हुआ। अब जब हिडमा जैसा नक्सली आतंकी जिसको इस देश की फोर्सेज मारती है, अगर वहां पे राहुल गांधी के वीडियो के अंदर ऐसे वीडियोज आएंगे जो कहेंगे हिडमा अमर रहे, तो ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अगर एक आतंकवादी को मारा जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज मारेगी, उसको कहा जाएगा कि जुडिशियल किलिंग है, या हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को कहा जाएगा हाफिज सईद जी, तो बिल्कुल ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। दिमागी नक्सल विचार का मतलब विरोध नहीं, दिमागी नक्सल विचारधारा का मतलब जो भारत की संप्रभुता अखंडता में विश्वास नहीं रखता, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर आतंकवादियों को बैक करता है और जो अराजकता की बात करता है ना कि लोकतंत्र की, ये है। और ये हम ही नहीं कह रहे, यूपीए भी कहा करती थी, परंतु अब यूपीए के पीछे दिमागी नक्सल विचार के लोग आ गए हैं तो कठपुतली बन चुके हैं, इसलिए सच्चाई नहीं बोलेंगे।
1: को कई सारे ऐसे बुद्धिजीवियों को आपकी सरकार ने वाकई गिरफ्तार किया था कि नहीं? विवेक जी, आप तो कई लोगों के उनमें से समर्थन करते थे, आएंगे, आप भी यही कहते थे कि ये जो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, तो फिर क्या अंतर हो गया?
6: प्रधानमंत्री जी, दिमाग पर जोर देकर गिनते हो गलतियां हमारी,

0: कितना कसूर है तुम्हारा। मैं तो आज सौभाग्य है मेरा कि आज तक के स्टूडियो में बैठा हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2018 से एक वर्ड क्वाइन किया, अर्बन नक्सल, जो सरकार से असहमति व्यक्त करता था, जो सरकार को रास्ता दिखाता था, कहता था प्रधानमंत्री जी गलत रास्ते पर मत जाइए, ये देश बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने सबको अर्बन नक्सल पेंट करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, फिर इंडिया टुडे समूह ने एक आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा साहब पूछा तो जाए प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि अर्बन नक्सल अर्बन नक्सल। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने एक आरटीआई फाइल की और उसमें प्रश्न पूछे, हु आर अर्बन नक्सल्स, इन विच एरिया दे आर एक्टिव, और कहां कहां वो पाए जाते हैं, और वो अर्बन नक्सल का स्वरूप क्या है, ऐसे कम से कम 10 प्रश्न पूछे। सरकार ने जवाब क्या दिया है जानते हैं आप? सरकार ने जवाब दिया कि साहब ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, सरकार ऐसे किसी शब्द में ऐसी किसी परिभाषा में विश्वास नहीं रखती। मुखोटा देखिए इन लोगों का, प्रधानमंत्री जी जो दिमाग से दिवालिया हो जाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चंदा चुराते हैं, जो छात्रों पर पैलेट गन चलाते हैं, वो दिमागी नक्सल कहलाते हैं प्रधानमंत्री जी, जो पेपर लीक करवाते हैं, जो बलात्कारियों को बचाते हैं, जो संजय मुखिया को बचाते हैं, जिनके सत्ता की सरपरस्ती में 94,000 स्कूल बंद हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर पिटवाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो किसानों के खिलाफ काले क्रूर तीन तीन कानून लाते हैं, जो जमीन छीनने के अध्यादेश लेकर आते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो चीन भारत की भूमि में घुस जाए, भारत माँ की भूभागी अस्मिता को खंड खंड करने का मानस रखे, और आप जब उसको क्लीन चिट देकर ना कोई आया है ना घुसा है, तो ऐसी सत्ता पर अर्बन नक्सल कहते हैं प्रधानमंत्री जी। इस देश के नागरिकों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। क्या अगर देश के नागरिक आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कि गिरफ्तार कीजिए उस संजीव मुखिया को जो नीट के पेपर घोटाले में शामिल है, तो क्लीन चिट दे देती आपकी सीबीआई। और जिनका जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, वो सारे भीमा कोरे गांव के लोगों को छोड़ते वक्त क्या कहा अदालत ने, बताइए ना, कि जो डिजिटल साक्ष्य आपने दिए हैं वो बहुत कमजोर स्तर के हैं। इसका अर्थ है कि षड्यंत्र पूर्वक फंसाते हैं।
1: अच्छा, इंटेलेक्चुअल नक्सल में और दिमागी नक्सल में क्या अंतर
0: है अंजना जी? ये तो प्रधानमंत्री जी
1: बताएंगे। यूपीए के इंटेलेक्चुअल नक्सल
0: नहीं, नहीं नहीं,
1: और इनके कभी अर्बन हो जाते हैं, कभी दिमागी हो जाते हैं, क्या
0: देखिए ये तो अब तो
1: एक ही वैरायटी के सामान है क्या?
0: इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सरकार के पास है, वो बता दे क्या परिभाषा आपने तो इंडिया टुडे,
1: आप मुझे बताइए ना फर्क।
0: इंडिया टुडे ने पूछा तो कहा कोई है
2: जवाब देता हूं,
0: इनकी सरकार ने तो साफ इनकार कर दिया, आपने आरटीआई में
1: आपने जवाब पूछा था।
2: हाँ। पहली देखिए,
1: छोटा सा जवाब, फिर
2: छोटा सा, मैं तो तथ्यों से ही बात करता हूं। ये आरती जी है, आरती कंकर, इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और नक्सलियों ने मृत्यु करी थी, उसके बाद जाकर जब पी चिदम्बरम ने अपने आप को दिमागी नक्सल कहा, तो ऐसे तमाम विक्टिम्स जो नक्सल टेरर के बाहर आके बोले कि हम आहत हैं कि इतने सालों बाद हमारी जिंदगी के अंदर जो है खुशहाली आई है और हमारे जो पति नहीं रहे, हमारी मां नहीं रही, ये सब नक्सल टेरर पे इसका पी चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है। ये देश का मूड दिमागी नक्सल पे जो कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा है। और अगर कांग्रेस को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आज कांग्रेस सार्वजनिक रूप से बोले कि जब यूपीए ने कहा था कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन गुरिल्ला आर्मी, तो यूपीए झूठ बोल रही थी क्या? क्या विनायक सेन कन्विक्ट नहीं हुए थे क्या सेडिशन के, जो यूपीए के अंदर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थे? और ये कौन सी विचार है अभय जी, जब अंडमान के अंदर भारत अपनी स्ट्रेटेजिक भूमि को आगे ले जाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट को आगे ले जाते हैं, आप 6-6 आर्टिकल लिख देते हैं जिससे फायदा सिर्फ चीन का होता है? ये कौन सी ऐसी विचार है अभय जी, जिसमें हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को जी कहा जाता है? ऐसा कौन सा विचार है अभय जी, जिसमें भारत का तिरंगा जब जम्मू कश्मीर में लहराता है, आपके समय पाकिस्तान का झंडा लहराता, ये कौन सा विचार है जो डिसेंट के नाम पर आप एनआरकी की बात करते हैं और इंडियन यूनियन में विश्वास नहीं रखते? यही विचार है दिमागी नक्सल का। आपका दिल भी जानता है, हम भी जानते हैं, और देश का हर देशभक्त व्यक्ति जानता है कि हमने सही जगह बोला है।
0: देखिए, इन्होंने तो एक प्रमाण दे दिया कि कांग्रेस की सरकार के समय कन्विक्शन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जाति की जनगणना कराइए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आगे लाना है, तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? बिहार की रैली में कहते हैं ये अर्बन नक्सली हैं जो जाति की जनगणना कराना चाहते हैं, ये बोलते पाप मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। सुनिए ना, अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब भी हम न्याय की बात करेंगे राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को आप अर्बन नक्सल कहेंगे, प्रतिपक्ष के नेताओं को अर्बन नक्सल कहेंगे, तो कराइए ना, चलाइए मुकदमा, चलिए साहस से
2: चली रहे
0: चलाइए मुकदमा,
2: चली रहे
0: चुनौती देते हैं, तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया, भंडारी जी।

0: अरे
1: जो
0: चले
1: हमारे
0: जाओ,
1: फौलादी
0: नहीं है, फाइव स्टार जेल नहीं है,
1: कहिएगा उन्हें,
0: नहीं
1: कहिएगा राहुल गांधी जी बीते दिनों भी पैलेट गन चलाने को लेकर धरने पर बैठे हैं, हिम्मत हो तो करिए गिरफ्तार।
0: झारखंड में
2: विनायक सेन जी से लेकर अन्य लोगों को, विनायक सेन से लेकर जिसको जिसको गिरफ्तार किया, आप लोगों ने भी अपोज किया था यूपीए के दौरान भी,
3: देखिए,
2: और ये भी कह रहे हैं दिमागी नक्सल।
3: देखिए
2: कहां खड़े हैं आप?
3: देखिए पहली चीज, ये जो मर्जी कहें, चिदंबरम जी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड लाइनिंग गृह मंत्री रहे थे, जिन्होंने एक गन की पॉलिसी को फॉलो करके नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी। लेफ्ट के लोग, हम लोग और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उन्हें समझाता था उस वक्त, यू हैव टू टॉक टू पीपल। एलएलबी की पढ़ाई अगर आप इस मुल्क में करते हैं, 5 साल का कोर्स होता है और 3 साल की एक और एलएलबी होती है, उसमें सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी। उसमें पढ़ाया जाता है दैट एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज अ कॉज बिहाइंड इट, और उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो चिदंबरम जी को हम लोग बोला करते थे, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं सर नक्सलाइट बनने के, गन आप जरूर उठाइए जो हमारे सेना के लोगों को मान रहा है, लेकिन उस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी एड्रेस करिए और दोनों को साथ साथ चलाइए। यही जॉइंट स्ट्रेटजी पंजाब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाई गई थी, उल्फा को सॉल्व किया गया था, एलटीटी को सॉल्व किया गया था, नागा लिबरेशन फ्रंट में प्रधानमंत्री मोदी ने डील साइन करी है, इवन दो देवर सेपरेटिस्ट। सो द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो बोथ द पॉलिसीज पैरेलल।
2: दिमागी नक्सल बचे हैं क्या?
3: दिमागी नक्सल कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं मेरे,
2: बिल्कुल
3: जब से जंतर मंतर पे बच्चे उतरे हैं, युवा उतरे हैं, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं। एवरी वॉइस ऑफ डिसेंट, आपने पहले कॉकरोच शब्द किसी ने कहा, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब बच्चे उतरे एक पार्टी बन गई और प्राइम मिनिस्टर को राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे, हमारे यहां पे इस्तीफे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन बच्चों ने, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, सब स्टूडेंट्स थे, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। The Prime Minister feels now.
0: ये कौन है?
3: The Prime Minister feels now. I don't
0: know. You can tell
3: me. I can't see from
0: here. ये कौन है? अरुंधति रॉय ने कहा कि जम्मू कश्मीर was never an integral part of India. क्या आप इससे सहमत हैं?
3: Absolutely not.
0: तो क्या ये विचार दिमागी नक्सल विचार नहीं है?
3: She is an author. She is entitled to speak.
0: हो गया.
3: इसमें कुछ भी दिमागी नक्सल नहीं है। Every anchor, every journalist,
0: this is not right to free opinion. This is not right to free opinion.
3: Every writer has a right to think the way he does.
0: This is anti-national, sir.
3: Anjana Jammu might Kashmir speak against me and my party.
0: Anjana Kashyap will never say that Jammu Kashmir was never part of India. No, she will no person from any political ideology will
3: freedom
0: say. No,
3: of press,
0: this is not freedom of press, sir.
2: Professor Joshi.
0: Professor
2: Joshi.
0: Anti-national.
4: Srivastav ji. Freedom of speech ka matlab hi hai कि आप प्रभाकरण को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा भारत की धरती पर रह करके, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
1: कीजिएगा, जिन्ना को, जिन्ना को
4: दीजिए ना हमको,
1: जिन्ना को,
4: अरे जिन्ना आपके मित्र होंगे, जिन्ना की चिंता होगी, इसका जवाब दीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी के पिता थे, और उनके को
2: श्रद्धांजलि
4: चिंता कीजिएगा। मेरा पॉइंट ये है कि प्रभाकरण जो LTTE के सुप्रीमो थे, जिन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या की,
1: सैफुल्ला फारूक,
4: सुनिए ना, सैफुल्ला पर बाद में जाइएगा, पहले आइए श्रीलंका पर, अरे हमारी सुनिए पहले, दिमागी नक्सल, आप खुद दिमागी नक्सल
2: फिर शुरू
4: करिए।
2: तमिलनाडु रोहित जी किसी भी मेरे बुलाए हुए मेहमान का अपमान मत कीजिए,
4: अपमान नहीं
2: कीजिए। हाँ,
4: दिमागी नक्सल भी एक शब्द है।
2: अच्छा,
4: और इसको जनता की बोल,
2: टॉपिक पे रहिए, टॉपिक
4: रुकिए ना, दोनों लोग रहिए काम से, नहीं लड़ पाइए,
2: बोले पॉइंट है, सुनिए तो पॉइंट है, अच्छा गुरु जी जल्दी जल्दी बोलिए।
4: श्रीमान राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा में, उनके पूज्य पिताजी स्वर्गवासी श्रीमान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी दुखद हत्या सरगना प्रभाकरण ने की, विजय जी जो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने गौ वध के लड़ाई को लड़ने के लिए कि गौ की कटाई हो सुप्रीम कोर्ट आ गए, वो आदरणीय विजय जी ने प्रभाकरण जी को श्रद्धांजलि दे दी, और उनकी सरकार में दुगो मंत्री का पद लेने के लिए राहुल गांधी जी लपलपा करके उनके पीछे खड़े हैं। इससे बड़ा दिमागी नक्सलिज्म का प्रमाण क्या हो सकता है?
3: नक्सलिज्म का असर
4: क्या है?
3: अरे नक्सलिज्म,
4: अरे जिसने
3: नक्सलिज्म की परिभाषा
4: पूरा, अरे आपको मालूम है,
3: परिभाषा
4: को बताइए, बिहार की धरती से नक्सलिज्म, आप क्या जानिए, आपने तो बंगाल में लाल झंडा उठा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और देश में गरीबों के जमीनों को कब्जा करने का काम किया है, क्या बात की?
2: अनिश, अनिश आपका काउंटर पॉइंट इस पर, एक बार अनिश बोलिए, अनिश
4: नक्सलिज्म की परिभाषा,
1: एक सेकंड बस, हम नरेंद्र मोदी ने जो पैलेट गन चलाए और
0: किसी ने चलाई पैलेट गन,
1: तो राजीव जी के हत्यारों के पास उनकी बिटिया प्रियंका गांधी गई। प्रियंका गांधी जी ने जाकर उनसे हम उस विरासत के लोग ऐसे लोग कि बच्चों पर गन चलाए और माफी ऐसे लोग नहीं।
2: अबे जी आप अपनी दोस्तों की आवाज दबा रहे हैं आज। अनिश बोलिए,
1: अनिश नहीं बोल रहे,
2: अनिश
5: दुर्भाग्य की बात यही है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था। वो प्रधानमंत्री जी है, वो हम सबके प्रधानमंत्री है, उस पद को वो शब्द शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया है। आज बहुत कैजुअली फेंके जाते हैं ये शब्द, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग। देवेंद्र फडणवीस जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल होगा उसे अर्बन नक्सल कहलाया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जंतर मंतर में कोई भी बैठा हुआ है उसको अराजकता फैलाने वाला कहलाया। बाकी चीजों में एंटी नेशनल किसी को भी बुलाया जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जब वर्नन गोंसाल्विस की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी पुणे में, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस किताब ये पढ़ रहे हैं इसीलिए ये अर्बन नक्सल।
4: yes,
5: ये रोना विल्सन का आप लेटर दिखा रहे हो, वो एविडेंस प्लांट किए गए थे, ऐसी रिपोर्ट भी बाहर आ रही है।
4: फेक न्यूज़,
5: आप मुझे कहते हैं अगर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो सकते,
4: आप लोग तो बॉम्ब
5: सरकार
4: की बात
5: कोई नहीं हो सकता। आज देश का
2: युवा शर्जिल इमाम अगर चिकन नेक को काटने की बात करते हैं आप उसको देश विरोधी मानते हैं?
5: अगर शर्जिल इमाम चिकन नेक को काटने की बातचीत करता है तो कार्रवाई अदालत में होनी चाहिए।
4: मैंने
5: कर्नल विजय
4: कर्नल सोफिया कुरैशी को पार्लियामेंट ऑन कांग्रेस पार्टी, लेट मी स्पीक, सुनिए अनिश साहब, सीजेपी का दिमाग लगाते लगाते देश का दिमाग अपने ना ठीक कीजिएगा। सुनिए,
0: हो गया देश का दिमाग?
4: अरे भाई कहाँ दिमाग ठीक होगा, राहुल गांधी का दिमाग ठीक होगा? सुनिए, अरे आइए ना श्रीवास्तव जी, मत घबराइए,
2: आप लोग से नहीं हुआ वो बच्चों ने किया है, ये भी सोच लीजिए जरा।
4: बच्चों को क्या लगा है जिन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन को नानी याद दिला दी? मुद्दे पर आदरणीय दुबे जी,
2: जल्दी फिर मुझे जोशी जी को
4: मुद्दे पर आइए। इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं सहारनपुर से। वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें पराजित किया, उन्होंने क्या कहा कि देश के प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को बोती बोती कटवा देंगे। जनता ने भी जवाब दिया और देश की पुलिस ने भी उस समय जवाब दिया जो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं थी, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। ये दिमागी नक्सलिज्म नहीं है तो क्या है?
2: ठीक है प्रोफेसर
1: नरेंद्र
4: मोदी जी को बोती बोती कटवाने वाले नेता के पक्ष में आप खड़े हैं? ये देश का लोकतंत्र है क्या? ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधान के आधार है? अरे तुम भी क्यों नहीं जाएंगे सांसद है?
2: बारी बारी अच्छा सुनिए,
4: वो भी है जो खालिस्तान के पक्ष में खड़ा है।
2: अरे सवाल पूछिएगा तो जवाब भी तो सुनिएगा ना। सिंह जी इधर इधर इमरान मसूद पर आपका जवाब क्या था? मैं सुनिए, चिल्लाना नहीं, एक
4: सेकंड,
6: बोलने कहाँ दे रहे हैं?
4: नहीं गलत बोल रहे हो
6: आप, बोलने कहाँ दे रहे हैं?
2: बोलिए,
6: मैं फैक्चुअली कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जो हम अर्बन नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं उसको जब हम कंसेप्चुअली देखते हैं तो सीपीआई माओइस्ट के जब आप रिसर्च पेपर्स को देखते हैं, उनके स्ट्रेटजी पेपर्स को देखते हैं, उनमें सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया है, जिसमें कि एनजीओज, इंटेलेक्चुअल्स, अकेडमिशियंस को शामिल करके जो अर्बन एरियाज हैं उनमें बच्चों को कैसे, यूथ ब्रिगेड को कैसे शामिल करके नक्सलाइट मूवमेंट को अर्बन एरियाज में कैसे प्रमोट किया जाए, ये उनके स्ट्रेटजी पेपर्स में लिखा हुआ था। यहां से अर्बन नक्सलिज्म टर्म आई है पॉपुलर कनोटेशंस में, जो मोदी जी के ऊपर ये बात की जा रही थी कि वो कहां से ये शब्द लेके आए। जो दिमागी नक्सलवाद है ये तो बंदूक वाला जो नक्सलवाद है उससे भी ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें यूथ ब्रिगेड के दिमाग को जमीन की तरह इस्तेमाल करके यहीं से लव जिहाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से आतंकवाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से इस बात का प्रयास किया जा रहा है विशेषकर गर्ल्स
2: आतंकवाद,
6: हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा दिया जाए, लव जिहाद की अगर प्रे हो जाती है एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, भारत में एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। भारत 370 हिंदू लड़की को हटाने का विरोध करते हैं।
2: अच्छा अनीश को बोलने दीजिए एक बार,
6: सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछते हैं दिमागी नक्सलाई, भारतीय सेना पे सवाल उठाते हैं दिमागी नक्सलाई, भारत को खंड खंड तोड़ने के लिए
1: मैडम
6: जिसमें अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल जुड़े हैं, इसमें
1: You are mixing the issue.
2: Let her complete.
6: है ये जो दिमागी नक्सलवाद है, ये बंदूक का खेल है ही नहीं। देश को तोड़ने के लिए किस तरह से लव जिहाद पिंजड़ा तोड़, आप सरकारी संस्थाओं के प्रति यूथ में से अविश्वास पूरा एक बना के ले आइए, विश्वास खत्म कर दीजिए, देश की जो संस्कृति है
1: कल्चर
5: है। नहीं मैम आप निर्णय नहीं ले सकती है,
6: आपको फंडिंग मिलती है यहाँ से, दिमागी नक्सलवाद का आपका पूरा खेल चल
5: रहा
2: है। बारी बारी
5: बहुत सिंपल सवाल पूछना है, विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री है उनकी फंडिंग कहां से आती है, क्योंकि वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहते हैं,
7: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
2: रोहित जी,
5: अगर कोई दिमागी
2: पार्टी को भी जवाब देने दीजिए, सब आप ही दीजिएगा
5: जी, अगर कोई दिमागी नक्सल है तो कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई नागरिक किसी को दिमागी नक्सल नहीं कह सकता,
2: बट उनका एक्यूजेशन कुछ और है। अनीश देखिए उनके सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकंड, उनका ये एक्यूजेशन है, एक सेकंड, उनका आरोप ये है कि एक पूरा इंटेलेक्चुअल गुट है जो जानबूझकर सरकार सरकारी तंत्र या फिर जितनी exactly. भी संस्थाएं हैं उन पर से विश्वास हटाना चाहता है जनता का।
5: जी, उस गुट में कौन-कौन शामिल है, उस गुट में कौन-कौन शामिल है, उसका निर्णय विवेक अग्निहोत्री करेगा जो कहता है कि रामचंद्र गुहा भी अर्बन नक्सल है,
2: व्हाई आर यू कोटिंग हिम, आप उनको रेलेवेंट बना रहे हैं,
7: मैं जवाब देता हूं
2: क्यों कोट कर रहे हैं,
5: आप ऐसी टर्म आने अगर आप ऐसी टर्म को छोड़कर वहां पे रख देने वाले हो तो कोई भी फेंकने लगता है, वी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट।
2: अगर इसका इस्तेमाल सबके खिलाफ होने लगे और आम लोग बोलने लगे, वो कह रहे हैं कि फिर उनका अलग थलग करने
7: लगे, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा जो देश के देश की यूनिटी इंटेग्रिटी में विश्वास नहीं रखता, माओइस्ट को बार के सपोर्ट करता है, वो एक दिमागी नक्सल है। सुनिए, सीपीआई का मैनिफेस्टो कहता है कि भारत के न्यूक्स को वो डिसमेंटल करेंगे। अंजना जी मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई पेट्रियट कभी भी भारत के न्यूक्स को डिसमेंटल करने की बात कर सकता है, नहीं कर सकता, ये दिमागी नक्सल। और ये मैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीपीआईएम को कि बी पेट्रियट्स फर्स्ट, रेज इश्यूज ऑफ आर कंट्री, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा है कि इनकी पेट्रियोटिज्म पे सवाल है। मैं सिंपल फंडामेंटल कहूंगा, कोई देशभक्त कभी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को हाफिज सईद जी कह सकता है, कोई देशभक्त बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन कह सकता है, कोई देशभक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ बोल सकता है, कोई देशभक्त कभी भी नक्सल डिस्कस नहीं, आप क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का फ्लैग होना चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए, आतंकवादी आतंकवादी होता है।
2: विवेक जी अपने विवेक से थोड़ा जवाब देंगे, ये न्यूक्लियर डिसमेंटलिंग पर क्या है कहना आपका?
3: पहली चीज देखिए, ये सरकार डिस्कशंस नहीं चाहती है, दे डोंट वांट डिसेंट, आप मोटिवेट कर नहीं पाए, युवा आपके खिलाफ उतरे, पढ़ाई महंगी, नौकरियां है नहीं, आपके पास उत्तर नहीं था, आप डर गए, फिर आप कह रहे हैं साहब सुनिए, एक भारत की एक लड़की निर्णय लेगी उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे रिलेशनशिप रखनी है, किससे शादी करनी है, आप कौन होते हैं लव जिहाद और मॉरल पुलिसिंग करने वाले? शी कैन मैरी इंटरकास्ट, शी कैन मैरी
2: इंटर, बीजेपी के कई नेताओं ने शादी की है इंटर रिलीजियस,
3: यू आर नैरो माइंडेड, इनके नेताओं ने, यू आर जस्ट नैरो माइंडेड, अगेन नैरो माइंडेड,
7: इनने बताया
3: कि नहीं शादी कर सकती
7: है न्यूक्स, भारत का कोई भी देशभक्त कभी भारत के न्यूक्स को खत्म करने की बात करेगा सिर्फ दिमागी नक्सल करेगा जो वीक इंडिया की बात करते
2: हैं। रोहित जी अब वो एक बार बोले फिर आपका जवाब लूंगा।
4: हम कमजोर आदमी हैं, बोलने दीजिए, सब लोग बोलने ही नहीं
3: दे। अरे आप सर्वशक्तिमान हैं।
4: नहीं नहीं
3: बोलिए
4: कि बहुत गंभीर बात है
3: जी।
4: राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार लगी हुई है नेपोटिज्म का जो एक बीज है उसको बड़ा बरगद का पेड़ बनाने के लिए, रेहान वाड्रा जी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यह भी एक दिमागी नक्सलिज्म है इस देश के नौजवान और विद्यार्थियों के लिए। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, जरा आपको जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जिन्होंने भगवान राम मंदिर का पूरा विरोध किया आपकी पार्टी के साथ मिलकर और इन दोनों लोगों के साथ, उसके प्रधान महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने बहन व्योमिका सिंह जी जो जातव समाज से आती है उसका कितना अपमान किया, क्या यह दिमागी नक्सलिज्म नहीं है? मूर्ख बनाते हैं भारत की जनता को। देश की जनता इस बात को बखूबी महसूस कर गई है कि केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विवेक श्रीवास्तव जी के पार्टी विपक्ष में बैठा हुआ है और वहां बहनों को घास खा करके जीना पड़ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने मुवली का मार पिटवाया विद्यार्थियों को और राहुल गांधी जी चले गए प्रयागराज की पवित्र धरा पर गूंज कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, वहां उनके मुंह में मुरब्बा आ गया या दही जम गया।
2: सम्राट जी पर भी बोल दीजिए।
4: अरे सम्राट चौधरी जी तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार को बचा लिया। अरे सुनिए विवेक बाबू, कमजोर आदमी बोल रहा है सूत पुत्र, सुनिए ध्यान से। श्रीमान सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार को बचा लिया। यूरोप में बैठकर डबल जियोपार्डी का लाभ लेने की मंशा से तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार को शाहबुद्दीन साहब के नीतियों पर चलते हुए उनके बेटे की सहयोग से सिवान से लेकर पटना तक और किशनगंज तक जलवाने का कार्यक्रम बना लिया था छात्रों के हिंसात्मक आंदोलन में।
2: बच्चे निकले ना तो तुरंत नौकरी भी निकल गई, लिस्ट निकल गई कुछ लोगों में।
4: और सुनिए,
2: देखिए सब दबाव में
3: है, अगली सरकार इनकी और वामपंथियों के समर्थन से बनेगी। हमारी लड़ाई केरल में छोड़ दो, बना रहे हैं सरकार,
4: तेलंगाना
3: बनेगी सरकार।
4: जवाब कब दीजिए?
2: अभी ये बताएंगे किस राज्य में बचे हैं ये जी। ना ये सरकार बना रहे हैं।
3: अरे हम ही बनवाएंगे सरकार,
2: बच्चे कितने
3: अरे 70 साल से इस देश को आइडियोलॉजिकली लेफ्ट ने चलाया है। आपने किताबों में क्या पढ़ा, हमने लिखवाया है और आगे चलेगा।
4: आप देखिए इस चीज को, जनता जान गई है,
3: कुछ नहीं किया, नथिंग नथिंग। हम समर्थन देंगे
1: जो करोड़ों दर्शक इस शो को देख रहे हैं। उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि दिमागी नक्सली कौन है, कौन इतनी हिंसात्मक लहजे से, कौन भाषा की मर्यादा को लांघकर अभद्रता कर रहा है।
6: ये देखा है, ये देखिए
1: इसके लक्षण आपको ऐसे दिखाई देते हैं,
6: ये लक्षण
1: देश के लोगों दिखाई दे रहे
6: हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जनता को ये
1: अभी कुछ परिभाषा मेरी बहन ने दी दिमागी नक्सली की,
3: अर्बन नक्सल की, जिन्होंने
1: दिमागी नक्सल
6: तो सीपीआई माओइस्ट रिसर्च पेपर्स में बहुत सारी आया था विवेक।
1: क्या प्रधानमंत्री जी
6: आप आपको सब पता है तो फिर बताइए,
1: भगवान के देवद्रव्य
2: अच्छा, की प्रोफेसर प्रोफेसर जानते होंगे,
6: बताइए ना
1: अंजना जी, मैं चुप रहूं अगर आप
2: चाहें
1: ना? तो मैं नहीं
2: प्रोफेसर सॉरी प्लीज।
1: प्रधानमंत्री जी जो इस सनातन धर्म में इस पूरी सृष्टि का सबसे घृणित पाप भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों ने किया है, देवद्रव्य की चोरी, भगवान मंदिर राम मंदिर के चोरी, क्या वो दिमागी नक्सली पन में आता है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या मेरे छात्र जो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी पेपर लीक ना हो, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं दिल्ली के दरवाजे पर, उनको पैलेट गन से आंखें फोड़ दी प्रधानमंत्री जी, उनको कील और कांटे लगाकर मारा, क्या ये नक्सलिज्म की अर्बन नक्सल परिभाषा में आता है प्रधानमंत्री जी की? ये देश को बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी
7: दिमागी नक्सल
1: हाथरस में बलात्कार की शिकार बिटिया को रात के अंधियार में
7: बात कर रहे हैं,
1: आपकी सत्ता ने पेट्रोल डालकर जला दिया प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल की परिभाषा में आता है? इन किसानों के खिलाफ एक एनआरआई शरद मराठे के कहने पर तीन क्रूर काले कानून ला उनकी आमदनी पर हमला करने के लिए करनाल से लेकर दिल्ली तक मारकर सर फोड़ दिया प्रधानमंत्री जी। 700 किसानों की शहादत हुई, क्या वो अर्बन नक्सल में आता है कि नहीं आता है प्रधानमंत्री जी बताइए। प्रधानमंत्री जी आपको इस बात का जवाब देना होगा कि ओलंपियन बेटियां जब न्याय मांगने आई तो घसीट घसीट के मारा आपने उनको,
7: ऑलरेडी कोर्ट में फैसला हो गया।
1: अर्बन नक्सल इस देश को बताइए, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हजारों करोड़ रुपए लूटकर विजय माल्या, आपके मेहुल भाई, आपके नीरव भाई, आपके सब भाग गए प्रधानमंत्री जी। ये अर्बन नक्सल में आता है,
7: मैं एक एक्सपेरिमेंट कर देता हूं, ये अर्बन नक्सल का
1: आपने आप दिमागी नक्सल पर
7: दोनों उसको और एनलार्ज कर दिया क्योंकि आपके और ऑप्शंस आ गए।
1: उद्योग नियोजित रूप से बर्बाद कर दिया,
7: चीन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी हमारी है,
1: स्टैंडिंग कमिटी ऑन
7: चीन से ज्यादा बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है।
1: आप बताइए और अर्बन नक्सल में आता है कि नहीं? आपकी सरकार ने आतंकवादियों को टिकट दिए,
7: अरे भैया घर घर के अंदर घुस के मारने का काम ऑपरेशन सिंदूर नाम ने किया है। अमेरिका जवाब
1: बिहार का मुख्यमंत्री AK-47 चलाता,
7: अरे भैया कोई नहीं चली, ऑलरेडी कोर्ट में बोल दिया,
8: झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री,
7: एक्सपेरिमेंट आपके गले पर कर दूंगा, पता चल
2: जाएगा।
7: एक 30 सेकंड आतंकवादी जी, 30 सेकंड में
1: कितने दिन की सत्ता बची?
7: सुनो, अरे सत्ता आएगी जाएगी, देश आगे जाना चाहिए और देश के खिलाफ इंटेलेक्चुअल बात करने वाला व्यक्ति दिमागी नक्सल है। अरुंधति रॉय
2: नहीं है
7: वो दिमागी नक्सल, मैं छोटा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। शर्जील इमाम ने कहा चिकन नेक भारत से हटना चाहिए, मैं कहता हूँ दिमागी नक्सल एंटी नेशनल, आप कहते हैं वो है।
1: अरे चीन घुस गया अरुणाचल
7: प्रदेश में, बुला लीजिए
1: प्रदेश में घुसा,
7: एंटी नेशनल है वो,
1: बैठा
7: है बजाय इनको दिखाओ क्या शर्जील इमाम एंटी नेशनल दिमागी नक्सल है। ये देख दिमागी नक्सल एंटी नेशनल है, दिमागी नक्सल एंटी नेशनल
8: मीडिया।
7: अरे भाई अभी शर्जील इमाम का वीडियो फेक नहीं है,
2: बारी बारी से प्लीज एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड चिल्ला चिल्ली का इसको अड्डा मत बनाइए। राउंड टेबल इसलिए नहीं किया गया है कि हम लोग चीखे, क्योंकि कोई आवाज नहीं सुन पाता है। बारी बारी से जो हम लोग हमेशा करते हैं वैसे बात कीजिए प्लीज, ठीक है?
3: चाहे उमर खालिद हो चाहे शर्जील इमाम हो, मैटर सब जुडिस है। अगर वो गलत है, हमारे देश की जुडिशियरी पे हमारा विश्वास है, उनको दंड दीजिए। ट्रायल बाय मीडिया मत करिए आप, कि मुसलमान लड़कियां तो ट्रायल बाय मीडिया करेंगे आप उनको, हाँ दे ना।
7: वीडियो फेक so नहीं है भाई, डजंट मैटर पब्लिक रिकॉर्ड। व्हाई हैज द पनिशमेंट नॉट बीन गिवन?
2: ठीक है, लेकिन
7: बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वी आर नॉट अ तालिबानी स्टेट।
2: तो यंगर जनरेशन से एक सेकंड आप तो यंगर जनरेशन से हैं,
7: प्रदीप जी सही कह रहे हैं।
2: एक सेकंड,
3: 6 साल से बेल नहीं मिली उमर खालिद,
7: क्योंकि उसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है।
3: उसको पनिश करो ना, पनिश करो ना उसको,
8: जब तक डायरेक्शन दीजिएगा
3: आप,
8: कोर्ट को डायरेक्शन दीजिएगा,
3: चार्जशीट तक
8: डायरेक्ट ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया
3: कोर्ट
8: को डायरेक्शन देंगे,
3: चार्जशीट का
8: आपको अधिकारी
2: चाहिए,
8: कोर्ट मांगेगा, आप ही मांगेंगे, माननीय न्यायपालिका को डायरेक्ट करने का अधिकार आपको दिया गया है। माननीय न्यायपालिका अपमान करना बंद कीजिए,
1: सबका अपमान हो गया है भाई। प्रोसिक्यूशन
2: कमजोर हो गया है, बिलोंग करते हैं प्लीज। अरे बाप रे, मैं ही निकल जाती हूँ, आप लोग लड़ लीजिए आपस में, मैं निकल जाती हूँ। अनीश आपसे एक सवाल है, चूंकि आप यंगर जनरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन क्या बोला वो अलग बात है, लेकिन क्या सरकार को अपोज करते करते इस तरह की बातें अगर जो लाइन को क्रॉस करती हैं, जो देश के खिलाफ है, उसका खुलकर विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्रो हो एंटी हो?
5: मैं सिर्फ दो चीजें कहूंगा। 25 मई 2013 इस दिन कांग्रेस की सरकार के बहुत सारे एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए छत्तीसगढ़ में मारे गए थे। लोगों ने जान दिया इस देश के लिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। आज कोई भी कह रहा है कि कोई भी नेता, कोई भी देशवासी एंटी नेशनल है, उसको नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट बांटने का कोई अधिकार है, नहीं है। आज ये दुर्भाग्य की बात यही है कि आज नौजवान देख रहा है कि आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो और वो कॉकरोच का इंसल्ट लेके आप पर हंस रहा है, अर्बन नक्सल का इंसल्ट लेकर आप पर हंस रहा है,
7: मेरी बात
5: और वही प्रॉब्लम है।
7: अनीश,
5: मैं आपको दूसरी चीज कहूंगा।
2: अनीश एक और सवाल है मेरा, शरद जी ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी?
5: शरद जी ने तभी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उस पर अलग अलग राय थी।
2: अलग राय थी, वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल को नहीं चाहते थे,
5: बिल्कुल
2: है ना।
5: और उसके बाद हम वापस एक साथ,
2: लेकिन आप क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर राजी होगी कि आप उनकी विदेशी मूल को मुद्दा बनाए? नहीं होगी ना।
5: नहीं अंजना जी, राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं।
2: समय और परिस्थिति कई बार,
5: नहीं राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद।
7: मैं जवाब देता हूं,
5: आप मतभेद
2: इस पर, एक सेकंड इस पर आते हैं, एक सेकंड इस पर मैं जवाब आप तीनों से लूंगी। मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद मतलब एक शत्रुता की पॉलिटिक्स होने लगी, जिसकी वजह से आप उधर से भी वैसा ही एक वेनमस बैकलैश देख रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन क्या विरोध की आवाज, मतलब जो हमारे खिलाफ, उसके लिए माई वे और हाईवे वाली आप नीति पे चले? सीधा सवाल है
7: मैम। ये इकलौते प्रधानमंत्री जिसको हर दिन अगर इतने विरोधी जो है सब सीमा रेखा क्रॉस करके गालियां तक बकते, कम लोग FIR नहीं करते,
1: इमरजेंसी कांग्रेस करते
7: हैं,
1: किसानों को मारा,
7: बटला हाउस के अंदर जब आतंकवादियों को मारा गया था, पिछले समय जब टॉलरेंस की बात होती थी तो कहते आंसू बहाए गए, अब हम आतंकवादियों को मारते हैं और ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल इनने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप चलेगी, उसके बावजूद NSC विरोध कर रही थी चिदंबरम का कि मत मारो नक्सलियों को, ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है। और NSC के उसी ईयर में 2013 में विनायक सेन कन्विक्ट हुए थे सेडिशन में नक्सलियों की मदद करने के लिए, ये सच चाहिए तो सच नहीं बोलेंगे क्या? देश की संप्रभुता अगर कोई बोलेगा हमारा राइट है, हम घर के अंदर घुसते पाकिस्तान को मारते, पहले नहीं मारते थे, पहले आतंकवादी जाकिर नायक जैसे लोगों को जस्टिफाई करते थे।
2: अबे जी दो दो लाइन का कमेंट सबसे, अबे जी जल्दी से इस पर जवाब। और इस पर दिग्विजय जी ने बाकायदा आर्टिकल लिखा कि गलत कर रहे हैं गृह मंत्री जी, उस समय की बात कर रही हूँ मैं जो उन्होंने क्या ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया था पीछे दमरम।
1: अंजना जी हमने कभी भी पूर्व नक्सलियों के नाम पर रैंप वॉक नहीं कराया महिलाओं का, जो ये आज की
8: बात
2: चलिए हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन ये मुद्दा कितना गर्म है आप देखते
8: हैं।
2: इसी के साथ इतना ही हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, आप तय कीजिए क्योंकि अब तो लाइव प्रोग्राम भी क्या है।
8: महिलाओं
2: देश बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।

0: यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए हैं। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर ये शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 800,000 प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसपा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
9: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
10: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
9: कितने लोग थे?
10: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखाते जहां पर 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने दूसरे को थप्पड़ मारा, इसके बाद माहौल बिगड़ गया और जमकर मारपीट हुई।
1: तेलंगाना के वारंगल में भयानक मारपीट हो रही है। एक आदमी को कुछ लोग कायदे से पीट रहे हैं। इसमें एक वर्दी पहने हुए शख्स है जो एक जमीन पर पड़े आदमी को पीट रहा है। तस्वीरें वारंगल के उर्सू गट्टा इलाके की हैं। ये आदमी जो बनियान में है, ये बटालियन कांस्टेबल है। यहाँ एक बार में इसने हंगामा किया, जिसके बाद बार वाले ने पुलिस को फोन किया। बीट कांस्टेबल संतोष रेड्डी यहाँ पहुँचे। संतोष रेड्डी इस कांस्टेबल को समझा रहे हैं। अचानक संतोष ने कांस्टेबल को एक तमाचा जड़ दिया। जवाब में बटालियन कांस्टेबल ने भी बीट कांस्टेबल संतोष को तमाचा मार दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो आपके सामने है। संतोष रेड्डी ने इसे डंडे से पीटना शुरू किया। 2 लोग डंडा लेकर और आ गए, उन्होंने भी इस कांस्टेबल की पिटाई शुरू कर दी। देखिए कैसे इसे पीटा जा रहा है। इतना पीटा गया कि यह जमीन पर गिर गया। फिर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग इसे तब भी पीट रहे थे। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यानी पुलिस से पुलिस भिड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि ये बगैर वर्दी में जो लोग थे, इन्होंने कांस्टेबल को क्यों पीटा और अब इस पिटाई का परिणाम क्या होगा? क्या दोनों कांस्टेबल पर कार्रवाई होगी? फिलहाल तो पुलिस वर्सेस पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हैं। अब्दुल बशीर, वारंगल आज तक।
0: ट्रंप ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
11: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
12: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
11: ईरान बार बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे हॉर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
13: अगर अमल न करदन मिजनिम मनाफे उन کشور رو میزنیم چرا برای اینکه رفته با آمریکایا شریک شده یعنی اول مذاکره میکنیم سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم مسئله دوم زمان میذاره ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه اگر این کار اینا شروع کنن ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره نه نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس
11: ईरान के कमांडरों से लेकर राष्ट्रपति तक अमेरिका को हर रोज धमकी दे रहे हैं और किसी भी हमले की सूरत में नतीजा भुगतने की बात कह रहे हैं। अब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही के एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले एक साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। 2022 में शुरुआत हुई थी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की, जो कि 2026 आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो को तबाह करने तक पहुंच गए हैं और अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का है। यूक्रेन लगातार रूस की तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है, जबकि रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को और बदतर कर देगा।

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला, पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा, ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान, आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरी से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1,000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक, बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज जैसा हाल यूपी के उन शहरों का भी है जिनके जो है नदियों के किनारे हैं, चाहे हापुड़, फरुखाबाद और महोबा में बिल्कुल यही हाल है। शहरों के सिर्फ नाम बदले हैं, हालात नहीं।

उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी। क्या शहर क्या गांव, हर जगह पानी पानी। यूपी के शहरों में नदियां दिखा रही हैं रौद्र रूप। आसमान से बरस रही बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। हर जगह नदियों के उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए फर्रुखाबाद की तस्वीरें। देखिए जहां मैदान था

0: खेत खलिहान तो ताल तलैया बन गए हैं। स्कूलों में भारी जलजमाव है, गंगा में उफान है। देखिए गंगा की लहरें इस कदर उफनाई कि यह घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। अब लोग बाढ़ से परेशान हैं।
1: घर में पानी घुस गया,
2: घर में बहुत तो चारों की दिक्कत है, पानी भरा है।
1: नहीं, लगभग गांव के कितने मकानों में घर में पानी घुस गया होगा?
2: गिनती तो करी नहीं, मान लो मकान कम से कम 20-25 तक बूढ़े,
1: 20-25 बूढ़ गए।
3: निकलने बहुत दिक्कत हो रही है, नवैया होना चाहिए।
1: नवैया होना चाहिए, तो आपके जानवर ऊंचे पे भी बंधे हैं?
3: जानवर सर ऊंचे पे,
1: घरों में पानी तो नहीं पहुँचा अभी?
3: नहीं पानी,
1: लेकिन बाहर निकलने के लिए
3: तकलीफ है। घास ले जा रहे, हम पानी में घुस गए,
1: पानी में घुस के जाएंगे।
0: ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई गांवों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। लोगों के घर मकान हर जगह पानी भर चुका है। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और लोग उसी पानी के अंदर से अपनी बैलगाड़ी हो या मोटरसाइकिल निकालने को मजबूर है। जहाँ एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, वहीं प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम कविता मीणा मैदान में उतरी और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
4: अभी हमारे जो तहसील के अंतर्गत जो भी 8 जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गांव है, जहां पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है, तो इनके लिए जो शासन द्वारा राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में, और आगे भी अगर ऐसी अगर बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवा सकते हैं।
0: अब महोबा की तस्वीरें देखिए। इस स्कूल में दरिया बह रहा है और इसी पानी में ये बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं।
5: कई वर्षों से जो है ये समस्या चली आ रही है। कल जो है रात में हमारी बाउंड्री बाल गिर गई, पूरे कमरों में पानी भर गया, चावल रजिस्टर सब भीग गए। हमने कई बार जो है ABA साहब को अवगत कराया, ABA साहब स्वयं आए तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सर चंद लगा सर, मरते मरते बचे।
6: बच्चे बाथरूम कहाँ जाते हैं आपके?
5: बाथरूम भी गिर गया सर,
6: वहाँ पर पानी भरा है आपका बाथरूम में?
5: पानी भरा
0: है। इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की तकलीफ सुनिए।

0: में बैठते हैं।
1: यूपी ही नहीं बिहार में भी मानसूनी आफत के चलते कई जिलों में बाढ़ से हालात हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से बेगूसराय के कई गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: किसानों का बहुत ही बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो पशुपालक है उनके लिए भी काफी समस्या है। पशुपालक किसी तरह एन केन प्रकारेन भर कमर पानी हेल कर तैर कर ऊंचे स्थान से जाकर मवेशी की चारा का व्यवस्था करते हैं और यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए तो किसानों के साथ साथ पशुपालकों के लिए काफी समस्या है।
1: क्या घर, क्या मकान और क्या सड़क, हर जगह सिर्फ पानी पानी ही नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, वहीं हजारों बीघा में लगी फसल पानी में डूब चुकी है। तो साफ है कि इस वक्त आसमान से बरस रही आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
4: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था।

0: वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
1: ये हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटोला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं, कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे, जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है, अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक विरोध।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए हैं। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर ये शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आँच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसपा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस बलों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
9: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
10: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
9: कितने लोग थे?
10: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, नाथ से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को तैनाती की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के दो विधायक समेत सात लोग घायल। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए हैं। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखे। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है, यह गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, यह गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दोफाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गाँव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गाँव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसमा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस बलों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
9: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
10: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
9: कितने लोग थे?
10: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
0: ट्रंप ने अब बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
11: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
12: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
11: ईरान बार-बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे होर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
13: اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
11: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں. اب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف علی عبداللہی کے ایک انڈر گراؤنڈ بیلسٹک میسائل پروڈکشن پلانٹ کا دورہ کرنے کا فوٹیج جاری کیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران لگاتار ہتھیار بنانے کی کشمتا بڑھا رہا ہے اور پچھلے ایک سال میں ایران کے میسائل ذخیرے میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے. اتنا ہی نہیں، اس سال 28 فروری کو ہوئے حملے کے بعد سے ایران نے ڈرون کا اتپادن 3 گنا بڑھا دیا ہے. ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन. आज तक ब्यूरो.
0: अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की. 2022 में शुरुआत हुई थी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की, जो कि 2026 आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो को तबाह करने तक पहुंच गए हैं और अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का है. यूक्रेन लगातार रूस की तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है, जबकि रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को और बदतर कर देगा.

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला, पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा, ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान, आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरी से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव को जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
8: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
3: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
8: यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटोला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप।

0: कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को तैनाती की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के 2 विधायक समेत 7 लोग घायल। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गई है। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। यह गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, यह गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसपा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को दो पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ दो पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं।

0: दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
1: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
2: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
1: कितने लोग थे?
2: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
0: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: ट्रंप ने अब बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
4: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
4: ईरान बार-बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे होर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
6: چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده، یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
4: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف

0: अब्दुल्लाही के एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले एक साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। 2022 में शुरुआत हुई थी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की, जो कि 2026 आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो को तबाह करने तक पहुंच गए हैं और अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का है। यूक्रेन लगातार रूस की तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है, जबकि रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को और बदतर कर देगा।

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला, पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा, ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान, आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरीज से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया, उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक, बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउडस्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जलस्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
8: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
3: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
8: ये हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटोला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक विरोध।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप।

0: कॉन्फ्रेंस का आयोजन गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को तैनाती की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के 2 विधायक समेत 7 लोग घायल। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए हैं। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिये अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दोफाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आँच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 50-60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
9: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
10: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
9: कितने लोग थे?
10: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था यहाँ।
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने दूसरे को थप्पड़ मारा, इसके बाद माहौल बिगड़ गया और जमकर मारपीट हुई।
1: तेलंगाना के वारंगल में भयानक मारपीट हो रही है। एक आदमी को कुछ लोग कायदे से पीट रहे हैं। इसमें एक वर्दी पहने हुए शख्स है जो एक जमीन पर पड़े आदमी को पीट रहा है। तस्वीरें वारंगल के उर्सुगट्टा इलाके की हैं। ये आदमी जो बनियान में है, ये बटालियन कांस्टेबल है। यहाँ एक बार में इसने हंगामा किया, जिसके बाद बार वाले ने पुलिस को फोन किया। बीट कांस्टेबल संतोष रेड्डी यहाँ पहुँचे। संतोष रेड्डी इस कांस्टेबल को समझा रहे हैं। अचानक संतोष ने कांस्टेबल को एक तमाचा जड़ दिया। जवाब में बटालियन कांस्टेबल ने भी बीट कांस्टेबल संतोष को तमाचा मार दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो आपके सामने है। संतोष रेड्डी ने इसे डंडे से पीटना शुरू किया। 2 लोग डंडा लेकर और आ गए। उन्होंने भी इस कांस्टेबल की पिटाई शुरू कर दी। देखिए कैसे इसे पीटा जा रहा है। इतना पीटा गया कि यह जमीन पर गिर गया। फिर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग इसे तब भी पीट रहे थे। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यानी पुलिस से पुलिस भिड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि ये बगैर वर्दी में जो लोग थे, इन्होंने कांस्टेबल को क्यों पीटा और अब इस पिटाई का परिणाम क्या होगा? क्या दोनों कांस्टेबल पर कार्रवाई होगी? फिलहाल तो पुलिस वर्सेस पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हैं। अब्दुल बशीर, वारंगल आज तक।
0: ट्रंप ने अब बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
11: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
12: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
11: ईरान बार-बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे होर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
13: اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگه هرمز نه از خلیج فارس.
11: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں. اب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف علی عبداللہی کے ایک انڈر گراؤنڈ بیلسٹک میسائل پروڈکشن پلانٹ کا دورہ کرنے کا فوٹیج جاری کیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران لگاتار ہتھیار بنانے کی کشمتا بڑھا رہا ہے اور پچھلے ایک سال میں ایران کے میسائل ذخیرے میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے. اتنا ہی نہیں، اس سال 28 فروری کو ہوئے حملے کے بعد سے ایران نے ڈرون کا اتپادن 3 گنا بڑھا دیا ہے. ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन. आज तक ब्यूरो.
0: अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की. 2022 में शुरुआत हुई थी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की, जो कि 2026 आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो को तबाह करने तक पहुंच गए हैं और अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का है. यूक्रेन लगातार रूस की तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है, जबकि रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को और बदतर कर देगा.

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला। पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा। ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान। आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है। तो यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरी से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
8: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
3: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
8: यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटोला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

निर्माण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप।

0: इसका आयोजन गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के 2 विधायक समेत 7 लोग घायल। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गई है। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। यह गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, यह गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 800,000 प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसपा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को दो पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है।

0: दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
1: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
2: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
1: कितने लोग थे?
2: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
0: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: ट्रंप ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
4: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
4: ईरान बार-बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे होर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
6: منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
4: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اب ایران

0: सरकारी टेलीविजन ने ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही के एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले एक साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। 2022 में शुरुआत हुई थी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की, जो कि 2026 आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो को तबाह करने तक पहुंच गए हैं और अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का है। यूक्रेन लगातार रूस की तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है, जबकि रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को और बदतर कर देगा।

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला, पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा, ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान, आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरी से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक, बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव को संगम जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
8: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
3: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
8: यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटौला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां सड़क कट जाने से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक विरोध।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप।

0: कॉन्फ्रेंस का आयोजन गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को तैनाती की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के 2 विधायक समेत 7 लोग घायल। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए हैं। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। यह गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, यह गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गाँव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गाँव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसपा डेयरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को दो पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ दो पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
9: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
10: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
9: कितने लोग थे?
10: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, जिस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: ट्रंप ने अब बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
11: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
12: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
11: ईरान बार-बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे होर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
13: چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده، یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
11: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں. اب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف علی عبداللہی کے ایک انڈر گراؤنڈ بیلسٹک میسائل پروڈکشن پلانٹ کا دورہ کرنے کا فوٹیج جاری کیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران لگاتار ہتھیار بنانے کی کشمتا بڑھا رہا ہے اور پچھلے ایک سال میں ایران کے میسائل ذخیرے میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے. اتنا ہی نہیں، اس سال 28 فروری کو ہوئے حملے کے بعد سے ایران نے ڈرون کا اتپادن 3 گنا بڑھا دیا ہے. ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ ان کی سینا نے ایران کے ہتھیاروں کے بھنڈار کو ختم کر دیا ہے، لیکن حملوں کی تصویریں صاف بتاتی ہیں کہ سیز فائر کے دوران ایران نے خود کو اور مضبوط کیا ہے، پھر وہ چاہے اینٹی میسائل سسٹم ہو، میسائل لانچر ہو یا پھر ڈرون. آج تک بیورو.
0: اب بات کرتے ہیں روس اور یوکرین یدھ کی. 2022 میں شروعات ہوئی تھی سینے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی، جو کہ 2026 آتے آتے رہائشی علاقوں اور تیل ڈپو کو تباہ کرنے تک پہنچ گئے ہیں اور اب نیا مورچہ آرتھک طور پر کمر توڑنے کا ہے. یوکرین لگاتار روس کی تیل اور ای کامرس سپلائی پر وار کر رہا ہے، جبکہ روس نے بھی دھمکی دی ہے کہ وہ یوکرین کی پہلے سے برباد ارتھ ویوستھا کو اور بدتر کر دے گا.

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला। पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा। ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान। आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है। तुर्क यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरीज से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर तारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउडस्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जलस्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज का ब्यूरो।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
8: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
3: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
8: यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटोला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, आज से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को तैनाती की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के दो विधायक समेत सात लोग घायल। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गई है। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 800,000 प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गाँव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गाँव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसपा डेरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस बलों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
9: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
10: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
9: कितने लोग थे?
10: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे।

0: ये मैंने देखा था यहाँ।
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: ट्रंपिंग ने अब बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
3: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
4: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
3: ईरान बार-बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे होर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
5: منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
3: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں. اب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف अली अब्दुल्लाही के एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले एक साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। 2022 में शुरुआत हुई थी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की, जो कि 2026 आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो को तबाह करने तक पहुंच गए हैं और अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का है। यूक्रेन लगातार रूस की तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है, जबकि रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को और बदतर कर देगा।

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला, पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा, ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान, आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरीज से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1,000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
8: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
3: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
8: यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटौला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक विरोध।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: पर सुलगी सियासत सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी सा परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन आज से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश नाकाम बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद बब्बर खालसा से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट कर्नाटक और दिल्ली के दो विधायक समेत सात लोग घायल। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गई है। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिये अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आँच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरसा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: दिल्ली के भलसपा डेरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
9: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
10: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।
9: कितने लोग थे?
10: वो 3-4-5 लोग होते हैं, 3-4 पुलिस वाले थे। यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई, डंडे, ईंटे, पत्थर सब चलने लगे थे, इस कारण पब्लिक भी दूर दूर से वीडियो वीडियो बनाई थी, खड़ी थी उधर उधर, ये मैंने देखा था। यहाँ
1: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखाते जहां पर 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने दूसरे को थप्पड़ मारा, इसके बाद माहौल बिगड़ गया और जमकर मारपीट हुई।
1: तेलंगाना के वारंगल में भयानक मारपीट हो रही है। एक आदमी को कुछ लोग कायदे से पीट रहे हैं। इसमें एक वर्दी पहने हुए शख्स है जो इस जमीन पर पड़े आदमी को पीट रहा है। तस्वीरें वारंगल के उर्सू गट्टा इलाके की हैं। ये आदमी जो बनियान में है, ये बटालियन कांस्टेबल है। यहाँ एक बार में इसने हंगामा किया, जिसके बाद बार वाले ने पुलिस को फोन किया। बीट कांस्टेबल संतोष रेड्डी यहाँ पहुँचे। संतोष रेड्डी इस कांस्टेबल को समझा रहे हैं। अचानक संतोष ने कांस्टेबल को एक तमाचा जड़ दिया। जवाब में बटालियन कांस्टेबल ने भी बीट कांस्टेबल संतोष को तमाचा मार दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो आपके सामने है। संतोष रेड्डी ने इसे डंडे से पीटना शुरू किया। 2 लोग डंडा लेकर और आ गए, उन्होंने भी इस कांस्टेबल की पिटाई शुरू कर दी। देखिए कैसे इसे पीटा जा रहा है। इतना पीटा गया कि यह जमीन पर गिर गया, फिर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग इसे तब भी पीट रहे थे। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यानी पुलिस से पुलिस भिड़ गई। लेकिन सवाल ये है कि ये बगैर वर्दी में जो लोग थे, इन्होंने कांस्टेबल को क्यों पीटा और अब इस पिटाई का परिणाम क्या होगा? क्या दोनों कांस्टेबल पर कार्रवाई होगी? फिलहाल तो पुलिस वर्सेस पुलिस की ये तस्वीरें वायरल हैं। अब्दुल बशीर, वारंगल, आज तक।
0: ट्रंपिंग ने अब बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
11: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
12: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
11: ईरान बार बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे हॉर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
13: अगर अमल न करदन मिजनिम मनाफे उन कश्वर रो मिजनिम چرا برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده یعنی اول مذاکره میکنیم سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم مسئله دوم زمان میذاریم ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه اگر این کار اینا شروع کنن ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره نه نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس
11: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں اب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف علی عبداللہی کے ایک انڈر گراؤنڈ بیلسٹک मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले एक साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है इतना ही नहीं इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन आज तक ब्यूरो
0: अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की 2022 में शुरुआत हुई थी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की जो कि 2026 आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो को तबाह करने तक पहुंच गए हैं और अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का है यूक्रेन लगातार रूस के तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है जबकि रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को और बदतर कर देगा

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला, पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा, ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान, आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरी से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन ने रूस में तबाही मचा दी है। इसमें सीमा से करीब 1,000 किलोमीटर दूर रूस की नोवो रिफाइनरी और कई लॉजिस्टिक हब भी शामिल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस के सेकी एयरफील्ड और SU-24M एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पहले सैन्य ठिकाने, फिर रिहायशी इलाके और अब आर्थिक ठिकानों पर निशाना लगातार रूस और यूक्रेन ने जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियाँ हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
8: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
3: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
8: यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटोला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां सड़क कट जाने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक विरोध।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो गया हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में दो दिवसीय महामंथन, आज से दो दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को तैनाती की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के दो विधायक समेत सात लोग घायल।

0: यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए है। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है। ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर ये शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
1: इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही दो फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है।
1: सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
4: आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है।
1: बता दें कि अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आँच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कल महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी आरएसएस पर टारगेट किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। राहुल के बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है।
1: एक दिन पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया और आज राहुल गांधी के समर्थन में ये पोस्टर दिल्ली में लग गए। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाला बैटमैन बताया गया है। लिखा गया है कि साइलेंट गार्जियन बैटमैन। इन पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस ने लगाया है। उधर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा बरपा है।
5: एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
1: अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी निशाने पर लिया।
5: मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते।
1: बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई।
6: जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा कि मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा, अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ समझ नहीं आता है। राहुल के बयान पर फिलहाल हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूपी की राजनीति में परिवारवाद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर हमला किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश परिवार के आगे सोच नहीं पाते, परिवार के नाम पर यूपी में उन्होंने लूट मचा रखी थी।
7: पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए।
8: कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ी नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।
0: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी तादाद में आज कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर से आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तोलावाल अनाज मंडी में पुरानी पेंशन साझा फ्रंट पंजाब का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पंजाब के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज की ओर कूच किया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर गांव में रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। अंत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया। फिलहाल कर्मचारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतौज की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी करीब 5,000 प्रदर्शनकारी सतौज के पास डटे हुए हैं। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: दिल्ली के भलसपा डेरी इलाके में पुलिस टीम पर हमले के शॉकिंग विजुअल सामने आए हैं। आरोपी की भीड़ ने पुलिस बलों पर मिर्च पाउडर फेंका, ईंट पत्थर और डंडों से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है।
1: पुलिस वालों पर लाठियां बरस रही हैं। लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया है और जमकर पीट रहे हैं। इस शख्स को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है और दूसरा आदमी यहां से पुलिस वालों पर लाठी बरसा रहा है। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने पकड़ रखा है और पीट रहे हैं। पिटाई करने वालों में नाबालिग और महिला भी हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास दिल्ली पुलिस गश्त कर रही थी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक जब्त की। इस बाइक के जब्त होते ही लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। आरोप है कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया और फिर लाठी डंडे से इन पर जोरदार हमला बोल दिया गया।
9: इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ का वीडियो सामने आया है और इसी जगह पे कल दिन की वारदात बताई जा रही है जब कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 पुलिस वाले यहाँ पर अपने राउंड पर थे, रूटीन राउंड पर थे, बीट पर थे और तभी यहाँ पर एक बाइक उन्हें मिलती है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो बाइक सीज कर लेते हैं और बाइक सीज करने के बाद जब थाने से वो दोबारा वापस आते हैं तो कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और एक नाबालिग व्यक्ति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है।
10: बाहर जब लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई, जब मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी।

0: पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी पंकज है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इस हमले में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ में जुट गई है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
1: ट्रंप ने अब बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा लगाया है। उधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
2: होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि होर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में होर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू यूएस टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे।
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
2: Iran बार-बार Trump के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे होर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नियत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा।
4: अगर अमल ना करदन मिजनिम منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
2: ایران کے کمانڈروں سے لے کر راشٹرپتی تک امریکہ کو ہر روز دھمکی دے رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں نتیجہ بھگتنے کی بات کہہ رہے ہیں. اب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سشستر بلوں کے چیف آف سٹاف अली अब्दुल्लाही के एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले एक साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। 2022 में शुरुआत हुई थी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की, जो कि 2026 आते आते रिहायशी इलाकों और तेल डिपो को तबाह करने तक पहुंच गए हैं और अब नया मोर्चा आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का है। यूक्रेन लगातार रूस की तेल और ई कॉमर्स सप्लाई पर वार कर रहा है, जबकि रूस ने भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन की पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को और बदतर कर देगा।

0: यूक्रेन के पलटवार से रूस दहला। पुतिन ने दी धमकी। यूक्रेन ने खोला मुसीबतों का पिटारा। ड्रोन से बरसे बम, आग से अरबों का नुकसान। आर्थिक ठिकानों पर हमले से रूस यूक्रेन में विनाशकारी घमासान। रूस लगातार कीव और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रहा है। तुर्की यूक्रेन बदला लेने के लिए रूस के तेल डिपो और बड़े लॉजिस्टिक सेंटरों पर ड्रोन के जरिए तबाह करने पर उन्हें तुला हुआ है। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीवी रीग में एक शॉपिंग सेंटर पर बम बरसाए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन प्लांट्स पर हमले तेज कर दिए हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत माने जाते हैं। पहले यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाकर उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। अब वाइल्ड बेरीज से लेकर ओजोन तक उसकी एयर स्ट्राइक से तबाह हो रहे हैं। इस बार उसके निशाने पर समारा ओब्लास्ट है, जिसमें 1,35,000 वर्ग मीटर से फैला ओजोन लॉजिस्टिक हब है। ड्रोन से हुए हमले के फौरन बाद यहां अब एक के बाद एक धमाके होने लगे हैं। पूरे परिसर में भयानक आग लग गई है। वाइल्ड बेरीज और ओजोन रूस की ऑनलाइन शॉपिंग के 77% हिस्से को साझा करते हैं। जाहिर है इन पर हो रहे लगातार हमलों को रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी है और यूक्रेन को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस के आर्थिक ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबत का पिटारा खोल दिया है।
1: यूक्रेन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने खुद ही यह पेंडोरा का पिटारा खोल दिया। तो फिर अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। हमें अपने सामान की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं होगी।
0: शनिवार को रूस के क्रेस्टोडोर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 5 रूसी नागरिक सामरा में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति
2: प्रयागराज में गंगा उफान पर है और 2 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबने सा लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बड़े हनुमान मंदिर तक ही आ गया है। और इसी जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको फटकार भी लगाई।
3: संगम नगरी में बाढ़ का कहर, घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी मुसीबत का सबब बन गया, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए।
4: यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, अब यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है।
5: काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक, बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है, बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव को संगम जा रहे हैं।
3: बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
6: हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियां हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा।
3: गंगा यमुना के रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं।
6: दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं।
3: प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। लाउडस्पीकर से लोगों को गहरे पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जल स्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि समय रहते अगर अधिकारियों ने स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात न हुए होते।
7: बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान, प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाएगा।
3: फिलहाल बरसात थमी है और रिहायशी इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिर से बारिश हुई तो बहुत संभव है कि फिर से ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद किया गया है। वहीं इससे पहले मंडी के कटौला में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई।
8: पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत, तरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
3: सबसे पहले आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयानक हैं। राव नदी में ये पिकअप वैन बह रही है। पिकअप वैन में भैंस थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी सामान्य था, वो भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वो गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पहाड़ों की ओर से नदी में तेज बहाव आ गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी भैंस पानी में बह गई।
8: ये हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटौला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और दो लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां सड़क कट जाने से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। तो साफ है अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

आ गया है सावन का अंतिम सोमवार। सावन के अंतिम सोमवार का क्या होगा पूजा विधान? भगवान शिव की कैसे मिलेगी कृपा? कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

शाह ने लखनऊ में निकाला मार्च अखिलेश के बाद मायावती बोली ऐसी मांग गलत देशित के खिलाफ। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता कर देगी साथ, परिवार के हितों के लिए प्रदेश को पीछे रखने का लगाया आरोप।

0: कॉन्फ्रेंस का आयोजन गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ को तैनाती की साजिश नाकाम, बस स्टैंड के पास से आईईडी और हथियार बरामद, बब्बर खालसा से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा, डिवाइडर तोड़कर इनोवा से टकराई स्विफ्ट, कर्नाटक और दिल्ली के 2 विधायक समेत 7 लोग घायल। यूपी में जाति आधारित आरक्षण पर तकरार तेज हो गए हैं। लखनऊ में सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखी। उधर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हैं।
1: यूजीसी कानून के खिलाफ ये सवर्णों का विरोध प्रदर्शन है, ये गुस्सा है आरक्षण के सिस्टम में बदलाव के लिए, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ।
2: आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर शुरू हो गया है।
1: यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा।
3: आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र